ओम शांति। बाबा ने आकर हम सभी को संपूर्ण पवित्र बनने के लिए बहुत श्रेष्ठ प्रेरणाएं दी हैं। हम पवित्र थे, अपने पवित्र स्वरूप की स्मृति हमारे अंदर पवित्रता के बीज अंकुरित करती है। हम परम पवित्र आत्माएं हैं, इससे अपवित्रता के सभी कीटाणु मर जाते हैं। हम देव कुल की संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं, इस स्मृति से पवित्रता को धारण करने का बल प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी बाबा को संपूर्ण पवित्रता का वचन दे दें। और शक्तिशाली वही है, बाबा से वफादार वही कहलाएगा जो एक बार बाबा को वचन देकर उसे वापिस न ले। तो संकल्प करें, हम जिस पथ पर एक बार चल पड़े, निकल पड़े, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। चाहे मार्ग कितना ही कटीला विषैला क्यों न हो, लेकिन यही हमारा मार्ग है और यही हमें श्रेष्ठ मंजिल पर पहुंचाएगा। तो हमें अपने अंदर पवित्रता का बल बढ़ाते चलना है। कैसे बढ़ेगा ये बल? बार बार देही अभिमानी होने का अभ्यास करने से, बार बार स्वमान में स्वयं को स्थित करने से, और बहुत अच्छा योग अभ्यास करने से। अपने संकल्पों में भी बहुत दृढ़ता रहे। और चौथी बात है, दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखने से। देहिक दृष्टि देह का आकर्षण पैदा करती है, और क्योंकि सभी के देह पतित हैं, तो पतितपन के वाइब्रेशन हमारे अंदर भी आने लगते हैं। इसलिए जिनको संपूर्ण पवित्र बनकर प्रकृति को पावन करना है, जिन्हें संपूर्ण पवित्र बनकर वायुमंडल को पवित्र करना है और संपूर्ण योगी बनना है, वे दृढ़ संकल्प कर लें, हम केवल आत्मा को ही देखेंगे। और सबको आत्मा देखते हुए उन्हें पवित्र वाइब्रेशंस भी देंगे, इससे हमारा भी फायदा होगा, उनका भी बहुत फायदा होगा। हम पवित्रता के इस मार्ग पर चलते चलते इसमें छोटी मोटी जो बातें आती हैं उनसे घबराएंगे नहीं। मान लो देह का आकर्षण होता है, आपको व्यर्थ संकल्प चलते हैं, आपको स्वप्नों में कोई डिस्टरबेंस होता है, ये इस मार्ग पर आने वाले बैरियर्स हैं, और ये आएंगे ही, क्योंकि हमें आत्मा और शरीर दोनों को क्लीन करना है। इन्हें विदाई देते चलें, अपने को निराश बिल्कुल न करें। जब निगेटिव संकल्प आए उन्हें पॉजिटिव संकल्पों में बदलते चलें, जब इम्प्योर संकल्प आए तब स्वयं को स्वमान में स्थित करते चलें। और सवेरे उठकर रोज योग अभ्यास बहुत अच्छा करें। जो आत्माएं सवेरे उठकर योग अभ्यास करती हैं, अच्छा योग लगाती हैं, थोड़ा प्रकृति के शीतल वायुमंडल में भ्रमण करती हैं, उनमें पवित्रता का बल बहुत बढ़ता जाता है। उनकी अपवित्रता धीरे धीरे समाप्त होती जाती है, कर्म इंद्रियां शीतल होती जाती हैं, बिल्कुल वश में होती जाती हैं। तो हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे सारा दिन इस स्वमान का, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ या पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैंने इस देह में अवतार लिया है इस संसार को संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए। हमें जब अपने इस महान कार्य की स्मृति रहती है तो पवित्र बनने का बहुत ज़्यादा बल रहता है। चारों ओर भले ही हमारे अपवित्र वातावरण है, गंदी दुनिया है, इसमें कोई संशय नहीं कि चारों ओर की गंदगी, चारों ओर का अंधकार किसी पर भी असर डाल सकता है, परंतु हम लाइट हाउस हैं, अंततः हमारा प्रकाश ही सबको प्रकाशित करेगा। तो आज बार बार स्वयं को देही अभिमानी बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और परमधाम में जाकर पवित्रता के सागर के पास बैठेंगे, कुछ देर के लिए उनके वाइब्रेशंस के नीचे
बैठेंगे ताकि पवित्रता के सागर के वाइब्रेशंस हम में समा जाएं। फिर वापिस आएंगे इस संकल्प से कि मैं आत्मा इस तन में आई हूँ इस संसार को पावन बनाने के लिए। ये ड्रिल करते रहेंगे और बहुत हिम्मत उमंग उत्साह के साथ जीवन की यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो हमारी पवित्रता इस संसार को पवित्र बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। और सबको ज्ञात ही है पवित्र आत्माओं को ही प्रभु प्रेम प्राप्त होता है। ओम शांति।

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखें, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जीवन में हास्य एवं विनोद कला का बहुत महत्व है, क्योंकि जीवन में सिर्फ रूखापन हो तो वह जीवन नीरस हो जाता है। हम उस जीवन से उब जाते हैं और जीने की इच्छा नहीं रहती। तो इसीलिए आज हम जानेंगे कि हास्य और विनोद कला को अपने जीवन में कैसे निखारें। यूं तो ईश्वरीय ज्ञान रमणीक है, जिसे ज्ञान के गहराई में उतरना आता है, उसके जैसी खुशी और किसी को नहीं होती। जिसका जीवन योग युक्त है, वो आनंद विभोर होता है और उसे स्थूल विनोद की जरूरत महसूस नहीं होती। जो दिव्य गुणों के मोती चुकता है और क्षीर ले लेता है अथवा नीर को अलग कर देता है, उस सद्विवेकी व्यक्ति को स्थूल हास्य में कोई विशेष रस नहीं मिलता। जो सेवा में लगा रहता है, उसका मन सदा मुस्कुराता रहता है। बाह्य मुखता पर आधारित हंसी विनोद की आवश्यकता उसे होती है जिसे अभी रूहानी नशा नहीं चढ़ा। परंतु जब तक मनुष्य के जीवन में ज्ञान पूरी तरह से रंग लाए और योग उसके जीवन में सुगंध ही भरे और गुणों में रमण करते करते वो उसके रस में डूब जाए, तब तक उसे कभी कभी रमणीकता की आवश्यकता महसूस होती है। इस प्रयोजन से व्यक्ति ये महसूस करता है कि वो कोई गीत सुन ले, कोई नाटक देख ले, उसे हंसी की कोई बात सुना दी जाए, उस जिससे कि वो ज्ञान की गंभीरता से ऊपर आकर थोड़ा हल्कापन अनुभव करे। अतः यदि किसी व्यक्ति को ऐसी कला आती हो कि वो ज्ञान युक्त हंसी की कोई बात सुना दे, जिससे गंभीर समस्या सामने होने पर भी सुनने वाला खिलखिला उठे, वो कोई ऐसी कविता सुना दे जिससे कि व्यक्ति के मन में एक नई उमंग जाग जाए, गीत की कोई दो पंक्तियां ही ऐसी गा दे जिससे मनुष्य का मन झूम जाए और बात को ऐसे चुटकुले में बदल दे कि चिंता व्यक्ति के मन से छूट जाए और उसे ऐसे लगे कि वो यूं व्यर्थ ही चिंता कर रहा है, तब इससे भी काफी सेवा हो जाती है। इसलिए जीवन में सदा खुश रहने के लिए और दूसरों को खुश रखने के लिए थोड़ी बहुत हास्य और विनोद की कला का आना भी जरूरी है। इससे व्यक्ति एक दूसरे के नजदीक आते हैं, कटुता अथवा नाराजगी को छोड़कर हंस पड़ते हैं, दुख दर्द को भूलकर एक नई शक्ति का प्रवाह अपने जीवन में महसूस करते हैं और वे एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखना

जिन व्यक्तियों के जीवन में केवल रूखापन हो, जो कभी भी अवसर आने पर हास्य या विनोद कला के किसी भी रंग ढंग को प्रयोग करना न जानते हो, लोग उनसे उकता जाते हैं, वे उसके प्रति आकर्षित नहीं होते और मेल जोल को सहज नहीं मानते, बल्कि दूर दूर रहते हैं। इससे ऐसे व्यक्तियों का जनसंपर्क के कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती। लोगों के मन को जीतने की उस कला में कमी रह जाती है। नीरस व्यक्ति की अपनी नीरसता के कारण वातावरण में भी नीरसता छा जाती है और लोग उसे अपनी महफिल में शामिल करने के लिए हिचकिचाते हैं। वे ये चाहते हैं कि कभी तो वे जी खोलकर बोल सकें, अनौपचारिक रूप से मिल सकें और दोस्ताना तरीके से बातचीत कर सकें। इसके लिए वे हंसी और विनोद वाले व्यक्ति को अपनी संगत में रखना चाहते हैं। हंसी और विनोद का अभिप्राय यह नहीं है कि अभद्रता और उच्च श्रृंखलता और चंचलता और चपलता से बोलचाल या व्यवहार किया जाए। इसका ये भी भाव नहीं है कि इतना खिलखिलाया जाए, जोरदार कहकहे लगाकर हंसा जाए और मजाक का गोल गप्पा खाया जाए कि आत्मा और परमात्मा की सुध बुध ही भूल जाए और लक्ष्य तथा पुरुषार्थ की विस्मृति हो जाए। रूहानियत के बिना तो हंसी और विनोद समय गंवाने वाले, बाह्य मुखता में लाने वाले, वातावरण को बिगाड़ने वाले और देह अभिमान में लाने वाले होते हैं। ज्ञानी और योगी को ऐसे हंसी और विनोद प्रिय नहीं होते, जो उसे अपने प्रियतम प्रभु से दूर कर दें और योग की ऊंचाइयों से उतार कर धराशयी कर दें, बल्कि शिस्तता, सज्जनता, मर्यादा से युक्त होकर अच्छे प्रकार के हंसी और विनोद के तरीके, गीत, कविता, नाटक, कहानी आदि ही ठीक प्रकार के ऐसे साधन होते हैं जो आमोद प्रमोद विनोद भी करते हैं और मनुष्य को घटिया प्रकार की भाव अभिव्यक्ति में लोटपोट नहीं करते। ऐसी हंसी और विनोद की कला का विकास करने के लिए न तो कोई टॉनिक लेने की आवश्यकता है और न ही कोई अधिक चुटकुले इकट्ठे करने की जरूरत है, बल्कि स्वयं खुशी में रहने की आवश्यकता है, जिससे कि सहज भाव से ही मनुष्य के ऐसे बोल निकलेंगे कि मनुष्य का मन खिलखिला उठेगा। इसके अतिरिक्त गीत, नाटक, कहानी भी ऐसे होनी चाहिए जो न केवल मनोरंजन के साधन हो, बल्कि मन को लुभावने तरीके से अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करने वाले हों, जिसका जीवन निश्चिंत हो, व्यर्थ सोच से फारिग हो, उसका अपना हल्कापन उसमें स्वतः ही ऐसी कला को स्फुटित और विकसित करता है जिसे कि वह उच्च कोटि का हंसी के स्वभाव वाला मानव कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में हास्य और विनोद कला को निखारते चले जाएं।

नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड्स से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जानेंगे स्वास्थ्य कला के बारे में। आप सोचेंगे कि स्वास्थ्य कला भी कोई कला होती है क्या? जी बिल्कुल, यह कहावत प्रसिद्ध है कि यदि मनुष्य का स्वास्थ्य गया तो मानिए कि उसका कुछ महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। स्वास्थ्य के बिना मनुष्य के शारीरिक कार्य क्षमता में अंतर आता है। शारीरिक कमजोरी से मनुष्य कई अच्छे काम करना चाहते हुए भी नहीं कर पाता। और तो क्या, मनुष्य की साधना में भी अस्वस्थता कुछ न कुछ बाधा उपस्थित करती है और उसका ध्यान महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सेवाओं की ओर ले जाने और लगाने की बजाय शरीर की ओर खींचवाती है। अतः स्वास्थ्य एक अनमोल निधि है, परंतु दवाइयों के आधार पर शरीर को चलाते रहना स्वास्थ्य नहीं है। वास्तविक स्वास्थ्य वो है कि स्वाभाविक एवं प्राकृतिक रीति से निर्विघ्न रूप से स्वयं चलित हो। उसके लिए जीवन में कई प्रकार की धारणाओं की आवश्यकता है। यद्यपि पिछले अनेक जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के चुकता होने के लिए भी अस्वस्थता मनुष्य को आ घेरती है, तो भी जीवन के कुछ एक महत्वपूर्ण नियमों के पालन से भी काफी हद तक स्वास्थ्य बना रह सकता है। आज ये माना जा रहा है कि मनुष्य को कई रोग उसके वंश के पूर्वजों से मिलते हैं और इसलिए उनका मुख्य कारण अनुवंशिकीय होता है, और कुछ एक रोग दुर्घटना से, प्राकृतिक प्रकोपों से, पर्यावरण प्रदूषण से और अनायास ही खाने पीने की चीजों में मिलावट से उसको आप पकड़ते हैं। निसंदेह कर्मों के सूक्ष्म प्रभाव के रूप में ये सब कारण तो होते हैं, परंतु जहाँ तक मनुष्य के स्वास्थ्य की एवं उस द्वारा देखभाल करते रहने की बात है, वहाँ ये भी सत्य है कि जीवन के कई ऐसे विधि विधान हैं जिनको पालन करने से मनुष्य को अपना स्वास्थ्य बनाए रखने की सुविधा होती है। उन नियमों तथा विधि विधानों का पालन करना भी स्वयं एक बहुत बड़ी कला है, जिसे हम यहाँ स्वास्थ्य कला कह रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सदा खुशी में रहना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। कहा गया है कि खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता को चिता के समान माना गया है। भय भी मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाने वाला विकार है, जो उसके हृदय, मस्तिष्क और सारे स्नायु मंडल को झकझोर देता है। चिंता और भय से भोजन भी शरीर में विकृत रूप ले लेता है और विषक्त होकर शरीर को रुग्ण अवस्था में ले जाता है। इसके विपरीत कोई मनुष्य दिनों दिन हृष्ट पुष्ट होता जाता है, मानो कि वो कोई पुष्टिवर्धक पदार्थ खाता हो। कहा गया है कि यदि मनुष्य के भोजन में सब विटामिन हो, परंतु यदि खुशी रूपी विटामिन न हो, तो शरीर के विकास और स्वास्थ्य में कमी आ जाती है। परंतु मनुष्य सदा खुश तब रह सकता है जब वो ईश्वर में निश्चय बुद्धि होता है, भावी में विश्वास रखता है, कर्मों की गति को समझता है और इन सब बातों को जानकर अपनी ओर से पुरुषार्थ करता है और फिर परिणाम के बारे में व्यथित नहीं होता। ये सब तो ऐसे ज्ञानी और योगी ही के लक्षण हैं जो पुरुषार्थ में पूरे रूप से तत्पर रहता है और कर्म फल की चिंता छोड़ देता है।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: ओए इधर इधर इधर, भाई क्या पहुँचा दोगे? है कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे। हैं कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? कोई जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है उसका स्वास्थ्य भी स्वाभाविक रूप से ठीक बना रहता है। सात्विक भोजन से अभिप्राय यह है कि उसमें मांस मदिरा, प्याज, लहसुन, तंबाकू, उत्तेजक पदार्थ, अनेक प्रकार के तेज मिर्च मसाले इत्यादि नहीं होते, और जो बासी बिगड़े हुए स्वाद वाला, चीरकाल से रखा हुआ, भारी, देर से हजम होने वाला इत्यादि दोषों से रहित होता है। इस पर भी विशेष बात यह है कि जिस भोजन को बनाने वाला व्यक्ति पवित्रता का पालन करता हो और भोजन बनाते समय ईश्वर की याद में हो, वही भोजन सात्विक है। इतना ही नहीं, बल्कि भोजन को सात्विक कोटि वाला बनाने के लिए ये जरूरी है कि खाने वाला व्यक्ति भी खाते समय प्रभु को याद करके उसका सेवन करे। जो व्यक्ति योगयुक्त होकर भोजन करता है वो स्वाद के वशीभूत होकर पदार्थ को जरूरत से ज्यादा मात्रा में नहीं लेता। जो पदार्थ उसके शरीर के अनुकूल ना हो उसे भी वो नहीं लेता, और भोजन को एक प्रकार से प्रसाद मानकर मन की मुदित एवं निश्चिंत अवस्था में उसे स्वास्थ्यप्रद मानकर स्वीकार करता है। ऐसे भोजन से मनुष्य के मन में हर्ष उत्पन्न होता है, उसे शरीर में हल्कापन महसूस होता है और वो आलस्य के अधीन नहीं होता। जिस व्यक्ति को सकारात्मक विचार करने का अभ्यास है उसके शरीर में स्फूर्ति, लचक और हल्कापन होता है। निराशा भरे विचारों वाला व्यक्ति दूसरों के जीवन में त्रुटियां देखने वाला अथवा छिद्रान्वेषी व्यक्ति हर एक चीज में कमी कमजोरी देखकर अपने भाग्य को कोसते रहने वाला व्यक्ति, दूसरों के प्रति कटु दृष्टि रखने वाला व्यक्ति और सदा रुष्ट एवं असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति अपने ही स्वास्थ्य को स्वयं बिगाड़ता है। वो स्वास्थ्य रूपी चंदन के पेड़ों को स्वयं ही जलाकर उनका कोयला बना देता है। वह स्वयं पर नकारात्मक विचार रूपी कांटे अपने तन मन में लगाकर स्वयं ही दुखी होता है और इस विधि से अपने स्वास्थ्य को गंवा बैठता है। परंतु सकारात्मक चिंतन में वो प्रवृत्त हो सकता है जिसकी ये स्थिर मान्यता हो कि मेरा कल्याण होने वाला है, मेरा हाथ प्रभु के हाथ में है, इसलिए कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं स्वयं ही अभी अपूर्ण हूँ, इसलिए दूसरे की अपूर्णता देखना गोया स्वयं को धूल धुरसित करना है, और कि जो होगा सो देखा जाएगा, मेरा कर्तव्य तो अच्छा करना है। और दूसरों की कमियों को, कमजोरियों को न देख करके मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इसलिए ये मानना होगा कि ईश्वरीय ज्ञान की ठीक प्रकार की धारणा से ही मनुष्य में सकारात्मक विचार करने की कला आती है, और सकारात्मक विचारों से सहज रीति स्वास्थ्य बनाए रखने की कला आती है।

जो व्यक्ति प्रायः जल्दी उठकर स्नान ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनका भी तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ तन और मन वाला व्यक्ति स्वस्थ तो होता ही है, क्योंकि जहाँ स्वच्छता, पवित्रता, शुचिता और निर्मलता है, वहाँ निश्चित रूप से स्वास्थ्य बनाए रखने में सफलता होती ही है। मल और विक्षेप भी स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले होते हैं, और जो व्यक्ति इनसे मुक्त है वो स्वाभाविक तौर पर स्वस्थ होता ही है। फिर ब्रह्मचर्य तो स्वास्थ्य का स्रोत ही है, उससे अदम्य उत्साह होता है, शरीर में शक्ति का संचय भी होता है और वृद्धि भी होती है। मनुष्य का मनोबल बढ़ता है, वो निर्भय बन जाता है और स्वयं में स्वास्थ्य का एक झरना सा महसूस करता है, जो सतत निरंतर उसमें शक्ति का संचार करता रहता है। ब्रह्मचर्य व्रत का तो वही पूर्ण पालन कर सकता है जो देह में अनासक्त हो, देह के आकर्षणों से मुक्त हो, देहाभिमान से ऊंचा उठ जाए और आत्मस्वरूप में स्थित होकर स्वयं को अमृत पुत्र मानता हुआ प्रतिदिन ज्ञानामृत का सेवन करते हुए जीवन जिए। ब्रह्मचर्य से मनुष्य के जीवन में शरीर में रोगनाशक क्षमता बढ़ती है और इसलिए वो रोगों के आक्रमण से बचा रहता है। जिसे औरों की दुआएं मिलती हों, उसे भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहयोग मिलता है। लोगों की दुआओं का अपना एक प्रभाव मंडल होता है, उस प्रभाव मंडल से घिरा हुआ व्यक्ति रोगों के आक्रमणों से दुखी नहीं होता, बल्कि यदि रोग हो भी जाएं, तो वो उन्हें सहज रीति से झेल लेता है। दुआएं तो उसको ही मिलती है जो लोगों का भला करता है, उनके भले की बात सोचता है और भलाई करने में रात दिन लगा रहता है। वो उनके मन को इतना जीत लेता है कि वे अपने अंतर मन से सूक्ष्म सहायता करते हैं और रोग शमन शक्ति में अपनी शक्ति भी प्रदान करते हैं। जितना कोई अधिक योग में रहता है, प्रभु की याद में रहता है, उतना वो रोग से बचकर रहता है। स्वरूप में स्थित होना ही योग है, स्व में स्थित होने को ही स्वास्थ्य कहा गया है। इसलिए स्व में स्थिति से स्वास्थ्य का लाभ होना स्वाभाविक है। योग से मनुष्य में कर्म की कुशलता आती है, क्योंकि उसका शरीर स्वस्थ बना रहता है। योग के फल स्वरूप मनुष्य को 21 जन्मों तक कंचन सम काया प्राप्त होती है, जिससे वो कमजोरी और बीमारी से ऊपर उठा रहता है। जो व्यक्ति ईश्वरीय सेवा में लगा रहता है, उसे ईश्वरीय सहायता मिलती रहती है। उस सहायता से उसका स्वास्थ्य बने रहने की संभावना होती है। सेवा वाला व्यक्ति का शरीर अपने लिए ना होकर जनहित के लिए होता है, और जनहित का कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रभु अपना प्यार देते हैं, और जिसे प्रभु का प्यार मिले, उस प्यार में स्वास्थ्य या रोग को झेलने की शक्ति उसमें समाये होती है। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान, योग और सेवा इत्यादि से ही मनुष्य स्वास्थ्य कला में आता है। यहाँ तक कि उसमें अपने शुभ संकल्प दूसरों के लिए भी स्वास्थ्यप्रद होते हैं। कहने का भाव यही है कि सदा खुश रहो, खुशी बांटो, सुख दो, सुख लो, तो इस प्रकार से आप सदा स्वस्थ रहेंगे। और यह तभी संभव है कि आप हर कार्य में हर वक्त प्रभु की याद में रहें। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड्स से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाएं। याद रखें, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, सहज स्वास्थ्य जब भी कहा जाता है तो ये बात समझ में आती है कि स्वास्थ्य वास्तविकता में सहज है। हम आसानी से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये हमारी एक गलत धारणा है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए दवाइयां खाने की जरूरत है या स्वस्थ रहने के लिए हमें अस्पतालों के चक्कर काटने की जरूरत है। स्वास्थ्य वास्तविकता में देखा जाए तो हमारे ही हाथों में हमारी ही कुंजी है। अगर हम सही अर्थों में इसका कैसे ख्याल रखना है ये समझ जाएं तो स्वस्थ रहना संभव है। आइए रेडियो मधुबन की इस कोशिश में हम साथ में जुड़ते हैं कि हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने की इस यात्रा पर साथ चलें और हमारे साथ सभी को साथ लेकर चलें। आज सहज स्वास्थ्य में हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राहुल मोदी जी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं और साथ साथ एक प्रसिद्ध ऑस्टियोपैथ हैं। भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में वो प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, ओम शांति।
1: डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य के विषय पर जब हम जानकारी हासिल करते हैं तो ये आवश्यक होता है कि हम सही स्रोत से जानकारी को हासिल करें। और जब हम स्वास्थ्य से संबंधित अनेक चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो स्वास्थ्य कहते ही एक और चीज जो सामने उठ कर आती है वो है स्वास्थ्य का अभाव यानी बीमारी। आज हम देखते हैं कि हम अनेक प्रकार की बीमारियों को समाज में देखते हैं और कुछ बीमारियों को हम रोजमर्रा की आम बीमारियों के रूप में समझकर उनके साथ जीना सीख रहे हैं। कई सारे दोस्त इन बीमारियों को ये समझ लेते हैं कि हाँ, ये तो उम्र के साथ सभी को आने वाली ही चीजें हैं। ऐसी ही कुछ बीमारियों की चर्चा करते हुए हमने ब्लड प्रेशर के बारे में या हाइपरटेंशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने ये बात समझी कि हाइपरटेंशन में यानी बीपी के मरीजों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए इत्यादि विषयों पर चर्चा की। आज एक और विषय जो अक्सर हमारे जनमानस में रची बसी सी चीज है या

0: हमारी संस्कृति का हिस्सा है ये भी कहा जाए, वो है उपवास करना या व्रत करना। कई लोग धार्मिक कारणों से व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जैसे कई लोग संकष्टी का व्रत करते हैं, कई लोग एकादशी का व्रत करते हैं, कई लोग अलग अलग दिन के लिए व्रत चुन लेते हैं, कई लोग तीज त्योहारों पर व्रत करते हैं। ऐसे में फास्टिंग करना या उपवास रखना लोगों के लिए एक धार्मिक चीज नजर आती है। तो स्वभावतः जब बीपी की बीमारी होती है या हाइपरटेंशन हो जाता है तो लोग ये प्रश्न उनके मन में उठता है कि क्या अभी हमें फास्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: जी भैया, उपवास को अगर हम अपने धार्मिक उसमें देखें तो उससे बहुत लाभ मिलता है। अच्छा, उपवास भी बहुत तरीके का है। जो मोस्ट कॉमन, अगर हम उपवास की या फास्टिंग की बात करते हैं तो इसमें वाटर की बात होती है, पानी की। और अगर इसको हम उपवास की प्राकृतिक चिकित्सा के साथ बात करें तो पानी, शहद और नींबू की बात होती है। और उपवास बहुत ही अच्छा माना जाता है किसी भी क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने में। एक, हम जब उपवास करते हैं तो हम हाइपरटेंशन को हटा दें या हम किसी बीमारी को हटा दें, हमारा धर्म भी, और हम अपने धर्म की बात नहीं करें, हम जितने भी धर्मों की बात करें, सब में कहीं ना कहीं उपवास कराया जाता है धार्मिक अनुष्ठान के रूप में। और उस अनुष्ठान को करके कितने उसके लाभ होते हैं ये भी बातें बताई जाती हैं। हम और आप अगर कुछ भी अपने शरीर के अंदर न डालें तो उससे हमारे शरीर को बहुत अच्छा लगेगा। हमारे शरीर की एक बड़ी खासियत है कि हमारे जो भी अंग हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम है या मतलब हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, हमारी किडनी, किडनियां, हमारी आंतें, ये 24 घंटे, जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस समय से जब तक आप हरी हरी चरणों में नहीं जाएंगे तब तक ये चलती रहेगी। तो अगर आप, हम लोग ने जैसे क्या बोला, भोजन हल्का करेंगे तो भी बड़ा अच्छा लगने लगता है। आप हम लोग ने कितने लोगों से सुना है कि अरे भाई वहां खाना बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा खा लिया, एकदम पेट फूल रहा है, अजीब सा लग रहा है, खाते समय तो बड़ा अच्छा लग रहा है पर अब तो बड़ा कष्ट हो रहा है और वो तो बैठा नहीं जा रहा है, पैंट ढीली करनी पड़ रही है, अरे हमको लेट लेने तो हमको चैन नहीं मिल रहा है। तो आप एक बात समझिए कि आपने जहां भोजन की क्वांटिटी या उसकी मात्रा को कम किया, आपके शरीर को अच्छा लगने लगता है। और आप भोजन की मात्रा बहुत बढ़ा लेते हैं तो आपकी आपको उससे कष्ट का अनुभव होता है। तो जहां आपने उपवास किया तो आपने अपनी आंतों को आराम देना शुरू किया, क्योंकि आंतों के पास सिर्फ पानी को ही लेके जाना है। और ये सभी माताओं, बहनों, भाइयों, सबको ये मालूम होगा कि वाटर की कैलोरी शून्य मानी जाती है, जीरो मानी जाती है। अगर आप 1 लीटर पानी पिए तब भी उसकी कैलोरी जीरो है, आप 5 लीटर पानी पिए तब भी उसकी कैलोरी जीरो है। श्रोतागण, आज एक बात और जान लें कि श्री भैया खुद आज उपवास कर रहे हैं तो वो खुद पानी बस पी रहे हैं। तो आज अगर श्री भैया सिर्फ पानी पी रहे हैं तो पहले ये बताइए कि श्री भैया आपको कैसा लग रहा है आज?
0: मेरे को बहुत हल्का लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई अक्सर लोग खाना खाने के बाद जो कहते हैं आज थोड़ी देर लेट जाना चाहिए, खा लिया है बहुत, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है।
1: आप खुद सुनिए कि श्री भैया ने क्या बोला कि उनको हल्का लग रहा है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है और आप अपने पानी, आप उपवास करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज मैं बस ये बोलूंगा, झटके से कोई चीज ना शुरू करें। मॉडर्न इस समय एक चीज और बोली जाती है कि आप किसी जानकार व्यक्ति या उस किसी व्यक्ति जो उपवास कर चुका है उससे बात करने के बाद अपना अपना उपवास शुरू करें। आप अपना ब्लड प्रेशर नाप लें, आप दिन में दो बार, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई हैं, आप दिन में दो बार तीन बार नाप सकते हैं, या आपको सर दर्द होने लगे, उल्टी आने लगे, आपको चीजें चक्कर आने लगे, परेशानी होने लगे, तो आपको धैर्य रखना चाहिए और अपने उपवास को कंटिन्यू करना है कि नहीं, ये किसी एक विशेषज्ञ से बात कर लेनी चाहिए। मैं एक चीज अपने श्रोता मित्रों को बता दूं कि अगर आप कोई दवा खा रहे हैं तब भी उस दवा को खा के भी उपवास किया जा सकता है, और ये मेडिकली बोला जाता है कि आप अगर उपवास करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा। एक और सलाह कि 24 घंटे का उपवास न करके आप सवेरे से शाम तक का बस उपवास करिए। आप सवेरे बहुत कुछ मत खाइए, शाम को बस हल्का सा भोजन कर लीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप 12-14 घंटा रह सकते हैं कि नहीं। और उपवास करने का सबसे अच्छा जो मतलब हर तरह से, आप अगर भोजन नहीं करेंगे तो आपके शरीर में पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं निकालेगी, तो इंसुलिन नहीं निकालेगी तो आपके पहली बात तो पैंक्रियाज को आराम मिलेगा और इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है आपके शरीर में वो कम हो जाएगा आपकी। अब आप भोजन नहीं कर रहे हैं तो जो आपके फैट सेल्स या जो आपकी वसा की जो कोशिकाएं हैं वो आपके शरीर को ताकत देने के लिए टूटना शुरू करेगी। आपकी आंतें जो दिन भर 24 घंटे काम कर रही हैं उनको आराम मिलना शुरू होगा, और अगर उनमें कहीं से कहीं सूजन होगी या कहीं गर्मी होगी या थक रही होंगी तो उन्हें बड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि उनको एक दिन काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे क्यों हमें संडे मिलता है, संडे क्या कहते हैं, आज तो संडे है आज आराम करेंगे, एक ये मानसिकता है कि संडे है आज तो देर तक सोएंगे, अरे संडे है आज हमको कोई पढ़ने को ना बोले, जैसे सभी छात्र बोलते हैं, वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए करते हैं। तो इसी तरह अगर आप उपवास करें तो आपके ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सालयों में तो ब्लड प्रेशर के मरीजों को 8 दिन 11 दिन तक का उपवास करा दिया जाता है, पर घर में सबसे पहली बात मैं कहूंगा आप सुबेरे कुछ न करके शाम तक का करें, शाम को हल्का भोजन करके देखिए कैसा लग रहा है, और फिर अगली बार इसको पूरे दिन के उपवास में आप कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे चीज जिस चीज का ध्यान रखना चाहिए फास्टिंग के समय कि आप जो पानी पी रहे हैं उसकी क्वांटिटी के ऊपर आपको थोड़ा सा नजर बनाना चाहिए। बहुत कम पानी पिएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, आपको कमजोरी लग सकती है, और अगर आप बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको का ब्लड प्रेशर हो सकता है थोड़ा बढ़ भी जाए। तो प्लीज आप क्या करते हैं अपने पानी को भी ध्यान में रखिए। दूसरी चीज, जब आप हम लोग उपवास करते हैं तो शरीर में जो शुगर है, ग्लूकोज है, उसकी मात्रा कम होती है, तो हाइपोग्लाइसीमिया होने लगता है जिससे व्यक्ति को थोड़ी परेशानी, तो अपना ध्यान रखिए। अगर हमारे चिकित्सालय में अगर आप उपवास करते हैं और आपको थोड़ी कमजोरी, थकान, चक्कर, शरीर हल्का, शरीर में थका थकापन आपको लगता है, आप ऐसी समस्याएं बोलते हैं, तो हम लोग आपको आधे गिलास में 2 चम्मच शहद मिला के चाय की तरह धीरे धीरे सिप करके पीने की सलाह देते हैं, और उसके बाद जो मरीज है उसको बहुत अच्छा लगता है। एक सलाह और देना चाहूंगा कि अगर आपने उपवास को शाम को तोड़ा है तो ये मत सोच लीजिएगा कि सवेरे से कुछ नहीं खाया, जो मिल रहा है खा लो। उसमें भी हमको संयम का जो है संयम रखना है और अपने भोजन को कंट्रोल करके रखना है। अपने प्लीज ब्लड प्रेशर को, जो मैंने पहले भी बोला, उसको ध्यान से मॉनिटर करते रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
0: ये बात समझ में आ रही है कि ब्लड प्रेशर के बारे में जब हम सोचते हैं तो कई अवधारणा ये होती है कि हम तो गोलियां खाते हैं इसलिए हम फास्टिंग नहीं कर सकते, या फास्टिंग के बेनिफिट्स हमारे ऊपर लागू नहीं हो पाएंगे। मगर ये बात समझ में आ रही है कि हम ये सारी चीजें समझते हुए जब करते हैं, चीजों का ध्यान रखते हुए जब हम फास्टिंग करते हैं, तो उसका लाभ हमें मिलता ही है। आज एक और चीज जो अक्सर सुनने को मिलती है, क्योंकि आज सोशल मीडिया के जगत में लोग नई नई चीजें सुनते हैं, नए नए वीडियोस देखते हैं, तो एक चीज जिसका प्रचलन अक्सर देखने को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो है रिलैक्सिंग मसाजेस के बारे में।

तो हमारी मांसपेशियां जिसमें रक्त संचार ठीक से नहीं हो पा रहा है, उनमें रक्त संचार होना शुरू हो जाता है। मैंने अपने पुराने एपिसोड में ही बोला है कि लेजी मैंस एक्सरसाइज इज मसाज। जो आदमी खुद नहीं कुछ कर सकता है, मालिश करके उसके शरीर को मजबूत बनाया जा सकता है। हम सबने एक चीज देखी होगी, सुनी भी होगी कि जिनके घर में किसी को लकवा मार गया या पैरालिसिस हो गई है, उसकी उस अंग में जिसमें कमजोरी हो गई है उसकी लोग मालिश करते हैं, उससे रक्त संचार बेटर हो जाता है और मांसपेशियों में ताकत आ जाती है। विदेशों में तो नहीं है, पर आप अगर हमारे भारतीय परिवेश में देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी भी मालिश कराई जाती है और ये रोज कराई जाती है। इससे ये भी है कि उनकी भी मांसपेशियों में मजबूती आ जाए। विदेश में इसका प्रचलन एकदम नहीं है, मगर अपने देश में बच्चों की मालिश करने का प्रचलन बहुत है। मालिश जो है वो शरीर को आराम देती है। नॉर्मल व्यक्ति जो है, जो इसको ब्लड प्रेशर नहीं है, वो जो मतलब अगर मालिश कराता है तो उसके अंगूठे से जो जो भी मालिश के स्ट्रोक्स होते हैं वो उसके हृदय के तरफ किए जाते हैं। इसका मतलब आपके हाथ की उंगलियों से आपको प्रेशर देके उसको आपके कंधों की तरफ ले जाया जाए, दूसरा आपके पैर के जो पंजे हैं वहां से मालिश शुरू की जाए और आपकी जांघों तक ले जाई जाए। इसको ये जो स्ट्रोक्स हैं इनको मूवमेंट टुवर्ड्स द हार्ट बोला जाता है, कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी प्रेशर दे रहे हैं, जो भी हम मालिश की स्ट्रोक्स, मालिश को चार तरीके से बोला जाता है, आई थिंक कपिंग, फिलाल, प्रेटिसाइज। तो जो भी किया जा रहा है उसमें सारे स्ट्रोक्स आपको हृदय की तरफ आपको ले जा रहे हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज के साथ इसी चीज को सिर्फ उल्टा किया जाता है और जो चीज बोली जाती है कि योर स्ट्रोक्स शुड बी अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब आप जो भी स्ट्रोक या मालिश का जो मूवमेंट करिए वो उल्टा करिए, मतलब कंधे से लेकर अपने हाथ की उंगलियों की तरफ, अपनी जांघें या अंग्रेजी में हिप जॉइंट से लेकर अपने पैर की एड़ियों की तरफ। इस तरह से आप मालिश करते चले जाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। जब हम मालिश करते हैं तो हमारी जो रक्त की धमनियां हैं उनको दबाव पड़ता है और जब उसमें जो ब्लड होता है, खून होता है, निकलता है, और जब हम अपना हाथ छोड़ते हैं तो धमनियां रिलैक्स होती हैं, मतलब उसमें आराम मिलता है। और जैसे ही उनको आराम मिलता है उसमें वो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। मालिश का में जो सबसे विश्वविख्यात जो मसाज है उसमें स्वीडिश मसाज की बात की जाती है। स्वीडिश मसाज जो हमारे यहाँ भारत में जिसको वैज्ञानिक मालिश बोलते हैं उसी का एक पार्ट है, मगर उसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान दिया जाता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता है। जिनको भी ब्लड प्रेशर है उनसे एक चीज कहा जाता है कि जब वो मालिश करेंगे तो उनका प्रेशर थोड़ा सा कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा उनको दबा के मालिश नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे होटल, स्पा, हेल्थ सेंटर्स में जो मालिश होती है उसमें कमरे में हल्का म्यूजिक बजा दिया जाता है और कमरे की जो रोशनी है उसे कम रखा जाता है या आपकी आंख पे एक कपड़ा रखा जाता है। लोगों का ये मानना है कि जब आपकी आंखें बंद रहती हैं और आपके कान में कुछ हल्का म्यूजिक सुनाई दे रहा है और कोई आपको अपने हाथों से हल्के प्रेशर से अगर आपको रिलैक्स, वो आपको आपकी मालिश कर रहा है तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन

0: महसूस होगा। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रिलैक्स होगा तो उसके जो दिमाग है उसको भी रिलैक्सेशन मिलेगा, और इसकी वजह से जो भी ब्लड प्रेशर बनाने वाले जितने भी सिग्नल और सिम्टम्स हैं वो सब कम हो जाएंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि आप जो अगर कोई व्यक्ति मालिश ले सकता है तो उसको जरूर लेना चाहिए। उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो उसको अपने स्ट्रोक्स को अवे फ्रॉम दी हार्ट ले जाए। और मालिश करने से एक फायदा और होता है कि अगर आपकी त्वचा ढीली हो रही होती है तो वो भी टाइट होती है। जब हम दबाते हैं तो जो आपके मोटापे की कोशिकाएं हैं वो जो थक्के में इकट्ठा हो जाती हैं वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू होती है, और इससे आपका वजन भी कम होता है। एक चीज मैं अपने श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि यदि आपका वजन कम होता है तो आप बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस से बच जाते हैं। मालिश का एक फायदा और है कि वो आपके जो लिम्फैटिक ड्रेनेज है उसको भी ठीक करता है। उस लिम्फैटिक ड्रेनेज के ठीक होने से जो ब्लड प्रेशर के होने की वजह से जो शरीर में सूजन बनी रहती है उसमें भी आराम मिलता है। तो आप किसी भी जानकार व्यक्ति के साथ मालिश करा लीजिए, मसाज करा लीजिए, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा।
1: ये बात समझ में आ रही है, जब हम मसाज या मालिश जैसी चीजों के बारे में सुनते हैं तो ये भी चीज पता चलता है कि हमारे यहाँ मालिश की परंपराएं भी पहले से हैं। छोटे बच्चों को मालिश करना, नवजात शिशुओं को मालिश करना, फिर ऐसे भी मालिश करने के बारे में जो कुश्ती लड़ने जाते हैं या अपने फिटनेस के बारे में ध्यान रखने वालों के मालिश के बारे में भी हम सुनते आए हैं। ये गाना भी मशहूर है, तेल मालिश चंपी। इससे पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को स्वस्थ रखने के तरीकों के बारे में जानकार थे, और आज जीवन की व्यस्तताओं के चलते हम इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी मालिश क्या कर सकती है, ये आज हमें बातचीत में पता चला है। डॉक्टर साहब, आज इन विषयों पर आपने जानकारी दी है, मैं समझता हूँ ये हमारे दोस्तों के लिए आवश्यक जानकारी रही है, जहां पर वो फास्टिंग के बारे में यानी उपवास के बारे में और साथ साथ मालिश के बारे में दोनों चीजों की जानकारी को समझ कर उन चीजों का इस्तेमाल अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में करेंगे। साथ ही जो हाइपरटेंशन या बीपी के मरीज हैं उनके लिए भी ये कितना फायदेमंद हो सकता है, ये चीज हमें समझ में आई है। आज आपने हमारे श्रोता मित्रों को इन चीजों का मार्गदर्शन दिया, इसके लिए उन सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में हमने आसानी से करने वाली चीजों के बारे में समझा है। मालिश एक ऐसी प्रक्रिया है कि हम सभी घर में अपनी माँ से, दादी नानी से मालिश करवाते आए हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चों की मालिश करते रहे हैं और हम बुजुर्गों के सिर पर तेल लगाकर उनको भी मालिश करते आए हैं। साथ साथ उपवास हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है। हर धर्म में उपवास की परंपराओं के बारे में बताया गया है। भले हम धार्मिक कारणों से ही क्यों ना करें, मगर उसका सीधा लाभ हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर होता है। इन चीजों को समझकर अगर हम इन सब चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगेंगे तो हम स्वास्थ्य को सहज बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी से हमने इतनी सारी जानकारियां सुनी है, उन सबको हम जीवन में लागू कर हम अपने आप को और अपने समाज को स्वस्थ बनाने की ओर एक कदम और बढ़ाएं। आज सेहत स्वास्थ्य में ही रुकते हैं, अगले एपिसोड में कुछ और विषयों पर चर्चा लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक रुक, ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही न टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। खुद को तलाशने का, खुद को पहचानने का सफर जो हम तय करते आ रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हमारे सामने बातें ऐसी आई हैं जिन्हें हम अभी तक ये मान रहे थे कि ये तो बहुत नेचुरल है, सहज है। जिनमें एक सबसे बड़ी बात जो थी वो ये कि तनाव जो है, टेंशन है, वो बहुत नेचुरल है, एंगर बहुत नेचुरल है, एंग्जाइटी बहुत नेचुरल है। लेकिन हमने ये जाना कि नहीं, ये नेचुरल नहीं है, असहज है, और किसी तरह से भी कुछ भी करके हमें इसे नहीं अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। एक और मुद्दा जिस पर हम सोचते थे, जिसे मानते थे कि भाई हैप्पीनेस जो है वो कहीं हमें बाहर से मिलेगी, ये रियलाइज़ हुआ, ये सेल्फ रियलाइजेशन कि नो, हैप्पीनेस इज़ विद इन अस, हमारे ही अंदर है वो सुख, वो शांति, वो खुशी। जान तो लिया, लेकिन ये सफ़र काफ़ी मुश्किल है। कई पड़ाव और अभी तय करने हैं, क्योंकि जिन बातों को लेकर हम अभी तक चलते आ रहे हैं, तनाव है ज़िंदगी में, एंग्जाइटी है, उससे कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन भी आता जा रहा है। क्या है ये डिप्रेशन? क्या ये डिप्रेशन मैं खुद ठीक कर सकती हूँ, या फिर मुझे इसके लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए? क्यों होता है डिप्रेशन? क्यों इतना कॉमन होता जा रहा है? यही सारी बातें हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मुंबई से आए आज हमारे साथ डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत। डॉक्टर गिरीश पटेल एक जाने माने साइकोथेरेपिस्ट हैं और पिछले 30 सालों से ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। और डॉक्टर गिरीश, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। डिप्रेशन, आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो डिप्रेस्ड ना फील करता हो। किसी ना किसी वक्त पर जिंदगी में हम में से हर कोई डिप्रेस्ड फील करता है। क्या है डिप्रेशन? क्या ये कोई बीमारी ही है या फिर ऐसा कुछ नहीं, एक फीलिंग है?
2: नहीं, बीमारी तो जरूर है, जब हम कह रहे बीमारी है, परंतु क्या है उसका अगर एसेंस हम देखें, या तो कहे वो शुरू कहाँ से होता है, ट्रिगरिंग पॉइंट जिसे कह सकते हैं कि वो ट्रिगर कहाँ से होता है। एक्चुअली ट्रिगरिंग पॉइंट है योर अनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। नहीं, जो सुख है जीवन का, जो मे बी 99% लोग उस परिस्थिति में सुख का अनुभव करेंगे, लेकिन आप वो परिस्थिति के बीच में भी सुख को फील नहीं कर पा रहे, तो वो वास्तव में ट्रिगरिंग पॉइंट कि जो आगे चल के तो सुसाइडल टेंडेंसी तक भी व्यक्ति को ले जाएगा।
0: बहुत अच्छी आपने बात ये कही कि हम सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, एहसास ही नहीं कर पा रहे, जबकि हमें करना चाहिए जिस परिस्थिति में है, वही हम चाहते थे। तुझे क्या चाहिए जिंदगी वाली बात आ जाती है। सिस्टर शिवानी, अगर हम इसको इंटरनल जर्नी की तरफ अगर हम बात करें, जो हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो एक्सटर्नल जर्नी हमारी है, एक समवेयर अवेयरनेस अबाउट सेल्फ अवेयरनेस की बात, इंटरनल जर्नी, उसमें वो वक्त कब है जब हम वो सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे होते हुए भी?
1: अनुभव हर वक्त करना चाहिए। दैट्स व्हाट वी हैव सीन कि हैप्पीनेस एक इंटरनल फीलिंग है, सुख जैसे बताया वो एक इंटरनल फीलिंग है, और इसको कोई समय निकाल कर अनुभव नहीं करना, और ना ही किसी परिस्थिति या व्यक्ति का इंतजार करना है कि ऐसा होगा। बिकॉज जनरली अगर अपने जीवन की यात्रा में हम देखें तो हमने एक माइलस्टोन रख दिए हैं अपनी लाइफ में, ये होगा तो खुशी मिलेगी, ये ऐसा कर देंगे तो खुशी मिलेगी, और कई बार उस परिस्थिति में आकर इट डजंट रियली फील वेरी बिग, क्योंकि अंदर अगर हॉलोनेस है तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी वो एक मोमेंट्री एक्साइटमेंट जेनरेट कर सकती है, लेकिन वो आंतरिक खुशी शायद नहीं एक्सपीरियंस होगी। और एक बहुत पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने कहा टेंशन टेंशन, फिर बहुत बढ़ती जब जा रही है, तो बहुत टाइम अगर वो नहीं एक्सपीरियंस किया है तो थोड़े समय के बाद परिस्थिति फेवरेबल होगी तो भी हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट यू नो दैट पिट हैज गॉन वेरी वेरी डीप, वेरी डीप। अभी पहले शुरुआत की स्टेज में कैसे था, थोड़ी टेंशन है, लेकिन कुछ अच्छा हो गया तो आई वॉज एबल टू यू नो अपने आप को वो बूस्ट दे पाते थे, लेकिन बार बार टेंशन, बहुत दिन टेंशन, हर छोटी छोटी बात पर टेंशन, तो थोड़े दिन के बाद वो जो खालीपन है वो इतना गहरा हो जाता है, फिर बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी उसको ट्रिगर नहीं कर पाती है उस हैप्पीनेस को।
0: डेफिनेटली दिस इज आवर इंटरनल जर्नी, यू नो, जो हम अंदर अपने सफर को तय करते हैं। डॉक्टर गिरीश, लेकिन ये इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच का एक कहीं ना कहीं समन्वय बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने ये कहा कि जब हम उसको अनुभव ही नहीं कर पा रहे, वो ट्रिगरिंग पॉइंट है, और उसके बाद हम उस लेवल पे पहुंचते हैं कि वो इतना नीचे चला जाता है कि बस कुछ भी फिर नहीं निकाल पाता। वो जो स्टेजेस हैं, डिप्रेशन की जो स्टेजेस की आपने बात की है, जो हमने यहाँ बात की है, वो अगर हम अपनी जिंदगी में मोटे तौर पर देखें तो किस तरह से आती है?
2: नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे राजयोग के अनुभव से साथ साथ करीब 25 साल हो गए साइकोथेरापी की प्रैक्टिस करते हुए, मैंने सोचा कि भी स्टेजेस क्या है लोगों की। जैसे कि सबसे हाईएस्ट स्टेज तो यह है कि जीवन का सच्चा आनंद आप अनुभव कर रहे हैं। नो रियली देयर इज अ स्पार्कल इन लाइफ, नो एट एवरी डे, मे बी नो एवरी आवर यू फील हैप्पी इन योर लाइफ, विच इज रेयर। शायद नहीं 1 करोड़ में भी एक व्यक्ति को भी ऐसी स्टेज नहीं होगी, बट दैट्स अ रियल स्टेज। देन सेकेंड स्टेज इज यू आर हैप्पी, आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, खुश है जीवन में, अच्छा लग रहा है, वह भी रेयर है, वह भी काफी लोग इसको अनुभव नहीं कर पा रहे वास्तव में। थर्ड स्टेज है लोगों की कि जो आप सब सब सचमुच ठीक चल रहा है ना, आप खुश है, ऑफिस में जा रहे, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बच्चों की संभाल कर रहे हैं, यू आर हैप्पी ऑल्सो, बट नो एवरी आवर यू मे नॉट बी हैप्पी। फिर एक स्टेज आती है कि जब आप भी ऑफिस भी जा रहे, काम काज कर रहे, लेकिन वो खुशी नहीं है। यहाँ पर वो स्टेज कहेंगे कि भी शुरुआत हुई डिप्रेशन की, कि यू आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट रियल हैप्पीनेस। उसके बाद की जो स्टेज है कि भी दिन में कई बार आपको अच्छा नहीं लगता है, कि भी जीवन इतना अच्छा नहीं है, नहीं मजा नहीं है जीवन में जो। उसके बाद की स्टेज है कि भी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इससे तो नहीं होता तो अच्छा था, नहीं भल अभी भी सुसाइडल थॉट्स नहीं है,
0: लेकिन हाँ,
2: फिर भी होता है कि भी चलो नहीं हो, मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। कई लोग बोलने में भी बोलते हैं कि भी भगवान मुझे ले ले तो
1: मुक्ति मिल जाए मुझे,
2: तो अच्छा है। तो ये फिर स्टेज है। उसके बाद की जो स्टेज है कि यू रियली फील डिप्रेस्ड, नहीं कि भी लगता है कि भाई नहीं
0: एवरीथिंग फिनिश्ड,
2: हाँ, या तो आप ढूंढ रास्ता ढूंढते कि भी मरे तो कैसे मरे, है ना, लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं, है ना, प्लान भी बनाने लगते हैं। और फिर की स्टेज है सचमुच की नो पर्सन कमिट सुसाइड,
0: कर ही लेते हैं,
2: या तो भी काम काज नहीं कर पा रहा है, स्नान करने का मन नहीं होता है उसे, समझो कि भी टीवी के सामने बैठे हैं, प्रोग्राम बोरिंग है तो भी देखते ही जा रहे हैं, खड़े होने की दिल नहीं होती है व्यक्ति को, ऐसे कई बातों में कि भी खाना अच्छा तैयार है लेकिन भी खाने का मन नहीं हो रहा है। That is a really, you are deep down in depression if that stage comes.
0: Good. So like ये एक पूरे stages को हमारे सामने बहुत clarity से आप लेकर आए हैं, तो वो stage पर आते हैं जहाँ हम पकड़ सकते हैं, you know, like,
2: या तो उससे भी पहले मैं कहूँगा सचमुच तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि ऐसी stage बने कि जिसमें spark in life है, you are really feeling happiness at every hour, every moment of your life. और वह लक्ष्य होगा तो कहीं ना कहीं आप पहुंचेंगे। अगर आपका लक्ष्य है कि भी सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, थोड़ी खुशी थोड़े गम, तो फिर वैसा ही जीवन आपका बने।
0: बिल्कुल, हम बहुत अच्छे आपने बात ये कही कि लक्ष्य जो है हमें वो रखना है कि ईच मोमेंट इज लाइक यू हैव टू लिव लाइफ फुल्ली। क्या पा सकते हैं हम?
1: आई थिंक अभी भी जो बहुत अच्छी पॉइंट निकली, बिलीफ सिस्टम, कभी खुशी कभी गम, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि जीवन है तो कभी सुख होगा कभी दुख होगा, ऐसा तो जीवन, मतलब इट्स अ बिलीफ कि ऐसा जीवन हो ही नहीं सकता कि हमेशा सुखी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जीवन है तो कभी हंसना कभी रोना, यहाँ तक कि भी वी हैव सीन पीपल कि अगर बहुत खुश रहें और बहुत समय खुश रहें तो कहते हैं बहुत ज़्यादा खुशी एक्सपेक्ट, यू नो, एक्सप्रेस नहीं करो, अभी कोई दुख आ जाएगा, दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग हैप्पी,
0: यू नो, ज़्यादा हंसोगे तो उतना ही रोना पड़ेगा,
1: सो अफ्रेड, इतनी इनसिक्योरिटी है कि ज़्यादा खुशी भी नहीं, ये नेचुरल नहीं है, अभी जैसे द यू नो दुख आपके कॉर्नर पर है, इट्स जस्ट गोइंग टू कम, लेकिन क्योंकि हमने बिलीव किया कि ऐसी जीवन नहीं है जहाँ हमेशा सुख हो सकता है, क्योंकि वो परिस्थिति पे डिपेंडेंट थी। अब जब ये अंदर से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इट्स इंटरनल, वी रियलाइज इट कैन बी एवरी मिनट, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एक टारगेट रख दें कि सुख मेरी अपनी प्रॉपर्टी है एंड मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति को मुझसे छीन लेके जाने नहीं दूंगा, दिस विल बी विद मी एट एवरी मोमेंट। ये सुबह ही हम दिन शुरू करने से पहले एक लक्ष्य बना लेते हैं कि कोई भी ये मुझसे आज छीन के नहीं लेके जा सकता। अगर कल सारा दिन में 50% टाइम खुश थे, आज वो 70% हो जाएगा एंड फिर वो धीरे धीरे
0: अगेन अ पॉजिटिव थॉट विल लीड टू माय डेस्टिनी।
1: बिलीफ, लेकिन वो बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा कि इट्स पॉसिबल टू बी हैप्पी एवरी टाइम।
2: शिवानी बेन ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, नो इट्स अ डीपर पॉइंट, कि भी व्यक्ति सोचने लगते हैं कि अभी सुख चला, एक महीने तक सुख चला तभी दुख आना ही चाहिए। इवन दिन में 10 बार 20 बार ऐसा सोचेगा और सोचता है तो होगा,
0: सोचता है पता नहीं कौन सा दुख आएगा और क्या होगा। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि आज के इस वक्त में जब हम देखते हैं कि जब भी हम सुबह उठते हैं पहली चीज हम ये सोचते हैं, इवन ये कहा जाता है कि जब आप उठते हैं सुबह सबसे ज्यादा आपको खुश होना चाहिए, लेकिन पहली चीज बहुत लोगों में मैंने देखी है ये है कि उफ एक और दिन, क्या करूंगा मैं, क्या होगा, उफ वो, फिर ये सारा कुछ, फिर इससे गुजरना पड़ेगा, फिर ये क्या है? इज इट अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन?
2: या इट कैन बी कि जैसे जो डिप्रेस्ड है उनमें ये स्टेज बन सकती है, लेकिन इट इज अदर वे राउंड ऑल्सो, क्योंकि आपका अप्रोच ये है आज अभी मुझे और तकलीफ और समस्या, तो इसलिए आप डिप्रेस्ड होंगे। इंस्टेड इफ यू कैन चेंज द अप्रोच, अगर सवेरे उठते भले कैसा भी है समस्या है, आपको पता है कि भी ऑफिस में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, किंतु भी सोच आज नया दिन आया, आज और अच्छा। देखो बच्चे कैसे उठते हैं, आपने देखा होगा कि भी बच्चों को है ना आप उठाएंगे ना कि नहीं मम्मी और सोने दो, मम्मी और 10 मिनट सोने दो, और 1 मिनट सोने दो, फिर उठते हैं तो जोर से उठ, वैसे बच्चों की तरह उठे। मैं हमेशा ये भी बताता हूँ कि एक तो ऐसे उठो अच्छे से, सोचो आज का दिन अच्छे से अच्छा होने वाला है, और फिर कहीं भी है ना ओपन में, समझो टेरेस है तो सबसे अच्छा है, भी टेरेस में बाहर आ जाओ और नेचुरल सवेरे के सीन को थोड़ा देखो और सचमुच उसे एंजॉय करो, या कम से कम खिड़की में से भी देखो,
0: लेट इट सीप, एक्चुअली अंदर जाने देने
2: चाहिए, एंड सेव इट्स अ गुड डे टुडे। और ये सूर्योदय होता है ना, वास्तव में सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्योदय होने लगे ना तब देखना, वातावरण भी चेंज होने लगता है, एंड इफ यू रियली सिट इवन फॉर कपल ऑफ मिनट्स एंड फील दैट नो ग्लो, जो अवेकनिंग है वो सचमुच तो इंटरनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी नेचुरली हो जाएगी।
0: लेकिन डॉक्टर साहब और सिस्टर शिवानी बात वहीं आ जाती है कि एक सच्चाई के रूप में तो आ चुका है ये अवेकनिंग विल हैपन इन फैक्ट, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ होल वे ऑफ लाइफ, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट इन फैक्ट सच अ इंटरेस्टिंग थिंग कि जब हम कहते हैं कि मेडिटेशन करना, तो अब ये रियलाइजेशन हो रहा है तो मेडिटेशन तो इज पार्ट ऑफ इज लाइफ, यू नो कि आप जिंदगी जी कैसे रहे हैं वो मेडिटेशन हो जाती है। तो हम जहां तक आ चुके हैं डिप्रेशन एक सच्चाई के रूप में हमारे सामने है, उससे एक तो अवेयर कैसे होना है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि अगर जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ तब तक उसका इलाज नहीं तलाशूंगा मैं, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा, कौन सी एक वो बात, कौन से कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मुझे इस बात का एहसास करा देंगे कि मैं डिप्रेस्ड हूँ?
2: कनुप्रिया जी आपके प्रश्न में उत्तर बहुत अच्छा है, आपने कहा अवेयरनेस, है ना, जो अवेयरनेस से पावरफुल शब्द है जिसको हम हिंदी में कहेंगे सजग हो जाओ। आज हमारे में सजगता खत्म हो गई है, अगर व्यक्ति सजग भी हो जाए कि मुझे क्या क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो भी आप उसे पकड़ सकेंगे कि भी कहाँ पर शुरुआत हुई, कि जो रियल जॉय था वो जॉय कब मैंने गंवा दिया, बस उस समय पर अगर आपको समझ में आ जाए तो पता चलेगा डिप्रेशन की शुरुआत हुई। फिर और भी सिम्टम्स देख सकते हैं कि भी सचमुच मुझे आनंद नहीं आ रहा है काम करने का, मैं कर रहा हूँ लेकिन वो काम करने का आनंद नहीं आ रहा है।
0: Can we go back, Sister Shivani? डॉक्टर साहब जैसे आप कह रहे हैं,
1: I actually just remembered something. थोड़े दिन पहले ये किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पहले जब मैं ड्राइव करता था तो ड्राइव करते करते गीत गुनगुनाते हैं, जैसे कहते हैं आज मुझे याद आया, मतलब बात करते करते, कि तो बहुत समय हो गया मैंने गीत गाया नहीं है ड्राइव करते करते, दैट मीन्स डेफिनेटली आई एम नॉट इन दैट सेम स्टेट ऑफ माइंड विच आई यूज्ड टू बी अ कपल ऑफ इयर्स बैक, एंड देन ही सेड व्हाई, दैट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड। तो इस तरह से जो अवेयरनेस अगर हमें रहे कि हम अंदर या फिर बिहेवियरल पैटर्न में
0: नहीं, तो हम क्या वो वापस जा पाना इतना आसान है? देखिए आपने अभी ये कहा कि हमें वो पूरे उस मोड़ पर पहुंचना चाहिए जहां से मैंने वो खुशी खोनी शुरू की, जहां से मैं वो डिप्रेशन की शुरुआत में गया, तो क्या मैं अपने वापस सफर को वापस कर सकती हूँ, तय कर सकती
2: हूँ? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी आप कोशिश करेंगे इट इज इजियर। जैसे कि फर्स्ट से सेकंड स्टेज में आपने पकड़ लिया तो फर्स्ट पे पहुंचना इजी है, आप सिक्स्थ स्टेज तक चले गए हैं और फिर फर्स्ट पे आना है तो शायद थोड़ा टाइम, लेकिन संभव है, इम्पॉसिबल नहीं है।
1: मुझे लगता है जो स्टेजेस आपने बताए थे, एक है हमेशा सुखी, मतलब वो खुशी का अनुभव करे, और एक है कि हमेशा उदासी, लेकिन वो स्टेज पे पकड़ लें जब खुश रहते रहते कभी कभी उदास हो जाते हैं, यू नो व्हाट इज इट दैट ट्रिगर्स दैट, और उसकी फ्रीक्वेंसी आज बढ़ती जा रही है कि खुश रहते रहते कभी कभी परेशान हो जाते हैं. वो कभी कभी परेशान होने वाली स्थिति धीरे धीरे ज्यादातर परेशान
0: ये होने लग गया कि कभी कभी हमेशा परेशान रहते हैं, कभी कभी खुश हो रहे हैं वो भी, और वो भी डर लगता है फिर हो ये चली जाएगी हमारे हाथ से, तो वो इनसिक्योरिटी जो है वो आ जाती है. क्या इसको मेडिकली ही हमें करेक्ट करना है, क्या इसके लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प ही चाहिए जब हमें यह एहसास हो जाए कि हम डिप्रेस्ड हैं, या हम खुद माइंड पावर से कर सकते हैं?
2: नाउ इट डिपेंड, इसका पूरा आधार कि कौन से स्टेज पर आप है.
0: जैसे कि ना फर्स्ट हम अपने हाथ में ले सकते हैं उसे,
2: ऐसे हाथ में तो हर स्टेज पे भी ले सकते हैं.
0: अच्छा,
2: आज रिसर्च भी हुई है इस प्रकार की कि जो अंतिम स्टेज है उसमें भी आप ठीक से पुरुषार्थ करो तो उसे हम रिवर्स कर सकते हैं. भल मेहनत ज्यादा लगेगी परंतु जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज है वहां तक तो बिल्कुल इजी है. थोड़ा भी व्यक्ति अगर इस हमारे विचारों की मैकेनिज्म्स को समझ ले, क्योंकि इसका मूल क्या है, जैसे हम जानते हैं ना कि भी आज कॉमन कोल्ड है तो उसका मूल है वायरस, कि भी वायरस के कारण ये हो रहा है. तो डिप्रेशन क्यों हो रहा है? डिप्रेशन हमारे गलत विचारों के कारण हो रहा है,
0: नेगेटिव
2: थॉट, या तो भी आपके नेगेटिव ना भी हो लेकिन सही नहीं है. जो सही विचार होने चाहिए, और हम दोष औरों को देते हैं. नहीं, अपनी सास को दोष दे रहे हैं, बॉस को दोष दे रहे हैं, अब बिजनेस नहीं चल रहा है, समझते उसी के कारण मुझे डिप्रेशन.
0: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, एक और मिथ हमारे साथ जो बहुत से दर्शकों के पास है वो ये कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, इट्स ओके, इट हैपेंस, यू नो, हो जाता है, तो इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो गुजर रहा होता है वो तो बहुत तकलीफ में होता है, लेकिन जो आज पड़ोस हमारे रिलेटिव हैं या हमारे घर वाले हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है, हर कोई उससे गुजरता है, तो कितना सीरियसली लेना चाहिए उसे? इसमें केमिकल चेंजेस भी क्या हमारे दिमाग में हमारी पूरी बॉडी में हो रहे होते हैं जब हम इस दौर से गुजर रहे होते हैं?
2: वेरी गुड, इट सीम्स नो यू आर नॉलेजेबल, आपने शायद पढ़ा भी इसके बारे में. हाँ, लोग नहीं समझते, मिथ है सचमुच, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भी कोई बॉडी में भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं. उल्टा एक तो सबसे बड़ा तो मिथ यह है कि भी आपको डिप्रेशन हो गया तो आप वीक है.
0: हाँ.
2: है ना, कि भी आप कमजोर व्यक्ति,
0: आप मेंटली बहुत. हाँ, हाँ.
2: क्यों हो गया तुमको, तो इसलिए व्यक्ति तो छिपाता है फिर. नहीं, कहीं बार मेजर डिप्रेशन
0: ये कहा जाता है ना, बी स्ट्रॉन्ग.
2: नो नो, इवन वी हैव सीन पीपल कि भी उन्होंने सुसाइड किया उससे एक दिन पहले भी किसी को ये सिग्नल्स नहीं दिए कि भी आई एम डिस्टर्ब, क्योंकि इस प्रकार की एक गलत फहमी थी, मैं बोल दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो कमजोर आदमी है, और यहाँ तक चला गया कि सुसाइड भी कर लिया उसने. तो सबसे पहले तो बहुत बड़ी मिथ है. और जो बात है कि भी केमिकल चेंजेस सचमुच होते हैं, कि जब आप डिप्रेस्ड फील करते हैं तो केमिकल चेंजेस होते हैं, परिस्थितियां भी ऐसी आ सकती हैं जो परिस्थितियों के कारण भी केमिकल चेंजेस हो सकते हैं. जीन्स भी पॉसिबल है, बल जीन्स को दोष नहीं देना चाहिए, परंतु कुछ हद तक जीन्स भी पॉसिबल है कि भी पेरेंट्स को डिप्रेशन है तो बच्चों को होने की ऑलमोस्ट 30-35% पॉसिबिलिटी है. ऐसे नहीं, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस
1: है. तो क्या उस केस में पहले से ध्यान रख सकते हैं ना कुछ, फिर इसका मतलब इफ आई वुड ऑलरेडी नो
0: कि मेरे को
1: जेनेटिकली मेरे को सस्केप्टेबल है उस चीज के लिए.
0: शिवानी, इफ यू रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट पेन, जब हमने ये पेन की थी कि डिप्रेशन हर्ट होने की, कि हमें एक पेन जब होता है तो हमें आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है कि पेन अच्छा लगने लगता है ना, कहीं ना कहीं कोई केमिकल जनरेट हो रहा है. तो सिमिलरली मे बी डिप्रेशन इज वन पार्ट ऑफ इट, कि क्या कहीं हमें, हम खुद ही डिप्रेशन को तो अपने अंदर नहीं आने देना चाहते कि हमें अच्छा लग रहा है कि हम नीचे ही जा रहे हैं. वी स्टार्ट टेकिंग इट दैट,
1: उस आदत में रहने, उस स्थिति में रहने की एक आदत सी पड़ जाती है.
2: या तो ये होता है जैसे कईयों को, जैसे आपके बिल्कुल राइट है कि व्यक्ति जब नॉर्मल होता है तो लोग अटेंशन नहीं देते, लेकिन व्हेन यू आर डिप्रेस, अरे अरे अरे क्या हो गया तुमको, कुछ चाहिए क्या, ये ला दूं, ऐसा कर दूं, अदरवाइज नोबडी आस्क्स. तो आजकल
1: तो लोग अटेंशन, वो इसलिए भी है कि अगर मुझे बहुत यू नो, जैसे क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है ना एक दूसरे के लिए, तो अटेंशन सीख करने के लिए, क्योंकि वैसे तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, सभी अपना इतना बिजी है, तो जहाँ थोड़ा सा मेरे अंदर ये फीलिंग आ जाएगी, एवरीबडी विल कम बैक टू मी. तो ये चीज भी
2: बच्चों में, स्पेशली तो बच्चों में मुझे किस्सा याद आता है, बहुत अच्छा किस्सा है. पहले इट्स डायरेक्टली डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए कि कैसे अटेंशन के लिए लोग कर रहे हैं. एक बार एक बच्चा खेल रहा था साइकिल से, तो उसके ऊपर साइकिल गिर गई, तो माँ भाग के आई और साइकिल को उठाई, फिर से रख दी, फिर से बच्चा खेलने लगा, फिर से साइकिल गिर गई, ऐसा करीब 4 बार हुआ। फिर माँ को यह रियलाइजेशन हुआ कि शायद बच्चा मेरा अटेंशन देने के लिए जानबूझ के उसको ठोकर मारता है और उस पर साइकिल गिर जाती है।
0: तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोनलीनेस आज बच्चों में भी है। और अगर हम डिप्रेशन की बात करें डॉक्टर साहब, तो वो कई अकेलेपन का एक बहुत बड़ा द्योतक जो है, एक बहुत बड़ा कारण अकेला होना जो है वो डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। क्या किया जा सकता है? क्या हमारा परिवार हमें डिप्रेशन के इस पूरे दौर से निकाल सकता है? क्या हमारे मित्र, क्या हमारे दोस्त, या फिर दवाइयां ही हैं जो डिप्रेशन के से बाहर निकाल सकते हैं?
2: सबसे पहले तो अपने आप को फैमिली, ये भी ठीक है कि भी मैं क्यों निकलना चाहती हूँ, और फिर सबसे पहले मुझे कुछ करना है ताकि मैं डिप्रेशन से बाहर निकलूं। फिर ये सेकेंड स्टेज है कि भी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स भी डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें सपोर्ट दे सकते हैं। कुछ गलतियां भी वह करते हैं, वह नहीं करनी चाहिए। और फिर सिर्फ थर्ड स्टेज आती है कि कुछ ऐसी सीवियर डिप्रेशन हो जाता है कि जिसमें मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशल टाइप ऑफ डिप्रेशंस भी है कि जिसमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक है रिएक्टिव डिप्रेशन, जहाँ विदाउट मेडिसिन ऑलमोस्ट 95% लोग बाहर आ सकते हैं। और दूसरा एक एंडोजिनस डिप्रेशन कि जिसमें आपके केमिकल्स ही इतने डिस्टर्ब हुए हैं, ऑल्दो यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो वहाँ पर आप अपने आप शायद 50-60% एफर्ट कर सकेंगे, अनदर 50-60% जो है वो मेडिसिन काम करेगी।
0: एंड लाइक आने वाली कड़ियों में हम इन पे जरूर हर जो डिप्रेशन का एस्पेक्ट है उस पे डिटेल में बात करेंगे कि क्या है। सिस्टर शिवानी, जिस जर्नी पे हम चल रहे हैं, जिसको हम एक पूरा पहचानने की बात कर रहे हैं, हर तरह के एस्पेक्ट को तलाशा है, उसमें ये बात सामने जो आ रही है, क्योंकि मैं व्हेन आई गो आउट आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम, कि इट्स नॉट दैट इजी, यू नो, हर कदम पे ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि हमारा एक तरीका बन चुका है, तो उसको अब चेंज करके इंटरनलाइज करने का नहीं है। खासकर डिप्रेशन में कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये पूरा इंटरनल जो प्रोसेस है, जैसे हमने कहा था थॉट से क्या क्या किस तरह से वो पूरी जर्नी एक होती है।
1: जैसे आपने भी कहा ना कि मेडिकल हेल्प में भी जैसे मेडिसिन एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, दूसरा काउंसलिंग। तो हमने जैसे पहले भी देखा सेल्फ काउंसलिंग,
0: खुद से बात कर,
1: सेल्फ काउंसलिंग भी इसमें, क्योंकि जितना अच्छा शायद हम खुद अपने आप को काउंसल कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता है, नॉट इवन फैमिली। साइकेट्रिस्ट यस, बिकॉज वो उनकी मेडिकली ट्रेन्ड है, लेकिन फिर भी शायद जितना अच्छा हम अपने आप को जानते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, तो भले भी टेक एक्सटर्नल हेल्प, द मेडिकल हेल्प, लेकिन अपना रोल जितना अच्छा हम अपना प्ले करेंगे तो शायद बीमारी से उतना जल्दी ठीक आ जाएंगे। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर पूरा प्रयास कर रहे हैं फिर भी पेशेंट को बहुत टाइम लग रहा है, बिकॉज उसके पार्ट का जो एफर्ट है दैट वी आर नॉट
0: टू कम है।
2: बहुत अच्छी है जो पॉइंट है ना, सेल्फ काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप साइकोथेरापिस्ट या काउंसिलर के पास जाते हैं तो देखा गया कि सबसे बड़ा जो बैरियर है वह है कि यू डोंट ओपन अप। जो रियल चीज है ना वो आप उनको बताते ही नहीं,
0: क्योंकि खुद भी नहीं पता होता ना शायद।
1: नहीं, कई बार खुद पता होता है, बट यू डोंट वांट टू शेयर। आप अपनी हर बात, अपनी हर गलती, अपनी हर कमजोरी शायद किसी से नहीं शेयर कर पाते।
2: फ्रॉइडियन साइकोथेरेपी है ना सारी, साइको एनालिसिस उसको कहते, साल भर लग जाता है
1: निकलवाने के लिए,
2: जब तक व्यक्ति उसके बात को ओपन हो कि मेरे चाइल्ड।
0: एक और मैं चलते चलते जो एक और मिथ को या एक उस चीज को मैं बात करना चाहती हूँ, उसके बाद हम अगली कड़ियों में भी जानेंगे इसके बारे में, कि जब हम बिल्कुल डूब रहे हैं, जब ये है कि बिल्कुल उस गहराई में, जैसे यू नो डीप में चले गए हैं हम, तो उसमें बाहर निकलने के लिए तिनके को सहारे की बात करते हैं ना, हम किसी एक थॉट को, किसी एक चीज़ को पकड़ के, क्लिंग करके उसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्वाइवल तो हमारा है ही, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक इंसान जो है अपने आप को बचाता, उस थॉट के साथ फिर हम जुड़ जाते हैं। ये जो रिश्ता है कि वो उसे हम सच्चाई मान लेते हैं, ये भी कहीं एक डिप्रेशन को, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम फिर आ जाती है अटैचमेंट की जो बात है, वो भी एक क्या ये सही तरीका है कि एक किसी थॉट को पकड़ के बाहर निकल आना, लेकिन फिर उसके साथ क्लिंग करना, उससे अपने आप को दूर कैसे कर सकता है वो आदमी?
2: ये तो बिल्कुल सही है कि भी एक विचार भी आपको बाहर ला सकता है, जैसे उदाहरण के रूप में कि भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, इफ आई रिमेन परसिस्टेंट मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, वह एक थॉट भी आपको हेल्प कर सकता है, परंतु उससे अटैच नहीं होना चाहिए।
0: वो हम क्लिक कर जाते हैं उससे, फिर वो तंग करती रहती है चीज। सो हाउ वो जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस, उसको हटाना क्योंकि हम फिर एक चीज से निकल के दूसरी चीज में अटक गए। ये बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि बाहर निकलने का एक प्रयास तो करते हैं हम किसी एक थॉट को, कि वो व्यक्ति है या वो कोई एक थॉट है, वो कोई चीज है, कोई एक प्रोफेशन है, कुछ भी है, उसको पर उससे क्लिंग कर जाते हैं उस क्लिंगिंग से।
1: लेकिन ये थॉट नहीं है, मेरे को लगता है ये कोई एक्सटर्नल या तो व्यक्ति है, क्योंकि थॉट से अटैचमेंट नहीं होगी। अटैचमेंट जनरली
0: जॉब है, कुछ जॉब
1: समथिंग आउटसाइड, तो फिर एक चीज से निकले दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए।
0: बिल्कुल, हम ये बात कर रहे थे कि जो क्लिंग कर जाते हैं, सो दैट कैन बी अ साइकेट्रिस्ट,
1: वी कैन यू नो क्लिंग ऑन टू द काउंसलर, क्योंकि वो बहुत वो एक सकर थे ना, उन्होंने हमें उस वैक्यूम से निकाला तो फिर उनसे स्टिक हो गए।
0: काउंसलर के साथ अगर हम क्लिंग कर जाएं तो फिर क्या करना चाहिए?
2: एक्चुअली पहले से ही ध्यान रखना है। यहाँ तो देखेंगे काउंसिलर को ही अटेंशन देना है। वी नीड टू ट्रेन काउंसिलर्स एंड साइकोथेरेपिस्ट दैट यू वांट टू टेक आउट दैट पर्सन फ्रॉम डिप्रेशन, लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंट बनाओ।
0: बिल्कुल,
2: उन्हें आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाओ। अगर इसे उनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग है तो कभी वो डिपेंडेंट नहीं
0: होगा। और बहुत सुंदर बात डॉक्टर पटेल जो सामने आई थी वो ये कि माइंड पावर से पॉजिटिव थॉट्स एक्चुअली किसी भी स्टेज पे हो हम डिप्रेशन के उससे बाहर हमें लेकर आ सकते हैं। ये पूरे मुद्दे हम अपने आने वाली श्रृंखला में जरूर हर एपिसोड में हर कड़ी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज आप हमारे साथ शामिल हुए डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: आज जो हमने बातें की उससे ये बात तो सामने आई कि डिप्रेशन एक सच्चाई है, आज के इस दौर की सच्चाई है। हम में से किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है, कई स्टेजेस होती हैं डिप्रेशन की। ज़रूरत है कि उसे सही वक्त पर पहचान ले। कहा जाता है कि जहां आँख खुले वहीं सवेरा होता है, सवेरे की या रोशनी की वो किरण वहीं से नज़र आने लग सकती है, और अपनी ही माइंड पावर से हम काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकते हैं। लेकिन जहां लगे कि सहायता चाहिए तो फिर सहायता या मदद ले लेनी चाहिए। और एक और बात जो सामने आ रही है कि किसी भी उम्र में डिप्रेशन हो सकता है। ये कार्यक्रम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो डिप्रेशन का शिकार हैं, बल्कि बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने भी दर्शक हमारे जो प्रोग्राम देखते हैं उन सबके लिए है, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं जब लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो डिप्रेशन से जुड़ा हो या फिर ज़िंदगी से जुड़ा हो, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो फिर डिप्रेशन क्यों होता है, हर स्टेज डिप्रेशन की क्या होती है और किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, अगली कड़ी में यही जानने की कोशिश करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। जी हाँ साथियों, आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम लोग हनुमान जी को याद करते हैं और हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी शुभ आशा के साथ ढेर सारी खुशियां आप सभी को। और मंगल दिवस जो है हमारे लिए एक मोटिवेशन का दिन होता है, जहां पर हम अपनी भावनाओं को, विचारों को लेकर थोड़ा सा अगर हम काम करें तो निश्चित तौर पे हमें जो है एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। हेलो जी नमस्कार।
1: अरे नमस्कार भाई जी, नमस्कार। जब आप आ जाते हैं तो हमारी खुशियाँ बन जाती है और मंगलवार की मंगल कामनाएं बन जाती है सर।
0: अच्छा, क्या बात है।
1: इसलिए हमारा एक गाना है सर, जब जब दूर पड़ी भक्तों ने भगवान दौड़े आए, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों में भगवान दौड़े आए तब। अरे गाना भी बराबर निकली जाए मेरे को ऐसा भक्त हम ऐसी कथा है भक्त भगवान की। जब जब भीड़ पड़ी जब भक्त दौड़े आए, भगवान दौड़े आए साथ में, आप राम दौड़े आए साथ में हनुमान को लेके आए। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो,
0: हाँ जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, लेकिन मेरे को गाना नहीं समझ में आया आपका कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM। ये थे हमारे गुड़ीलाल जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा करते रहते हैं और अच्छा लगता है कि वो इस बात को भी जानते हैं और अपनी भोली भाषा के साथ जुड़ जाते हैं, नेचुरल और नेचर के साथ। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार। हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, बोलिए गुड़ीलाल जी।
1: आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, आवाज कट रही
0: है। अभी नहीं कट रही है, आप बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ आपको।
1: ऐसी कथा भक्त भगवान की, जब जब भीड़ पड़ी जब भक्तों में दौड़े आए भगवान।
0: ठीक है कोई बात नहीं, आपका गाना मैं समझ गया, ऐसी भक्ति भगवान की कथा। हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM। आइए आगे बढ़ते हैं और मंगल दिवस की मंगल कामनाएं हुई और आपके चेहरे पे हंसी भी आ गई होगी इगड़ीलाल जी की बातें सुनकर, उनका भोलापन और उनकी बोली बातें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कभी कभी हमारे बहुत ही जो है अगर हम बहुत ज़्यादा सोचने लगे चीज़ों को लेकर तो कन्फ्यूज़न ज़रूर क्रिएट होता है। इसलिए सोचना कम करें और मुस्कराना ज़्यादा करें और अपने आप को ठीक करना ज़्यादा करें, क्योंकि हम लोग अक्सर जो है चेहरे पे होती है धूल और आईना साफ करते रहते हैं। ना धूल जाती है ना ही कोई कमाल होता है। अगर हम अपने चेहरे

साफ कर ले तो कमाल ही कमाल है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने अंदर को चेक करना है, अपनी भावनाओं को चेक करना है, और हम अपनी भावनाओं को ठीक कर ले तो दुनिया ठीक हो जाती है ना। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और मैं हूं आपका हम सफ़र आज रमेश। और चलिए गाने की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले आप भी अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप कौन सा खूबसूरत भजन सुनना चाहते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं यात्रा। हनुमान जी के खूबसूरत भजन आपको सुनाते हैं और जो सबसे प्यारा भजन है वो है ये, है ना। और जब हम लोग इस गीत को सुनते हैं हनुमान जी का, मंत्रमुग्ध होकर खो जाते हैं, तो थोड़े समय के लिए आप खो ही जाइए।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। 4 अगस्त 2026 आज का तारीख है और राष्ट्रीय शके 1948 13 गते 19 श्रावण मंगलवार आज है। विक्रम संवत 2083 श्रावण कृष्ण पक्ष पष्टी मंगलवार रेवति आज है। इसके साथ ही आज पहला जो है मंगल गौरी व्रत है और कल सोमवार था तो श्रावण सोमवार की शुरुआत और आज मंगल गौरी व्रत का शुरुआत हो गया है। इसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस भी है। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और राष्ट्रीय बहन दिवस भी आज है। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे तो ये जो है विशेष दिन है, तो आइए इसके बारे में कुछ खास बातें आपसे शेयर करूंगा और आप भी अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और पहला मंगल गौरी व्रत का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग करते हैं उनको वंदन है और जो नहीं करते हैं वो करने की प्रेरणा ले और प्रयास करे, है ना हर चीज प्रयास से संपन्न होता है। तो आइए गुड़ीलेल के बाद हमारे एक और मित्र गुजरात से जो है साजिद भाई,

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आशा करूंगा बहुत ही प्यारा सा शिव लहरी अकड़ बम ये गीत आप सुनकर आनंदित हो गया होंगे। तो आइए, आज जैसे कि मैंने कहा, त्योहारों का एक सुंदर मंच है। राष्ट्रीय बहन दिवस आज है और नेशनल सिस्टर्स डे के रूप में ये दिन मनाया जाता है और हर साल अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है, जो बहनों के बीच के रिश्ते का सम्मान करता है। और 2024 में ये दिवस 4 अगस्त को मनाया जाने का निर्णय लिया गया और तब से ये दिन मनाया जाता है। अब देखिए कि ये दिन मनाने के पीछे रहस्य क्या है। राष्ट्रीय बहन दिवस बहनों के बीच के रिश्ते और बंधन का सम्मान करने वाला एक अनूठा अवसर है। हर साल ये अगस्त के पहले रविवार को होता है। लोग इस दिन अपनी बहनों का सम्मान करके उनके द्वारा दी गई दोस्ती, प्यार और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। ये दिन भाई बहनों को एक साथ समय बिताने, खास पलों को याद करने और नए पल बनाने का मौका देता है। बहनों का एक विशेष और लंबे समय तक चलने वाला बंधन होता है। इसके अतिरिक्त ये लोगों के लिए खुशी और मुश्किल दोनों समय में उनका साथ देने के लिए अपनी बहनों को धन्यवाद देने का एक समय या एक दिन है जो आज है। तो अपनी सारी बहनों को धन्यवाद करें, उनके लिए सम्मान व्यक्त करें, उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें। हेलो जी, नमस्कार।
1: बुराराम बोल रहा हूं रमेश भाई।
0: बुराराम जी, स्वागत है। कैसे हैं आप? मंगल दिवस की मंगल कामनाएं आपको।
1: मंगल कामनाएं और सब मधुबन भाइयों को, सबको, सुरेश भाई, मदन लाल जी, भूरे लाल जी, सबको मेरा हाथ जोड़ के रहूंगा। आपको भी राम राम। और सुबह सुबह अच्छा भजन सुना है, जो मेरे मन में था वही भजन सुना है। और बाकी तो क्या, आगे बोले तो अच्छा कवर हनुमान जी का सुनाएंगे तो अच्छा।
0: जी जी जी, शुक्रिया।
1: भगवान का कुछ आज है मंगलवार तो अच्छा, हनुमान जी का एक और भजन सुनवा देना।
0: जी जी,
1: ओके
0: ओके सर, ओके। बुराराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लगा आपने कॉल किया हमें और याद किया सभी को। तो आइए, मैं बात कर रहा था ये जो है विशेष सिस्टर्स डे के बारे में। और यहाँ पर सिस्टर शब्द की उत्पत्ति पुराने नर्स शब्द सिस्टर से हुई है, और जो स्वयं प्रोटो जर्मनिक शब्द सेक्टर से आया है। आज के समाज में बहन भाई, महिला भाई बहन होने के साथ साथ हमारी बहुत करीबी महिला मित्र भी होती है। सिस्टर डे की का 1996 में उस समय से ये चीज़ें सामने आई थी जब संयुक्त राज्य अमेरिका में मैफिन्स टेनिस की ट्विस एलेग्रोम और उनकी बहन को ये विचार आया कि अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों के अलावा इस विशेष दिन को बनाने का मुख्य उद्देश्य बहनों के बीच के बंधन का सम्मान करना और जश्न बनाना और एक दूसरे के साथ साझा करने की जो देखभाल और स्नेह का जो कार्य होता है वो और मजबूती से हो और एक दूसरे पर आशीर्वाद बना रहे, लेकिन उनका बंधन साधारण रिश्तेदारी से परे हो। कई बार ये उनकी दोस्ती या साझा भावना के साथ भी प्रभावित होती है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ आपके लिए। और भगवान का नाम जपने की महिमा ऐसा कहा जाता है। तो कई बार हम भगवान के नाम को जपते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा गीत है जिसमें भगवान की महिमा भी है और साथ ही साथ हमें एक बेहतर जो है अनुभव कराएगा ये गीत जो अभी आपको सुना रहे हैं। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, एक बार एक अनपढ़ गवार आदमी एक महात्मा जी के पास जाकर बोला, महाराज मुझे कोई सीधा साधा नाम बता दो जिसे लेकर मैं भगवान का नाम जपता रहूं। महात्मा जी ने कहा, तुम अघमोचन अघमोचन कहा करो, अघ यानी पाप और मोचन यानी छुड़ाने वाला। अघमोचन मतलब जो पाप को छुड़ा सके। अब वह बेचारा गांव का गवार आदमी अघमोचन अघमोचन करता हुआ अपने गांव की तरफ जा रहा था। जाते जाते रास्ते में वह अघमोचन में अ लगाना भूल गया। और वह घमोचन घमोचन बोलने लगा। एक दिन वह हल जोत रहा था और घमोचन घमोचन का जाप करने लगा। उधर वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु भोजन के लिए बैठे ही थे कि घमोचन नाम का उच्चारण सुनकर उनको हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हो? भगवान बोले, आज हमारा एक भक्त ऐसा नाम ले रहा है कि वैसा नाम तो किसी शास्त्र में भी नहीं है, उसे सुनकर मुझे हंसी आ गई है। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु तो हम भी उसको देखेंगे और सुनेंगे कि वह कैसा भक्त है और वह कौन सा नाम ले रहा है। लक्ष्मी नारायण दोनों ही उसी खेत के पास पहुंच गए जहां वह हल जोतते हुए घमोचन घमोचन का जाप कर रहा था। पास ही में एक गड्ढा था। भगवान स्वयं तो वहां जाकर छिप गए और लक्ष्मी जी ने एक औरत का रूप लेकर उस भक्त के पास जाकर पूछा, अरे तू यह घमोचन घमोचन क्या बोले जा रहा है? उन्होंने एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा, अगर इसको बताने लगूंगा तो मेरा जप टूट जाएगा, इसलिए वह घमोचन घमोचन करता रहा और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अब बार बार लक्ष्मी जी पूछे जा रही थी तो उसको गुस्सा आ गया। गांव का गवार आदमी तो था ही, इसलिए बोला, जा तेरे पति का नाम ले रहा हूँ, क्या करेगी? अब तो लक्ष्मी जी डर गई कि इसने तो हमको पहचान लिया। फिर वो बोली, अरे तू जानता है कि मेरा पति कौन है और कहाँ है? जब बार बार वो पूछे जा रही थी तो वह झुंझला कर बोला, वहाँ है इस गड्ढे में, जाना है तुझे भी इस गड्ढे में? लक्ष्मी जी समझ गई कि इसने तो हमें पक्का ही पहचान लिया। वह बोली, प्रभु बाहर आ जाओ, अब छिपने से कोई फायदा नहीं है। और तब भगवान उसी गड्ढे से बाहर निकल आए और अपने उस भक्त को दर्शन दिए। वह भगवान के दर्शन पाकर खुद को धन्य महसूस कर रहा था। भगवान लक्ष्मी जी से बोले, देख लिया मेरे नाम की महिमा को? वह अघमोचन और घमोचन का भेद भले ही नहीं जानता हो, पर वह नाम तो हमारा ही जप रहा था। यह बात हम समझते हैं, जिसके कारण हमें इसे दर्शन देना पड़ा। दोस्तों, भगवान का भक्त शुद्ध अशुद्ध टूटे फूटे शब्दों में या गुस्से में भी भगवान का नाम लेता है, तब भी भगवान का मन उससे मिलने को ललायत हो उठता है और वह खुद को भक्त से मिलने से रोक नहीं पाते। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और कहानियों

0: नमस्कार भगत भरले रे जूरी भगवान कड़ा तेरे द्वार, है ना। बड़ा प्यारा संगीत आप सुन रहे थे और इसके पहले हमने एक कहानी आपको सुनाई थी। वो कहानी भी भक्त जैसे भी है, जिस भी भाव से भगवान को याद करता है तो भगवान जो है प्रसन्न हो जाता है और निश्चित तौर पे उन्हें मन इच्छित उससे अधिक फल दे देते हैं। तो साथियों आइए, आज विशेष मंगल गौरी व्रत भी है, आप सभी कर रहे होंगे और जो लोग कर रहे हैं वो फ़ोन करके ज़रूर बताइए हमें कि आप मंगल गौरी का व्रत करते हैं और कैसे करते हैं, कब से कर रहे हैं, जरूर बताइए हमें, अच्छा लगेगा। और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस आज है और ऐसे कि विश्व के कई देशों में ये दिन मनाया जाता है, अलग अलग दिन मनाया जाता है। हालांकि दोस्ती का ये त्यौहार दुनिया भर में अलग अलग तिथियों में मनाया जाता है और पिछले कुछ समय से भावना रहा हर जगह एक ही है कि दोस्ती का सम्मान हो। दक्षिण अफ्रीका देशों से शुरू हुआ ये त्यौहार विशेष अर्जेंटीना, ब्राज़ील और अलग अलग देशों में अलग अलग दिन तय करके मनाया जाता है, जबकि भारत, मलेशिया, बांग्लादेश आदि दक्षिण एशियाई देशों सहित दुनिया भर के बाकी देशों में ये अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है या उसके आसपास में मनाया जाता है। हेलो जी नमस्कार।
1: नमस्ते,
0: ओम शांति, गुड मॉर्निंग सुरेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया एकदम,
1: बैठा है, बात सुन रहे हैं आपकी बातें और काम भी कर रहा हूँ और अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं आज। भगत भरले रे जूरी बहुत अच्छा गाना सुना दिया आपने
0: जी,
1: तो विश्वास का गाया हुआ था जी। कहते हैं कि कोई भी इंसान किसी की मदद कर देता है, किसी के काम में आता है, किसी को कोई हाथ, कोई जो हमारे घर पे आते हैं तो उसको खाली मत जाने देना कि कोई ना कोई चीज दे देना, क्योंकि कहते हैं कभी कभी भगवान भी सामने आ जाता है, हमको पता नहीं चलता है और किस रूप में हमारे घर भगवान आ जाता है और हम मना कर देते हैं तो बाद में होता है कि भाई हमने क्या कर दिया। इसलिए हमारे घर पे कोई साधु संत आए, कोई ऐसे कोई जो परिस्थिति विकट है उसके सामने हमारे आए मदद के लिए, तो उसकी मदद करना बिल्कुल जरूरी सर। बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम चल रहा अच्छा, हमारे सभी मित्रों को आज तो मंगलवार है, मंगल का एक कामना है, अच्छे रहे। हमारे तुलाराम जी है, हमारे गिरिलाल जी है, किशन भाई है, सभी हमारे परिवार है, मधुबन परिवार, हमारे तो यहाँ गौरी व्रत भी नहीं होता अभी सावन महीना, तो हमारे सर 15 दिन के बाद शुरू होता है, आपको 15 दिन पहले होता है, क्योंकि अभी तो हमारे 8 महीना चल रहा है लास्ट, और बाद में हमारे 15 दिन बाद में हमारे यहाँ सावन महीना शुरू होता है गुजरात में, और आपके वहाँ तो सावन शुरू हो गया है। तो सावन महीने में तो हमारे गुजरात में पूरे मंदिर हर दम हर रोज के लिए कितनी भीड़ रहती है, बाद में जब पूरा सावन हो जाता है तो दूसरे दिन कोई दिखते नहीं दिए, तो ये क्या बात है कि भगवान को एक ही महीना पूजना है, बाद में नहीं पूजना है, ऐसा इधर होता है। लेकिन हम तो बताए कि हर दम भगवान के घर जाना है, भगवान को याद करना है, भगवान के मंदिर जाना है, लेकिन महीने के लिए नहीं है। चलो अच्छा है, अच्छा गाना भी आपने कल भी बहुत अच्छा गाना सुना दिया था भोले बाबा का
0: जी जी,
1: तो आज भी चलो हम भी एक कथा ही गाना दे दे कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो ये भी प्रदेश शायर का गाया हुआ गाना है लिखा हुआ, जरूर सुना देना सर
0: जी जी जी। ओम शांति श्री जी, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सभी का स्वागत है नई किरण इस कार्यक्रम में। चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और वक्त हो गया है समाचारों का, समाचार डाउनलोड होते ही मैं आपको सुनाने वाला हूँ और तब तक मैं दूसरों का दुखड़ा, है ना, ये गीत सुनाई देता हूँ ताकि समाचार भी डाउनलोड हो जाए और समय भी बच जाए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, नई किरण, दूसरों का दुखड़ा।

0: के सुपरहिट सॉन्ग्स देखने और सुनने के लिए डाउनलोड करें सुर मंदिर ऐप।
1: मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है।
3: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं, और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
2: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
4: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है, ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
5: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
6: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
2: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
7: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन क्या है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
8: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
9: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत, बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
10: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, डिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
11: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं। छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजर अहमदाबाद पर। भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
2: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ।
1: रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस।
0: तो जैसे कि हम लोग आज मंगल गौरी व्रत का विशेष पर्व मना रहे हैं और साथ ही साथ अन्य और पर्व है जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही जिक्र किया, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस भी है। तो यहाँ पर बताया जाता है फ्रेंडशिप डे मनाने का जो इतिहास है 1919 से शुरू हो गया, जहाँ पर हॉलमार्क कार्ड्स के संस्थापक जॉर्ज हॉल को ये पूरा श्रेय जाता है जिन्होंने दोस्ती पर फ्रेंडशिप डे पर विशेष कार्ड भेजा था और उन दिनों शुरू हुआ ये सिलसिला और धीरे धीरे जारी हुआ सभी लोगों के। और अगस्त के पहले रविवार को ये खास दिन मनाने के पीछे की वजह भी यही थी कि अमेरिकी देश में यह समय ऐसा है जब दूर दूर तक किसी पर्व त्यौहार की छुट्टी नहीं होती थी। 1958 और 30 जुलाई को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे की घोषणा हुई और बताया जाता है कि डॉक्टर आर्टमियो ने अपने दोस्त ब्रांचो के साथ नदी के पास रात्रि भोजन किया था और पहली बार वे इस दिन को मनाया गया और दक्षिण अफ्रीका देशों में सबसे पहले इस दिन को उत्सव के रूप में मनाने की घोषणा हो गई और तब से ये सिलसिला जारी रहा और फिर अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग देशों में अलग अलग तारीख पर ये चीज़ें होने लगी। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं अभी आप सभी को ले चलता हूँ एक और खूबसूरत भजन की तरफ और ये भी भजन जो है भगवान का ही जो है भक्तों के साथ जुड़ा हुआ एक सुंदर भजन है अभी आपके लिए।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं आज के दिन विशेष के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और मंगला गौरी व्रत के बारे में भी बातें हो रही थी। भारत में धार्मिक व्रतों का सर्वोपरि प्रचार रहा है और यहाँ पर हम देखेंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथ में उल्लेखित हिंदू धर्म का एक व्रत संस्कार है। श्रावण के सभी मंगलवारों पर यह व्रत किया जाता है और विवाहित नारियों के द्वारा विवाह के उपरांत 5 वर्षों तक किया जाता है। और महाराष्ट्र में प्राचीन प्रचलित ये है कि पूजा करने वाली नारियाँ विशेष रूप से मुख होकर भोजन करती रहती है और 16 वर्ष के पुष्प, 16 सुहासिनियों की आवश्यकता, 16 दीपों के साथ देवी का निरज्जन किया जाता है और देवता गौरी विविधता के से छुटकारा पाने के लिए, विघ्नों से छुटकारा पाने के लिए व्रत किया जाता है और पुत्र प्राप्ति एवं सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए मंगला गौरी से प्रार्थना की जाती है। दूसरे दिन प्रातकाल गौरी विसर्जन भी किया जाता है। तो ये था कुछ खास बातें मंगला गौरी के इतिहास के बारे में, पूजा के बारे में वर्णन। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रिमोट 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 9:46 हो रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। आज विशेष बहुत सारे लोगों का जन्मदिन है, लेकिन एक खास व्यक्तित्व के बारे में बातें करना चाहूँगा जिनके लिए आप भी सोच रहे होंगे कि इनका जन्मदिन आज है। जी हाँ, किशोर कुमार जी का जन्मदिन आज है, तो उनके बारे में कुछ उनकी खूबसूरत बातें भी सुनाऊँगा, लेकिन उनकी स्टोरी मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा आज आप सभी को, कैसे उनकी जीवन कहानी थी। तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो आइए, किशोर दा की खूबसूरत जीवन कहानी अभी आपके लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है एक बड़े ही जबरदस्त हरफनमौला कलाकार की, नाम जिनका किशोर कुमार।
2: जरूरत है, जरूरत है, सख्त जरूरत है।
3: क्यों नहीं, क्यों नहीं, दुकानदार माल टोल के देखता है, ए? कथाई बकरे को टटोल के देखता है, मारवाड़ी तिजोरी खोल के देखता है, फिर आप क्यों नहीं अपने होने वाले दामाद को अच्छी तरह से देखें।
1: किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त सन 1929 में हुआ। जन्म हुआ था एक बंगाली परिवार में, जगह थी खंडवा, जो अब मध्य प्रदेश में है। इनके जन्म का नाम रखा गया आभास कुमार गांगुली। इनके पिता कुंजालाल गांगुली गंगोपाध्याय एक वकील थे और इनकी माँ गौरी देवी बंगाल के एक बड़े ही नामी परिवार से आई थीं। कुंजालाल गंगोपाध्याय को बुलाया गया था कामा विशेधर गोखले के परिवार ने। कामा विशेधर गोखले परिवार ने कुंजालाल गंगोपाध्याय को बुलाया था खंडवा में और ये कहा था कि आप हमारे वकील बने।
4: अरे वाह सूर्य देवता, जब तुम्हारा टाइम पीस भी खूब है, चाबी दो या न दो मगर तुम अपने वक्त पर जरूर निकलोगे।
5: गुड मॉर्निंग बॉस।
4: जी हो मेरे दोस्त, 1000 बरस। चलो प्यारे, भगवान का नाम लेकर धंधा शुरू करें, राजा के नाश्ते का वक्त हो गया है।
1: चार भाई बहनों में किशोर कुमार सबसे छोटे। बड़े भैया अशोक कुमार, फिर सती देवी और फिर अनूप कुमार। अभी किशोर कुमार बहुत छोटे ही थे कि इनके बड़े भाई दादा मुनि, बोले तो अशोक कुमार, एक्टर बन चुके थे।
6: सुनो रे बच्चों, सुनो, जो मेरे साथ सिनेमा जाना चाहता है वो यहाँ आ जाए, वरना मैं जा रहा हूँ।
1: ये किस्सा भी मशहूर रहा कि बचपन में किशोर कुमार का गला हमेशा खराब रहता था, बड़ा ही कर्कश स्वर इनके गले से निकलता। लेकिन एक दिन इनकी उंगली कट गई जिसे खून बहने लगा। उस जमाने में पेन किलर्स बड़े कमजोर हुआ करते थे, जब भी दवाई लगती तो किशोर कुमार बहुत रोते और इसी तरह रोते रोते उनका गला साफ हो गया, गले की खराश बिल्कुल निकल गई और फिर क्या सुरीला स्वर निकला ये तो हम सभी जानते हैं।
7: नाच मेरी जान, फाथा।

0: मेरी जान।
1: किशोर कुमार अपने बड़े भाई के पदचिन्हों पर चलना चाहते थे और गायक बनना चाहते थे। बचपन से ही वो केएल सहगल से बड़े मुतासिर थे। अशोक कुमार ने चाहा कि उनका छोटा भाई किशोर भी फिल्मों में एक्टर बने, इसलिए आभास कुमार से नाम बदल दिया गया और किशोर कुमार रख दिया गया। फिल्म जिद्दी में खेमचंद प्रकाश ने किशोर कुमार को प्लेबैक सिंगिंग का मौका दिया। गाना था मरने की दुआएं क्यों मांगूं,
2: मरने की दुआएं क्यों मांगूं।
1: काफी लंबा समय इसी जद्दोजहद में बीत गया कि किशोर कुमार एक्टर हैं कि डायरेक्टर, सिंगर हैं कि लिरिक राइटर। हालांकि किशोर कुमार का मन एक्टिंग में बिल्कुल नहीं लगता था, पर अपने बड़े भाई अशोक कुमार के दबाव में ये एक्टिंग करते रहे। एक वक्त ऐसा भी आया था जब महान गायक मोहम्मद रफी ने किशोर कुमार के लिए प्लेबैक सिंगिंग की।
2: अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी।
1: किशोर कुमार ने बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, इन बड़े ही दिग्गज कलाकारों की फिल्मों में काम किया, जैसे कि नौकरी और मुसाफिर। फिर नया अंदाज, भागम भाग, भाई भाई, आशा और चलती का नाम गाड़ी तो बहुत मकबूल हुई। इन फिल्मों में इनके गाने भी रहा करते थे और इनकी एक्टिंग भी।

बहुत से ऐसे संगीतकार थे जो किशोर कुमार को प्रॉपर सिंगर नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ये तो नौटंकीबाज है, सिर्फ हंगामा करता रहता है। और ये वो दौर था जब तलत महमूद, मुकेश जी, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, इन सब गायकों का नाम बहुत ऊंचा था।

0: गुजरिया।
1: किशोर कुमार के जीवन में महान संगीतकार एस डी बर्मन का बड़ा योगदान रहा। पहली ही मुलाकात में किशोर कुमार ने दादा बर्मन की आवाज में ही दादा बर्मन को गाना सुनाया, बस वो तो एकदम हैरान रह गए। उसके बाद एस डी बर्मन और देवानंद का कॉम्बिनेशन इन्हें मिला और फिल्म गाइड का गाना गाता रहे मेरा दिल गहरा असर छोड़ गया। तब किशोर दा ने कहा कि अब तो ये दिल सिर्फ गाएगा और एक्टिंग की दुकान पर इन्होंने कुछ वक्त के लिए ताला लगा दिया।

0: खूबसूरत है।
1: फिल्म आराधना ने यदि राजेश खन्ना को बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाया तो किशोर कुमार की पेमेंट निकलवाने के लिए भी बड़े मशहूर रहे। एक प्रोड्यूसर रहे तलवार, उन पे इनके कुछ पैसे बकाया थे। पेमेंट ना होने की सूरत में किशोर कुमार अक्सर उनके घर के सामने जाते और कहते, ए तलवार दे दे मेरे 8,000, और शर्मिंदा होकर तलवार साहब को इनके पैसे चुकाने ही पड़े।

0: किशोर कुमार जीवन में अकेले थे और उनके दोस्त थे अमृत तांजन, हरि निरंजन और फटाफट। अब आप सोचेंगे कि ये कौन? ये वो तीन पेड़ जो इनके बंगले में थे, जिनसे ये अक्सर बातें किया करते थे। ये बात भी इसलिए मशहूर हो गई क्योंकि एक जर्नलिस्ट ने इनसे सवाल कर लिया था कि आप तो बड़े अकेले रहते हैं, किसी पार्टी में भी नहीं जाते। और तब किशोर दा ने कहा था, पार्टी में तो जाता हूँ और वो पार्टी मेरे घर के आंगन में ही होती है। सामने ये पेड़ देख रही हो, इन्हीं से बातें करता हूँ। चौथी शादी से किशोर कुमार को एक बेटा हुआ, नाम रखा गया सुमित कुमार। किशोर कुमार की दिल की बीमारी बढ़ती जा रही थी, इनके गाने भी जबरदस्त तरीके से हिट होते जा रहे थे। इनका बेटा अमित कुमार भी जबरदस्त प्लेबैक सिंगर बन गया था। पर कोई ये नहीं जानता था कि किशोर कुमार के जीवन में जब प्यार और खुशी आ गई है, तभी उन्हें ये दुनिया छोड़ के जाना होगा। किशोर कुमार ने 13 अक्टूबर को एक खास पार्टी रखी थी। 13 अक्टूबर अशोक कुमार का जन्मदिन होता है। ये एक सरप्राइज पार्टी थी अपने बड़े भाई के लिए। फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ रहे थे, पर तब ये कोई नहीं जानता था कि किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ चुका है और वो ये दुनिया छोड़ चल बसे हैं। इनके आखिरी लम्हों में जब इनकी बीवी ने इनसे कहा कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर आएगा तो सचमुच इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। किशोर दा गुजर गए और उसके बाद इनके बड़े भाई ने जिंदगी में कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। तेरह अक्टूबर सन 1987 वो दिन बनकर आया जब ये महान गायक, हरफन मौला कलाकार, ये दुनिया छोड़ चल बसा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री किशोर कुमार के बगैर हमेशा अधूरी जानी जाएगी। उसे संपूर्ण करने वाले कलाकारों में से एक हैं किशोर कुमार। अपना है फिर
1: भी अपना। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं। किशोर दा की सारी बातें आपने सुनी और इसके साथ ही मैं आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में अगर बात करूं तो आज विशेष जैसे कि खास अमेरिका के प्रथम श्वेत एवं 44वें राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा का भी जन्मदिन है। 1961 में इनका जन्म हुआ और तीन बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रहे एन रंगास्वामी का भी जन्मदिन आज है। 1950 में इनका जन्म हुआ और भारतीय क्रिकेटर नरेन तैमाने इनका भी जन्मदिन आज है। 1931 में इनका जन्म हुआ। भारत के पॉपुलर गायक और अभिनेता किशोर कुमार जी का भी जन्मदिन आज है और 1929 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और साहित्यकार इंदु प्रकाश पांडे का भी जन्मदिन आज है और 1924 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और भारत के राजनेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यशवंत सिंह परमार का जन्म भी आज है। 1906 में इनका जन्म हुआ था। भारतीय राजनेता, बदायी नगरपालिका के संविधान चार्टर के निर्माता फिरोज शाह मेहता, 1845 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। इसके साथ ही भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध एक मराठा वीर थे, सदाशिवराव भाऊ, 1730 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। मेवाड़ के शासक और महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह का जन्म भी आज ही के दिन 1522 में हुआ था। इसके साथ भारतीय राजनीतिक महेंद्र भट्ट, इनका भी जन्मदिन आज है, 1971 में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए, जिन सभी का जन्मदिन है उन सभी के लिए रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू। अजी नमस्कार।
2: नमस्कार सर। नमस्कार, समझ जाता हूँ, बहुत समझ जाता हूँ और आपको बहुत बहुत समझ जाता हूँ। रेडियो मधुबन को नमस्कार करते हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं और अभी शो को सुन रहे हैं सुबह से, और हमारे सभी दोस्त खुश रहे हैं ऐसी शुभकामना। और बस आज जिनका भी जन्मदिन है इन सभी को बहुत बहुत दिल से नमस्कार, ओम शांति। और आज हमारा किशोर साहब का भी संस्कार है, उनके भी आज पुण्यतिथि है, तो उनको भी बहुत बहुत नमस्कार है, उनके परिवार को, उनके चाहने वाले को और उनकी खूबसूरत आवाज को हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं और रेडियो वन को नमस्कार करते हुए ये गाते हैं। बेकाए बेकाब तो ये थी।

0: तेरी आवाज है हवाओं में, यार का रंग है गीताओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, आंखों के शर्म से ये लब खिले हुए, तुझे गाए की दाब तो ये दिल खिले हुए, दूर तक निगाहों में ये खुद खिले हुए। नमस्कार सर, समय कम है और आप भी चाहते होंगे कि कब बंद होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणेशा।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। भगवान गरीब निवाज है, सच्चे दिल और भावना से कोई एक पैसा भी सेवा में लगाता है तो उसे पद्मा पदम गुणा रिटर्न मिलता है। कैसे तो विचार जरूर करेंगे और देंगे आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे, परंतु कौन से वाले वो तो हम बाद में बताएंगे। आप आशियाना सुनिए, जान जाएंगे। और जी हाँ, जिस तरह पांच उंगुलियां बरोबर नहीं होती, उसी तरह हर इंसान का नेचर भी अलग अलग होता है, उसे समझने की जरूरत होती है। और आज बनाएंगे आशियाना में गुजराती डिश सुवारी और और तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये भी सस्पेंस रहेगा और पूछने वाली हूँ बहुत ही सुंदर प्रश्न, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार ध्यान से सुनेंगे कि भगवान गरीब निवाज है। सच्ची दिल और भावना से कोई एक पैसा भी सेवा में लगाता है तो उससे पद्मा पद्म गुणा रिटर्न में जरूर मिलता है। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के साथी थे। संदीपनी ऋषि के आश्रम में दोनों एक साथ पढ़ते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था और श्री कृष्ण द्वारिका के राजकुमार। विद्याभ्यास पूरा होने पर दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारिका जाकर के राज्य का कारोबार संभाला तो सुदामा की शादी गांव की एक गरीब कन्या से हो गई। सुदामा को अनेक संतानें हुई। एक तो गरीबी और दूसरा बड़ा हुआ परिवार, इससे सुदामा के हालात और भी खराब होते गए। बच्चों और गरीबी की परेशानी से तंग आकर के एक दिन सुदामा की पत्नी ने उसे गुस्से में कहा कि आप अपने मित्र कृष्ण की महिमा का वर्णन करते थकते नहीं हो। इतना धनवान, इतने बड़े राज्य का मालिक आपका मित्र है तो क्या वह आपको मदद नहीं कर सकता? क्यों नहीं आप उनसे भेंट करते ताकि हमारे हालात कुछ तो सुधरे? पत्नी के जोर देने पर सुदामा कृष्ण से मिलने चल पड़े। लेकिन मित्र को भेंट क्या दे? घर में तो कुछ था ही नहीं, थे तो केवल मुट्ठी भर चावल। उन्हीं को एक पोटली में बांध करके बगल में तबा करके सुदामा द्वारिका पहुंचे। सुदामा के आने की खबर सुन करके श्री कृष्ण आनंद विभोर होकर के उसके स्वागत में प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उन्हें प्यार से गले लगाया, बड़ी आत्मीयता से अपने दरबार में अपने ही सिंहासन पर बिठा दिया। उनका ये प्यार और सत्कार पाकर के सुदामा तो जैसे गदगद हो गए। लेकिन दरबारी भी कृष्ण को इस रूप में देख करके आश्चर्यचकित हुए बिना ना रह सके। कृष्ण ने बड़े प्यार से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है। संकोच के मारे सुदामा ने जो चावल की पोटली छुपा रखी थी वे कृष्ण ने ले ली। कृष्ण ने बड़ी खुशी से चावल का एक एक दाना खाया। कृष्ण की निरहंकारिता और प्यार देख करके सुदामा तृप्त हो गया और अपने आने का उद्देश्य ही भूल गया। कृष्ण के पूछने भर भी मुख से अपनी सहायता के बारे में कुछ नहीं कह सका। श्री कृष्ण का अपार प्यार और सत्कार स्वीकार करके सुदामा अपने गांव वापस लौट आया। लेकिन यह क्या, उसका गांव तो पूरी तरह से बदल गया था। वह स्वयं भी धोखे में आ गया कि मैं सही जगह पर तो आया हूं ना। इतने में गांव वालों को और अपने परिवारजनों को रेशमी वस्त्रों में आता देख करके सुदामा मन ही मन समझ गया कि कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही उसकी सर्व मनोकामनाएं पूरी कर दी है। उसका घर महल बन गया था जिसमें पशुधन सहित सर्व सुविधाएं थी। सुदामा ने मन ही मन श्री कृष्ण जी को धन्यवाद दिया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि भगवान गरीब निवाज है। सच्ची दिल और भावना से कोई थोड़ा भी सेवा अर्थ लगाता है तो उसे पद्मा पद्म गुणा रिटर्न में मिल जाता है। भगवान किसी का ऋण नहीं रखते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखें, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। तेज सिर दर्द से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो एप्पल, जिसको सेब कहते हैं, उसको छील करके बारीक काटे, उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके सुबह ही सुबह खाली पेट खाइए। अगर सिर दर्द बहुत ही तेज है, और अब क्या करें भाई, सिर दर्द के लिए अब इतनी सी तकलीफ के लिए हॉस्पिटल कोई तो जाते, कोई जाते ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सेब को धुलाई करिए, छीलिए और बारीक बारीक काटिए, फिर उसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिए और सुबह सुबह खाली पेट खाइए। सिर दर्द आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, अगला नुस्खा हमारी बहनों के लिए। मासिक धर्म में दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ठंडे पानी में 2-3 नींबू निचोड़ करके पी लीजिए। ऐसे समय में बहुत ही तकलीफ होती है और सबसे ज़्यादा तो पेट दर्द बहुत रहता है, तो फिर ऐसी स्थिति में नींबू साधारण आप नॉर्मल पानी लीजिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, और नॉर्मल पानी में 2-3 नींबू निचोड़ करके पीजिए तो ये पेट दर्द से छुटकारा मिलेगा। अगर अगला नुस्खा आपको सुना रही हूँ कि अगर आप कहीं पर जल गए हैं या फिर तेज धूप से त्वचा झुलस गई हो, त्वचा पर झुर्रिया हो या त्वचा रोग हो, तो कच्चे आलू का रस निकाल करके लगाइए, फायदा ही फायदा मिलेगा। बहुत ही सुंदर ये नुस्खा है कि भाई कहीं पर जल गए हो, कभी कभी क्या है तेज धूप में जाते तो भी स्किन जलने लगती है, फिर मान लीजिए समय से पहले ही चेहरे पर झुर्रिया पड़ जाती है, तो इन सारी तकलीफों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ आलू, कच्चा आलू, उसका रस निकालिए और लगा दीजिए, टोटली आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। ठीक है, आलू तो हमारे घरों में होते ही है, क्योंकि भाई कोई सब्जी मिले ना मिले फटाक से आलू की सब्जी बना देते हैं, और बच्चे तो बड़े पसंद करते हैं आलू की सब्जी, तो

ना करने से ही आप अपने होठों का चेंज महसूस करेंगे। लगेगा कि अरे कहाँ काले दिखते थे और अब थोड़े से गुलाबी दिखने लगे हैं। ठीक है, तो हर प्रकार के नुस्खे आपको दिए हैं और चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न ध्यान से सुनना, एक शायरी की तरह बनाया है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सफाई हो रही चारों ओर, खुशियाँ छा रही है, घर को सजा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं।

वो त्योहार मनाएंगे। तो कौन सा त्योहार आने वाला है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है? तो ये आज का प्रश्न है, उस त्योहार का नाम आपको बताना है। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अभी तो बढ़ते हैं गीत की ओर, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.1।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। हेलो हेलो,
1: हाँ आवाज आ रही है?
0: हाँ जी आ रही, बिल्कुल आ रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है विक्रम जी बहुत बहुत रेडियो मधुबन में। कैसे हो आप?
1: बढ़िया है दीदी, अभी खेती की तैयारी कर रहे हैं गेहूँ बोने की।
0: जी जी जी, क्या बात है। आपके पहले भी आपसे बात हुई क्या?
1: हाँ दीदी, पहले भी 3-4 बार बात हुई ना।
0: अच्छा अच्छा, हाँ मेरे को लग रहा है। चले बहुत अच्छा है, फिर भी बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से बात हो रही है।
1: हाँ
0: तो, और कैसे हो आप? पूरा परिवार ठीक है?
1: हाँ दीदी, वो थोड़ा अपने दो बेटे हैं, मतलब कि एक बड़े वाला बेटे का भी वो डेंगू मलेरिया चल रहा है ना।
0: जी,
1: तो वो डेंगू हो गया, उसको अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है उसका।
0: अच्छा अच्छा, तो ध्यान रखिएगा, अभी तो मच्छरों के बहुत ही समस्या है और डेंगू चारों तरफ फैला हुआ है, बहुत ध्यान रखना है। स्वच्छ पानी में भी मच्छर होते हैं, इसलिए पानी को भी ढक के रखना है।
1: हाँ पानी को तो ढका हुआ है, बाकी हमारा कच्चा मकान है थोड़ा।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मच्छर ज्यादा आते हैं।
0: जी जी जी जी, तो आप ऐसा करिए ना कि नीम के पत्ते होते ना, उनको थोड़ा सूखा करके जलाइए घर में, उसकी धुनी देंगे ना, तो भी मच्छर भाग जाएंगे, मर जाएंगे और भाग जाएंगे।
1: वो धुआं रहता जब तक दीदी, वो चले जाते फिर वापस आ जाते।
0: वो तो सही है, वो फिर रोज करना पड़ता है। नीम का थोड़े से पत्ते तोड़ करके रख दीजिए, सूखते जाए और थोड़े जलाते जाइए। घर में नहीं हो तब आप दरवाजा बंद करके जला दो।
1: हाँ दरवाजा बंद करके जलाना पड़े,
0: ताकि वो मच्छर खत्म हो जाए, उसके बाद आप जाओ अंदर, है ना।
1: कहीं मच्छर अगरबत्ती आती है वो थोड़ा जला देते हैं।
0: हाँ वो कुछ भी ऑल आउट कुछ भी करना ही पड़ेगा। जी जी
1: हाँ, वो तो करना पड़ता है दीदी।
0: जी जी, और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
1: हाँ दीदी, वो सुदामा के बारे में वो शायद सुना था मैंने।
0: वो आपने विचार सुना था?
1: हाँ, बाबा मतलब गरीब निवास है, तो गरीब बच्चों के लिए आए हैं।
0: जी,
1: तो हम तो है ही गरीब।
0: कोई बात नहीं, आप में ज्ञान है, तो जो ज्ञानी आत्मा होते हैं ना, वो गरीब कभी नहीं होते, वो ज्ञान के खजाने से भरपूर रहते हैं।
1: हाँ दीदी, वो तो ज्ञान तो है ही, और दूसरों को भी ज्ञान हम सुनाते हैं, बाकी जो सुनते हैं।
0: जी, तो फिर आप क्यों सोचते हो कि आप गरीब हो? हमको ऐसे संकल्प ही नहीं चलाने हैं, वो क्या है, जो सोचते हैं वही होता है ना। आप पॉजिटिव रहिए कि मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत धनवान हूँ।
1: हाँ।
0: जी, तो देखिए आपको कोई कमी नहीं रहेगी। हमको क्या चाहिए? खाने को वो कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए, है कि नहीं?
1: हाँ दीदी, तो है ही।
0: जी, बाकी तो बहुत करोड़पति बन जाएंगे ना, तो भी तकलीफ बहुत, वो कहते हैं दुश्मनी पैदा हो जाती है, इसलिए भगवान बस सब्जी रोटी दाल रोटी देता रहे, यही।
1: हाँ, हम तो खुश है और परिवार भी खुश है, सभी ऐसा कोई सोचता नहीं, मैं भी नहीं सोचता कि अमीर हो जाऊं, ये कर लूं कहीं।
0: जी जी, इसलिए हमेशा यही सोचिए कि मैं बहुत अमीर हूँ। भाई जिसके पास ज्ञान का खजाना हो वो तो अमीर ही है, ठीक है। और आज का प्रश्न आप सुनिएगा, आप विक्रम भाई आप सुनिएगा, मैं सुना रही हूँ आज का प्रश्न, और हमारे जो श्रोता बंधु सुन रहे हैं वो भी जरूर सुने और जवाब जरूर देवे। सफाई हो रही चारों, खुशियाँ छा रही है, घर को सजा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो पल आने वाला है, मिठाई मिल के खाएंगे, परिवार के साथ मिल कर के वो त्योहार मनाएंगे।
1: दीपावली का त्योहार आ रहा है ना।
0: देखते हैं भाई, अभी तो बहुत सारे त्योहार है, तो आपने सही जवाब दिया है गलत, वो आप आशाना सुनते रहिए, हम जरूर देंगे, ठीक है। और आज का विषय है कि पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, इसी तरह इंसान का नेचर भी एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, क्या कहेंगे आप?
1: बदलता रहता है इंसान का नेचर। दीदी देखो, कभी ज्यादा पैसे आते हैं तो लालच नहीं करना चाहिए, एक समान रहना चाहिए इंसान ने, मतलब पैसे तो आते हैं और चले जाते हैं, और हमें खुशी थोड़ी देर के लिए रहती है और फिर खुशी चले जाती है।
0: जी,
1: तो ऐसा नहीं, ऐसा हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि पैसे हमको हाथ से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, सभी समान देना चाहिए।
0: यहाँ पर समानता की बात नहीं है, नेचर की बात है, स्वभाव संस्कार की बात है कि जिस तरह पांचों उंगलियां बरोबर नहीं है, उसी तरह देखिए परिवार में भी सदस्य होते हैं तो भी सभी का स्वभाव संस्कार थोड़ा अलग अलग होता है, और जो हमारे समान संपर्क में आते हैं उनके भी स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं, तो कैसे हम उनके साथ एडजस्ट होंगे, यह आज का विषय है।
1: देखो सबके विचार एक जैसे नहीं होते, सभी के अलग अलग होते हैं
0: जी।
1: तो जैसे हम ज्ञानी बच्चों में तो बाबा की शक्ति एनर्जी है ही, और जो बाबा से नहीं संपर्क नहीं रहता उनको तो मतलब कोई ज्ञान के बारे में पता ही नहीं है, और पता है भी मतलब अनसुने हो जाते।
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। देखिए सभी कोई भक्ति में भरपूर होते हैं, कोई किस सत्संग में जाते हैं, ज्ञान तो होता है।
1: हाँ ज्ञान तो होता है दीदी, पर वो क्या है कि जैसे कोई गुरु गुरु के बारे में सोचेंगे हमारा गुरु ऐसा करता है, या उनको गुरु की बातें अच्छी लगेगी, हमको बाबा की जैसी बातें अच्छी लगती
0: है। वो अपने अपने ऊपर आधार है। तो चलिए विक्रम भाई, बहुत अच्छा। अच्छा आप थोड़ा सा अगर स्पष्ट करना चाहें तो कर दीजिए, क्योंकि दूसरे श्रोता बंधु भी इंतजार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप?
1: देखो अभी तो एकदम फोन लग गया, मैं अभी बेल रुके हुए और मतलब ये क्यारियां डाल रहा हूँ।
0: अच्छा क्या बात है, काम करते जा रहे हैं आप, खेत में है?
1: हाँ खेत में हूँ, प्याज का रोपा डालते हैं ना अपन।
0: जी जी जी,
1: इधर तो वो डाल रहा था एकदम, मतलब ये सुन रहा था मैं
0: जी
1: रहा हूँ, तो मेरे मन में कुछ ऐसा विचार नहीं आ कि मैं सवाल का जवाब दूँ।
0: जी जी नहीं नहीं, पर आप रेडियो से जुड़े, अच्छा लगा हमें भी, आप जुड़िएगा ठीक है। हम रोज प्रश्न भी पूछते हैं, खुशनुमा जीवन की बातें भी आप सभी के साथ ही करते हैं, तो आप जरूर जुड़िएगा और शनिवार को अंताक्षरी में जरूर जुड़िएगा ठीक है।
1: जी
0: बहुत बहुत आभार विक्रम भाई आपका। और आज का विषय बहुत ही सुंदर है कि जिस तरह पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, उसी तरह इंसानों के स्वभाव संस्कार भी अलग अलग होते हैं, क्या कहेंगे आप? दूर तक नहीं जाना है, हमें अपने परिवार में ही रह करके देखना है कि किस तरह सभी का नेचर अलग अलग है, फिर भी उनके बीच में हमको एडजस्ट होकर के चलना है, उनको भी चलाना है। हेलो,
2: जय माता जी, जय श्री हरि।
0: जी जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: सभी सुनने चाहने वाले मेरे अजीत मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
0: जी।
2: आपको भी
0: आभार।
2: और क्या टॉपिक किया आज का?
0: टॉपिक यह है कि पांचों उंगलियां जिस तरह बरोबर नहीं होती है, हमारी उंगलियां बरोबर होती है, एक छोटी एक बड़ी, ऐसे है ना, ऐसे ही मनुष्यों के स्वभाव संस्कार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, तो उनके साथ कैसे हम एडजस्ट होकर के चलेंगे?
2: एक्चुअल में आपने बहुत सुंदर टॉपिक भी रखा है। देखिए हाथों की अंगुलियां तो समान नहीं होती है, वैसे स्वभाव संस्कार स्वभाव भी एक समान नहीं होते हैं, तो उसमें क्या है अपन को जैसे कि अपना लोगो भी है कि ओम शांति, तो अपने अंदर शांति और धैर्यता रख के अपन जरूर सबसे संपर्क मतलब हिलमिल के रह सकते हैं, क्योंकि प्रभु भी कहते हैं मतलब कोई भी चीज करते हो तो उसको मतलब शांत धैर्यता अपने जीवन में अगर अपन ये ऐसा गुण है कि धारण कर दिया ना, तो किसी भी कार्य को मतलब कोई भी किसी के साथ रिलेशन बनाना है कोई भी कार्य, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी
0: जी। मान लीजिए सामने वाला क्रोधी है तो क्या करेंगे?
2: देखिए अपन सामने वाला क्रोधी है तो अपन शांत कुछ समय के लिए अपन शांत हो जाएंगे ना, तो उसका क्रोध शांत हो सकता है, और उस मतलब वो शांत होने के बाद में अगर वो उसको भी मन में लगेगा कि मैंने बहुत कुछ बोला है
0: जी,
2: तो मतलब वो ब्लैक बॉल फेंक रहा है, परंतु अपन मतलब हिट का जवाब पत्थर से देंगे तो वहाँ मामला बिगड़ेगा ना
0: जी।
2: अगर आगे वाला अपना क्रोधित है और वो कुछ अब्द शब्द भी बोल रहा है, मगर अपन शांति और धैर्यता रखेंगे
0: जी,
2: तो मतलब वो मामला आगे बढ़ने की जगह फैल जाएगा, नहीं तो वहाँ मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो।
0: जी जी, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है।
2: कहते किसी ने कहा सही कहा है कि देखिए अपन हाथों की पांच उंगुलियां है, अगर अपन एक अंगुली उनकी तरफ करेंगे तो चार उंगुलियां तो अपनी तरफ ही होंगी ना
0: जी।
2: ये गलत है,
0: सही है।
2: अब अगर उस समय अपन गुस्सा करेंगे तो वो और भी गुस्सा होगा
0: जी जी,
2: तो वहाँ तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी ना
0: जी जी। तो सुरेश भाई बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, आपने बहुत अच्छा उदाहरण देने की कोशिश की कि भाई मान लीजिए सामने वाला ब्लैक बॉल दे रहा है लेकिन हमें वाइट बॉल ही भेजना है, हमें उस समय शांति बनाए रखनी है। सामने वाला क्रोध करता है तो हमें मौन में रहना है, शांत हो जाना है या फिर उस स्थान से हट जाना है, तो बात वहीं समाप्त हो जाएगी, नहीं तो फिर आप समझ सकते हो। हेलो,
3: हाँ दीदी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका, कैसे हो आप?
3: बस बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं
0: जी जी जी,
3: सुन रहे हैं कार्यक्रम, बहुत अच्छी बातें भी हो रही हैं
0: जी।
3: सुबह से बस हम तो अभी तो 7-8 बजे आ जाते हैं, 7 बजे दुकान पे, तो दिवाली के सीजन ज्यादा है।
0: अच्छा, फिर पूरे दिन रहते हैं दुकान पर?
3: हाँ, सुबह से 7 बजे से रात को 9 बजे कर जाता हूँ, और दोपहर को बस आधा घंटे रोटी खा रहे ही जाता हूँ, क्योंकि घर मेरे पास 1 मिनट की दूरी पर है दुकान से
0: जी,
3: तो बस रोटी खा के तुरंत आके बैठ जाता हूँ, क्योंकि अभी आराम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काम इतना ज्यादा है, इसलिए
0: जी जी जी। क्या बात है,
3: 9 बजे घर पे जाके 10 बजे आके विकेश हो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ
0: जी,
3: 6 बजे उठ के मेरा रूटीन बताऊँ, 6 बजे उठ के मैं तुरंत हमारे गांव की जो 10 परब है पानी से, पानी की पर्दे बाजार में
0: जी,
3: तो पूरी भर देता हूँ, उठ के जाके पहला काम मैं ही करता हूँ सब।
0: अरे वाह, क्या बात
3: कर रहा हूँ दीदी, 3 साल से लगातार एक दिन में इसमें कहते हैं छुट्टी नहीं दी है।
0: नहीं तो जैसे आप ये पानी की पर्व भरते हैं तो दूसरों को ऐसे प्रेरणा नहीं मिलती है कि अरे रोज ये कर रहे हैं तो कभी हम भी करें?
3: नहीं नहीं, कोई नहीं करता है, क्योंकि मैं सुबह में वही करता हूँ। मैं बताऊँ तो मेरे पास मोहल्ले के पास पर्व है, वो भी कोई नहीं भरता है, नहीं भरता हूँ, दुकान की तो दुकान वाला है, वो कुछ नहीं भरता।
0: अच्छा,
3: कोई बात नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ आराम से, मुझे
0: नहीं नहीं तो बहुत दुआएं मिल रही है ना, दुआओं वाला काम कर रहे हैं, पंछी पक्षियों को जानवरों को भी तो पानी की आवश्यकता रहती है ना।
3: जरूर, मैं सुबह में कई बार मुझे 6 बजे जाना होता है कोई जगह पे, तो मैं 4 बजे उठ के कर जाता हूँ काम सुबह में
0: जी।
3: लेकिन करता जरूर
0: जी,
3: बहुत अच्छा टॉपिक भी दिया है दीदी की, 5 उंगली एक साथ समान नहीं होती, वो भी हमारे कहवत है कि भाई 5 उंगली एक समान नहीं है, तो आप ऐसे मत सोचो कि सभी लोग एक समान है
0: जी।
3: तो कई कई बार यदि घर में भी बताओ तो हमारे बीवी है, बच्चे हैं, बेटे हैं
0: जी,
3: तो वो भी इसका भी थोड़ा सा चेंज होता है, अलग अलग दबाव के सब होते हैं, लेकिन इस दबाव से हमसे सेटिंग करना है
0: जी,
3: क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा कुछ बात होता है जल्दी बोल जाता है, हम तो शांत कर देते हैं, कोई बात नहीं, शांत के हम जो करेंगे तू बोलेंगे हम करेंगे
0: जी, सही है बिल्कुल।
3: लेकिन इसमें क्या है, हम इस वक्त हमको बिल्कुल ठंडा बनाना पड़ता है, इसको सुनना पड़ता है, इसको जानना पड़ता है, कई की बार जो पत्नी भी बोल देती है कि कोई बात होती है तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाता है सभी घर में, बेटी और बच्चे को सब थोड़ा सा, तो वो भी एक हल कर देते कि चलो कोई बात नहीं, इसे जाने दो
0: जी जी,
3: जो ऐसे आप एक सामने दूसरे सामने ये सब बोलेंगे तो मामला ज्यादा बढ़ने लगे, लेकिन इसको शांत कर देना और एक को ठंडा हो जाना है और वो आराम से सब कुछ से निपटा देंगे बात
0: जी जी।
3: इसी स्वभाव से सबके स्वभाव समझना जरूरी है, स्वभाव से और हमको भी कुछ थोड़ा सा भी चेंजेस करना है, कहते हैं कि जैसा सामने व्यक्ति होता है ऐसे हमको करना पड़ता है, कोई ज्यादा एकदम बोल देता है तो कोई बात नहीं हम समझ लेते हैं, सही चलो भाई आपकी बात सही है, लेकिन सही नहीं हो तो फिर एक ये उस वक्त तो सही कर देंगे तो वो मामला आगे नहीं जाएगा
0: जी,
3: चलो हमारे सुनना तो सुने, नहीं सुने तो कोई बात, चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छा है ऐसे करके हम बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं तो यही मानता हूँ
0: जी जी। बहुत सुंदर,
3: एक दूसरे को सपा जानना जरूरी है, तो
0: जी बिल्कुल
3: कोई बात आगे नहीं जाएगी।
0: जी जी बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बिल्कुल जी। तो बहुत ही सुंदर बातें स्पष्ट हो रही हैं कि किस तरह पांच उंगलियां जिस तरह बरोबर नहीं होती, उसी तरह परिवार में भी सदस्यों के स्वभाव संस्कार अलग होते हैं, समाज में भी हर इंसान का नेचर अलग होता है। तो इस विषय पर और भी अधिक स्पष्ट करेंगे, परंतु अभी ले रहे हैं एक अल्पविराम, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।
4: अरे थारी कंचन सी का यारो भरोसो, कौन लोभी जीवड़ी ला, कौन पापी जीवड़ी ला।

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: हेलो।
3: हाँ दीदी, ओम शांति।
2: हाँ जी नमस्कार, हनुमान भाई बोल रहे ना?
3: नहीं दीदी, मैं विक्रम कुशवाहा बोल रहा हूँ।
2: अच्छा अच्छा, हाँ जी विक्रम जी, बोलिए बोलिए।
3: हाँ वो तो क्या था प्रश्न, मतलब पांचों उंगलियाँ
2: प्रश्न, ये विषय है आज का कि पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती। इसी तरह हर एक का नेचर अलग अलग होता है, लेकिन हम उनके साथ कैसे रहेंगे, कैसे एडजस्ट होकर के चलेंगे।
3: अच्छा अच्छा, हाँ तो थोड़ा मेरे को दिमाग में आया था कि मैं थोड़ा इसको स्पष्ट करूं।
2: जी जी जी, बिल्कुल करिएगा।
3: हाँ तो दीदी, जैसे पांचों उंगलियां समान नहीं रहती, ऐसे हमारे नेचर भी मतलब एक जैसे नहीं रहते हैं। कभी पलट जाते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी नहीं आता है। कभी हम बच्चों पर भी गुस्सा करते हैं
2: जी,
3: कभी हम अच्छे भी रहते हैं, कभी नहीं भी रहते हैं, ऐसा रहता है
2: जी। तो कैसे सेट होंगे ऐसे, तो फिर गृहस्थी बिगड़ जाएगी ना। हम अच्छे नहीं रहेंगे तो बच्चे सहमे सहमे रहेंगे, हम गुस्सा करेंगे तो बच्चे हमसे दूर रहेंगे।
3: वो बच्चों की बात नहीं है, जैसे हम तो किसान है, जैसे हम मजदूर लेने जाते हैं, मजदूर एकदम परेशान कर देते हैं हमको।
2: जी जी जी।
3: तो हम मजदूरों को समझाते हैं, बाकी नहीं समझते, थोड़ा गुस्सा तो उनसे करना पड़ता
2: जी, है। वो कहते हैं कि लव एंड लो दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है।
3: दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है। तो हम मतलब हमारे जो विचार है एक जैसे नहीं रहते हैं
2: जी,
3: कभी अच्छे रहते हैं, कभी थोड़ा चेंज आ जाता है।
2: तो चेंज आ गया, उसको वापस कैसे अच्छा बनाएंगे? चेंज किस तरह का आता है?
3: चेंज मतलब दीदी कि जैसे तो अभी तो अच्छे हैं, कभी कोई हमको गलत बातें मतलब आ जाती है, सुन लेते हैं, कभी कहीं गलत अपनों ने कुछ देख लिया तो उसको मतलब हमारे विचार भी वैसे ही बन जाते हैं ना दीदी।
2: जी जी, चलिए विक्रम भाई बहुत बहुत आभार। तो बात चल रही थी कि पांचों उंगलियां जिस तरह बरोबर नहीं होती, वैसे हर एक इंसान का स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है, लेकिन बना करके रखना पड़ता है, अपने स्वभाव संस्कार को मोल्ड करना पड़ता है, तभी हम सभी के साथ एडजस्ट होकर के चलेंगे। सामने वाला गुस्सा कर रहा है और हम डबल गुस्सा करें तो क्या होगा? तू में बढ़ेगी, लोग इकट्ठे होंगे और फायदा कुछ भी नहीं निकलेगा, उसका कोई भी रिजल्ट, उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जब सामने वाला गुस्सा करता है तो हमें एकदम शांत होकर के सुनना है, क्योंकि उस समय अगर हम कुछ भी एक्सप्लेन भी करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आवेग में है, क्रोध में है, और क्रोध में है तो वो हमारी बात को नहीं सुनेगा, और बात नहीं सुनेगा तो फिर कहने से कोई फायदा भी नहीं। हेलो। हाँ जी नमस्कार।
4: नमस्कार, कलियाबराज बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा है?
4: कमलेश भाई बोल रहा हूँ, कलियाबराज।
2: अच्छा कमलेश भाई, कहाँ से? माउंट आबू से?
4: नहीं, कलियाबराज, कलियाबराज इडर के पास है, गांव है।
2: अच्छा इडर के पास, बहुत बहुत स्वागत है कमलेश भाई, कैसे हो आप?
4: बस अच्छे हैं दीदी
2: जी।
4: अभी नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ प्रसारण कम्प्लीट नहीं आता है।
2: अच्छा आप इंटरनेट से सुन रहे?
4: नहीं रेडियो में।
2: अच्छा अगर इस तरह स्पष्ट नहीं आता है तो आप इंटरनेट के द्वारा सुन सकते हैं।
4: इंटरनेट द्वारा इससे बहुत अच्छा टाइम
2: जी जी
4: बहुत बढ़िया सुनाई देता है।
2: जी जी, हम समझ सकते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता बंधु जो सुनते हैं वो सुनते रहे, जुड़े रहे। तो अच्छा ये समस्या भी देखिए जल्दी ठीक हो जाएगी, इसका भी समाधान हो जाएगा। आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप कमलेश भाई? अच्छा, तो मैं प्रश्न अभी बोल देती हूँ, आप सुना दीजिए, जवाब दे दीजिए। प्रश्न बहुत ही सुंदर है, एक कविता की तरह मैं गुनगुना रही हूँ, आप सुनेंगे। सफाई हो रही चारों ओर, खुशियाँ छा रही है,

0: और मनाएंगे, क्या कहेंगे आप जवाब में?
1: ये तो दीपावली की बात है ना।
0: अच्छा, तो आप आशियाना सुनिए, हम जरूर आपके प्रश्न का जवाब देंगे, सही है या गलत है। ठीक है जी, बहुत बहुत बहुत आभार कमलेश भाई। तो देखिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु ऐसे हैं जो कहाँ कहाँ से सुनते हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज आया कि बहन जी, हम इस कार्यक्रम को सुनते हैं, हम फ़ोन कॉल्स नहीं कर पाते लेकिन कार्यक्रम हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह मैसेज आते हैं या फिर फ़ोन कॉल्स आते हैं तो पता चलता है कि रेडियो मधुबन के लिसनर कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ से वो कोशिश करते हैं। कोई मध्य प्रदेश, कोई यूपी से, उत्तर प्रदेश से, तो कोई विदेश से। जैसे कि आपने शनिवार को बेल्जियम से सुना, दीपक भाई का फ़ोन आया था। हेलो, तो दूर दूर से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और हमारे आबू के अंचल में, आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किस तरह इशारा कर रही हूँ कि देखो दूर बैठे हुए श्रोता बंधु फ़ोन कर रहे हैं और हमारे आबू के अंचल में जो ये रेडियो मधुबन चल रहा है, तो हमारे श्रोता बंधु फ़ोन कॉल्स थोड़ा कम करते, सुनते तो नो डाउट सुनते हैं लेकिन फ़ोन कॉल्स नहीं करते। कभी फ़ोन कॉल्स करके बता दिया करो कि आप भी रेडियो मधुबन सुनते हैं, ठीक है, हमें भी खुशी होगी। और बात चल रही थी कि भाई जिस तरह पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, उसी तरह हरेक का स्वभाव संस्कार अलग होता है, लेकिन बस हमें उनको नहीं स्वयं को बदलना है। स्वयं को बदलेंगे तो वो कहते हैं ना, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। हम ही अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है तो हम भी गुस्सा कर रहे हैं, सामने वाला नफरत कर रहा है तो हम भी नफरत कर रहे हैं, सामने वाला उदासीन है तो हम भी उदासीन है, तो फिर तो हमारे अंदर और उनमें क्या फर्क है, कोई चेंज नहीं है ना। इसलिए हमें अपने स्वभाव संस्कार को सुधारना है कि सामने वाला क्रोध कर रहा है तो हमें शांत रहना है, सामने वाला नफरत कर रहा है लेकिन हमें प्यार ही करना है, शुभ भावना ही रखनी है उसके प्रति, अपनी भावनाओं को चेंज नहीं करना है कि उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, वो ऐसा है, वो वैसा है, नहीं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि जो क्रोध रूपी भूत आ जाते हैं तो पूरे दिन के लिए टिका नहीं रहता, वो वापस चला भी जाता है, इसलिए हमें शुभ भावना ही रखनी है। हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग रूप शांति।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो?
2: बस बहन जी ठीक है, अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं,
2: जुड़े हैं। तो रेडियो तो नहीं सुनाई देता, इंटरनेट से भी यहाँ तो फट फट के आवाज आती है
0: जी,
2: और अभी पहले भी लगाया था लेकिन बात नहीं हुई, तो अभी दूसरी बार ट्राई किया था, लग गया।
0: चलिए अच्छी बात है, फोन लग गया वो अच्छा है। अच्छा, आप आज के प्रश्न का जवाब देंगे?
2: हाँ, जवाब तो ये है, दीपावली सबने लिया है ना, आपने गाना गा के जो बताया, मैंने सुना था, तुरंत तो पता चल गया था लेकिन थोड़ी देरी हुई कॉल करने में।
0: अच्छा, और आज का विषय है पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, इसी तरह हर इंसान का नेचर अलग अलग है, हम कैसे उनके साथ एडजस्ट होकर के चलेंगे, क्या कहेंगे आप?
2: हाँ, वो तो है जी, समाज में, समाज की बात है या घर परिवार की?
0: जी, समाज की, परिवार की, स्वयं की, कैसे कभी एग्जांपल दे सकते हैं जी?
2: समाज में तो क्या है बहन जी, कि भाई कोई चार गांव का हमारा गोल है, ठीक है, तो कौन का स्वभाव कैसा है वो तो हमें देरी से पता चलता है, एकदम तो पता नहीं चल जाता
0: जी।
2: तो ये थोड़ी देरी होती है इसमें, लेकिन घर परिवार की जो बात करें तो घर परिवार में तो हम पहचान जाते हैं कि भाई इसका स्वभाव कैसा है, ऐसा है
0: जी।
2: तो कोई बात हम घर पे करते हैं तो हम इशारे से बंद कर देते हैं, कोई ऐसा हमारा बेटा है, बेटी है, ऐसा घर बाहर होती है तो आ जाती है, तो क्या हम इशारे से सबको बोलते हैं कि चुप चुप कर दो, ये सब बातें बंद कर दो, क्योंकि इसमें स्वभाव एक तरीका नहीं होता और वो इसमें ये बोल देती है कि बोल देता है कि भाई मेरे को सुना रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: जी जी, चलिए बहुत बहुत आभार जी।
2: हाँ जी, नेचर ऐसा है, एक तरीके उंगली
0: जी जी
2: नहीं
0: जी।
2: होते, कोई किसी का उग्र स्वभाव होता है, किसी का शांत स्वभाव होता है।
0: जी चलिए कंचन भाई, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है इसके लिए। और बस इस विषय को यही समाप्त करेंगे, क्योंकि भाई अगले भी आपको आशाना के किचन में भी तो आना है ना। तो बस कहने का भाव यही है कि स्वयं को बदलना है, न कि दूसरों को। हम दूसरों को शिक्षा देते हैं, लेकिन दूसरे को शिक्षा देने के पहले खुद को देखना है कि मैं अमल कर रही हूँ, कर रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो स्वयं को बदलेंगे तो विश्व बदलेगा, इसलिए हमें स्वयं को बदलना है। हम बदलेंगे अपने स्वभाव संस्कार को, अच्छा बनाएंगे तो हर एक के साथ हम अच्छी तरह एडजस्ट होकर के चलेंगे, चाहे सामने वाला क्रोधी है, चाहे सामने वाला उदासीन है, या फिर किसी भी प्रकार का है, लेकिन हम उसके साथ अच्छी तरह एडजस्ट होकर के चल सकेंगे। और आइए बढ़ते हैं फिर से एक गीत की ओर, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: नमस्कार, मैं हूं सिंगर साइराम अय्यर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: सूरज ना बन पाए तो बनके दीपक जलता
2: चल। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो हम ज़रूर आपको आज गुजराती डिश सिखाएंगे, राजस्थानी भी है। ऐसा मत सोचिएगा कि राजस्थान में नहीं चलता है, लेकिन बस नाम अलग अलग है। गुजरात में कहते हैं सुआरी और राजस्थान में उसको खाजिया कहते हैं। अब देखिए, राजस्थान में भी बहुत सारे ज़िले हैं, बहुत सारे गांव हैं, अलग अलग ज़िलों में इसको अलग अलग बोलते होंगे, लेकिन इसका प्रॉपर गुजराती में नाम है सुआरी और राजस्थानी में है खाजा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये सिखाऊंगी, क्योंकि ये दीपावली पर बहुत ही बनाए जाते हैं। सुवारी, मठिया, चोराफली, घूगरा, इस तरह के आइटम गुजरात में बहुत बनती है। उसके बाद और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये तो आपको हर घर में मिल ही जाएंगे दीपावली के दिनों में। जिसके भी घर पर आप मिलने जाएंगे ना, तो ये चार चीज़ें तो आपको नाश्ते में मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा फिर तो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें भी बहुत सारी बनाते हैं, जो आए दिन हम आपको सिखाते रहते हैं। तो चलिए, सुवारी बनाने से पहले आज का प्रश्न एक कविता की तरह मैंने बनाया है। मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, बहुत ही सरल प्रश्न है, ज़रूर आप जवाब देंगे और रेडियो मधुबन से जुड़ करके जवाब देंगे। नंबर हमारे है 94 14 15 14 15। सब

परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे, परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे। तो ऐसा कौन सा त्योहार आने वाला है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उस त्यौहार पर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो भले किसी भी राज्य में रहता हो, किसी भी शहर में रहता हो, लेकिन तो वो लौट आता है। कब लौट आता है? अपने घर, और कैसे परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। और चलिए सुवारी बनाना सिखा देती हूँ। आप एक किलो लीजिएगा मैदा, ठीक है, फिर आप लीजिए 250 ग्राम मोवन के तौर पर तेल, और 250 ग्राम ही आपको लेनी है शक्कर, ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार तलने के लिए फिर से तेल। बस इतनी सी ही सामग्री है, जिसको फिर से दोहरा रही हूं कि एक किलो लेंगे मैदा, 250 ग्राम लेंगे इसके अंदर मौन डालने के लिए तेल या फिर घी, ठीक है। राजस्थान में घी यूज करते हैं, गुजरात में तेल यूज करते हैं मोवन डालने के लिए। अब आपको जो इच्छा हो वो लीजिएगा। अगर घी ले रहे हो तो 200 ग्राम लेना, तेल ले रहे हो तो 250 ग्राम लेना, ठीक है, और 250 ग्राम ही लेनी है आपको शक्कर। अगर थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 250 ग्राम लीजिएगा शक्कर, और अगर स्लाइट मीठा खाना चाहते हैं तो 200 ग्राम शक्कर लीजिएगा, ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार आप तेल लीजिए तलने के लिए। अब मैं बनाने का तरीका भी साथ साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, मैदे को पहले छलनी से छानिए, ठीक है, छानने के बाद मैदे की छलनी से छानना हो, ऐसे नहीं आटे की छलनी से छान रहे हो, मैदे की बारीक काने वाली होती है, ऐसी छलनी से छानिएगा ताकि कचरा ऊपर आ जाए। आटे की छलनी से छानेंगे तो सारा ही अंदर चला जाएगा। फिर आप चीनी को थोड़ा पानी में घोल करके एक रस कर दीजिए, ठीक है, और इस पानी से आपको इस लोट को बांधना है, लेकिन पहले आप मोवन डालिए, तेल या घी जो भी, फिर अच्छी तरह उसको मिक्स करिए मैदे को और मोवन को। फिर आप ये चीनी वाले पानी से अच्छी तरह आटे को बांध दीजिए, पानी ज़्यादा नहीं लेना है। अबे ज़्यादा भर के तपेली कर दी है और उसमें चीनी इतनी ही डाली है, फिर पता चला कि सुवारी बनाने के बाद बहुत ही फीकी लग रही है तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही पानी लेना है। पानी तो हम सादा पानी भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन चीनी वाला पानी हमको ज़्यादा नहीं बनाना है, आवश्यकता के अनुसार जितना उस आटे को बांध सके, ठीक है। फिर उससे आप इस लोट को अच्छी तरह बांध दीजिए। फिर आवश्यकता पड़े कि भाई थोड़ा सा पानी की कमी है तो ऊपर से आप सादा पानी भी ले सकते हैं। तो इस तरह अच्छी तरह इसको फिट बांध दिए, ठीक है, बांध करके आप गीले कपड़े से ढक करके एक घंटे तक रख दीजिए, दूसरा काम करने लग जाइए। दूसरा काम हो गया आपका, फिर उसके वो अच्छी तरह गल के तैयार हो गया। अब उसके लुए बना करके फिर आप जो भी साइज पसंद करते हो उस साइज में आप बेलिए, बेल करके आप स्वच्छ कपड़े पर डालते जाइए, ठीक है। और जब आपके सारे ही डल जाए, या फिर आप दो जने हो, दो मिल करके कर रहे हो, तो फिर एक जने क्या करेंगे, तेल गर्म करिए कढ़ाई में और तलते जाइए। और भाई अकेले हो तो फिर आप सारे बना दीजिए, लेकिन क्या करना है, जो पहले हम सुवारी डालते हैं ना उसको आप इकट्ठा करते जाइए, ज़्यादा नहीं सूखने देना है। भाई ज़्यादा सूखेंगे ना तो फिर तलते समय वो टूटेंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं सुखाना है। जो पहले सुखाया है उनके आप झेट बनाइए, एक दूसरे के ऊपर रखिए, ठीक है, ताकि वो क्या है कि एक दूसरे के ऊपर रखने से दबे रहेंगे। फिर ऊपर से कुछ ढक दीजिए, कोई बड़ी सी पतीली है, ढक दीजिए ताकि हवा नहीं लगे। पहले हवा लगानी है, बाद में नहीं लगानी है, थोड़ी सी ही लगानी है, ठीक है। फिर आपके सारे जब सुवारी तैयार हो जाए, बेल लो, उसके बाद आप कढ़ाई रखिए गैस पर, तेल रखिए, गैस चालू करिए, तेल को गर्म कर दीजिए और मध्यम आंच पर सुनहरी होने तक ये सारी सुवारी तल दीजिए। चिमटे से निकालना है इसको, ठीक है, जाली वाली नहीं लेनी है, चिमटे की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए चिमटे से ही आपको निकालना है। और फिर ठीक है, चिमटा नहीं है तो जाली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक क्या है कि चिमटे से आप लेते हो ना तो वो जो अतिरिक्त तेल कढ़ाई में ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ा सा प्लेन पेपर में रखिए, सफ़ेद पेपर आता है ना उसमें रखिए, उसको आप थाली या ऐसे तगारी की तरह होता है ना, जिसको हम तासला भी कहते हैं, तासले की तरह होता है, उसमें आप रखिए, पेपर बिछा दीजिए और ये निकाल के रखिए, ताकि और भी थोड़ा बहुत तेल हो तो वो पेपर आपका चूस ले, ताकि तेल ज़्यादा हमारे नहीं जाए,
तो इस तरह सुनहरी सुनहरी सारी सुवारी तल दीजिए। अब देखिए, पहले बहुत सिंपल बनाए जाते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा क्रेज चला है कि आटा बांधते समय कोई इलायची पाउडर भी डाल देते हैं, कोई तिल भी डालते हैं, सफ़ेद तिल, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिंपल बनाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, टेस्टी ही लगेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है बनाने का कि मैदा छानना है, छानने के बाद मैदे में मोन डाल देना है, तेल या घी, अगर घी डाल रहे तो उसको पिघला करके डालिए, ठीक है, और तेल डाल रहे तो ठीक है, और अच्छी तरह मिक्स करिए दोनों हाथों से। फिर एक तरफ आप चीनी वाले पानी को अच्छी तरह घोल दीजिए, थोड़ा सा आप गैस पर भी गर्म कर सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है, और बाकी ज़्यादा कर रहे हो तो उसको ठंडा होने दीजिए, नवसेका हो तो चलेगा लेकिन गर्म होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि बांधते समय हाथ जलेंगे, इसलिए अच्छी तरह चीनी को पानी में एकरस करके फिर उस पानी से इस आटे को अच्छी तरह बांध दीजिए। अगर आप ऐड करना चाहते तो थोड़े सफ़ेद तिल बांधते समय डाल दीजिए, इलायची कूट करके इसको भी डाल दीजिए, फिर आप चीनी वाला पानी डाल करके अच्छी तरह आपको बांधना है, इसको गूंदना है, गूंद करके भले आधा घंटा भले एक घंटा आप गीले कपड़े से ढक करके इस आटे को रख दीजिए और आप दूसरा कार्य निपटा दीजिए। दूसरा काम आपका हो जाए, भले आधा घंटा भी भीगेगा ना तो भी चलेगा, ठीक है। वो काम होने के बाद बस लुए बनाइए, लुए बना करके फिर आप बेलिए, जो भी साइज पसंद करते हो, पूड़ी की साइज पसंद करते हो या रोटी की साइज, वो आपके ऊपर छोड़ा है, और बेल करके आप डालते जाइए। एक स्वच्छ कपड़े पर साड़ी बिछा सकते हैं और उस पर डालिए, फिर पहले वाले जो सुवारी है उसके थप्पी लगा दीजिए, एक के ऊपर रख दीजिए ताकि उसको ज़्यादा हवा नहीं लगे, तलते समय वो टूटे नहीं, और एक भगोना उसके ऊपर ढक दीजिए, और इस तरह सारे ही सुवारी बेल करके तैयार कर दीजिए। फिर आप रखिए कढ़ाई में तेल गरम, तेल गरम हो जाए तो मध्यम आंच पर सुनहरी सुनहरी होने तक दोनों तरफ से आपको मठिये तलने हैं, मठिये नहीं सुवारी तलने हैं। चिमटे से आपको थाल भी फेरनी है और अच्छी तरह तल करके चिमटे से ही आपको निकालना है, तुरंत नहीं निकालना है, थोड़ा सा क्या करेंगे आप, तो चिमटे से जो आपने सुवारी पकड़ रखी ना, हल्के से आप कढ़ाई के किनोर से थपकारिए ताकि और भी जो तेल है वो अंदर ही टपक जाए, फिर आप पेपर में रख दीजिए। इस तरह सारी सुवारी आपको निकाल देनी है, इस तरह बनाना है, ठीक है। तो चलिए सुवारी तैयार है, अब हम आपको और भी कुछ सिखाएंगे, लेकिन कल भाई, आज तो समय आप देख रहे हो कि होने को आया है, इसलिए हम तो रोज ही सिखाते हैं। तो आइए अभी सुनते हैं एक गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

हल्के हल्के बोलना, हल्के हल्के बोलना, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना, हल्के बोलना, हल्के हल्के बोलना, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना, हल्के।

होंठ से हल्के हल्के बोलना हल्के बोलना हल्के हल्के बोलना हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना हल्के।

0: उलझे रहे मेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना।
1: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड्स से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े

करके चलना है, और उसके लिए हमें स्वयं को बदलना है, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बहुत अच्छा था, देखते हैं आप भी सोच रहे होंगे कितना सरल प्रश्न है, लेकिन कभी कभी सरल प्रश्न भी पूछना चाहिए। तो जवाब तो आप सभी को पता ही है, सभी ने सही दिया है। जुड़े हैं सुरेश भाई झोटाना से, सबसे पहले इन्होंने जवाब दिया है, फिर सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, विक्रम भाई कुशवाहा बड़वानी मध्य प्रदेश से, हनुमान जी यूपी से, उत्तर प्रदेश से आप जुड़े हैं, कमलेश भाई इडर गुजरात से जुड़े हैं आप, कंचन भाई मंडाली से, कुपाराम जी कोजरा से और लीला जी कोजरा से, आप सभी ने सही जवाब दिया है दीपावली। तो बिल्कुल सही है, दीपावली का त्यौहार आने वाला है और दीपावली के त्यौहार पर ही पूरा परिवार इकट्ठा होता है, चाहे वो कहीं पर भी रहते हो, लेकिन दीपावली के एक दो दिन पहले ही अपने घर लौट आते हैं। तो सभी के लिए ढेर सारी तालियां। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी राम जी पर, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे आशियाना कार्यक्रम लाइव में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 90.4।

गेरे राम जी है आगे मारे, राम जी है पाछे रे, शरणागत की सारी चिंता राम जी ने लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी री घर की कंची राम जी लगवाणिया, राम जी रो लेनो देनो राम जी चुकावणिया, राम जी रो

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और जिंदगी के उस पन्ने पर आ गए हैं हम जहाँ पे दोस्तों प्यार ही प्यार है, क्योंकि यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं खुद में चेंजेस करने के, खुद को समझने के, खुद के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने के। जब हम ये सब करते हैं तो प्यार बढ़ता ही जाता है, जिंदगी से और खुद से भी। तो दोस्तों कार्यक्रम है लव यू जिंदगी, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे कल्पना जी का, जो कि ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं। स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और सालों से अनेकों की मदद करते आए हैं। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आरुषि जी, फिर से एक बार जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर युवाओं से बात करना बहुत बहुत मजेदार होता है, क्योंकि जितनी ऊर्जा उनके अंदर होती है वो ऊर्जा हम भी बदले में महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, वो यूथ वापस आ जाता है और बहुत खुशी भी होती है। श्रीनिधि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीनिधि जी रेडियो मधुबन के जाने माने आरजे भी हैं और साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर और ग्लोबल एंकर भी हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, नमस्कार कल्पना जी, नमस्कार सभी दोस्तों को। और लव यू जिंदगी के इस एपिसोड में, हर एपिसोड में कुछ अलग चर्चा करते हैं, तो इस एपिसोड में भी एक नए विषय पर हम चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। तो आशा है कि इस चर्चा से मैं खुद भी बहुत कुछ सीखूंगा और जो कुछ मैंने सभी से सीखा है वो साझा करने का भी एक अच्छा मौका है
1: जी। और बहुत सुंदर बातचीत हुई है पिछले कुछ एपिसोड्स में भी। हमने जाना था कि किस तरह से एंग्जाइटी या एंग्शियस होना डिफरेंट है, या किस तरीके से हम डिप्रेशन को सैडनेस के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते। कल्पना जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, तो कई बार आजकल हम बहुत सारी चीजें क्योंकि पढ़ सकते हैं, आज हमारे पास AI है, हमारे पास गूगल है, तो हम बहुत सारी चीजें वो अपने सिम्टम से खुद ही समझने की कोशिश करते हैं, मुझे शायद ये हो गया है, और वो पढ़ के और ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो क्या आपके पास भी इस तरह से आते हैं लोग कि उनको लगता है कि नहीं नहीं मुझे यही हुआ है, इस तरह से मेंटली हमें पता होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है ही, या डायग्नोस की जाती है प्रॉब्लम, सिम्टम्स समझने पड़ते हैं
2: जी? कई बार लोग गूगल में सर्च करके आते हैं कि मुझे अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो जरूर मुझे ये बीमारी हो चुकी होगी, क्योंकि उसमें वो सिम्टम्स बताए जाते हैं कि भाई आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, घबराहट हो रही है, या हाथ पांव में पसीने आ रहे हैं, या गिडीनेस फील हो रही है, या उदासी महसूस हो रही है, या अकेलापन महसूस हो रहा है, लोगों के साथ मिलने जुलने की इच्छा नहीं हो रही है, नींद नहीं आ रही है रातों में, या भूख नहीं लग रही है, खाना हजम नहीं हो रहा है। तो कई सारी बातें जब हमारे साथ होने लगती है, अप एंड डाउन हमारे लाइफ में आने लगता है, तो लोगों के पास आजकल एक ही सोल्यूशन है, सर्च करो, गूगल करो और आइडेंटिफाई करो। तो बहुत सारे ऐसे लोग पहले से ही डायग्नोसिस लेकर आते हैं कि शायद हमें ये तो नहीं हुआ है, उनको पता होता है। सो अब हमें उनको अवेयर करना होता है कि जो भी लक्षण है तो उन लक्षणों को हम अलग अलग कैसे पहचाने। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम है, सो ओवरथिंकिंग क्यों होती है, कैसे होती है और उसका कारण क्या होता है, ये अवेयरनेस आ जाने के बाद और थिंकिंग के लिए कुछ उपाय करने के बाद वो ओवरथिंकिंग पर हम ओवरकम कर सकते हैं। सो केवल मुझे ये हो रहा है ये जानकारी ही जरूरी नहीं है, परंतु ये मुझे क्यों हो रहा है और अगर हो रहा है तो कितना सीवियर है। हाँ, हम मैं अपने श्रोताओं से भी पूछना चाहूंगी कि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हमें होती है तो उसको हम थोड़ा सा जांच लें। सबसे पहले तो तीव्रता को जांचें कि 0 से 10 तक मुझे जो कुछ भी हो रहा है, ओवरथिंकिंग है, उदासी है, अकेलापन है, उसकी तीव्रता कितनी है 0 से 10 तक। पहली ये टेस्ट हम अपनी खुद की लें। दूसरा है कितने लंबे समय से मुझे ये हो रहा है। अगर थोड़े दिन से हो रहा है, थोड़े दिन बाद ठीक हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है ना। सो कितने लंबे समय से मुझे उदासी है, चिड़चिड़ापन है, निराशा है, गुस्सा आता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है, या मुझे लोगों के साथ मिलने जुलने की इच्छा नहीं होती है, कितने दिन से, तीन हफ्तों से ज्यादा अगर ये लक्षण है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, जिसके लिए डॉक्टर या काउंसिलर से मिलने की आवश्यकता है। सो सबसे पहले है कि तीव्रता कितनी है, दूसरा है कितना लंबे समय से मैं इसको फेस कर रहा हूँ। तो इन लक्षणों को लेकर हम अपने आप निदान न करें, लेकिन किसी डॉक्टर या काउंसिलर या साइकोथेरेपिस्ट की अगर परामर्श लेते हैं हम, या किसी जानकार समझदार व्यक्ति के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी करते हैं, तब भी हमें कुछ न कुछ सकारात्मक सॉल्यूशंस मिल सकते हैं और हम उससे ओवरकम कर सकते हैं।
1: ओके, मतलब प्रोफेशनल हेल्प लेनी जरूरी है सिम्टम्स को, लेकिन अगर हम माने कि जैसे स्ट्रेस, आपने कहा समय कितना समय से हो रहा है, तो स्ट्रेस तो बचपन से ही हो रहा है, एग्जाम के समय हो रहा है, और कोई चीज आए तो भी हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है, तो क्या मतलब ऐसा नहीं है कि रोज हो रहा है, लेकिन जब कोई सिचुएशन आती है तो स्ट्रेस होने लगता है, या बॉडी में पसीना आने लगता है, या फिर हाथ पैर में थोड़ा मुझे या डिजीनेस लगती है, या एकदम से वीकनेस लगने लगती है, या पेट में कुछ दर्द होने लगता है, तो ये हर बार होता ही आ रहा है, तो क्या फिर ये मतलब प्रोफेशनल हेल्प चाहिए यहाँ पे?
2: सिचुएशन को लेकर थोड़े समय के लिए स्ट्रेसफुल होना, उसको यू स्ट्रेस कहा जाता है। okay. वो स्ट्रेस अच्छा है कि थोड़ा सा हमें अलर्ट करता है, वो स्ट्रेस कि भाई एग्जाम है, तो एग्जाम के समय हम अलर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस भी लगता है, थोड़ी सी घबराहट भी होती है, लेकिन वो घबराहट कुछ अनहोनी मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजों को लेकर होती है कि मैंने जो पढ़ाई की उस अकॉर्डिंग पेपर आएगा या नहीं, कुछ और ही क्वेश्चंस आए तो क्या होगा। सो अगेन ये थॉट्स से रिलेटेड है। सो अगर हमारे विचार पॉजिटिव है, हर आने वाले खतरे को जानते हुए हम अगर पॉजिटिव रहते हैं, और अपने आप को जैसे ही हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, हमारे अंदर जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामिन, वो हमें जो आने वाली खतरा है या जो भी कठिन परिस्थिति है उसका सामना करने की शक्ति हमें डेवलप करती है। सो थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, घबराहट हो जाती है, हम उसको मैनेज करना सीख जाते हैं, वो स्ट्रेस नुकसानकारक नहीं, वो थोड़ा बहुत हर किसी को होता ही है। okay. परंतु हमेशा कुछ कारण के बिना मुझे ज्यादा सोचने की, ज्यादा स्ट्रेस लेने की आदत है, तो वो ये आदत अगर बचपन से है, कंटिन्यूस है, तो मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेने की आवश्यकता है, काउंसलर के पास जाकर CBT REBT टेक्निक्स के माध्यम से थॉट चेंज किस तरह से है, थॉट्स को कैसे बदलना है, वही विचार है बट उसको दूसरे तरीके से हम सोचते हैं तो वो कितना फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि आपने परीक्षा का एग्जाम्पल दिया, सो परीक्षा के समय हमें थोड़ी सी घबराहट तो होती है, बट जैसे ही हम सोचते हैं कि नहीं, मैंने मेहनत की है और मुझे मेहनत का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि कुदरत का ये नियम है, जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है। सो ये पॉजिटिव थॉट ही हमें हमारा अप्रोच बदल देता है, और वो जो एंग्जाइटी होती है एग्जाम देने से पहले वो कम हो जाती है, और एग्जाम के टाइम पर हम रिलैक्स होकर आराम से पूरा पेपर लिख पाते हैं, या सारे क्वेश्चंस के जवाब दे पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो लिमिटेड टाइम होता है उसमें सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना ये भी जरूरी होता है।
1: बिल्कुल।
2: तो कई सारी चीजें एक साथ काम कर रही होती है कि मुझे जवाब भी लिखने हैं, टाइम भी मैनेज करना है, नहीं तो कई बार होता है मुझे आता सब कुछ है बट मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाता हूँ, उसकी वजह से मैं पीछे रह जाता हूँ। तो जैसे ही एक थॉट मेरे मन में आता है स्ट्रेस के अगेंस्ट, एंग्जाइटी के अगेंस्ट, कि नहीं, मैंने जितनी मेहनत की है उसका फल मुझे जरूर मिलेगा, तो वैसे ही आपकी अप्रोच, आपका एटीट्यूड, आपका एक्शन और आपका जो रिस्पॉन्स है वो तुरंत बदलने लगता है।
1: बिल्कुल, मतलब हमें ये भी समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा किसी सिचुएशन में स्ट्रेस होना अलग है, और हर वक्त वो बना रहना या बिना सिचुएशन के होना, वहां पे हेल्प की जरूरत ज्यादा है। श्रीनिधि जी, आपसे इसके एक और एस्पेक्ट के बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है, जो सफर कर रहा है, या वो अपने दोस्तों से भी पीछे हट रहा है वो व्यक्ति, या फिर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में है, बिना सिचुएशन के उसे डल फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके जो आसपास के लोग हैं, फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनको कैसे एक्ट करना चाहिए या कैसा होना चाहिए? बिकॉज हमें पता चलता है तो हमें लगता है अरे तुम तो, उस समय कैसा बिहेवियर होना चाहिए आसपास के लोगों का?
3: जब आसपास के लोगों की बात की जाती है, यूजुअली ऐसे व्यक्ति जो क्लिनिकली डायग्नोस्ड हो, जिनको इस प्रकार की समस्या है, या ये कहें कि ये बीमारी कह सकते हैं आप, और जरूरी नहीं कि बीमारी का कहने का तात्पर्य ऐसा होना चाहिए कि मतलब ये कोई चिंताजनक लेवल पे बीमारियां हो। कभी कभार ये शॉर्ट टर्म भी होता है, जैसे किसी को सर्दी खांसी बुखार हुआ है, 3-4 दिन के लिए हुआ है, हफ्ते भर के लिए हुआ है, इन्फेक्शन छोटे टाइम के लिए भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो डायग्नोसिस मिलती है हमको कि भाई ये व्यक्ति थोड़ा ज्यादा परेशान रहते हैं, या इनको एंग्जाइटी है, या इनको ये डिसऑर्डर है, तो हमें उन लोगों के आसपास रहने वाले लोगों के प्रति भी, जो हम उनके केयर गिवर्स हैं या उनके दोस्त हैं या उनके परिवारजन हैं, उनको भी एक प्रकार की सेंसिटाइजेशन होना आवश्यक है। बहुत बार जब हम इन चीजों को स्वयं नहीं समझते और परिवार के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कोई चीज हो रहा होता है, उस समय पर हमारी सही समझ और सही सहयोग ना होने की वजह से उनको जो लाभ मिलना चाहिए, उनको जो ठीक होने में मदद मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती, क्योंकि हम इन चीजों को सही तरीके से नहीं समझते। इसलिए प्रायः ये चीज देखी जाती है कि परिवार के सदस्यों को, या अगर वो शादीशुदा हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाकर इन चीजों के ऊपर बातचीत की जाती है, और जो ट्रीटमेंट है या एक्शन प्लान है कि हमें किस प्रकार से, भले वो काउंसलिंग हो या चिकित्सकीय सलाह हो या दवाइयां भी हो, तो साथ में एक्सप्लेन की जाती हैं, जिससे क्या होता है कि एक व्यक्तिगत सपोर्ट सिस्टम बनता है कि जिससे उसे ठीक होने में मदद मिलती है। जितना जल्दी उसे एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, उस व्यक्ति के ठीक होने की संभावना तो ज्यादा बनती ही है, मगर ठीक होने में उसे कम समय भी लग सकता है। इसलिए इन चीजों की समझ होना बहुत आवश्यक है, और खासकर भारत जैसे देशों में आज जब हम इसे सकारात्मक रूप में देखते हैं कि लोग मेंटल इलनेसेस के प्रति, मनोस्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, उन चीजों को शहरों में, कम से कम बड़े शहरों में, ज्यादा ओपन तरीके से हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये मान लेना कि हाँ, एक व्यक्ति घर में है जिसको किसी प्रकार की समस्या है और हमें उसका ख्याल रखना है, अगर हम इतना भी मान लेते हैं तो भी ये चीज बहुत मददगार साबित होती है। खासकर कॉलेज गोइंग जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है कि उनके दोस्त इन चीजों को समझें और वो उनके मददगार बने उनके हीलिंग प्रोसेस में। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज दोस्तों को या साथ में रहने वाले लोगों को समझ में नहीं आता है, तो कहीं ये चीज देखने को मिलती है कि वो भी हीलिंग के प्रोसेस में मददगार होने की जगह और नुकसान करने वाले बन जाते हैं जाने अनजाने में। कभी कभार इन चीजों की समझ नहीं होने के कारण लोग इन चीजों का मजाक उड़ाने लगते हैं, तो जिसकी वजह से व्यक्ति की हालत जो सुधरनी होती है वो और ही खराब भी हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखने की भी आवश्यकता है, और साथ साथ लोगों को जब हम उन्हें ठीक करने के कगार पर ले जा रहे हैं, तो उस मार्ग पर और लोगों को साथ लेना भी आवश्यक।
1: कल्पना जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
2: बिल्कुल, मैं सहमत हूँ श्री जी के साथ कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह से किसी परेशानी का सामना कर रहा है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्ट्रेस हो, ओवरथिंकिंग हो, सो परिवार की परिभाषा ही यह है कि ऐसे समय पर परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे को कोऑपरेट करे, एक दूसरे को मदद करे, और ऐसे समय पर कुछ वैल्यूज की आवश्यकता होती है जिसे प्रैक्टिस में लाना, जैसे शांति बनाए रखना। जब वल्नरेबल कंडीशन होती है किसी भी व्यक्ति की, तो उस समय आसपास के लोग उसके प्रति शांतिपूर्ण व्यवहार अगर करें, उसे समझने की कोशिश करे, तो ये सबसे बड़ा सहयोग होता है। दूसरी बात ये कि इम्पेशेंट ना हो जाए कि अरे ये कितने दिनों से इसकी ये प्रॉब्लम चल रही है और ठीक ही नहीं हो रही है। सो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। यही वो चीजें है जो हमें परिवार के रूप में एक दूसरे को जोड़ती है। तो कभी कोई परिवार में किसी न किसी को हमारी मदद की प्रैक्टिकल या सूक्ष्म रूप से जरूरत हो सकती है। जैसे कि किसी को प्रैक्टिकली फिजिकली हेल्प चाहिए होती है, किसी को मेंटली हेल्प चाहिए होती है। सो वो धैर्यता, वो शांति का गुण दिखाना परिवार वालों को ऐसे समय पर, बहुत जरूरी होता है। हम वही एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम के समय अगर बच्चों को एग्जाइटी होती है, आज ही मैं एक न्यूज पढ़ रही थी कि एक बच्चे ने अपने एग्जाम में 100% मार्क्स लिए, तो उसके दादाजी बता रहे थे कि हमने कभी इस पर प्रेशर नहीं डाला, पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला, हमने उसको हमेशा ये कहा कि अगर तू 35% पासिंग मार्क्स लेकर भी पास हो जाएगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बिना प्रेशर से की गई पढ़ाई की वजह से वो 100% मार्क्स ले आ पाया। ऐसा नहीं है कि केवल यही कारण बना है, IQ लेवल भी होता है हर एक व्यक्ति का, परंतु पेरेंट्स से या परिवार वालों से जो प्रेशर पड़ता है वो कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है।
1: जी, तो मतलब जैसा आपने कहा कि परिवार का कितना सुंदर मीनिंग ही यही है, फिजिकली हेल्प चाहिए वो तो हम समझते हैं, पर मेंटली हेल्प चाहिए कई बार वो समझने से चूक जाते हैं और उसका वर्स प्रभाव भी पड़ सकता है। तो बहुत जैसा आपने कहा, शांति का गुण उस समय हमें बहुत प्रत्यक्ष रूप से दिखाना है और पेशेंस भी चाहिए डील करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो दीदी, मैं जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस एपिसोड के तो अंतिम कुछ घड़ियों में आ गए हैं हम, आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि इससे ही जुड़े हुए कई और ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जिसे हम फेस कर रहे हैं, यूथ फेस कर रहा है, उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा एडिक्शन भी है, जिसके बारे में हम हेल्प लेना नहीं चाहते, किसी को ये कहना नहीं चाहते कि मुझे मदद चाहिए, लेकिन अंदर से महसूस करते हैं कि मुझे मदद चाहिए। तो ऐसे भी अगर लोग हमें सुन रहे हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े जरूर रहिएगा। फिलहाल दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई मेडिटेशन ऐसी प्रैक्टिस हम कर सकें या कहीं से शुरुआत कर सकें, जो हम अगर ये मान लीजिए डेवलप ही हो रहा है, ओवरथिंकिंग में हम जा भी रहे हैं, तो थोड़ा खुद को वापस ला सके वहां से।
2: जी, सो किसी भी प्रॉब्लम की जड़ में हमारे थॉट्स होते हैं, ये हमने तो देखा, तो हमें थॉट्स से ही रिलैक्सेशन की शुरुआत करनी है। तो मैं अपने श्रोताओं से अनुरोध करूंगी कि वो जहां कहीं भी हैं, एक मिनट के लिए आराम से बैठ जाएं। एक मिनट बहुत थोड़ा समय होता है, लेकिन ये एक मिनट बहुत इफेक्टिव भी हो सकता है। सो एक मिनट के लिए आराम से बैठ जाएं। अगर आपके पास कोई दीवार है तो दीवार से पीठ टिकाकर अपने आप को और ज्यादा रिलैक्स करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप गहरी और लंबी सांस लें, अपनी आंखों को बंद करें और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें। हर सांस के साथ वातावरण से शांति और सकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश होने दें। बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने दिलो दिमाग पर छाया हुआ तनाव, नेगेटिविटी को, शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर की ओर धकेल दे, छोड़ दे। सांसों पर ध्यान दे। लंबी और गहरी सांस लेते हुए अपने मन में इन तीन विचारों को 3 बार रिपीट करें। मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं संतुष्ट हूं। 3 बार रिपीट करते हुए इन विचारों को अपने मन में समाने की कोशिश करें। गहरी और लंबी सांस ले और 3 विचार जो हमें करने हैं। मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं और मैं सारे विश्व को शांति का दान दे रहा हूं। मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, सारे विश्व की शांति की मैं कामना कर रहा हूं। इन विचारों को रिपीट करें। जैसे ही ये विचार हम मन में दोहराते हैं, हमारा मन और शरीर शांत और रिलैक्स फील करने लगता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे मन को स्थिर करें और आखिरी वाक्य लेकर जाए अपने साथ, मैं हर परिस्थिति में रुककर सही चुनाव कर सकता हूं। मैं हर परिस्थिति में रुककर सही चुनाव कर सकता हूं। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच दीदी। एक खुद पे विश्वास ऐसा लगता है कि पुनर्जागृत हम कर सकते हैं और रिमाइंड करा सकते हैं ये स्टेटमेंट्स को बार बार जब भी जरूरत पड़े। बहुत टाइम भी नहीं लग रहा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस।
2: धन्यवाद
1: श्रीनिधि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आशा करेंगे आगे भी हम इस बातचीत को कंटिन्यू करेंगे और बहुत मदद हमें मिल पाएगी।
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और कल्पना जी का भी, जिन्होंने हम सभी को आज ये चीज अनुभव कराया कि हम सभी इन चीजों के प्रति थोड़ी सी अगर अटेंशन देते हैं तो हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये पॉसिबल है ये हमने जाना और शुरुआत कैसे करनी है ये भी समझा। तो दोस्तों, अगर फिजिकल मसल एक दिन में नहीं बनती तो भाई मेंटल एफर्ट करने में हम एक बार में रिजल्ट नहीं मिलता तो हम उदास क्यों हो जाते हैं, निराश क्यों हो जाते हैं। चलिए फिर से एक और हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं और जिंदगी को कहते हैं लव यू जिंदगी।

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

0: ख्वाबों की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज आपको मिलवाएंगे मावल के रहने वाले शांति देवी शर्मा। जो आप मावल में रहते हैं, आप हाउसवाइफ है, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि आप कढ़ाई का काम, बुनाई का काम, सिलाई का काम सब कर लेते हैं, पढ़ाई आपने नहीं की हुई है, बाकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, आइए इन्हीं के द्वारा जानेंगे। शांति जी, आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हो आप?
1: ठीक हूँ।
0: अच्छा शांति जी, अभी आप वर्तमान में क्या क्या काम करते हैं?
1: अभी तो घर पे ही रहते हैं।
0: जी, घर पे तो रहते हैं, लेकिन घर पर रह करके क्या क्या काम कर लेते हैं, किस तरह के काम करते हैं आप?
1: अब बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, उठते हैं, झाड़ू पोता है, घर का काम है, कपड़ा लेता है, ये खाना बनाना है।
0: जी जी, कढ़ाई बुनाई सिलाई सब करते हैं?
1: हाँ, सिलाई आई है, मशीन है, सिलाई भी कर ली।
0: सिलाई मॉल की करते हैं?
1: नहीं नहीं, अपने घर की करता।
0: अच्छा, घर की करते हैं तो अच्छा है ना, बचत हो जाती है।
1: अपने घर की करते हैं, बाहर की नहीं करते।
0: जी जी, तो शांति जी चलिए अभी आप क्या करते हैं और भी आपसे जानेंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपका बचपन कहाँ पे बीता?
1: बचपन तो मेरे गांव में बीतो।
0: कौन से गांव में बीता?
1: गांव तो जिला बदायूं है, नाम गांव का बछेली।
0: अच्छा, आप यूपी के रहने वाले?
1: हाँ, यूपी के रहने वाले।
0: तो जिस गांव में आप रहते थे वो गांव कस्बा है, शहर है या छोटा सा गाँव है?
1: छोटा सा गाँव है, देहात है।
0: और आप कितने भाई बहन हो?
1: हम चार बहन चार भाई।
0: आठ भाई बहन, उसमें आपका नंबर कौन सा आता है?
1: हमारा मंझले है, दो भाई से छोटे,
0: पांचवा नंबर आता है आपका। अच्छा, तो आपने पढ़ाई क्यों नहीं की?
1: नहीं, हमारे गांव में हम छोटे हैं तो गांव में स्कूल नहीं, तो हमारे
0: स्कूल ही नहीं है, तो कोई भाई बहन ने नहीं की पढ़ाई?
1: नहीं नहीं, वो जब हम बड़ा भाई है वो दूसरे गाँव में, हमारे ताऊ जी रहते, उनके वहाँ भेज दो तो उधर पढ़ाएगी। अब बहने हमारी नहीं पढ़ी, सबसे छोटी है तो हमारे भाई ने स्कूल खोल दो तो उसमें पढ़ाई की, प्राइवेट स्कूल हमारे भाई ने खुलवा दो, सबसे छोटी आ रही नहीं उसने पढ़ाई करी, तीन बहन नहीं पढ़ी।
0: और भाई बाहर जाते थे पढ़ने?
1: हाँ, भाई हमारे बाहर पढ़ाए, हमारे ताऊ जी रहते उनके यहाँ।
0: तो आप बहनों को नहीं भेजा?
1: नहीं नहीं, हमारे गाँव में स्कूल नहीं तो नहीं भेजो।
0: जी जी, बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा?
1: नहीं नहीं, डराते, छोटे से गाँव बूढ़े, जैसे हमारे इधर भेड़िया आड़िया पहले छोटे छोटे, वो पेंदुआ बढ़िया ज्यादा है, इसलिए मेरे मम्मी पापा डरते हैं, इसलिए नहीं भेजो।
0: अच्छा, तो आपके पापा क्या काम करते थे उस समय?
1: हमारे पापा खेती बाड़ी करते।
0: मम्मी भी करते?
1: नहीं नहीं, मम्मी घर का काम करती, भैंस गाय घर का है, भैया बहन खाना बनाना घर का काम।
0: और आपके पापा खेत संभालते हैं, आप लोग भी हेल्प करते?
1: हाँ, छोटे है तो जाते, बड़े हुए तो नहीं जाते।
0: बड़े हुए तो क्यों नहीं जाते खेतों पर?
1: बड़े हुए तो हमारे इधर नहीं, लड़की को भेजते हैं खेत पर, छोटे है तो जाते थे। हाँ।
0: अच्छा, तो फिर जैसे आप बड़े हुए तो फिर आप घर का क्या क्या काम कर लेते हैं?
1: हाँ, सिलाई बिनाई, ये पंखा बनाते थे, कपड़ा सिलते थे, और घर को काम है जैसे सब, अपनी मम्मी की हेल्प करते है।
0: तो जैसे कि आपने पढ़ाई नहीं की, पूरे गांव में कोई लड़कियों ने पढ़ाई नहीं की?
1: नहीं नहीं, जब छोटे छोटे हमारे स्कूल ही नहीं तो किसी ने पढ़ाई नहीं की।
0: तो कभी आपकी इच्छा हुई पढ़ने की?
1: हाँ हुई थी, लेकिन जब स्कूल नहीं था क्या जाते पढ़ने के लिए, पढ़ाई को मन करते थे लेकिन स्कूल नहीं तक आ जाते, बाहर मम्मी पापा नहीं भेजा।
0: तो आपको जैसे लिखना पढ़ना आता है थोड़ा बहुत, सीखा आपने घर पर बैठ कर? नहीं
1: नहीं नहीं, नहीं सीखा, खाली अपने घर का काम करते, कढ़ाई बुनाई, और फिर नहीं हो तो अपने मस्ती मौज मस्ती करते, खेलते सहेली छोटी छोटी लड़की उनके संग में घर पे अपने।
0: कौन कौन से खेल खेलते थे आप?
1: गुड़िया गुड्डा को गुड़िया गुड्डा छोटी छोटी लड़की अपने घर पे खेलते, बाहर हमारे भाई हमारे पापा नहीं जानते थे।
0: सारी लड़कियां आपके घर पर आती थी मोहल्ले की?
1: हाँ, सारी लड़कियां हमारे घर पर आती थी, लेकिन मेरे भाई पापा दूसरे घर पर नहीं भेजते, दूसरी लड़की आई आती थी हमारे घर पर।
0: तो पूरे दिन खेलने में बीतता था?
1: नहीं नहीं, घंटा दो घंटा खेलते उसके बाद काम करते अपनी मम्मी के संग, दादी के संग।
0: दादी दादा सब परिवार में जॉइंट परिवार था?
1: हाँ, दादी दादा है, मम्मी पापा चाची चाचा, हमारा बहुत बड़ा परिवार।
0: तो सभी चाची चाचा के बच्चे भी सभी आप साथ में ही बड़े हुए?
1: हाँ, सब हमारा बहुत बड़ा परिवार है, खूब बड़ा घर है, एक ही घर में सब बड़े पले, सब सलाह से प्रेम से रहते सब।
0: तो आप भाई बहन और कौन से मतलब किस तरह रहते थे, इतने सारे भाई बहन हो तो कैसे रहते थे आप?
1: प्रेम से रहते सब, एक दूसरे की सब अपने जो चीज भाई ला दो तो सब बहन देते, बहन लेती तो अपनी बहने सब मिलके खाते, मिलके रहते ऐसे। दादी मेरे बाबा है, एक चीज दिवाते सबको दिवाते, हमारे मम्मी पापा लाते तो सबको चीज देते ऐसे।
0: जी जो भी बाहर जाते तो सभी के लिए लेके आते?
1: हाँ सभी के लिए लेके आते, हमारे भाई लेके आते सबको देते, पापा लेके आते सबको देते।
0: तो जैसे कि आप गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे है ना, और भी कोई खेल खेलते थे कि सिर्फ गुड्डा गुड्डी का?
1: नहीं नहीं खाली गुड्डी गुड्डा और कुछ नहीं खेल खेलते।
0: अच्छा, और इस तरह आप कितने बड़े हुए फिर आपकी शादी हुई?
1: हमारी तो याद नहीं है, मान लो ऐसे 17-18 साल की उम्र हुई थी हमारी शादी हुई थी।
0: अच्छा, तो आपके मम्मी पापा आपको किस तरह की शिक्षा संस्कार देते थे उस समय?
1: मम्मी पापा बोलते कहीं बाहर नहीं जाने का, अच्छे से घर में काम करने का, कढ़ाई बिनाई सीखने का, किसी की बात नहीं सुनने की, किसी घर पे नहीं जाने का।
0: जी, और आप किस शादी मतलब कौन से शहर में हुई?
1: नहीं ये थोड़ी दूर पे, हमारे गांव से थोड़े दूर गांव है, दूसरे गांव में करी।
0: वो भी गांव ही है?
1: हाँ वो भी गांव है, शहर कस्बा नहीं है, गांव है।
0: तो आपकी शादी के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए?
1: सही आओ बढ़िया है, सास है, ससुर है, एक जिठानी है, जेठ है, देवर हो, दो ननद ही।
0: उधर भी बड़ा परिवार है?
1: हाँ, फिर दोनों ननद की शादी हमने करी, एक देवर की शादी करी, हम तीन दिन जिठानी अभी साझी रह रहे हैं, अभी दो चार साल से अलग हुए हैं, मान लो अब हम बाहर रह रहे हैं, वो घर पर रह रही।
0: तो आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं?
1: हमारे हस्बैंड इधर कंपनी में काम करते हैं, ठेका चला रहे हैं
0: राजस्थान में। तो आपकी शादी के बाद तुरंत आप इधर आ गए या फिर उधर रहे?
1: घर पर 10 साल रहे।
0: 10 साल आप घर पर रहे और आपके हस्बैंड इधर राजस्थान?
1: हम घर पर रहे, हमारे घर वाले इधर अहमदाबाद में काम कर रहे थे, हम सास ससुर के पास रहे, अपने मम्मी पापा के पास रहे, अपने भाई के पास रहे।
0: और जैसे कि शादी करके ससुराल जाते हैं, इतना बड़ा परिवार है, पियर में तो फिर भी फ्रीडम होती है, ससुराल में तो बहुत सारा काम करना पड़ता है।
1: नहीं मिलके करते, हमारी जिठानी हम जिठानी दोनों सलासर आते, दोनों मिलके एक एक झाड़ू लगाती, बर्तन एक मांजती थी, एक धोती थी, एक आटा लगाती थी, एक रोटी सेकती, एक बेलती, ऐसे करके अभी भी जाते हैं तो हम दोनों दुरान जिठानी तीनों मिलके काम करते सलासर, कभी झगड़ा नहीं हो।
0: जी बहुत अच्छी बात है, कहते हैं कि मिल करके काम करते काम भी जल्दी होता है, फटाफट भी होता है और स्नेह भी बढ़ता है।
1: अभी मेरे 4-5 बच्चे हैं हमारे, हमारी जिठानी के भी बच्चे हैं, लेकिन हमारे कभी बच्चे ने झगड़ा, वो अपने बच्चे डांट देती हैं, हम अपने बच्चे डाए, हम कभी नहीं झगड़ा करता।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है शांति जी, आधे झगड़े तो बच्चों की वजह से होता है, बच्चे झगड़ते हैं तो माता है क्या अपने अपने बच्चों का पक्ष लेती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: नहीं होना चाहिए, बच्चा गलती कर रहे हैं तो दोनों को डांट देना चाहिए, और फिर नहीं डांटे तो हमने अपने को डांट दिया, उन्हें अपने डांट दिया, अपने खेलेंगे बच्चा तो खेलेंगे, न लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर एक होंगे, बच्चों के पीछे नहीं लड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो बहुत खुशी की बात है कि आप इतना प्यार से रहते हैं।
1: हाँ प्यार से रहते, इधर भी बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, बता रहे हैं अच्छे से रहना, किसी बड़ा है तो उसे दीदी अरे दीदी बोलने का, बड़ी मम्मी बोलने का, भाई है तो भाई बोलने का, चाचा है तो चाचा बोलने का, किसी से झगड़ा नहीं करने का, झूठ नहीं बोलने का।
0: बहुत अच्छी बात है शांति जी, बहुत अच्छे शिक्षा और संस्कार आप दे रहे हैं अपने बच्चों को, तो ऐसे ही अगर हर माँ अपने बच्चों को देवे तो ये सारे दुनिया के झगड़े खत्म हो जाए। तो शांति जी आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो प्यारे श्रोता बंधु बने रहिएगा वंदे मातरम में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे शांति देवी जी से, और आइए और भी बात करेंगे मावल में ही। तीजा जी बेरवा, इनसे बात करेंगे। तीजा माता जी आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में।
5: धन्यवाद
4: माता जी, आप कैसे हो?
5: हाँ हम ठीक हैं जी।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, माता जी की उम्र 70 के आसपास होगी, फिर भी माता जी बड़े खुश रहते हैं हमेशा। माता जी आप थोड़ी देर के लिए आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपका बचपन कहाँ पे बीता?
5: हमारा बचपन तो अबरूड में बीता है। हाँ, हम राजू कुशी रहते थे, 8 बहन भाई हैं।
4: अच्छा आपका बचपन आबू रोड में बीता, क्या बात है, आप तो आबू गई है। और आपका नंबर कौन सा आता है?
5: मेरा चौथा नंबर।
4: आप चौथे नंबर के हैं, तो आप 8 भाई बहन कैसे रहते थे आपस में?
5: आपस में राजू कुशी रहते थे, लड़ना जाए।

0: ये गाड़ी चलाते थे, फिर पोलमैन थे।
1: अच्छा, ट्रेन चलाते थे। और सिर्फ पिताजी काम करते थे या माताजी भी करते हैं?
0: नहीं, माताजी तो कभी ये खेत में जैसे नाज हुआ है तो वो काटने जाते थे, घास वास काटे, कोई सल्ला बीन लेते ऐसे।
1: जी जी, तो पिताजी की कमाई पर आप क्या 8 भाई बहनों की पालना करनी होती थी, तो इस वजह से पढ़ाई नहीं की?
0: हाँ, और जब लड़कियों कोई पढ़ाता ही नहीं था।
1: तो आपने ही नहीं की, आपके भाई बहनों ने की या नहीं की?
0: सबने की है, छोटी बहन है तो उसने भी करी, बड़ी बहन थी तो उसने भी नहीं करी थी, मेरी जैसी थी।
1: अच्छा, आपने और आपकी बड़ी बहन ने नहीं की, भाइयों ने की?
0: सब भाइयों ने की थी।
1: तो उस समय बेटियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था?
0: रिवाज था ही नहीं, नहीं। हाँ, और था बड़े बड़े लगे जगह था, और हम छोटे जगह था ना, तो जाने नहीं दिया। बच्चे थे छोटे छोटे, माँ काम करने चले जाती तो हम खिलाते थे भेड़ भाइयों को।
1: छोटे भाई बहनों को रखना पड़ता था?
0: रखना पड़ता था।
1: बिल्कुल आपने सही कहा है कि माताएं काम करती थी और छोटे भाई बहनों को कौन खिलावे।
0: एक तनख्वाह पे गुजारा नहीं होता तो फिर क्या करें।
1: तो आप और पढ़ाई तो आपने की नहीं, फिर आप क्या करते थे, पूरे दिन कैसे बिताते थे आप?
0: बस वैसे ही खेलते थे, कोई चूड़ी खेलते, कोई क्या खेलते, चंगाफो खेलते, ये गुजारा करते थे बस।
1: अच्छा, चूड़ी कैसे खेलते थे?
0: वैसे ही चूड़ी होती है ना, कुंडाला बना के और एक एक चूड़ी,
1: चूड़ियों के टुकड़ों से।
0: हाँ, टुकड़ों से बस।
1: ओके, अच्छा, तो आपके जैसे कि भाई आपसे बड़े थे तो भाभियाँ भी आ गई होगी?
0: हाँ, दो भाभी आ गई थी।
1: तो घर में काम आपको करना पड़ता था?
0: नहीं, भाभी आई जब, जिसके बाद तो नहीं करना पड़ा था, जब तो मैं ससुराल आ गई थी, एक भाई की शादी हुई हमारे ससुराल के साथ भेज दी थी।
1: अच्छा, आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
0: हमारे 15 साल की।
1: 15 साल की उम्र में शादी हुई। तो आपके खेती बाड़ी पे जैसे आपके मम्मी जाते थे, आप भी जाते थे?
0: नहीं,
1: आप घर का ही काम करते थे। अच्छा, घर में और आप क्या कर लेते थे, सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ करते थे?
0: नहीं, बस ये कभी हमारी मम्मी वो सूटर बनाती थी, वो सूटर बनाते थे, कभी ये कसीदा निकाल लेते थे।
1: अच्छा, कसीदा आप निकालते थे मम्मी का देख देख के, और स्वेटर भी बना लेते थे?
0: लेते थे बस।
1: तो स्वेटर भी देख देख के बनाते थे?
0: नहीं, फिर तो हमको आ गया था ना।
1: हाँ, जैसे मम्मी से ही सीखा?
0: हाँ, मम्मी से सीखा, मम्मी से सीखा, अड़ोसन पड़ोसन बस बैठ जाती, भाई इधर आओ, भाई इधर आओ, तो वो बैठ जाती तो उनके साथ में सीख लेते।
1: अच्छा, तो स्वेटर आप किसके लिए बनाते थे, खुद के लिए या भाई बहनों के लिए?
0: जैसे मम्मी बनाती थी तो उसमें सारा लगा देते थे,
1: मदद करते थे। अच्छा, और पहले के जमाने में गीत गाने का बहुत रिवाज था, माताएं बहने कुछ भी काम करती जाते थे और गीत गाते थे, तो आप भी गाते थे?
0: हाँ, गीत तो मैं भी अभी भी गाती हूँ।
1: तो आप लोग गीत गाते हुए काम करते थे, है ना?
0: वैसे राती जगह होता है, भजन होता है, तो उनमें गाते हैं सबसे मिलकर।
1: हाँ जी, राजस्थान में रात्रि जागरण का बहुत रिवाज है, तो राती जगह में आप गीत गाते थे। तो राती जगह में तो कहते हैं कि माताएं जाती है, बेटियां नहीं जाती है, तो आप भी जाते थे?
0: जब नहीं जाते थे, आप ससुराल में जाना पड़ा ना।
1: ससुराल में तो जाना पड़ेगा। आपके बचपन की बातें चल रही थी कि आपका बचपन कैसे बीता और आप क्या क्या करते थे?
0: कुछ नहीं, खेलते थे, मस्ती मारते थे।
1: और आप 15 साल के हुए और आपकी शादी हो गई, तो शादी करके ससुराल या मावल है या फिर कहीं और?
0: नहीं, मावल में गेट है, मतलब ढाई में क्या है, थोड़े 2 किलोमीटर वहाँ है।
1: क्या नाम है उस गांव का?
0: आवल, आवल, आवल।
1: अच्छा, आवल, आवल से फिर आप मावल आ गए रहने?
0: हमारी सास वहाँ गुंटे पे काम करती थी, झंडी बताती थी गाड़ी पे, हमारा ससुर मर गया ना तो उनकी जगह मिल गई थी, तो वो रिटायर हुए तो हमने गांव पर आ गया।
1: अच्छा, तो शादी के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए, थोड़े बताएंगे?
0: ये तो मेरे को नहीं परिवर्तन तो क्या, ससुराल में रहते थे, 3 जने थे, खाते पीते, परिवार
1: ससुराल में छोटा परिवार था।
0: हाँ, छोटा परिवार, वैसे परिवार तो बहुत बड़ा, हमारे घर में 3 जने थे, मैं थी, मेरी सास थी और हमारे बाबूजी थे।
1: अच्छा, तो आपके ननन देवर जेठ कोई नहीं थे?
0: ननन थी, बड़ी बड़ी ससुराल थी बस, आज गुजर गए थे।
1: इतने बड़े परिवार से आप आए छोटे से परिवार में, तो शुरू शुरू में आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा?
0: लगा ना, कोई नहीं था, गांव की बस्ती थी, गांव में चोरी आ जाती, लुगाई आ जाती तो मन लग जाता था, नहीं तो जंगल में एक गुंटी में पड़े रहते थे।
1: तो आपके पतिदेव उस समय क्या काम करते थे?
0: वो बच्चे को पढ़ाने जाते थे, टीचर थे।
1: अच्छा, टीचर थे, तो ये तो अच्छी बात है। आपके सास भी जॉब करते थे, आपके हस्बैंड भी जॉब करते थे, आप घर में अकेले पड़ जाते थे?
0: अकेले।
1: तो फिर कैसे आप समय व्यतीत करते थे?
0: गाँव

0: नहीं गांव पास में, तो सब आ जाती थी वहाँ, गेट था ना, गेट पे सब इकट्ठी होके बैठ जाती थी, फिर हम भी बैठ जाते वहाँ, सुबह शाम काम कर लेते और दिन भर मस्ती मारते।
1: अच्छा, सुबह शाम काम करते और दिन में सभी बैठ जाते थे और बातचीत करते थे। तो बातचीत करते थे और साथ ही कुछ करते थे या सिर्फ बातें ही बातें करते थे?
0: नहीं, बातें ही कुछ नहीं करते। इधर 2 किलोमीटर इधर झाड़ना, 2 किलोमीटर झाड़ना, शाम को 2-12 बजे तक काम कर लेते और फिर बैठ जाते खाना।
1: और आपके सासू माँ कितने देर बाहर रहते?
0: बाहर क्या, वो तो गेट पे रहते थे, वो सांप आते तो झंडी बताते थे और वैसे सफाई करते, मतलब 2 खंबे इस तरफ 2 खंबे इस तरफ, हम भी मदद करते थे, घास वास उपाड़ना करना, लेन पे कचरा होता तो उसको घास उपाड़ना, ऐसे रस्सी होती है ना वो।
1: अच्छा, तो आप भी इस तरह मदद करते थे, बहुत अच्छी बात है माता जी। आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके बारे में और भी जानेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।
2: मेरी आँखों में सपने छोटे हो या बड़े, चुन लिए हैं मैंने क्यों जिद पे होड़े। मेरी आँखों में सपने

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मावल की कुछ बहनें हमारे साथ बने हुए हैं, जिनका नाम है तीजा देवी जी और शांति जी शर्मा। तीजा जी बेरवा हमारे साथ बने हुए हैं, तो आइए शांति जी से फिर से बात करेंगे। शांति जी आपका फिर से स्वागत है वंदे मातरम में।
3: स्वागत है।
2: अच्छा शांति जी, आप बता रहे थे कि आपके गांव में सड़कें वगैरह नहीं थी।
3: छोटा सा गांव है, भूड़ है, रेती जैसी है और सड़क नहीं थी, कच्ची रास्ता है, बैलगाड़ी चलती, पैदल भी जाने पड़ते।
2: अच्छा पैदल कहाँ जाते थे आप?
3: थोड़ी दूर हो, जैसे इधर से आबू रोड है, इतनी दूर सड़क की कच्ची रास्ता, चले जाते आराम से, मस्ती मस्ती सब लोग।
2: मावल से?
3: मावल से जैसे आबू रोड है इतनी दूर तक,
2: उधर यूपी में
3: रास्ता है। हाँ, उधर पापा के साथ में, चाचा के, भाई के, सबके साथ में जाते, बैलगाड़ी से भी जाते, पैदल भी जाते।
2: बसें वगैरह नहीं आती?
3: नहीं नहीं, बस नहीं चलती।
2: अच्छा, और आपके ससुराल में?
3: ससुराल में तो देखो ये टेम्पू चलते हैं, गाड़ी भी चलती है, रिक्शा चलता है, बड़ा बुग्गी चलती है।
2: तो फिर आज भी आप आपके मायके जाते हो तो क्या करते हो?
3: अब मायके जाते हैं तो अपने बस से जाते हैं, और फिर अपने जैसे बस से जाके गांव को जाते हैं तो हमारे भाई की ट्रैक्टर है वो ले जाते हो, नहीं कोई गाड़ी आड़ी कभी मिल जाते सवारी तो उससे चले जाते, नहीं पैदल चले जाते।
2: ओहो, पर आज भी आप कह रहे हो ना कि अभी भी बसें नहीं चलती है।
3: अभी भी सड़क पर ही है पर कहीं कहीं टूटी है, ये सही नहीं है, जैसे खूब बढ़िया रोड है वो रोड नहीं है अभी पर।
2: आज भी मुश्किल पड़ता है?
3: हाँ, अभी जाते हैं तो सवारी बहुत कम मिलती है तो अभी भी पैदल जाने पड़ते। वैसे तो मेरे भाई ने जैसे आबू रोड है ऐसे मकान ले लो उधर रहते, पर जैसे गाँव में मेरे मम्मी पापा रह रहे हैं, छोटा भाई रह रहा हो तो उधर जाने पड़ते। 3 भाई ऐसे कस्बा में रह रहे हैं और मम्मी पापा भी काम, बहुत जमीन है, घर है, इसलिए वो छोड़ के नहीं, तो उनके पास तो जाना पड़ेगा।
2: जी जी बिल्कुल। और आप आपके गांव से राजस्थान की तरफ आपने रुझान किया, कितने समय हो गए राजस्थान में रहते हैं?
3: यहाँ मैं 6 साल हुई है।
2: अच्छा, 10 साल उधर रहे?
3: घर पे रहे, घर पे तो 10-12 साल घर पे रहे।
2: अच्छा, उसके बाद आप इधर आए राजस्थान?
3: हाँ, उसके बाद गुजरात में भी रहे, गुजरात में रहे 5-6 साल गुजरात रहे।
2: गुजरात रहे, गुजरात में कहाँ?
3: गुजरात में भी कंपनी में काम करते।
2: कौन से शहर में रहे?
3: अहमदाबाद कलोल।
2: अच्छा, अहमदाबाद कलोल रहे, तो ये कड़ी कलोल।
3: हाँ, कड़ी कलोल।
2: तो ये आप जैसे कि उधर से हिंदी भाषा है ना, आपके कौन सी भाषा चलती, भोजपुरी या हिंदी?
3: नहीं, हम तो हिंदी बोलता,
2: तो हिंदी भाषा बोलते, फिर इधर गुजरात में गुजराती भाषा, तो कैसे आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा?
3: नहीं, यहाँ अटपटा लगा तो, पर अपने बोलते तो बंजी सब गुजराती की, सब अपने हिंदी में ही बोलती, बात करती अपन में बोलती तो गुजराती बोलती, हमसे बोलती तो हिंदी में बोलती।
2: तो आपका इधर आके मन लग गया?
3: हाँ, अच्छा लग रहा है, रह रहा है, अब नौकरियाँ पति देव रहेंगे हुए, हमें रहना पड़ेगा।
2: जी जी बिल्कुल। और फिर कलोल रह करके फिर आप मावल आए?
3: हाँ, पहले कलौल में रह रहे थे, उसके बाद इधर आए, अभी इधर बच्चा पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं।
2: अच्छा, कितने बच्चे हैं?
3: हमारे 5 बच्चे हैं, 5 लड़का लड़की नहीं।
2: 5 ही लड़के हैं?
3: 5 लड़का लड़की नहीं।
2: अच्छा, तो लड़की की कमी खलती नहीं है बेटी की?
3: बेटी की खलती है, इसलिए बेटी एक रात देखा देगा तो 5 लड़के हुई है, एक लड़की जो रहे थे।
2: जी जी, तो इस तरह पांच बेटे हो गए बेटी की राह देखते देखते। तो पांचों लड़कों को पढ़ा रहे हैं आप?
3: नहीं, सबसे बड़ा है वो अपने पापा संग काम कर रहा हुआ, चार छोटे छोटे वो चारों पढ़ रहे हैं।
2: तो जैसे कि आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं तो आपको कभी महसूस होता होगा कि काश मैं भी पढ़ती तो?
3: हाँ महसूस होता, पढ़े होते तो हम जाते तो अंगूठा लगा देते, पढ़े होते तो हम भी शान कर देते।
2: तो आप अपने बच्चों से पढ़ाई सीख सकते हैं ना?
3: हाँ, बच्चा बोलते हैं मम्मी तुम अपना नाम लिख लो, देखो सीख लिया, हम सिखा देंगे। हम बोलते हैं नहीं, क्या करने अब, तो अब बच्चा पढ़ लेंगे वही बहुत है हमारे लिए, क्या करने अब, इतनी कटी रही वो भी कटी आई, बच्चे नहीं पढ़ाई जरूरी है, बच्चा पढ़ जाएंगे तो बस।
2: तो जैसे आप एक छोटे से गाँव से आप कड़ी जैसे कस्बे में आए, फिर कड़ी से वापस मावल गांव में आ गए, तो आपका मन लग गया इधर आके?
3: हाँ मन तो लगे, अब जहाँ रहेंगे तो मन तो लगे अच्छा लगे, अब सबके संग में यहाँ बैठते हैं उठते हैं, प्रेम सराहते हैं सब, एक दूसरे से बात करते हैं तो अच्छा लगता।
2: आपके रिश्तेदार सब उधर यूपी में?
3: हाँ रिश्तेदार तो कोई रह रहे हैं, पर हम किसी से रिश्तेदार से अपने अपने घर में रहते हैं, जो बात करे उससे करते, नहीं तो अपने घर में ही बस।
2: लेकिन आपके घर वाले तो सब उधर ही है ना?
3: हाँ हमारे घर वाले कलोल में काम कर रहे हैं।
2: अच्छा कलोल है, और आप यहाँ पर?
3: ये रह रहे थे पर इधर काम छोड़ दिए तो आप कलोल में पहुँचिए, तो अभी कलोल में रह रहे हैं हम, यहाँ बच्चा पढ़ रहा है इसलिए यहाँ रह रहे हैं।
2: तो क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड?
3: हमारे वो प्लास्टिक कंपनी है ना, उसमें ठेका आदमी को बुला के ला के उन पर काम करवाते, ठेका चला रहे हैं।
2: अच्छा तो इसमें भी ट्रांसफर सिस्टम है क्या, पहले कलोल फिर अभी आबू मावल?
3: ऐसा है जैसे अभी इधर कंपनी में काम लिया तो उसमें सेठ पैसा नहीं बढ़ा रहा हुआ, जैसे कम पैसा दे रहे हैं, अब लेबर हमारी ज्यादा मार रही है इसलिए इधर छोड़ दिया, तो उधर दूसरी जगह ले लो वैसे उधर कर रहे हैं।
2: जी जी, आपके पांच बच्चे हैं, आपके हस्बैंड कमाते अकेले है, फिर वो आपके घर में चल जाता है?
3: हाँ बच्चा नहीं है पर पूरा हो जाता खर्चा पानी, बच्चा है सब खर्चा है, भाड़ा किराया है सब।
2: आप भी कुछ करते हैं?
3: नहीं नहीं हम तो घर पे ही रहता, हम कुछ भी नहीं करते,
2: बस आप अपना छोटा मोटा काम करते हैं घर का?
3: हाँ अपना छोटा मोटा काम है, बच्चन को बस सुबह उठाओ तैयार करो, नाश्ता पानी बनाओ, नहीं स्कूल भेजना है, झाड़ू पोता पानी ये काम करना।
2: जैसे आप यूपी में रहे, फिर गुजरात में रहे, अभी राजस्थान में रहे, आपको सबसे अच्छा मन कहाँ पे लगा?
3: अब अच्छा तो गुजरात में भी अच्छा लगता रहा, इधर भी अच्छा लग रहा।
2: नहीं कहते हैं कि एक तो भाई जहाँ अपना बर्थ प्लेस होता है, जहाँ जन्म स्थान होता है, वहाँ से ज्यादा लगाव रहता है?
3: वो तो रहा, तो मम्मी पापा की, भाई की, भाभी की, सबकी याद आती है कि अपना कैसे इधर रह रहे हैं, तो घर पे जाए सब बार बार याद आती है उनकी।
2: तो कितने समय से आप जाते हो अपने घर पर?
3: एक साल हो जाए, दो साल, तीन साल ऐसे हो जाती है तब जाते।
2: तो फिर वो लोग आते हैं मिलने इधर?
3: नहीं नहीं इधर दूर पड़ते, हमारे भाई खेती बाड़ी है सब, नौकर पैसा उधर काम करते थे, इधर नहीं आता, वो तो घर पे ही रह रहे हैं सब। हमारे चार भाई हैं, चार भाभी है, और चार बहन है, एक दिल्ली रह रही है, एक बरेली में, एक मियाऊ में, और हम इधर रह रहे हैं।
2: सभी आपसे दूर है?
3: सभी दूर है, हाँ भाभी है सब, बहुत याद आती है भाभी की, भाई की, फोन कर लेते हैं बात कर लेते।
2: जी जी, आजकल तो फोन का सिस्टम अच्छा है कि चलो याद आई और फोन किया,
3: भाई भी बात कर ले, भाभी कर ले, दीदी कर ले, सब लोग कर ले, मम्मी कर ले, पापा कर ले सब। अब मम्मी भी है, पापा भी है, चाचा है, चाची है, सब लोग।
2: जी, और आपके सासू जी, आपके जेठानी वगैरह भी आते हैं इधर मिलने आपसे?
3: नहीं वो नहीं, सासू ससुर तो नहीं है, जिठानी है, जेठ है, देवर है, देवरानी है,
2: वो सभी आपके गांव में ही रहते हैं या कलोल रहते हैं?
3: नहीं वो तो घर पर रह रहे हैं, जिठानी है, माँ जेठ है, वो घर पर, वो सब लोग घर पर रह रहे हैं, हम अकेले रह रहे इधर।
2: अच्छा तो फिर उनकी भी तो याद आती होगी ना?
3: हाँ आती है, बात कर लेते मोबाइल से, दो ननद है, ननद अपने अपने घर है, उनसे बात कर लेता, नंद से, नंदोई से।
2: अभी कितना समय हो गया उधर गए हुए?
3: अभी अभी तो ये अप्रैल में गए थे, भतीजी की शादी उसमें गए थे।
2: फिर सभी जगह जाते हो, मिल के आते हो?
3: हाँ जब जाते तो सभी जगह मिल के आते, जाते मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन के, अपने ससुराल सिगरे।
2: अच्छा, और आप अपने बच्चों के प्रति क्या लक्ष्य रखते हो? उनको अच्छा पढ़ा लिखा करके अच्छा मतलब अच्छी पोस्ट तक पहुंचाना चाहते हो, जॉब करवाना चाहते हो, या फिर बिजनेस करवाना चाहते हो, क्या लक्ष्य बनाया आपने?
3: अब पढ़ाना तो चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चा खूब पढ़े लिखे हैं, नौकरी हो, लेकिन प्राइवेट नौकरी है तो अब पति हमारे इतना कमाते, उसमें खर्चा पानी पूरा मुश्किल से पात हो, इसलिए प्राइवेट नहीं पढ़ा पा रहे, सरकारी में पढ़ रहे हैं, खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है।
2: कोई बात नहीं, देखो आगे जाने वाले बच्चे तो सरकारी में से भी निकल पड़ते हैं, वो भी आगे बढ़ जाते हैं,
3: पर पढ़ाते हैं सरकारी में पढ़ते हैं, और देखो ट्यूशन लगा दी, दो की छोटे छोटे ट्यूशन जाता पड़ा।
2: तो चलिए शांति जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का। तो आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मावल की बहनें हमारे साथ बने हुए हैं, शांति जी, तीजा माता जी। तो आइए फिर से हम बात करेंगे तीजा माता जी से। तीजा माता जी, आप बता रहे थे कि आबू से विवाह करके आप मावल में आ गए।
1: हाँ जी, हाँ, आबू से विवाह करके आबू मावल में आ गए।
0: नहीं, आवल आए ना, पहले तो आवल रहते थे।
1: वैसे शादी तो वहाँ ससुराल में हुई थी, केसरगंज में, फिर यहाँ गए थे।
0: कहाँ पे आपका ससुराल?
1: केसरगंज।
0: केसरगंज
1: सिरोही के पास में, सिरोही के पास में।
0: हाँ, तो केसरगंज आपका ससुराल था।
1: हाँ।
0: फिर वहाँ से इधर आए।
1: हमारे सास गेट पे थी, तो गेट पे से रिटायर हो गई, तो यहाँ गए।
0: जी जी, तो आवल रहे, फिर आवल से मावल आए।
1: आबू से मावल आए।
0: तो आपके सास रिटायर्ड हो गए, उसके बाद आप मावल आए। अच्छा, आप नई नई शादी करके आए, आप दोनों सास बहू कैसे रहते थे?
1: वो राजकुशी रहते थे, जैसे माँ है वो समझती थी बेटी, हम खूब हिल मिल कर बात करते थे, हंसी मजाक कर लेते थे सास बहू। हाँ, फिर ये ट्रेनिंग में चले गए उदयपुर, तो हम दोनों माँ बेटी जैसे रहते थे। हाँ, फिर बहुत 6-7 साल हो गई जब फिर हम इनके साथ रह गए, चले गए।
0: अच्छा, 6-7 साल कहाँ चले गए?
1: वहाँ इनके साथ आ गए, हमारे सास रिटायर हो गई तो यहाँ आ गए। फिर ये मकान बना रखा था, वो यहाँ रहती, मैं फिर उनके साथ रहती, महीना भर रह के फिर वापस आ जाते, फिर यहाँ रहते महीने 2 महीने, फिर थोड़े दिन चले जाते इनके साथ।
0: अच्छा, बीच बीच में आवल जाते, वापस मावल आ जाते?
1: आवल नहीं, ये जहाँ ड्यूटी करते यहाँ।
0: अच्छा, आपके पति देव जहाँ सर्विस करते थे। हाँ। तो कहाँ कहाँ रहे आप?
1: अब रहे तो कहीं जगह, पहले तो ये उदयपुर रहे थे। हाँ, तो 1 महीना उदयपुर रह के आए, जिसके बाद में ये इकबालगढ़ आ गए। इकबालगढ़ से फिर जो अपने कह रहे सिलोत्रा गए, फिर सीधे भिलड़ी गए, भिलड़ी से फिर वहाँ गंदम चले गए।
0: अच्छा, तो इतनी जगह आप रहे फिर?
1: ये तो मास्टरों की बदली होती रहती है, 3 साल में 3 साल में इस मारे।
0: अच्छा, तो आपके पतिदेव तो टीचर थे ना?
1: टीचर थे, फिर स्टेशन मास्टर हो गए ना।
0: अच्छा, स्टेशन मास्टर हो गए, तो कैसे? पहले तो टीचर थे, अध्यापक थे, फिर स्टेशन मास्टर?
1: फॉर्म भरा, फिर वो आ गई ड्यूटी।
0: अच्छा, तो स्टेशन मास्टर बनने के बाद आप जगह जगह घूमे?
1: हाँ, जगह जगह घूमे, जगह जगह घूमे,
0: और बीच बीच में वापस आप घर पर भी आते थे?
1: हमारे सास को संभालते थे ना फिर तो।
0: तो आपके सास के कभी छुट्टियाँ नहीं होती थी?
1: नहीं होती थी, 15 दिन में रेस्ट पड़ता था।
0: हाँ। तो फिर वो आपके पास आते थे?
1: वो फिर हमारे पास ही रहने लग गई थी। हाँ। फिर वापिस फिर गुजर गई, जब फिर हम रहने लग गए, बड़े बड़े गंदम में चले गए, बच्चे पढ़ने जैसे हो गए, फिर यहाँ आके मकान बना लिया, मकान में यहाँ रहते थे।
0: आपके कितने बच्चे?
1: हमारे 4 लड़के 1 लड़की।
0: अच्छा, तो सभी को पढ़ाया आपने?
1: सभी को, सभी को मैं पढ़ाया।
0: तो जैसे कि मावल आप रहते हो, फिर पढ़ाई कहाँ की बच्चों ने?
1: बच्चों ने यहाँ स्कूल थी जब 8वीं तक थी, तो 8वीं तक यहाँ, नहीं 5वीं तक थी, 5वीं के बाद आबू रोड भेजा, आबू रोड पढ़े।
0: आबू रोड ही रहते थे, आबू रोड से डेली?
1: आबू, यहाँ से आबू रोड जाते थे पढ़ने।
0: अच्छा, तो यहाँ से कोई गाड़ी की व्यवस्था करवाई आपने?
1: गाड़ी थी ना, सुबह सिगड़ोन थी, ये पार्सल थी, फिर साइकिल ले दी, फिर साइकिल से आते जाते थे।
0: अच्छा, और अभी तो आप भी दादी नानी बन गए?
1: हाँ जी, हाँ, अभी तो 5 बच्चे हैं, उनके बेटा बेटी है, नवासा है।
0: आपके जमाने में गाड़ियाँ चलती थी?
1: गाड़ियाँ तो चलाते थे ना।
0: नहीं, ट्रेन तो चलती थी, बसें चलती थी?
1: बहुत, अबरोड से अहमदाबाद तक खूब चलती थी, उदयपुर जाती थी।
0: तो आपके तो कोई दिक्कत नहीं आई इधर उधर आने जाने में?
1: कुछ नहीं, यहाँ से कभी आवल रहते थे जब 5 से उतर के पैदल जाते थे 2-2.5 किलोमीटर।
0: अच्छा, और जैसा कि आप बता रहे हो कि आपकी सास आपको बेटी की तरह रखते थे, आपके भी बहू हैं, तो आप कैसे रह रहे हो बहुओं के साथ?
1: आपकी तो देखो अभी भी ठीक है भगवान की दया से, और वो तो टेम से टेम, जैसे पहले जैसे टेम तो है नहीं, अब थोड़ा परिवर्तन तो हो ही गया ना, तो भी अपने को तो खाना मिल जाता है, खाने देते।
0: जी जी, खाना तो मिल जाता है, लेकिन कहते हैं कि परिवर्तन तो खैर होता ही है, थोड़े विचारों की भिन्नता आ जाती है। पर जैसे कि आप शादी करके आए, उस समय भी सास बहुओं के विचारों में तो भिन्नता होती है, तो अभी आपके बहुएं हैं, तो बहुओं के साथ आपका कैसा रहता है? आपको जैसे बेटी बना के रखा, आप अपने बहुओं के साथ कैसे रह रहे हो?
1: अब देखो बेटी बराबर रखते हैं, फिर वो टेट हो जाती है, फिर बोलती है नहीं बोलती, ऐसे हो जाता है, खटपट तो होती चलती है। चलो अब दो तो यार रहती नहीं है, दो गंदम में वो लड़के डरे भरे तो वहीं रहती है, वो दो है तो यहाँ रहती है, एक थोड़ी आगे रहती है आगे की वजह, और एक यहाँ रहती है हमारे पास।
0: जी जी, आप तो प्यार से रहते हो लेकिन सभी के स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं। और
1: तो वो उसके एक बच्चा हुआ और वो छोड़ अभी गया छोड़ के, तभी बैठी घर पे 3-3.5 साल हो गई।
0: अच्छा अच्छा, बेटी की शादी कहाँ करवाई?
1: ये फुलेरा, फुलेरा है ना।
0: अच्छा फुलेरा, और उनके एक बेटा है वो यही है?
1: हाँ यही है इसके पास।
0: अच्छा, क्या कारण होगा?
1: अब कारण क्या बताए, दोनों जने के क्या पता क्या कारण है। पहले एक साल तो अच्छी तरह रही है और फिर जो लड़का हुआ इसके बाद में खटापटी होने लगी, बोलता नहीं। खटापटी तो क्या, मारता कुछ नहीं, बोलता नहीं खाली। अब क्या पता वहाँ रहता है, वो बोलती है हम चले तो फिर नहीं मैं यहाँ आ जाऊँगा, वो बोलती मैं यहाँ आऊँ तो फिर मैं वहाँ चले जाऊँगा, क्या पता बार पग होगा उसका सर। तो फिर एक दिन आके छोड़ के चले गए।
0: तो आप लोगों ने कुछ कहा नहीं?
1: नहीं हमने नहीं कहा,
0: क्योंकि आपके चार बेटे हैं, एकलौती बेटी है, तो भाइयों ने कुछ कहा नहीं कि क्या गलती है जो इसको छोड़ के जा रहे हो?
1: कुछ नहीं बोला। अब भाई तो दो भाई वहाँ हैं, वो एक दो भाइयाँ हैं तो एक तो कुछ बोलता ही नहीं, वो तो बहुत सीधा है। एक भाई ने बोला क्या बात है, तो बोला कुछ नहीं, वो बोले भाई बोल बोल बोल, बस उनको वो ही है कि वो वहाँ आती है तो वो वहाँ चले जाता है, वो वहाँ चले जाती है तो ये यहाँ घर पे आ जाता है। बात ये है एक नाना देखा ली और ससुराल में कुछ नहीं, एक जेठ है तो वो तो बोलते ही नहीं, उनसे तो शादी में भी नहीं बुलाया।
0: जी, तो अब आप, आपकी बेटी पढ़ी हुई है?
1: हाँ है, मैं बीएड करी हुई है।
0: तो जॉब कर रहे?
1: जॉब ये यहीं जा रही है, स्कूल पढ़ा रहे, ट्यूशन पढ़ाती बच्चों को,
0: ट्यूशन पढ़ाते हैं। कहते हैं कि देखिए इस तरह की
1: इंग्लिश स्कूल में जाती है पढ़ाने।
0: जी जी, इस तरह की परिस्थितियाँ आती है तो माता पिता को बेटी को गले लगाना चाहिए।
1: गले तो लगा ही रखा है ना अपने तो।
0: बिल्कुल माता जी, और आप क्या कहना चाहेंगे? आप खुश है?
1: बस खुश, हाँ खुश है।
0: तो हमारे सुनने वाली माताओं को कुछ कहेंगे, कोई संदेश देंगे?
1: अब मेरे से संदेश दिया नहीं जाएगा।
0: चलो कोई बात नहीं। और शांति जी, आप अपने जीवन के अनुभव से हमारे सुनने वाली बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
2: अपने बच्चों को, बेटी को, बेटों को अच्छे से पढ़ाना, अच्छे संस्कार देना, अच्छे से रखना, उन्हें प्यार देना, लाड़ दुआर देना। जो ससुराल जाए तो उन्हें ये नहीं आवे कि हमारे मम्मी पापा ने, भाई ने, बहन ने, भाभी ने अच्छे से रखो, प्यार से रखो, तो उन्हें दुख नहीं होना चाहिए।
0: तो शांति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तीजा माता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने अपने जीवन के अनुभव सुनाए और रेडियो मधुबन और सुनने वाले श्रोताओं को इतना समय भी दिया, आपके जीवन के अनुभव भी शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: तो प्यारे श्रोता बंधु, आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। मावल गाँव की रहने वाली बहने जो तीजा माता जी और शांति जी शर्मा, इन दोनों के जीवन के अनुभव आपने सुने हैं। कहते हैं कि देखिए तीजा माता जी के आज 70+ इनकी उम्र है और इस उम्र में चार बेटे एक बेटी है, बेटी को के ससुराल वालों ने बेटी को छोड़ दिया, इनके पास है लेकिन फिर भी कहती है कि एक नारी कभी नहीं हारती, अपने बच्चों की अच्छी तरह पालना करती है, उन्हें पूरी तरह प्यार देती है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर फोन कीजिए और इस तरह आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से विदा लेना चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: थी न कोई बात, याद न तुमको आ सके। तुमने हमें भुला दिया, हम न तुम्हें भुला सके। अगर भूलनी ही है तो किसी की पुरानी ऐसी बात को भूल जाएं जो आपको पसंद नहीं आई, जो आपको जख्म दे गई। ऑन द ईव ऑफ फ्रेंडशिप डे एक अपील है, एक सभी से गुजारिश है, खुद से भी। बरसों से सजाए हुए बाग कभी न उजाड़े, बरसों से बनाए रिश्तों से मुंह न मोड़े, बल्कि शिकवे शिकायतों को मिटा कर मिलाए हाथ, कुछ भूल कर कुछ भुला कर मिल जाए एक दूसरे के साथ। फ्रेंड्स, कल है फ्रेंडशिप डे और आज हम सब फिर से इकट्ठा हो गए हैं एक दूसरे के साथ ऑन एयर, यस रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, जो हम सब का सदा बहार मनमोहक साथी है, हमें एक दूसरे के साथ मिलाता है। यही वो जरिया है जो हमें एक दूसरे के करीब लेकर आता है, दिल से मन से। जुड़े रहिए पूरे 10 बजे तक स्वर्ण लता के साथ, कार्यक्रम है गुलदस्ता।
1: Hi, this is Ravina Tandon and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.

0: यूं ही दोस्ती को सजाना। तेरे संग खुशी हर पल लगे जैसे नई जिंदगी। एक दोस्त ही तो दोस्त को समझ सकता है। वैसे दोस्त है कौन? हम सोचते हैं कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो हमारे साथ पढ़ते हैं, जिनके साथ हमारा मन मैच हो जाता है, वही सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, ये तो सही है कि जिसके साथ भी हमारा वेवलेंथ या मन मैच कर जाता है, दिल जुड़ जाता है, वही हमारा दोस्त है। तो यहीं से तो हम अपने पॉइंट को सिद्ध कर सकते हैं कि किसी के साथ अगर आपका मन मैच हो जाता है, जुड़ जाता है, वेवलेंथ मैच कर जाता है, वही हमारा दोस्त या साथी बन जाता है। दोस्त माना दो हस्ती जिनके तकदीर जुड़ जाते हैं, जिनकी तकदीर एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए ही बनी होती है। एक दूसरे के मूड को अपलिफ्ट तो करते ही हैं, एक दूसरे के सुख दुख के वो साथी होते हैं, एक दूसरे को रास्ता दिखाते हैं, एक दूसरे को इशारा भी देते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं। वैरायटी वैरायटी वैरायटी बातें हम कर सकते हैं। दोस्त सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है जो दो दिलों को फिर से जोड़ देते हैं, है ना? तो बने रहिए स्वर्णलता के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में। आज सिर्फ दोस्ती पर ही बात नहीं होगी, आइए देखते हैं आगे और क्या क्या होता जाता है इस कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन।
2: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है, उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बहार आई, करके सिंगार आई, ख्वाबों के हार लाई, आया खुशी का जमाना, उल्फत ने छेड़ा तराना। 1954 में इस गीत को बनाया गया था। फ्रेंड्स, पिछले सप्ताह आपको याद होगा कि हमने आपके लिए प्ले किया था टाइमलेस क्लासिकल, और आज भी हम टाइमलेस म्यूजिक ही प्ले करेंगे। टाइमलेस गीतों को स्मृति में हम रखते हुए, जिनके बहाने बहुत कुछ याद करने वाले हैं। यादों के झरोखे में आज क्या है, कल आज और कल के फसाने यादों के झरोखों में। वैसे आज हम दो महान हस्तियों को भी याद कर रहे हैं। उनकी आवाजें ऐसी खास हैं कि इन दोनों आवाजों को अगर हम एक ही गीत में सुन लें तो आपको और भी मालूम पड़ जाएगा

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे, शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का? हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

बिन जाऊं कहां दुनिया में आगे। एक ही गीत में हमने दो महान हस्तियों की आवाजों को सुना और इन दोनों कलाकारों को हम अच्छी रीति भली भांति जानते हैं, किशोरदा रफी साहब। इन दोनों की आवाजों को एक ही गीत में सुनकर हम सब बहुत खुश हो रहे थे। और साथियों, आपको बता दें कि बीते कल रफी साहब की स्मृति दिवस थी और 4 अगस्त को जन्म तिथि है किशोरदा का। ये दोनों ही हमारे साथ अभी नहीं है, हमारे बीच नहीं है, पर इन दोनों की आवाजों को हम सुनते हैं और उनकी प्रेजेंस को फील करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों की जो दोस्ती थी, आवाजों में जो दोस्ती थी, इसको हम देखेंगे गीतों में और एंजॉय भी करेंगे और इनके किए हुए कार्यों को याद भी करेंगे और साथ में हम इस बहाने मना भी रहे हैं फ्रेंडशिप डे। दोस्तों, दो कलाकार जब एक ही मंच पर आ जाते हैं तो क्या खूबसूरत

0: महफिल सज जाती है ना।
1: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: कल शुरू हो जा।

0: बस सा पे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: हा? रे के आगे क्या है?
2: गा।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो माँ
0: चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

0: సరేగామా 1 2 3 4 సరేగామా సరేగా సరేమా మంగారేసా సరేగామా సరేగా సరేమా మంగారేసా మంగారేసా మంగారేసా మంగారేసా మంగారేసా మంగారేసా మంగారేసా.
1: प्यार के तराने हम सब सुन रहे हैं फ्रेंडशिप डे के बहाने, ओल्ड मेलोडीज के बहाने, और इन दो महान कलाकारों की जो स्पेशल तिथि है उसके बहाने भी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम गुलदस्ता, और मैं हूँ स्वर्णलता. दोस्तों, आज के प्रोग्राम को हम बहुत सारे कारणों से पेश कर रहे हैं, और इसमें विशेष हम सुनेंगे इन दोनों महान कलाकारों की आवाजों को. तो सबसे पहले अगर हम रफी साहब की बात करें, वो किशोरदास से सीनियर रहे और उन्होंने ऑन स्क्रीन बहुत कम एक्टिंग की, रेदर वो दो फिल्मों में गेस्ट के तौर पर अपीयर हुए थे, आए थे, दिखाई दिए थे. और किशोरदास जो हैं वो एक्टिंग में भी अपने आप को साबित किए और सिंगिंग में तो वो कमाल दिखाते ही थे. तो आइए ना अब रफी साहब की आवाज में एक गीत हम आपको सुनवाते हैं जो हमारा बहुत फेवरेट है.
2: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर. डायल कीजिए 101 अपने फोन से. सजग रहिए, सुरक्षित रहिए. रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी.

0: सूफी साहब ने बहुत सारे गीत गाए हैं और उस कलेक्शन से एक गीत चुनना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम हो गया था। तो हमने सोचा कि इस गीत को प्ले किया जाए, जिसके बोल कितने खूबसूरत हैं कि जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, और हम कहेंगे जो बात आपकी आवाज में है, क्या बात है, क्या बात है, क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह, क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं। वैसे हमारे जो फैंस हैं रफी साहब के, जो ऑडियंस हैं, वो रफी साहब की एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं, है ना। तो लेकिन कहते हैं ना, जो चले जाते हैं दोबारा आते जरूर हैं, पर वो अपने अलग किरदार में होते हैं। तो रेडियो मधुबन पर आप सब सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता, और आज हम गुलदस्ता कार्यक्रम में दो महान कलाकारों को एक साथ सुन रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि रफी साहब ने एक बार किशोर दा के लिए प्लेबैक किया था। हम सबको मालूम है कि किशोर दा स्वयं एक गायक कलाकार रहे हैं, तो उनके लिए भी रफी साहब ने प्लेबैक किया था और फिल्म का नाम रागिनी। आइए सुनते हैं उस गीत को, और भी बातें होंगी इस सुंदर मन भावन रंगारंग मंच पर।
1: मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा शुभ प्रेम, ओम शांति।

0: निसदिन गाए गीत मिलन के मन मोरा बांवरा। रफी साहब ने इस गीत को गाया था किशोरदा के लिए, माना प्लेबैक किया था। 1958 में बनी थी फिल्म रागिनी और इस फिल्म के संगीतकार थे ओपी नैयर साहब। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर हमने देखा कि कैसे ये दो आवाजें जो हैं हमारे दिलों में घर कर गई हैं। बरसों से हम इन दोनों आवाजों को सुनते आ रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे दिलों में अमिट छाप छोड़ी है। तो आइए ना किशोर दा को भी याद कर लेते हैं, उनके दो गीतों को सुनते हैं बैक टू बैक। पहला गीत है किशोर दा और लता का और उसके बाद हम सब का एक फेवरेट सॉन्ग बजेगा। दोस्तों आज का जो यह डुएट सॉन्ग है यह स्पेशल है, क्योंकि यह गीत कभी नहीं प्ले हुआ है इस मंच पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आज हम फ्रेंडशिप डे और ओल्ड मेलोडीज के बहाने दो कलाकारों को भी सुन लिए फिर से। दोस्तों, ये दो महान कलाकार जो हैं आज भी हम सबके दिलों में बसे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन जो है सुर के नाम, साधना के नाम, संगीत के नाम कर दिया था। तभी तो हम इनको याद कर रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा गाए हुए गीत हमें मोटिवेट करते हैं, है ना। इनके द्वारा गाए हुए गीत इनकी आवाजों को बार बार सुनने के लिए हमें प्रेरित भी करते हैं। तो इसलिए किशोरदा की आवाज में भी हमने दो गीत सुने और ये दोनों ही गीत बहुत स्पेशल है। तो अभी हम आपसे इजाजत चाहेंगे, फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए बेहतरीन विषय के साथ। और जाते जाते रफी साहब की आवाज में फ्रेंडशिप का एक गीत एक अलग तरीके से आइए सुनते हैं। वैसे तो कुछ गीत जो हैं फ्रेंडशिप सॉन्ग के रूप में वो बनाए जाते हैं, पर कुछ गीतों में फ्रेंडशिप की भावना आती है। युगों युगों की फ्रेंडशिप, जन्म जन्म की फ्रेंडशिप, जो मिटाए नहीं मिटते। तो आप और हम भी एक बार नहीं मिले, बार बार मिले और आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि बारंबार हम मिलते रहें, उस स्मृति को उजागर करती है यह धुन, इस गीत के बोल। तो फिर मिलेंगे अगले सप्ताह बेहतरीन विषय के साथ, नगमों के साथ, तरानों के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर।
1: ओए रुक, ओए रुक रुक रुक, पीछे पीछे पीछे चल। ओए स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है, लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
2: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
1: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
3: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? ये हुई ना बात। मैं तो बस यही कामना करता हूँ कि आप सब हमेशा मजे में रहें, खूब पढ़े लिखें, अपना और माता पिता का नाम रोशन करें। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ चलते हैं मीना से मिलने। लेकिन ये मीना, हाँ वो रही मीना, अपनी माँ के साथ घर के आंगन में बैठी है।
1: माँ, आज बहन जी ने हमें बताया कि शून्य यानी जीरो का आविष्कार भारत में हुआ था।
2: हाँ मीना बेटी, भारत ने शून्य दिया, तभी तो दुनिया को गिनती आई।
1: माँ, बहन जी ने ये भी बताया कि...
3: क्या बताया तुम्हारी बहन जी ने?
2: अरे सरला, तुम कब आई?
3: बस मीना की माँ, दो तीन दिन पहले ही आई हूँ गाँव में।
2: मीना, ये सरला है, सुमी की चाची जी, साथ वाले गांव में रहती हैं।
1: नमस्ते चाची जी।
3: जीती रहो बेटी,
4: जीती रहो बेटी, पानी पीती रहो बेटी।
3: अरे मीना की माँ, राजू नजर नहीं आ रहा है।
2: वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है। सरला, अब तो तुम्हारा बेटा किशन भी काफी बड़ा हो गया होगा।
3: हाँ, 7 साल का हुआ है पिछले ही महीने। किशन, किशन बेटा यहाँ आओ। देखो कैसे शर्मा रहा है। किशन, इन्हें नमस्ते करो। शर्मा रहा है।
4: शर्मा रहा है, थोड़ा घबरा रहा है।
2: किशन बेटा, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, बोलो बेटा।
3: मीना की माँ, ये स्कूल नहीं जाता।
2: क्या, लेकिन क्यों? स्कूल जाना तो हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है।
3: चलो छोड़ो ना, और बताओ घर में बाकी सब कैसे हैं?
2: सब ठीक है सरला बहन।
1: किशन, बाहर आंगन में झूला है, तुम झूला झूलोगे?
5: हाँ झूलूंगा।
1: चाची जी, क्या मैं किशन को अपने साथ झूला झुलाने ले जाऊँ?
3: हाँ हाँ मीना बेटी, जा किशन,
4: जा किशन, झूला झूल के आ किशन।
0: मीना किशन को झूला झुलाने बाहर ले गई। उनके जाने के बाद मीना की माँ ने सरला से कहा,
2: सरला तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, किशन स्कूल क्यों नहीं जाता?
3: अब क्या बताऊं? किशन के पिताजी का कहना है जब बड़े होकर किशन को उनकी तरह किसान ही बनना है तो स्कूल जाने की क्या जरूरत है।
2: सरला बहन, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें किशन को स्कूल जरूर भेजना चाहिए, ये उसका अधिकार है।
3: अधिकार?
2: हाँ, 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को स्कूल में 8 साल तक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है।
3: अरे मीना की माँ, मैं तो किशन को स्कूल भेजना चाहती थी लेकिन किशन के पिताजी ने मना कर दिया।
2: तुम चिंता मत करो सरला, मैं भाई साहब से इस बारे में बात करूँगी। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। ओहो,
3: क्या हुआ मीना की माँ?
2: चीनी तो है ही नहीं, एक मिनट। मीना, मीना बेटी।
1: जी माँ।
2: ये लो पैसे और लाला जी की दुकान से चीनी ले आओ।
1: अभी लाती हूँ माँ। चाची जी, क्या मैं किशन को भी अपने साथ ले जाऊँ?
3: हाँ हाँ मीना, बल्कि मुझे भी साबुन मंगवाना था। किशन, ये लो पैसे, एक साबुन ले आना।
0: मीना और किशन लाला जी की दुकान की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उन्हें मिला मीना का दोस्त भोलू। भोलू ने मीना को बताया कि पास ही में एक नई दुकान खुली है जिससे सामान खरीदने पे ग्राहक को फायदा ही फायदा है, जैसे एक चीज खरीदने पे दूसरी मुफ्त या कोई चीज खरीदने पे इतने रुपए की छूट वगैरह वगैरह। मीना और किशन भोलू के साथ उस दुकान पे पहुँचे।
5: मीना दीदी, मैं ये साबुन खरीदूंगा।
1: किशन, जरा दिखाओ तो ये पैकेट, इसका दाम तो 12 रुपए लिखा हुआ है जबकि यही साबुन लाला जी की दुकान पे 5 रुपए का मिलता है।
5: ध्यान से देखो मीना दीदी, इस पैकेट में एक नहीं 2 साबुन हैं। 12 रुपए में 2 साबुन, हुआ ना ये फायदे का सौदा?
6: फायदे का सौदा नहीं किशन, घाटे का सौदा।
5: घाटे का सौदा, वो कैसे भोलू भैया?
6: अरे भाई सीधी सी बात है, यहाँ से ये साबुन खरीदने में तुम्हें 2 रुपए का नुकसान होगा।
5: मैं कुछ समझा नहीं।
6: मीना तुम ही समझाओ किशन को।
1: देखो किशन, 5 जमा 5 = 10, यानी कि अगर तुम लाला जी की दुकान से 2 साबुन खरीदोगे तो वो तुम्हें मिलेंगे 10 रुपए में, जबकि यहाँ 2 साबुन मिल रहे हैं 12 रुपए में, यानी 2 रुपए का नुकसान। अब तुम ही बताओ क्या ये फायदे का सौदा है।
5: तुम ठीक कह रही हो मीना दीदी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था।
6: किशन, स्कूल में हमारी बहन जी हमें सब सिखाती है, तभी तो हम एक मिनट में पता लगा लेते हैं कि सौदा फायदे का है या घाटे का।
1: अब जैसे ये चीनी का पैकेट देखो, कितने किलो का है ये?
5: आधा किलो का।
1: और इसका दाम क्या लिखा है?
5: 25 रुपए।
1: और ये है 1 किलो चीनी का पैकेट, इसका दाम क्या लिखा है?
5: 45 रुपए।
1: अब तुम बताओ किशन कि मुझे कौन सा पैकेट खरीदना चाहिए?
5: ये 25 रुपए वाला।
6: नहीं किशन, ये फायदे का नहीं घाटे का सौदा है।
5: लेकिन 25 रुपए तो 45 रुपयों से कम होते हैं, फिर भला ये घाटे का सौदा कैसे?
6: किशन थोड़ा सोचो, अगर आधा किलो चीनी 25 रुपए की है तो 1 किलो ही 50 रुपए की, जबकि ये 1 किलो का पैकेट है 45 रुपए का, इसलिए ये 1 किलो वाला पैकेट खरीदना मतलब फायदे का सौदा।
0: मीना किशन को लेके अपने घर पहुंची और जब उसने अपनी माँ और सरला को सारी बातें बताई तो सरला बोली,
3: अब क्या बताऊं मीना बेटी, किशन हिसाब किताब में थोड़ा कमजोर है।
2: तभी तो मैंने कहा था कि किशन को स्कूल जरूर जाना चाहिए, स्कूल जाएगा तो बाकी चीजों के साथ साथ हिसाब किताब भी सीख जाएगा।
4: सीख जाएगा अगर स्कूल जाएगा।
2: किशन बेटा, तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए क्योंकि
5: चाची जी, पिताजी कहते हैं कि मैं बड़ा होके उन्हीं की तरह किसान बनूंगा, फिर भला स्कूल जाके क्या फायदा?
1: किशन, ये हुआ एक और घाटे का सौदा।
5: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि स्कूल जाके तुम बहुत सारी चीजें सीखोगे, जैसे कि विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, तुम्हें किताबें, कॉपियाँ, वर्दी, खाना, ये सब मुफ्त मिलेगा।
2: हैं? मुफ्त?
1: हाँ चाची जी, और तो और जिन बच्चों का घर स्कूल से दूर है उन्हें मुफ्त यातायात की सुविधा भी मिलती है। अब तुम ही बताओ किशन, तुम्हारा स्कूल ना जाना हुआ ना घाटे का सौदा?
5: हाँ मीना दीदी, ये तो सचमुच घाटे का सौदा है।
2: अरे मीना बेटी।

0: शिक्षा मेरा अधिकार है।
1: गाना सुन के तो मजा आ गया, और अब क्या करना है? हाँ ठीक है आपने, अब हमें खेलना है। तो भाई सोच क्या रहे हो, जल्दी से चलते हैं मीना की क्लास में।
2: बच्चों आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं तुम सबको एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है?
3: जी बहनी।
2: आज का शब्द है अचानक। चलो बच्चों अब अचानक के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ।
4: बहन जी अचानक का पहला अक्षर है अ, और अ से होता है आटा।
2: शाबाश दीपू। अब आटे से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
5: आटे में नमक।
2: हाँ कृष्णा, और इस मुहावरे का मतलब होता है
5: बहुत कम होना।
2: बिल्कुल ठीक कृष्णा। चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
6: अ के बाद अचानक में आता है च, और च से होती है चादर।
2: शाबाश रानो, और चादर से जुड़ा मुहावरा?
6: चादर से बाहर पैर पसारना, मतलब कमाई से अधिक खर्च करना।
2: बिल्कुल सही। और अगला शब्द कौन बताएगा?
7: मैं।
2: हाँ चिंटू बताओ।
7: अ और च के बाद अचानक में आता है न, और न से होती है नजर।
2: शाबाश चिंटू, और नजर से जुड़ा मुहावरा?
7: नजर से गिरना यानी अपमानित होना।
2: बिल्कुल ठीक। अब अगला शब्द और उससे जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
8: मैं बताऊंगी बहन जी।
2: हाँ हाँ मीना बताओ।
8: अ च और न के बाद अचानक में आता है क, और क से होता है कान।
2: और कान से जुड़ा मुहावरा?
8: कान खाना, मतलब बहुत शोर मचाना।
2: शाबाश मीना। तो बच्चों खेल के मजा आया ना?
3: बहुत मजा आया बहन जी।
1: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
9: दोस्तों मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

मरम्मत मुकदर की कर दो मौला, तेरे दर पे झुका हूँ मिटा हूँ बना हूँ, तेरे दर पे

जो भी तेरे दर आया झुकने जो सो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आ

मरम्मत मुकदर की कर दो मौला, जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया, जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया, प्यास लेके आया।

सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे, कितनी कोशिशें की थी। सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें

जब तू रूबरू आया, नजर ना मिला पाया, सर झुका के एक पल में, हो सर झुका के।

मौला मरम्मत मुकदर की कर दो मौला। मोरा पिया घर आया, मोरा पिया घर आया, मोरा पिया घर आया, मोरा पिया घर आया, मोरा पिया घर आया, मोरा पिया घर आया, मोरा

0: Mola.
1: ओए रुक, ओए रुक रुक रुक, पीछे पीछे पीछे चल। ओए स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
2: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
1: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
3: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
4: चुलबुली चीनी। चीनी सुबह नींद से उठकर पूरे घर में दौड़ती फिर रही थी।
5: मम्मी, मैं पास हो गई। पापा, मैं पास हो गई हूँ।
4: मम्मी चीनी को इस तरह देखकर हैरान थी।
6: वाह चीनी, तुम पास हो गई?
5: हाँ मम्मी, मेरा रिजल्ट आया और मैं पास हो गई।
6: अच्छा चीनी, ये तो बताओ कौन सी डिवीजन आई है?
5: मम्मी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट।
6: बेटा जरा तुम्हारी मार्कशीट तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं कितने मार्क्स मिले हैं।
5: अरे मम्मी तो मार्कशीट दिखाने के लिए कह रही है।
6: मेरी प्यारी बिटिया, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। तुम्हारे एग्जाम परसों से शुरू हैं। अब सपने देखना छोड़ो और एग्जाम की तैयारी करो।
5: ठीक है मम्मी, मैं इस सपने को सच करके दिखाऊंगी, आप बस मेरी हेल्प करना।
6: लो ये रहा तुम्हारा मिल्क शेक, और जुट जाओ परीक्षा की तैयारी में।
4: चीनी अपने रूम में जाकर दो का पहाड़ा याद करने लगती है। तब उसे याद आता है कि मम्मी से कुछ कहना है।
5: मम्मी, अगर मेरी फर्स्ट पोजीशन आती है तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे?
6: तुम फर्स्ट क्लास आओगी तभी तो तुम्हें मिलेगा तुम्हारा मनपसंद खिलौना।
5: तो मम्मी क्यों ना आप मेरे लिए ये खिलौना पहले ही ले आए।
6: अच्छा।

0: चीनी, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें एग्जाम से पहले मार्कशीट मिल सकती है?
1: नहीं मम्मा।
0: तो फिर कामयाबी से पहले कामयाबी का इनाम भी नहीं मिलता।
1: मम्मी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं पहले मेहनत करूंगी, अच्छे मार्क्स से पास होकर दिखाऊंगी, तभी इनाम मांगूंगी। ओह, मेरी तैयारी तो बेहतरीन है और मेरा फर्स्ट डिवीजन आना पक्का रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरा प्यार गिफ्ट मुझे पहले ही आ जाए, ताकि पढ़ने में मेरा और ध्यान लगे।
2: तभी चीनी मम्मी के पास किचन में जाती है।
1: मम्मी, क्या आपने कभी वर्ल्ड कप क्रिकेट देखा है? उसमें सीरीज के दौरान दी जाने वाली ट्रॉफी पहले ही सभी के सामने एक क्यों रख दी जाती है?
0: हाँ बेटा, वह इसलिए कि दुनिया को पता चल सके कि जीतने वाली टीम को विजय होने पर क्या दिया जाएगा।
1: हाँ मम्मी, उस ट्रॉफी को देखकर हर टीम अच्छे से अच्छा खेलने का प्रयास भी करती है और खिलाड़ी मेहनत भी करते हैं।
0: नॉटी गर्ल, मैं सब कुछ समझ गई। तुम्हें अपनी सिंगिंग डॉल पहले ही चाहिए, मैं कल ही ला दूंगी, लेकिन पढ़ाई में कोई ढील नहीं होनी चाहिए।
2: और इस तरह चीनी को डॉल तो मिल गई, पर उसने भी कमर कस ली और पूरी मेहनत से पढ़ाई में जुट गई।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

0: इस प्रोग्राम में पेश खदमत है एक नज्म। उन्वान है जुगनो, शायर हैं सिकंदर अली वज्द। इस नज्म को पहले तहत में पेश किया जा रहा है। आवाज है मोहतरमा सादिया रहमान की।
1: बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। इतने में जो रौ चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फिजा की। होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तरावश। रोशन था इस कदर अंधेरा, गोया होने को था सवेरा। जुगनु इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे। जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी।
0: और अब ये नज्म तरन्नुम के साथ पेश की जा रही है। गुलकार हैं देवाशीष। इस नज्म को मौसीकी से आरास्ता किया है हरभजन सिंह और उनके साथियों ने।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिंग

0: बहुत सुंदर।
1: मम्मी मम्मी।
2: हाँ बेटा।
1: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वो भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पिटती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं?
3: पता है शिक्षा, मैंने ना एक बहुत पहले तोता पाला था और फिर बहुत केयर भी करती थी इसकी, मुझे वो बहुत पसंद था। तो क्या आपने भी कोई पेट्स पाले?
4: यस।
3: क्या पाला था?
4: मैंने एक रैबिट पाला था।
3: हाँ, आपको पसंद था वो?
4: बहुत पसंद।
5: अरे अरे क्या बात हो रही है भाई, क्या पसंद है बहुत, और किसको पसंद है?
3: हमें हमारे पेट्स बहुत पसंद है।
4: यस।
5: वाह क्या बात है, तो अमन भी यहाँ पे है, शिक्षा भी यहाँ पे है, भाई बाकी दो लोग नजर नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? अच्छा अच्छा तुम लोग भी यही हो, तो आपको भी पेट्स पसंद है?
6: हाँ दीदी।
5: तो चलो आज हम पेट्स के बारे में ही बात करते हैं।
3: फेवरेट
5: वाले
3: एनिमल्स।
5: ओके ठीक है रोशन।
6: और दीदी एनिमल के बारे में भी तो बता सकते हैं, अपना फेवरेट एनिमल?
7: अरे
6: पेट सिर्फ जो पालते हैं।
5: हाँ ये भी सही बात है, फेवरेट अलग भी हो सकता है भाई, जरूरी नहीं कि पेट ही फेवरेट हो। अच्छा आज कौन कौन बात करने वाले, अपने बारे में तो बता दो।
3: मेरा नाम है अमन और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम है शिक्षा, मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ।
6: और मेरा नाम है आयुष, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
8: और मेरा नाम है रोशन और मैं भी 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
5: आओ, और मेरा नाम आरुषि है, मैं काम करती हूँ आज शिक्षा के साथ, क्लास 4 में पढ़ती हूँ। है ना शिक्षा, सब लोग बड़े बड़े हो गए, मैं आपकी क्लास में आ जाती हूँ, ठीक है? ओके
4: यस।
5: हाँ आप शिक्षा ने बुला लिया तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा बच्चों आप लोग अपने फेवरेट पेट के बारे में बता रहे थे, लेकिन फेवरेट एनिमल कौन सा है अगर पेट छोड़ दिया जाए?
3: मैं बताऊं दी पहले?
5: हाँ सब लोग अपना एक एक फेवरेट बताना।
3: हाँ, मुझे सबसे ज्यादा ना बहुत ज्यादा पसंद है लायन।
5: लायन पसंद है अमन को। और शिक्षा को?
4: डॉग।
5: शिक्षा को डॉग पसंद है। ओके तो और कोई बात नहीं, वो भी हो सकता है फेवरेट।
6: तो है। मुझे तो टाइगर पसंद है।
5: ओके
8: और मुझे तो पैंडा पसंद है।
6: और वैसे रोशन ये जो पैंडा होता है ये खाता क्या है?
3: मैं बताऊं? बैम्बू, उसको फेवरेट होता है।
6: बिल्कुल सही जवाब।
8: अच्छा।
6: अरे आपके फेवरेट के बारे में आपको नहीं बता रहा।
8: ज्यादा नहीं पता,
5: बस देखने में अच्छा क्यूट लगता है।
3: हाँ, बहुत
6: बहुत क्यूट, मैंने इसकी वीडियो देखी है।
5: अच्छा शिक्षा आपको डॉग क्यों पसंद है, आपको क्यों अच्छा लगता है डॉग?
4: क्योंकि डॉग बात भी मानते हैं और है ना, ज्यादा ज्यादा उनके साथ खेलो तो भी वो अपने साथ खेलते हैं और बात मानते हैं सबकी।
5: अच्छा हाँ। आपकी भी बात मानते?
4: पहले हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे दो डॉगी थे, तो वो एक डॉगी था वो मेरे को बहुत पसंद था, उसको भी मैं पसंद थी। वो डॉगी भी जब भी मैं कहीं पर भी जाती थी वो बाहर जाने के लिए ऐसे वो बाहर जाने के लिए ना करता था मेरे से।
5: अच्छा और वो आपको ऐसे काटने के लिए तो नहीं भागता था?
4: नहीं
5: नहीं, दोस्ती हो गई थी आपकी?
4: हाँ।
5: वाह।
4: जब वो छोटे में जब उसे बुआ लेके आई थी तभी से उसको बहुत खिलाया था।
5: क्या नाम था उसका?
4: उसका कैंडी था।
6: कैंडी। बड़ा क्यूट नाम है।
8: टेस्टी नाम है।
4: और एक और था डॉगी, उसका नाम मिलन था, कैंडी मिलन।
3: कैंडी मिलन।
5: तो आपका फेवरेट कौन था, कैंडी की मिलन?
4: दोनों।
5: चलो ठीक है। अच्छा आपको अमन आपको क्यों पसंद है लायन?
3: एक्चुअली वो बहुत डरावने तो होते हैं लेकिन मुझे वो बहुत क्यूट से लगते हैं, पता नहीं किसी को क्यों क्यूट नहीं लगते लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं उनको।
5: वो क्यूट लगते हैं,
3: बड़े होते हैं और अगर हम बचपन से शायद उन्हें पाले तो हम उनको अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं, शायद वो हमें ना खाएं।
6: हाँ बचपन से पालेंगे तो ठीक है लेकिन
5: शायद वो हमें ना खाएं।
6: और अगर जंगल में मिल गया,
3: अगर खा भी लिया तो क्या हो जाएगा? कुछ भी।
6: वाह
8: कोई फर्क नहीं पड़ता,
6: तालियां बजा दो भाई इसके लिए। देखो दीदी मतलब... कुछ भी नहीं होगा, खून निकलेगा, मर जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या है। अजीब है।
8: अगले जन्म में वापस लाइन को।
3: हाँ, अगले जन्म में दोबारा मिल जाएगा।
5: ओके अच्छा मतलब कोई
3: और उसके जो बड़े बड़े बाल होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कभी उसको टच नहीं किया ना कभी इतने पास से नहीं देखा, बहुत दूर से देखा था।
5: अच्छा
3: लेकिन मुझे बहुत पसंद है।
5: ओके चलो अमन को लायन बहुत क्यूट लगता है। ओके आयुष आपको क्या पसंद है और क्यों? उन्हें आपको ने तो बताया आपको टाइगर पसंद है, क्यों पसंद है?
6: दीदी वो बहुत ही तेज दौड़ता है एकदम, बहुत ही अच्छा होता है, उसकी शेप बहुत अच्छी होती है और
5: स्ट्राइप्स।
6: हाँ और बहुत ही ताकतवर भी होता है वो। मैंने उसकी पता है मसल्स भी देखी एक फोटो में,
5: वो इसलिए ताकतवर होता है इसलिए अच्छा लगता है आपको?
6: हाँ तेज दौड़ता है, अच्छा दिखता है, ताकतवर होता है
3: दीदी,
6: इसलिए
3: दीदी टाइगर तेज दौड़ते हैं
6: बहुत तेज,
3: टाइगर
2: चीता,
6: मतलब चीता को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टाइगर ही तो कहते हैं,
3: नहीं
6: हाँ तो मतलब
5: टाइगर, तो आपको चीता पसंद है?
6: हाँ चीता पसंद है। टाइगर को क्या बोलते दीदी बता ना हिंदी?
8: टाइगर को टाइगर ही कहते
3: हैं।
6: नहीं टाइगर एक इंग्लिश वर्ड है।
5: ओके तो हम ये मान सकते हैं कि आयुष को टाइगर चीता मतलब जो भी हाँ, ऐसे एनिमल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग है और तेज दौड़ते वो पसंद है।
3: हाँ
5: ओके
6: हाँ,
3: तरुण
5: ठीक है। और अब रोशन है, तो रोशन आपको क्यों पसंद है पांडा?
8: पांडा तो बहुत क्यूट है दीदी। हाँ। मेरे को तो पहले से इच्छा था कि वो एक छोटा वाला पांडा रखूं घर पे, पर इलीगल था इसीलिए मना कर दिया।
5: अच्छा तो आपको क्यों अच्छा लगता था, कब आपने पहली बार देखा है?
8: मैंने तो पहली बार वीडियो में देखा था, उसके बाद मैंने जू में देखा, मैंने पहले उसको एक वीडियो पे देखा, उसके बाद एक जू में देखा, जू में तो बहुत क्यूट था इसलिए मेरे को पसंद है।
3: क्यों होता है
5: तो आपने उसे दोस्ती की हाय हेलो किया उसको
8: हाँ,
5: जू में?
8: हाँ पर वो मेरे को ऐसे घूर रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था वो मेरे बारे में।
5: प्यार से घूर रहा था?
8: हाँ प्यार से,
5: प्यार से।
6: दीदी वैसे
5: यानी वो बोल रहा होगा रोशन मेरे दोस्त।
6: होते तो सच में बहुत क्यूट है, मैंने वीडियोस देखी है उसमें, बताया जैसे बच्चे को जैसे पालते हैं ना वैसे उनको उनका ख्याल रखते हैं। देखो जो पालने वाले होते हैं उनको उनके कलर की जैकेट पहन के रखते हैं, और फिर एक बच्चे को उठा के कहीं पे ले जाते हैं, और फिर जब दूसरे बच्चे को ला रहे होते हैं ना तो वो वहां से भाग जाता है, फिर उसका भी ऐसे उठा के लाते हैं, इतना मजा आता है देखने में वीडियोस में।
5: ओके और शिक्षा आपको डॉग्स तो आपको बहुत पसंद है ना, तो आप उनसे दोस्ती कैसे करते हो, आप क्या आप करते हो? जैसे जो ह्यूमंस होते हैं इंसान होते हैं उनसे तो हम बात कर सकते हैं ना, तो आप डॉग्स से कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे बात करते हो?
4: डॉग जब छुट्टी में आता है ना, जब उसे लेके आते हैं मार्केट से, तब है ना वो छोटा ही छोटा हो तब से ही उसको अपन है ना अच्छे से रखें, प्यार से रखें, तो वो थोड़ा थोड़ा अपन को समझता है।
5: अच्छा
4: तो अपन कुछ बोलें जैसे कि हम बोलेंगे चलो डॉग अपन बाहर चलते हैं, तो वो थोड़ा समझेगा, से अगर समझ नहीं आए तो भी चलेगा।
5: तो आप कितने बड़े थे जब आपने पहली बार आपके डॉग से आप मिले?
4: तब मैं 5 साल की थी।
5: 5 ईयर्स के थे?
4: हाँ।
5: ओ, तो तब आपको उससे डर नहीं लगा था बिल्कुल?
4: नहीं
5: बिल्कुल नहीं। तो आप प्यार से क्या बात करते थे, उसको क्या बोलते थे आप?
4: वो कैंडी था ना, तो उसको मैं ना चॉकलेट बोलते थे, क्योंकि कैंडी एक चॉकलेट ही होती है।
5: ओके तो वो आपकी बात सुनता था?
4: छोटा था तब इतना नहीं सुनता था, जब थोड़ा बड़ा हुआ था तब सुनने लगा था। पर उसने ना छोटे में काटा कभी ना बड़े में काटा।
5: अच्छा मतलब वो आपकी बहुत केयर करता है ना, है ना? तो आपकी क्या बातें सुनता है, क्या बोलते हो आप उसको जो सुन लेता है?
4: अगर उससे बोलो कि कैंडी खाना खाओ तो खाना खाएगा, जिस चीज की बोली वो करेगा, हर एक बात करेगा, बुआ जो बोले वो करेगा। पर मेरी दीदी है वो उससे बहुत डरती थी, तो वो है ना कैंडी उनके पीछे पड़ जाता था, तो उसे बोलना पड़ता था कैंडी इधर आओ, तब वो उनका पीछा छोड़ता था।
5: अच्छा मतलब शिक्षा की बात मान लेता है वो,
4: और बुआ की बात मानता था।
5: ओह मतलब एनिमल्स को प्यार करें तो बात सुनते हैं। ओके और अमन आप लाइन को प्यार करोगे तो आपको सुन लेगा?
3: हाँ
5: ऐसा लगता है आपको?
6: लेकिन अगर वो भूखा होगा तो?
3: तो कोई बात नहीं, मैं उसे कुछ और खिला दूंगी, जरूरी थोड़ी ना मुझे खाए,
6: तेरे पास खाने के लिए कुछ होगा।
4: आप है ना पालोगी तो छोटे से ही अगर आपने उसको वेजिटेबल खाने खिलाया तो बड़े होके भी?
3: ऐसा नहीं हो सकता, लॉयन वेजिटेबल नहीं खाते, वेजिटेरियन नहीं होते
4: छोटे से किसी को।
5: ओके कोई बात,
3: लॉयन के मतलब जैसे उनके मॉम डैड होते हैं वो भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं।
5: बहुत सारे एनिमल्स कार्निवोरस होते हैं, बहुत सारे हर्बीवोरस होते हैं, लेकिन जैसे शिक्षा आपने कुछ वीडियो देखा है क्या ऐसा कभी, क्योंकि लॉयन को वेजिटेबल खिलाते हुए? मुझे लगता है मैंने एक वीडियो देखा था, हो सकता है शिक्षा इसलिए बोल रहे हो।
4: मैंने देखा था एक, वो एक बार मैंने एक वीडियो आई थी ना टीवी पे, कई बार आती है लाइन वगैरह की, तो उसमें आया था, उसने एक बच्चा था, उसने छोटे से ही उसको लाइन पसंद था, जैसे अमन दीदी को पसंद है।
5: मतलब अमन की तरह और भी लोग हैं।
3: हाँ।
4: तो उन्हें भी लाइन पसंद था, तो उसने एक लाइन का बच्चा उठा लिया था जंगल में, तो उसने जंगल में से उठाया था, तब से वो छोटे से ही उसको जबरदस्ती वेजिटेबल ही खाना देता था, उसको वैसा खाना बिल्कुल नहीं देता था, तो उसने छोटे से ही फिर वैसा खाना सीखा।
3: शायद ये ऐसा हो सकता,
5: ऐसा एक्चुअली बात जो आप बोल रहे हो, और वैसे भी जो आप लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं ना बेटा, बहुत बड़ा एग्जेम्पशन है हाँ कुछ लोग हैं दुनिया में,
4: मुश्किल होता है,
5: बहुत मुश्किल होता है।
3: कोई बात नहीं, मैं उसके लिए प्यारा सा बाड़ा बना दूंगी, सब बहुत घूमेगा।
5: हाँ आप उनको देख सकते हो टेलीविजन में, डिस्कवरी में, है ना।
6: पर वो इलीगल है बता।
3: हाँ उसको पालना इलीगल है, पर कोई बात नहीं।
5: पर जो लोग लाइन के, अब सोचो ध्यान रखते हैं उनका, जंगल्स में या सफारीज में जो लोग ध्यान रखते हैं, तो उनका अंदर से तो अगर वो प्यार नहीं होगा, जैसे शिक्षा ने भी बोला एनिमल्स के लिए, या डर होगा,
3: तो वो उस डर को सेंस कर लेते हैं।
5: आपको ऐसा लगता है
3: इन लोग के अंदर तो डर होगा ही।
5: टाइगर से दोस्ती कैसे करोगे आप, चीता से दोस्ती कैसे करोगे बताओ।
6: देखना व्यक्ति है वो ना, डेली उसकी कार है, स्पेशल तरीके की कार है, उसके जाली लगी हुई है, वो डेली जाता है और वहाँ पे टाइगर्स को खाना दे के आता है, और वो उसको कुछ भी नहीं कहता है।
3: चीता
6: क्योंकि उनको
5: क्यों नहीं कहते,
6: क्योंकि उसको पता है, उनको पता है ये अच्छा इंसान है, मैं खाना देता है, तो वो उसको क्यों मारेंगे इसलिए।
3: नहीं जी, कभी कभी हम जब खाना भी देते हैं ना, अगर वो जंगली है तो हम पे अटैक कर सकते हैं।
6: नहीं, हम डेली दे रहे हैं उसको, वो ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल
3: फर्स्ट टाइम दिया होगा तो शायद,
6: तो उसको दिख रहा होगा ना खाना दे रहा है, वो ट्रिक होती है, ऐसी कोई बात
3: हाँ,
6: नहीं
3: किसी और
4: वैसे भी होते हैं, वो जैसे कि खाना दे रहे होते हैं, वो खाना छोड़ के उसी के पीछे पड़ जाते
3: हैं। ऐसा होता है।
5: मुझे लगता है हमें ना उन लोगों के इंटरव्यू सुनने चाहिए जो लॉयन को, चीता इन लोगों को खाना देते हैं ना, उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस क्या था, उनके इंटरव्यू सुनेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा, है ना।
3: वो तो है, लेकिन बचपन से अगर किसी जानवर को पाले ना, तो सच में वो हमारी फीलिंग्स को सेंस कर सकता है।
5: अच्छा,
3: हम अगर उससे नहीं डरेंगे तो।
6: टाइगर अच्छा। की तो मैंने बहुत वीडियोस देखी है, वो मतलब इतने प्यार से उसको रखते हैं, इतना बड़ा टाइगर होता है, और वो उसको एकदम ऐसे चाटता है।
3: हाँ, लायन भी ऐसे ही होते हैं।
5: और पांडा से दोस्ती कैसे होगी फिर रोशन की, अब बाकी तो चलो हमने लायन चीता से दोस्ती कर ली।
8: पांडा से तो फिर हम बचपन में उसको पालना पड़ेगा, और पता है वो पांडा के बच्चे होते हैं ना, इतने क्यूट होते हैं, उनके मम्मी उसको उठा के गोद में रखते हैं, मतलब उनके पीठ में जो भी चिपका होता है उसको निकालते हैं, और छोटे बच्चे को उसको दर्द होता है तो भागने के लिए ट्राई करता है, वो भाग नहीं पाता, मम्मी पकड़ लेती है,
5: मम्मी पकड़ लेती है। वो तो मुझे लगता है सबकी मम्मी पकड़ लेती है।
3: सबकी मम्मी अपने बच्चों को लेके बहुत सेंसिटिव होती है।
5: हाँ।
6: और वो तो दीदी हार्मफुल भी नहीं, मतलब हार्म भी नहीं पहुंचाएंगे किसी तरीके, वो तो वेजिटेरियन होते हैं,
3: लेकिन वो अटैक कर सकते हैं।
6: अटैक नहीं करते पांडा, नहीं करते,
3: लेकिन दीदी हम मार तो सकते हैं ना, नहीं खाएंगे तो भी
6: क्या
5: मार सकते हैं,
3: मतलब मारेंगे नहीं, मतलब हम पे अटैक नहीं कर सकते, अगर उनके बच्चों को हम कुछ करे तो,
5: बच्चों को कुछ करे
3: तो एग्रेसिव हो जाएंगे,
5: कोई भी मम्मी पापा बच्चों के लिए कुछ करेंगे तो उनका तो अच्छा नहीं लगेगा ना,
8: वो क्यों करेंगे।
6: वही तो।
5: अच्छा, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके घर पे हैं और आपकी उनसे दोस्ती हो गई, वो बर्ड्स भी हो सकते हैं,
4: पैरट,
5: वो कोई भी हो सकते हैं, कैट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता
6: है। मेरे चाचा के घर पे दो एनिमल्स हैं, एक तो पैरट और एक डॉग।
5: अच्छा, तो आपकी किससे दोस्ती है, पैरट से कि डॉग से?
6: देखो डॉग से भी पैरट से भी है, पैरट को तो खाना खिलाता हूँ मैं, डालता हूँ जाली से, वो आ जाता है और उंगली करता हूँ तो वो उंगली को खाने की कोशिश करता है, और ऐसे किच किच करता है पर कुछ नहीं होता उंगली को। और जो बड़े वाला है ना, वो थोड़ा बड़ा हो गया, वो एकदम से बहुत तेज मारता है वो तो डंग। और जो हमारा सैंडी है डॉगी, उसका नाम सैंडी है, वो बहुत ही क्यूट है।
5: ओके, और आपको क्या, कौन से रोशन?
8: दीदी हम एक बार एक बीच पे गए थे, उसके नाम था रैबिट बीच।
5: ओके,
8: वो एक छोटा सा बीच जैसा है जिसके अंदर बहुत सारे रैबिट रखे हैं, वो अपने आप रखे हुए, कोई भी उसको ले जा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है।
6: अच्छा।
8: हाँ नहीं, ले तो नहीं जा सकते हैं, पर हम तो लेके आ गए। क्या हुआ था, हम वहाँ, हाँ तो हम एक बार गाड़ी में गए थे, वहाँ बहुत सारे रैबिट थे, हम देखे थे, उसमें एक रैबिट था, वो था ग्रे कलर का रैबिट।
5: ओके।
8: वो क्या क्या, जैसे ही मैं कार से उतरा मेरे पैर के पास आया और खड़ा हो गया, हाथ ऊपर करके मेरे को उठा लो, बहुत छोटा था, तो मैंने उसको उठा लिया, मैंने मतलब गाड़ी में ही था, मैं उसको उठा के उसे सहला रहा था, तो मम्मी को पूछा, मम्मी इसको ले चलते, बोला ठीक है, तो मैं लेके आ गया था।
5: तो उसका नाम क्या रखा फिर?
8: मोबी।
3: मोबी
8: अभी भी है?
5: अभी भी है। मोबी के साथ खेलते हो आप?
8: मेरे घर पे।
5: लगता है आयुष को नई इन्फॉर्मेशन मिली आज। अब आयुष ओके। अच्छा, अब मैं ये पूछ रही थी आप लोगों से, अच्छा आप लोगों का पूछना है, शिक्षा का और आपका बाकी था ना, कौन से ऐसे पेट्स हैं जिनसे आपकी दोस्ती हो जाती है, जो आपकी, जिनसे आप मिले हो? डॉग के अलावा कुछ और ऐसा है क्या?
4: ऐसे कई पेट हैं जिनसे हम मिले हैं और हमारे घर पे वो रहे हैं, फिर पर ये हो जाता है कि उनको छोड़ के भी आना पड़ता है, कभी कभी उनका उनकी तबीयत सी बिगड़ रही होती है तो कई बार उन्हें छोड़ के आना पड़ता है।
5: अच्छा,
4: तो हमारे घर पे पैरेट भी आया था, एक बार रैबिट आया था, रैबिट के साथ भी बहुत खेला था हमने।
5: अच्छा,
4: और एक बार कैट,
5: कैट से भी दोस्ती कर ली थी आपने?
4: हाँ, पर वो तो हमारे मामी के घर पे थी तो बस उसके साथ हम है ना छुट्टियों में एक महीने रहे थे मामी के यहाँ, वो एक महीने तक ही वहाँ पे रही थी, उसकी हालत बिगड़ रही थी तो उसको छोड़ के आना पड़ा। ऐसे कई पेट हैं जो हमारे घर पे बहुत बार रहे हैं पर उनकी पता नहीं क्यों हालत बिगड़ती रहती है।
5: क्योंकि बेटा वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं होते ना,
2: इसलिए
5: है ना, और बहुत सी चीजें उन्हें हो भी जाती है, जैसे ह्यूमंस को भी तो बीमारियां होती है ना।
2: हाँ,
5: आप उनको मिस करते हो? बहुत मिस करते हो?
4: सबसे ज्यादा तो कैंडी और मिलन को
5: मिस करते हो,
4: क्योंकि वो तो अभी भी वहाँ पे होंगे।
5: तो आपको याद आती है, उनसे मिलने का मन करता है?
4: कई बार हम गए हैं वहाँ पे, उसी घर से गुजरते हैं, पहले रहते थे वहाँ पे, अब नहीं रहते।
5: अच्छा,
4: तो वो वहाँ पे हमें शटर पे हमेशा दिखते हैं।
5: तो आप उनको हेलो करके आते हो?
4: अब कैसे याद रखेंगे, पता भी नहीं है उन्हें हम याद है भी कि नहीं। हम तो है ना बहुत पहले से ही है ना, कम से कम हमें तो है ना उनसे मिले 3-4 साल हो गए होंगे।
5: कोई बात नहीं, अब दूर से हेलो कर दिया करो उनको, है ना।
4: कई बार है ना गए हैं तो उनने काटा तो अभी नहीं, वो काटते वैसे कम है, कोई कोई लोग ज्यादा ही उन पे उनको कुछ करे, जैसे कि उनकी पूंछ वगैरह कुछ खींची, परेशान किया तो वो काट सकते हैं, वैसे कोई उनसे कुछ ना करे तो वो बिल्कुल नहीं काटते।
5: तो कितने अच्छे डॉग्स हैं कैंडी और मिलन दोनों।
8: नहीं, याद रखते हैं डॉग्स।
5: अमन, हाँ अमन बहुत देर से इंतजार करिए बोलने के लिए।
2: मैंने पेट्स पाले हैं बचपन से, मतलब बहुत बचपन से भी नहीं, छोटे थोड़े से छोटे, और मेरी एक नानी का पैर था, उससे पहले मेरी मम्मा ने भी बहुत पैरट पाले अपने बचपन में, मैंने भी पाले हैं।
5: आपकी दोस्ती किससे हुई बताओ?
2: पैरट से। हम पता है दी, हम ना जब भी किसी नए पैरट को लाते हैं, जब भी मतलब बहुत कम लाते हैं, फिर भी एक बार लाए, वो पहला पैरट था हमारी इतनी बात मानता था दी, हम उसको खुला छोड़ते थे, खुला मतलब उसको हाथ से पकड़िए पहले प्यार करते थे, बहुत प्यार करने की उसको आदत डाल दी, वो खुला घूमता था, खुला चलता था, हमने उसके नहाने के लिए बताया एक जैसे एक बहुत बड़ा सा वो होता है जिसमें हम जैसे छोटा सा होता है एक टब टाइप का जिसमें हम सब्जियां ऐसे धोते हैं, उसे पानी भर देते थे, ऐसे थोड़ा फ्लैट होता है, थोड़ा सा डीप होता है, तो उसमें वो नहाता भी था, और फिर मैं हम पिंजरा बगल में रख देते थे और नहा धो के जब गर्मियों का मौसम था ना उसके ऊपर जाके बैठ जाता था, फिर छिड़कता था ऐसे करके पानी।
5: अच्छा बच्चों, आप लोग कभी, आपको ऐसा लगता है कि एनिमल्स को अगर पेन हो रहा है वो तो हमारी भाषा में बात नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते ना,
6: नहीं।
5: तो क्या हम उनका पेन, हमें पता चलता है कि क्या वो पेन में है, क्या उनको अच्छा नहीं लग रहा है, पता चलता है
2: उनके एक्शन से?
6: हाँ बिल्कुल दीदी, हम पालते हैं ना तो पता चल जाता है। देखो अब हम क्या,
5: अगर आप पेट कर रहे हो या आप नहीं भी कर रहे हो, मान लो रास्ते पे देखते हो एनिमल्स को, तो आपको कभी लगता है कि उनका पेन
2: रास्ते पे? तो नहीं, बट जो हम घर में पालते हैं ना उनका पता चलता है, जैसे
8: उनके रिएक्शन से
2: पता
5: चलता है रोशन,
8: जैसे कि हाँ जैसे कि एक बार हमने क्या किया, मतलब उसको एक बार हमने केज में रखा रात में, नहीं तो घूमते रहता, सोता नहीं है, इसलिए हमने रात को उसको केज में रख देते, वो अंदर सो जाता है। और एक दिन तो वो सुबह तक मतलब जगा रहा, कुछ नहीं कर रहा, मतलब वहीं बैठा है, अगर तुमने केज खोल भी दिया वो बाहर नहीं आ रहा, बाकी समय बाहर आता है, कूदता है, बेड पे कूदता है, तो वो कुछ भी एनर्जी नहीं, वैसे ही पड़ा था, तो हमको कुछ लगा तो हम डॉक्टर के पास लेके।
5: और शिक्षा, आपको पता चलता है एनिमल्स का पेन?
4: एक बार हमारे घर पे पैरेट था तो वो रात भर सोता रहा और सुबह देखा, सुबह भी सोता रहा, अब पता नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, उसे उठाया तो उसने थोड़ी आँख खोली थी, पर वो उठा नहीं, लेटा रहा बिल्कुल, फिर उसे लेके जाना पड़ा वहाँ पे, हमारे घर के है ना थोड़े दूर होगा एक डॉक्टर अंकल रहते हैं, उनको दिखाया था, उनने कुछ है ना दवाई वगैरह कुछ दी थी उसको, एक इंजेक्शन लगा था, पर वो सही हुआ था, फिर उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि क्या पता फिर हालत बिगड़ती उसकी।
5: तो डॉक्टर अंकल के अकॉर्डिंग करना पड़ा। हाँ आयुष।
6: हाँ दीदी, हमारे यहाँ पे भी ना अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 1 साल पहले की, एक डॉग था वो बहुत चिल्ला रहा था, तो वो ना एक नदी टाइप थी, नहीं मतलब एक नाला टाइप है, बहुत बड़ा था, उसके अंदर वो डॉग फंसा हुआ था, तो पूरे दिन ऐसे चिल्ला रहा था. मैं गया, फिर मैंने भैया को कहा, मैंने कहा निकालते हैं ना. बोले हाँ ठीक है. तो हम तीन चार लोग गए और बड़ी मुश्किल से उसको फिर अंदर गए, निकाला, हाथ दिया. हम पहले तो उसे लकड़ी दे रहे थे पकड़े बाहर आए, लेकिन नहीं. फिर एक भैया थे वो अंदर ही चले गए और उसको एकदम उठा के ले गए.
5: मतलब उनकी आवाज से, रिएक्शन से ऐसे
2: पता चलता है.
6: एक बार रात को हमारा सैंडी सो रहा था तो वो अजीब तरीके की हरकतें कर रहा था, पता नहीं. तो हमें कुछ लगा, उठे, लाइट जलाई तो देखा मकोड़े आ गए थे उसके उसपे बहुत सारे. तो फिर हमने एक एक मकोड़े को हटाया, मारा, फिर साफ करा और फिर उसको बिठाया. तो बहुत चैन की नींद सोया और फिर सुबह को लेट उठा.
5: नींद पूरी नहीं हुई थी ना उसकी. ओके. अच्छा बच्चों, अब मुझे लास्ट में आप लोग एक बात और बताओ कि आप लोग अगर बड़े हो चाहोगे तो कोई साइंटिस्ट बन जाएगा, कोई नेवी में जाएगा, कोई टीचर बनेगा, कोई कुछ, सब लोग अलग अलग चीजें बनोगे ना आप लोग. आप लोग एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहोगे?
2: हाँ.
5: क्या?
2: मैंने बचपन से, मतलब मेरा कुछ बनने का इतना वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में इतना ज्यादा. साइंस में है पर ये नहीं कि इंजीनियर बन जाओ या
5: फिर बैठे. आप एनिमल के लिए क्या करना चाहोगे?
2: तो एनिमल्स के लिए ना मैंने सोचा था कि मैं बड़ी होके जैसे जहाँ वो केयर करते हैं ना जो लोग एनिमल्स की, वो वैसे ही केयर करूंगी एनिमल्स की. और जैसे जब बड़ी हो जाऊंगी तो फिर इधर उधर जैसे जो भी एनिमल्स पकड़ के अपने घर में रखते हैं, मतलब घर पे जब रखते हैं ना उनकी सही से केयर नहीं कर पाते हम लोग उन्हें. मतलब अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं और वो वैसे रह नहीं पाते. तो सबसे ज्यादा ऐसा पैरट्स के साथ होता है जैसे घर पे रहते हैं ना.
5: तो आप क्या करोगे फिर?
2: तो मैं ऐसा कुछ करूंगी ऐसे
5: उनके राइट्स के लिए.
2: हाँ, सरकार को भी बोल सकती हूँ ऐसा कुछ कि एनिमल्स पैरट्स को या फिर ऐसे कोई बर्ड्स को ना पालें.
5: हाँ, मतलब आप उनके राइट्स के लिए कुछ करना चाहोगे?
2: पाल करना, उनको बहुत बुरा ट्रीट करते हैं उनके साथ.
5: पालना नहीं चाहिए, पिंजरे में बंद नहीं करना,
2: वो अच्छा नहीं होता उनके लिए.
5: ओके, तो आप बिल्कुल इनके राइट्स के लिए आवाज उठा सकते हो.
2: और मैं
5: और ये बात आप ध्यान रखोगे?
2: हाँ.
5: ओके, नहीं तो हम अमन को उसके बाद क्या सुना देंगे? बच्चों की दुनिया.
6: ऐसे तो दीदी सरकार भी करती है इसके लिए जैसे कोई.
5: लेकिन आप क्या करना चाहोगे?
6: प्रजाति होती है. अच्छा, मैं दीदी ऐसे तो सच्ची बताऊं तो मैंने कुछ कभी ऐसा सोचा नहीं.
5: ठीक है, कोई बात नहीं, आप सोच लेना इस एपिसोड के बाद.
6: ठीक है.
5: रोशन,
8: मैं बड़ा बड़ा होके पैसे कमाऊंगा और मैंने सोचा कि उसके लिए कोई सेंचुरी खोल सकते
2: हैं.
8: बैड बर्ड सेंचुरी से.
5: ओके, ठीक है. और शिक्षा, आप कुछ करोगे एनिमल्स के लिए?
4: यस.
5: क्या करोगे?
4: मैं एनिमल्स के लिए जितने भी एनिमल्स हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं बड़ा सा एक है ना जैसे जू में रहता है वैसे ही मैं भी कुछ बनाऊंगी जिसमें है ना सारे एनिमल्स एक साथ रहें और कोई एनिमल्स किसी को कुछ करे ना, जैसे कि डॉग एक साथ रहेंगे.
5: अच्छा.
4: और वो एक पूरे से रूम ही होगा उनका अलग, उसमें सब सारे पेट्स एक साथ रहेंगे.
5: अच्छा, मतलब डॉग सब एक साथ रहेंगे.
4: हाँ,
5: कैट्स अलग रहेंगे,
4: सारे एनिमल.
5: फिर आप उनकी केयर करोगे, पर उनको तो डॉक्टर भी चाहिए होगा फिर.
4: हाँ, पर उन वो एक साथ रहेंगे जैसे कि वो होता नहीं है जैसे कि जू वगैरह में होता है वैसे ही उनके लिए कुछ.
5: अच्छा, जहाँ पे मतलब वो लोग अपने हिसाब से रह सके.
4: हाँ.
5: ओके, मतलब जहाँ पे उनको हैप्पी लगे ना,
4: जहाँ पे उन्हें अच्छा लगे, अच्छे से रहें, वैसे ही कुछ,
5: जहाँ पे वो लोग को खुश हो, है ना. नहीं तो उनको बंद करके रखते हैं तो वो लोग आपको लगता हैप्पी रहते हैं?
4: उनको अच्छा नहीं लगता, उनकी तबीयत बिगड़ती है और वो फिर अलग रहेंगे अपने आप से.
5: मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहें.
4: और अकेले में वो रहते हैं उन्हें ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता तो उनकी तबीयत वगैरह भी बिगड़ती है. और वो जब अपनी पूरी फैमिली के साथ रहेंगे तो वो उन सबको कितना अच्छा लगेगा.
5: ओके, आप लोगों को पता है जैसे, अब मैं छोटी सी बात बताती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है आप लोग करना चाहते हो. जैसे आप रेडियो के कांच के बाहर देखते हो
8: गिल्लू,
5: हाँ, वहाँ पे हमेशा मुझे लगता है आप लोगों के वेदांत भैया रोज कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए खाने के लिए दाना पानी रखते हैं ताकि, और पता है आपको रोज वो खत्म भी हो जाता है शाम तक. वहाँ कितनी सारी बर्ड्स आती हैं, उन लोगों को पानी मिलता है, खाना मिलता है, है ना. और उनको देख के हमें क्या मिलता है?
2: खुशी,
5: बहुत सारी खुशी. तो हम लोग ये सब तो कर सकते हैं ना, मुझे लगता है अभी से कर सकते हैं अपने घरों में.
6: अपनी छत पे पानी रख दे कितना अच्छा रहेगा.
2: गर्मी के टाइम पे हम छत पे रखते हैं.
4: मेरे घर पे, मेरे घर के बगल में एक पेड़ है, उस पे है ना एक मटका रखा है, वो शाम तक पूरा खाली हो जाता है.
5: ऐसा कर सकते हैं ना आप करते हैं?
4: अभी भी टंगा रहता है.
5: अभी भी टंगा रहता है, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है. तो हम सब भी ये कर सकते हैं.
8: हाँ, गर्मियों के समय तो हम
2: गर्मियों के समय करते हैं.
5: हम सब करते हैं. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. और जहाँ जहाँ हम लोग जाए हम अपने फ्रेंड्स को बताएं और लोगों को बोलें
2: ताकि वो भी करें.
5: हाँ, है ना. चलो ठीक है, अब मुझे लगता है हम लोग ढेर सारी बातें कर ली हैं, तो बातों के बाद अब बाहर चलते हैं और कुछ बर्ड्स को देखते हैं.
6: ठीक है दीदी.
5: ओके, बाय बाय बच्चों.
2: बाय बाय दीदी.
4: बाय
5: बाय.

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का खत्म हो जाए तो पृष्ठ 110 बस का सफर। आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ियों को देखने जा रहे थे। हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलें तो इक्का दुक्का ही नजर आ रही थीं। क्रीं चक। हम चौंक गए। हमारी बस ने

लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। यह एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पों पों पों का शोरगुल, कितना धुआं। शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बू आ रही थी, जैसे गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती है। पृष्ठ 111। यहाँ पर रेड लाइट पर खड़े हुए ट्रैफिक का चित्र दिया गया है। चित्र देखकर लिखो कौन कौन सी गाड़ियाँ सड़क पर दिखती हैं। इनमें से कुछ वाहनों को पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है। क्यों? जिस जिस वाहन में से धुआं नहीं निकलता उस पर लाल निशान लगाओ। कौन कौन से वाहन बिना पेट्रोल डीजल से चलते हैं ये बताओ। वाहन के तेज हॉर्न से हमें क्या क्या परेशानी होती है बताओ। क्या तुम साइकिल चलाते हो? यदि हाँ तो उससे कहाँ कहाँ जाते हो? तुम स्कूल किस तरह जाते हो? तुम्हारे परिवार के लोग घर से बाहर काम पर कैसे कैसे जाते हैं? क्या गाड़ियों में से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? किस तरह की? क्या गाड़ियों के तेज हॉर्न से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? किस तरह की? पेट्रोल पंप पर कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफी देर में आएगा। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे। वहां पर कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। पृष्ठ 112। एक पोस्टर था, तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले भैया से ही पूछते हैं। अब्राहम ने पूछा, भैया यह तेल कहाँ से मिलता है? पेट्रोल डालने वाले भैया ने बताया, जमीन के बहुत नीचे से। मंजू बोली, जमीन के नीचे वहाँ कैसे बनता है? भैया बोले, यह जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसे। अब्राहम ने पूछा, तब तो हम खरीदने की बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। भैया बोले, यह हर जगह नहीं होता, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है। निकालने साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। पृष्ठ 113। पता करो भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में हैं? जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है? सड़क पर चलने के नियम पता करो और उन पर कक्षा में चर्चा करो। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना चाहिए। सोचो क्यों? आगे की बातचीत। दिव्या बोली, पेट्रोल खत्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा है कि भंडार सीमित हैं। भैया बोले, हम जितनी तेजी से निकाल रहे हैं उतनी तेजी से वह बन नहीं रहा है। वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। अब्राहम बोला, अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ी कैसे चलेंगी? मंजू बोली, CNG से, मैंने TV पर देखा था, इसमें धुआं भी कम होता है। भैया हंसते हुए बोले, अरे वह भी तो जमीन से ही मिलती है और सीमित ही है। दिव्या बोली, बिजली से भी तो गाड़ियां चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। अब्राहम बोला, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियां कैसे चलाएंगे? दिव्या बोली, अगर गाड़ियां कम चलेंगी तो
तो मेरी दादी खुश हो जाएंगी। वे कहती हैं, तौबा, चीटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? मंजू बोली, हाँ देखो ना, ज्यादातर गाड़ियों में एक दो लोग ही बैठे हैं, सब बस में क्यों नहीं जाते? अब्राहम बोला, हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं। मंजू बोली, मैं बड़ी होकर कोशिश करूंगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियां चला सकें, फिर खत्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितना मर्जी इस्तेमाल करो। पृष्ठ 114, जमीन से खजाना। यह पता लगाना आसान नहीं कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाजा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का, गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छिपी होती हैं बहुत सारी चीजें। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन। जानते हो, एलपीजी यानी खाना पकाने की गैस, मोम, कोल तार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम करने में लग जाते हैं। कभी कभी खेत में पंप भी चलता रह जाता है। कितना तेल खर्च हो जाता होगा? घर जाकर बाबा से जरूर बात करूंगा। लिखो, अगर किसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? जैसे सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बड़ों से बात करके अपने विचार लिखो। मंजू ने कहा, सब बस में क्यों नहीं जाते? सभी लोग बस में सफर क्यों नहीं करते? बताओ। बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद कर देने के क्या क्या फायदे हैं? सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाओ। पृष्ठ 115, पता करो और लिखो, कितना तेल लगे? बताओ, ये वाहन एक बार में कितना पेट्रोल या डीजल भर पाए? स्कूटर, कार, ट्रैक्टर। अब बताओ, ये वाहन 1 लीटर पेट्रोल या डीजल से कितनी दूर जाए? स्कूटर, कार, ट्रैक्टर। हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग होती है। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है। इसे देखकर प्रश्नों के उत्तर दो। पेट्रोल सन 2000 में 1 लीटर की कीमत अक्टूबर के महीने में है 29.91 रुपये। सन 2007 में 1 लीटर की कीमत अक्टूबर में है 43.52 रुपये और सन 2014 में 1 लीटर की कीमत अक्टूबर के महीने में है 67.86 रुपये। इसी प्रकार डीजल सन 2002 में 1 लीटर डीजल की कीमत अक्टूबर के महीने में है 18.91 रुपये। सन 2007 में 1 लीटर की कीमत अक्टूबर के महीने में है 30.48 रुपये और इसी तरह सन 2014 में 1 लीटर की कीमत है अक्टूबर के महीने में 58.97 रुपये। अब बताओ, सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत रिक्त स्थान रुपए बढ़ी और डीजल की कीमत रिक्त स्थान रुपए बढ़ी। सन 2007 में
डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर था? पता करो, तुम्हारे इलाके में आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है? पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है? तुम्हारे घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है? किस किस काम में, बताओ। पृष्ठ 116। यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है जिसमें लिखा है, मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ। तेल की बचत आपकी आदत। इसमें है, हैंगर में कुछ कपड़े सूख रहे हैं और एक लालटेन है। बताओ, मैं छुपा हूँ कहाँ कहाँ, रोशनी में, ड्राई क्लीनिंग में। यहाँ पर हवाई जहाज, मोटर गाड़ियाँ और ट्रैक्टर हैं। लिखा है, मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ, पेट्रोल, डीजल और वायु या ईंधन के रूप में। इसके अलावा यहाँ पर गैस सिलेंडर और जनरेटर है। लिखा है, मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ, मिट्टी के तेल और गैस के रूप में। यहाँ पर है मोटर पंप और रंग रोगन का सामान। लिखा है, मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ, मशीनों में, प्लास्टिक, रंग रोगन में। पोस्टर को देखकर बताओ, तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। पृष्ठ 117। दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई। पढ़ो और चर्चा करो। बताओ बताओ, कौन हूँ मैं, काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, धीरे धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन जाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार, जब लोगों को नहीं मिलूँगा कैसे तब सब काम चलेंगे, मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे, फिर भी जाया मुझे करेंगे, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। सोचो और चर्चा करो। तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा? तेल बचाने के तरीके सुझाओ। घर में चूल्हा कैसे जले? दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। दिन में कई घंटे उसके चूल्हे की लकड़ियां इकट्ठी करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीने से खांसी है। सीली हुई लकड़ियां जलाने में धुआं भी बहुत होता है। लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं है। जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से लाए? चर्चा करो। क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की हैं या उपले बनाए हैं? उपले कैसे बनते हैं? क्या तुम किसी को जानते हो जो चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते हैं? पृष्ठ 118। तुम्हारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर वे लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हैं तो धुएं से किस तरह की परेशानी होती होगी? क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकती है? क्यों नहीं? आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियां आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी। घर के अलग अलग कामों के लिए और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, LPG यानी खाना पकाने की गैस, कोयला, बिजली आदि। कांचा ने एक किताब में एक चार्ट देखा। इस बार चार्ट में दिखाया गया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है।
चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज का इस्तेमाल बढ़ा और किसका घटा। चार्ट में दिया गया है 20 साल में बदलाव। यहाँ पर दिखाया है कि सन 1976 में उपले और लकड़ी 84% खर्च होते थे और 1986 में 75%, 1976 में एलपीजी गैस और केरोसिन 10% खर्च होता था और सन 1996 में 18%, सन 1976 में 5% कोयला खर्च होता था और सन 1996 में 2%, सन 1976 में बिजली 1% खर्च होती थी और सन 1996 में 5%। देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था? 1976 में सबसे कम किसका इस्तेमाल हो रहा था? पृष्ठ 119। 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल रिक्त स्थान घरों में था, जो 1996 में बढ़कर रिक्त स्थान हो गया, यानी 20 सालों में इनका इस्तेमाल रिक्त स्थान प्रतिशत बढ़ा। 1996 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था? 1996 में किसका इस्तेमाल सबसे कम था? 1976 में यह कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था? अपने घर में बड़ों से पता करो। जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता था? पिछले 10 सालों में तुम्हारे इलाके में खाना बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल बढ़ा और किस चीज का घटा है? अनुमान से बताओ अगले 10 सालों में खाना पकाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल बढ़ेगा और किसका घटेगा? हम क्या समझे? किसी कंपनी ने तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे बस, मिनी बस का डिजाइन बनाने का मौका दिया है। तुम किस तरह की बसें चलाना चाहोगे उसके बारे में लिखो और उसका चित्र बनाकर रंग भरो। बस का डिजाइन बनाते समय इन लोगों की सुविधा के लिए तुमने क्या क्या सोचा? बुजुर्ग, छोटे बच्चे, जो लोग देख नहीं पाते। तेल के बारे में छपी खबरों को अखबार में से काटो और एक चार्ट पर चिपकाकर कोलाज बनाओ। उसे अपनी कक्षा में लगाओ और अपने कुछ विचार भी लिखो। तेल बचाने के लिए पोस्टर बनाकर उस पर नारा भी लिखो। पोस्टर कहाँ लगाना चाहोगे? खत्म हो जाए तो। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 12वां पाठ, प्रस्तुति CIET।

0: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए, आज का दिन बड़ा ही खुशनुमा दिन है, क्योंकि आज विशेष दिन है, यानी 4 अगस्त है। तो 4 अगस्त की बातें करते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ आज के विशेष जन्म हुए उन लोगों के बारे में। किशोर कुमार, फिरोज शाह मेहता, इंदु प्रकाश पांडे, राणा उदय सिंह, सदाशिव भाऊ, यशवंत सिंह परमार, एन रंगस्वामी, इन सभी का जन्मदिन है। और उसके साथ ही इब्राहिम अलकाजी, नंदिनी सत्यपति और काशी प्रसाद जायसवाल, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं आज के दिन विशेष में। एक सुंदर विचार के साथ जोड़ना चाहूँगा, कहते हैं अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पर मजबूर करती है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: Hi, this is Gracie Singh, and you are listening to Brahma Kumari's Community Radio Station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो माधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं एक खास व्यक्तित्व के बारे में। जी हाँ, किशोर कुमार के बारे में। आप नहीं, सभी जानते हैं किशोर कुमार को, है ना। भारत का बच्चा बच्चा किशोर कुमार की आवाज़ से वाकिफ है और भारतीय संगीत के इतिहास में अमर गायक, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और गीतकार थे। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। इनकी पूरी कहानी मैं आपको म्यूजिक, डायलॉग और गानों के साथ सुनाने वाला हूँ। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: ये दास्तां है एक बड़े ही जबरदस्त हरफनमौला कलाकार की, नाम जिनका किशोर कुमार।
3: जरूरत है, जरूरत है, सख्त जरूरत है।
4: क्यों नहीं, क्यों नहीं, दुकानदार माल टोल के देखता है, ए? कथाई बकरे को टटोल के देखता है, मारवाड़ी तिजोरी खोल के देखता है। फिर आप क्यों नहीं अपने होने वाले दामाद को अच्छी तरह से देखें?
2: किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त सन 1929 में हुआ। जन्म हुआ था एक बंगाली परिवार में, जगह थी खंडवा, जो अब मध्य प्रदेश में है। इनके जन्म का नाम रखा गया आभास कुमार गांगुली। इनके पिता कुंजालाल गांगुली गंगोपाध्याय एक वकील थे और इनकी माँ गौरी देवी बंगाल के एक बड़े ही नामी परिवार से आई थीं। कुंजालाल गंगोपाध्याय को बुलाया गया था कामा विशेधर गोखले के परिवार ने। कामा विशेधर गोखले परिवार ने कुंजालाल गंगोपाध्याय को बुलाया था खंडवा में और ये कहा था कि आप हमारे वकील बने।
5: अरे वाह सूर्य देवता, जब तुम्हारा टाइम पीस भी खूब है, चाबी दो या न दो, मगर तुम अपने वक्त पर जरूर निकलोगे। संपत,
6: गुड मॉर्निंग बॉस।
5: जी हो मेरे दोस्त, हजार बरस। चलो प्यारे, भगवान का नाम लेकर धंधा शुरू करें, राजा के नाश्ते का वक्त हो गया है।
2: चार भाई बहनों में किशोर कुमार सबसे छोटे। बड़े भैया अशोक कुमार, फिर सती देवी और फिर अनूप कुमार। अभी किशोर कुमार बहुत छोटे ही थे कि इनके बड़े भाई दादा मुनि, बोले तो अशोक कुमार, एक्टर बन चुके थे।
7: सुनो रे बच्चों, सुनो, जो मेरे साथ सिनेमा जाना चाहता है वो यहाँ आ जाए, वरना मैं जा रहा हूँ।
2: ये किस्सा भी मशहूर रहा कि बचपन में किशोर कुमार का गला हमेशा खराब रहता था, बड़ा ही कर्कश स्वर इनके गले से निकलता। लेकिन एक दिन इनकी उंगली कट गई जिसे खून बहने लगा। उस जमाने में पेन किलर्स बड़े कमजोर हुआ करते थे, जब भी दवाई लगती तो किशोर कुमार बहुत रोते और इसी तरह रोते रोते उनका गला साफ हो गया, गले की खराश बिल्कुल निकल गई और फिर क्या सुरीला स्वर निकला ये तो हम सभी जानते हैं।
8: नाच मेरी जान फाथा।

0: किशोर कुमार अपने बड़े भाई के पदचिन्हों पर चलना चाहते थे और गायक बनना चाहते थे। बचपन से ही वो केएल सहगल से बड़े मुतासिर थे। अशोक कुमार ने चाहा कि उनका छोटा भाई किशोर भी फिल्मों में एक्टर बने, इसलिए आभास कुमार से नाम बदल दिया गया और किशोर कुमार रख दिया गया। फिल्म जिद्दी में खेमचंद प्रकाश ने किशोर कुमार को प्लेबैक सिंगिंग का मौका दिया। गाना था मरने की दुआएं क्यों मांगूं,
1: मरने की दुआएं क्यों मांगूं।
0: काफी लंबा समय इसी जद्दोजहद में बीत गया कि किशोर कुमार एक्टर हैं कि डायरेक्टर, सिंगर हैं कि लिरिक राइटर। हालांकि किशोर कुमार का मन एक्टिंग में बिल्कुल नहीं लगता था, पर अपने बड़े भाई अशोक कुमार के दबाव में ये एक्टिंग करते रहे। एक वक्त ऐसा भी आया था जब महान गायक मोहम्मद रफी ने किशोर कुमार के लिए प्लेबैक सिंगिंग की।

किशोर कुमार ने बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी इन बड़े ही दिग्गज कलाकारों की फिल्मों में काम किया, जैसे कि नौकरी और मुसाफिर। फिर नया अंदाज, भागम भाग, भाई भाई, आशा और चलती का नाम गाड़ी तो बहुत मकबूल हुई। इन फिल्मों में इनके गाने भी रहा करते थे और इनकी एक्टिंग भी।

बहुत से ऐसे संगीतकार थे जो किशोर कुमार को प्रॉपर सिंगर नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ये तो नौटंकीबाज है, सिर्फ हंगामा करता रहता है। और ये वो दौर था जब तलत महमूद, मुकेश जी, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, इन सब गायकों का नाम बहुत ऊंचा था। हम

0: किशोर कुमार की फिल्म हाफ टिकट भी लोगों को याद रही और उसमें गाया वो गाना जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट इन्होंने निभाए थे, आके सीधी लगी।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ संवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ संवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
2: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया।
0: किशोर कुमार के जीवन में महान संगीतकार एच डी बर्मन का बड़ा योगदान रहा। पहली ही मुलाकात में किशोर कुमार ने दादा बर्मन की आवाज में ही दादा बर्मन को गाना सुनाया, बस वो तो एकदम हैरान रह गए। उसके बाद एच डी बर्मन और देवानंद का कॉम्बिनेशन इन्हें मिला और फिल्म गाइड का गाना गाता रहे मेरा दिल गहरा असर छोड़ गया। तब किशोर दा ने कहा कि अब तो ये दिल सिर्फ गाएगा और एक्टिंग की दुकान पर इन्होंने कुछ वक्त के लिए ताला लगा दिया। जरूरत

0: जरूरत है।
1: फिल्म आराधना ने यदि राजेश खन्ना को बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाया तो किशोर कुमार की गायकी का भी लोहा मान गए लोग। बस फिर तो राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन या फिर हो ऋषि कपूर, सभी सुपरस्टार्स के लिए किशोर कुमार की आवाज का ही इस्तेमाल किया जाता।

0: आते हैं।
1: आर डी बर्मन हो कि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, बापी लहरी हो कि कल्याण जी आनंद जी, सभी किशोर कुमार की आवाज के ऐसे दीवाने हुए कि तकरीबन हर दूसरी फिल्म में किशोर कुमार के ही बहुत सारे गाने हुआ करते थे।

0: किशोर कुमार ने बतौर डायरेक्टर भी काम किया। दूर वादियों में कहीं, चलती का नाम जिंदगी, दूर का राही, शाबाश डैडी, कुछ फिल्में कंप्लीट हुई, कुछ फिल्में नहीं। दूर गगन की छाओ में इस फिल्म को भी कौन भूल सकता है।
1: बड़ी प्यारी जगह।
0: किशोर कुमार जितने मजाकिया, जितने हंगामा खेज कलाकार थे, उतने ही संजीदा भी। इनकी सिक्स्थ सेंस बहुत कमाल करती थी।
2: तो घर तलाश कर ही लिया आपने, कोई तकलीफ तो नहीं हुई?
1: अजी तकलीफ कैसी, पोस्ट ऑफिस से पता पूछा और सीधा यहाँ चला आया।
2: ओ ऐसे। चाय पियेंगे?
1: अजी चाय तो मैं रोज ही पीता हूँ।
2: तो कुछ खाने के लिए मंगवाऊं?
1: खाना भी मैं रोज ही खाता हूँ। बस इतना अर्ज करने आया था कि कल रात आपका नाच कयामत का था। इंसान तो इंसान, कुर्सियों के दिल धड़क रहे थे, ऐसा मालूम होता था जैसे आर्ट आपका रूप बदल कर स्टेज पर आ गया है।
0: महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे जब पाथेर पांचाली का निर्माण कर रहे थे तब उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी। तब किशोर दा ने 5,000 रुपए दिए थे। वो और बात है कि सत्यजीत रे साहब ने फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद वो पैसे लौटा दिए, पर किशोर कुमार हमेशा उन्हें याद दिलाते रहते कि मैंने आपकी मदद की थी। फिल्म पाथेर पांचाली की मेकिंग किशोर कुमार ने शूट की थी, पर अफसोस वो वीडियो कैसेट अब खो गई है।
1: बाहरी किस्मत, जिस भाई के लिए मैंने जिंदगी में पहली चोरी की, आज उसी भाई की जेब भी मुझे ही काटनी पड़ी। ये कौन है? ये जरूर मेरी भाभी होगी। भैया भाभी।
0: लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ किशोर कुमार के डुएट्स बहुत पसंद किए गए। धीमा गाना रहा कि तेज तर्रार, हर अंदाज में किशोर कुमार ही किशोर कुमार छाए हुए थे।

किशोरदा के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी रूमा गुहा ठाकुरता से। इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ, नाम रखा गया अमित कुमार। ये शादी ज्यादा लंबी चली नहीं, 7-8 बरस की शादी टूट गई। इनका दूसरा विवाह हुआ बड़ी ही चुलबुली नहायत खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला से।

0: मचल गया।
1: ऐसा भी माना गया कि मधुबाला उन दिनों दिलीप कुमार के प्रेम में थी। जब वो प्रेम संबंध टूटा तो उन्हें किसी का सहारा चाहिए था। किशोर कुमार भी उस वक्त तलाक से गुजर रहे थे, इसलिए इन दो बेसहारों को एक दूसरे के दिल का सहारा मिला और इन दोनों ने शादी कर ली। किशोरदा को बताया गया था कि मधुबाला को दिल की बीमारी है, हो सकता है ये ज्यादा लंबा ना जिए। मधुबाला के वालिद ने यह भी कहा था कि पहले इसका इलाज हो जाने दो फिर शादी करेंगे, पर किशोरदा ने कहा कि पहले शादी होगी और फिर इसे मैं विदेश ले जाऊंगा इलाज के लिए।
2: सर
3: क्या है?
2: मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं।
3: क्यों, एक ही दिन में क्या हुआ?
2: कोई खास बात नहीं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं, हल्का हल्का बुखार रहता है।
3: बुखार रहता है तो मुझसे दवाई लो, कुछ दिन आराम करो।
2: नहीं सर, मुझसे नौकरी नहीं होती।
1: पर मधुबाला की गिरती हालत किशोरदा को अच्छी ना लगी। धीरे धीरे वक्त बीता और मधुबाला जी की मृत्यु हो गई। किशोर कुमार के जीवन में बेहद अकेलापन था और तब इनके जीवन में आई अभिनेत्री योगिता बाली। 2 साल इनकी शादी जरूर चली पर फिर ये शादी भी टूट गई और उसके बाद इन्होंने अभिनेत्री लीना चंदावरकर से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
4: शायद इसी सुनहरे दिन के लिए आप उस दिन मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए।

0: लीना चंदावरकर को उनके दोस्त संजीव कुमार ने मना भी किया था कि देखो किशोर कुमार से ज्यादा बात मत करना और बात करो तो सीधा राखी बांध देना। तो लीना जी ने पूछा था ऐसा क्यों, तब संजीव कुमार ने कहा था कि शादी कर बैठोगी उनसे और ठीक वैसा हुआ भी।
1: तुझे दिल की बात बता दो। नहीं नहीं नहीं नहीं किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू।
0: किशोर कुमार अपनी पेमेंट निकलवाने के लिए भी बड़े मशहूर रहे। एक प्रोड्यूसर रहे तलवार, उन पे इनके कुछ पैसे बकाया थे। पेमेंट ना होने की सूरत में किशोर कुमार अक्सर उनके घर के सामने जाते और कहते ए तलवार दे दे मेरे 8,000, और शर्मिंदा होकर तलवार साहब को इनके पैसे चुकाने ही पड़े।

0: किशोर कुमार जीवन में अकेले थे और उनके दोस्त थे अमृत तांजन, हरि निरंजन और फटाफट। अब आप सोचेंगे कि ये कौन? ये वो तीन पेड़ जो इनके बंगले में थे, जिनसे ये अक्सर बातें किया करते थे। ये बात भी इसलिए मशहूर हो गई क्योंकि एक जर्नलिस्ट ने इनसे सवाल कर लिया था कि आप तो बड़े अकेले रहते हैं, किसी पार्टी में भी नहीं जाते। और तब किशोर दा ने कहा था, पार्टी में तो जाता हूँ और वो पार्टी मेरे घर के आंगन में ही होती है, सामने ये पेड़ देख रही हो, इन्हीं से बातें करता हूँ।
1: अरे मैं अपने बाग का माली, मोरी उमरिया बाली बाली, मोरी उमरिया।
0: चौथी शादी से किशोर कुमार को एक बेटा हुआ, नाम रखा गया सुमित कुमार। किशोर कुमार की दिल की बीमारी बढ़ती जा रही थी, इनके गाने भी जबरदस्त तरीके से हिट होते जा रहे थे। इनका बेटा अमित कुमार भी जबरदस्त प्लेबैक सिंगर बन गया था, पर कोई ये नहीं जानता था कि किशोर कुमार के जीवन में जब प्यार और खुशी आ गई है, तभी उन्हें ये दुनिया छोड़ के जाना होगा। किशोर कुमार ने 13 अक्टूबर को एक खास पार्टी रखी थी। 13 अक्टूबर अशोक कुमार का जन्मदिन होता है। ये एक सरप्राइज पार्टी थी अपने बड़े भाई के लिए। फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ रहे थे, पर तब ये कोई नहीं जानता था कि किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ चुका है और वो ये दुनिया छोड़ चल बसे हैं। इनके आखिरी लम्हों में जब इनकी बीवी ने इनसे कहा कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर आएगा तो सचमुच इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं।

तो ये थी कहानी किशोर कुमार की, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

उठो जागो, अपना भाग्य संवारो। ये समय है जागने का, जागृति लाने का। ये समय है ईश्वर से प्रीत निभाने का। ये समय है स्वर्णिम युग बनाने का, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन, नमस्कार। सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। चलिए, विशेष किशोरदा की कहानी मध्य प्रदेश खंडवा की आपने सुनी। अब आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को फिरोज शाह मेहता के बारे में बात करना चाहूँगा। और ये विशेष भारतीय पॉलिटिशियन, मुंबई के विशेष नगर पालिका के संविधान चार्टर के निर्माता तथा अंग्रेजी भाषा के अकबर बॉम्बे कार्निवल के संस्थापक। 1913 से विशेष रूप से उन्होंने ये काम शुरू किया था और 1904 में उन्हें नाइट की उपाधि से विभूषित किया था। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। अपने समय के बहुत ही पॉपुलर भारतीय नेता और स्पष्ट वक्ता फिरोज शाह मेहता का 4 अगस्त आज के दिन 1845 में मुंबई के एक प्रसिद्ध व्यवसायी

परिवार में जन्म हुआ। आपने भारत में उच्च शिक्षा की प्राप्त की और पारसी समाज में एमए पास करने वाले फिरोज शाह मेहता पहले व्यक्ति थे। फिरोज शाह ने 4 वर्ष तक इंग्लैंड में कानून के अध्ययन किया और 1868 में वही से वकालत बैरिस्टर की परीक्षा पास करके भारत लौटे और मुंबई में कमिश्नर आर्थर कॉर्फेट का एक कानूनी मामले में बचाव करते हुए उन्होंने स्थानीय शासन के सुधार की आवश्यकता महसूस की और 1872 के नगर पालिका अधिनियम की रूपरेखा तैयार की, जिसके कारण वह मुंबई स्थानीय शासक के जनक कहलाए। तो इस तरह से नगर पालिका अधिनियम की शुरुआत करने पर इन्हें बम्बई स्थानीय शासन के जनक माना जाता है और 1873 में वो इसके आयुक्त नियुक्त हुए और फिर आगे चल के वो अलग अलग पदों पर करते काम आगे बढ़े और फिरोज शाह मेहता बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे, जहां उनकी मुलाकात दादाबाई नौरोजी से भी हुआ। वे फिर भारत के पक्ष में आवाज़ उठाने वाली संस्थाओं से जुड़े रहे और भारत आकर उन्होंने वकालत आरंभ की और शीघ्र ही उनकी सफल बैरिस्ट्री की चर्चा होने लगी। अंग्रेजों से भी इनकी प्रशंसा होने लगी क्योंकि 1890 में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि यदि आप अंग्रेजों के सामाजिक, नैतिक, मानसिक और राजनीतिक गुणों को अपनाएंगे तो भारत और ब्रिटेन के बीच सदा अच्छा संबंध रहेगा। 1904 की मुंबई कांग्रेस के स्वागत अध्यक्ष के रूप में भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया को नहीं बनाया, जिसने इसे बनाया है वो स्वयं इसे संभालेगा, इसलिए मैं तो अंग्रेजी राज को ईश्वर की देन मानता हूँ, जिसकी वजह से अंग्रेज लोगों ने इनकी प्रशंसा की और हमेशा ये शिक्षा के पक्षधार रहे। शिक्षा हमेशा सबको मिलना चाहिए, इसके ऊपर काम किया और इनके इन्हीं कार्यों को देखते हुए फिरोज शाह मेहता के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। 5 नवंबर 1915 को फिरोज मेहता का निधन हुआ। तो ये थी कुछ कहानी फिरोज शाह मेहता की आपके लिए। आप सुनाए हैं रिजवाद 107.8 FM पर और शाम के समय में आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो चाय पीजिए और लीजिए आपके लिए चाय के साथ एक सुंदर गाना। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: सफर कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फिरोज शाह मेहता की कहानी सुनकर बड़ा अच्छा लगा। ऐसी भी कहानी हो सकती है, तो चलिए इसीलिए मैं सुनाता हूँ आपको ये सारे विशेष लोगों की विशेष कहानियाँ आप तक। आइए एक और कहानी आपको सुनाते हैं इंदु प्रकाश पांडे के बारे में। ये एक ऐसे हिंदी के समकालीन साहित्यकार हैं, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नगर में स्थित जॉन वैकफ्लॉन्ग विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग से 1990 में अवकाश प्राप्त प्राध्यापक है। 90 वर्ष की आयु में भी डॉक्टर पांडे की सक्रियता में कोई कमी नहीं है। वर्तमान वे नागरी प्रचारणी सभा तथा भारत PEN के स्थायी सदस्य है। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर इंदु प्रकाश जी का जन्म आज ही के दिन 1924 को उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली में ग्राम शिवपुरी के पास पंडित शंभू रतन पांडे तथा सुभद्रा पांडे के घर हुआ। गांव की पाठशाला से आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंदु प्रकाश परिवार के साथ काजगंग, अजमेर, माउंट आबू और रायबरेली रहे और इन्हीं स्थानों पर रहकर माध्यमिक शिक्षा इन्होंने पूरी की और 1943 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसी साल महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रियता से भाग लिया। गिरफ्तार होकर जेल भी गए और फिर इंदु प्रकाश के जीवन में भारी एक नया मोड़ आने वाला वर्ष था ये, जब परिवार के दबाव में उन्होंने अनिश्चित पूर्वक विवाह करना, उनको शादी करनी पड़ी। आईडी पांडे ने धर्मपत्नी के रूप में उनके जीवन में प्रवेश लिया, जो कालांतर में उनके तीन बेटों पुरुषोत्तम, कैलाश और अविनाश की मां बनी। इंदु प्रकाश जी इंटरमीडिएट की शिक्षा के लिए कानपुर गए और वहां BNSD कॉलेज से 1945 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। फिर वे उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद भी गए और वहाँ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई पूरी की। फिर साहित्य में MA की उपाधि प्राप्त करने के बाद गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने काफ़ी काम किया, उनके नज़दीकी रहे। और फिर कार्य क्षेत्र की बात करें तो बहुत सारे एजुकेशन संस्थाओं में इन्होंने अलग अलग पदों पर काम किया और पढ़ाते भी रहे। साहित्य के साथ इनका बड़ा झुकाव रहा, तो साहित्य के साथ सच्चिदानंद, हरिनंद, इन सभी के साथ में वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ इनका उठना बैठना हुआ और उनके समकालीन इन्होंने अपनी चीज़ें लिखना और आकाशवाणी के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत करने में भी ये आगे रहते थे। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपको सुनाते हैं। अभी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सफर कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ सफर कार्यक्रम में मुंबई महाराष्ट्र डोंबिवली से जो है प्रशांत शिरोडकर जी जुड़ते हैं और आपने महाराज शिवाजी छत्रपति जी के बारे में विशेष बातें आप शेयर करते हैं। तो आइए आज एक और सवाल उनसे करते हैं। कुछ छात्र और अभी भावक जो है सोचते हैं कि आज इतिहास सीखने की क्या उपयोगिता है, ऐसे लोगों को आप क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? प्रशांत सर सुनाइए।
2: सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा
1: जी।
2: और आपने जो सवाल पूछा है वो यह है कि आज इतिहास सीखने की क्या आवश्यकता है, बराबर है सर? इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमें महसूस होता है कि आज के हमारी समाज जितनी सारी समस्या है उन सबका संबंध इतिहास से है। जैसे कि अभी 2-3 साल पहले कोविड आया था, अगर हम ठीक ढंग से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि कोविड का सामना हमने कैसे किया। इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो पता चलता है कि हमने ये देखा उस समय, ये समझा, ये जाना कि इस प्रकार की जो बीमारी है वो उसके पहले कब कब आई थी और उसका सामना हमने किस प्रकार किया था, और उसी प्रकार हमने कोविड का सामना किया।
1: बिल्कुल,
2: वही सारी पाबंदियां हमने इस बार इस्तेमाल की, उसकी जो लस्ट है वो बनाने के लिए भी हमने वही उसी बातों का सहारा लिया जो इसके पहले लिया गया था। कहने का तात्पर्य यह है सर कि हमारे आज की वर्तमान कालखंड की सारी समस्याओं का मूल जो होता है, उनका जो उत्तर होता है, वह इतिहास में मिलता है। तो इसलिए कतई हमें इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। कहीं पर भी अगर हमें काम करना है तो उस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर काम करना है तो उस क्षेत्र में उसके पहले क्या काम हो चुका है ये जानना बहुत अनिवार्य है, तभी हम उसके आगे काम कर सकेंगे, वरना कहाँ से शुरुआत करना है हमें पता नहीं चलेगा। तो ये हमें कब पता चलेगा कि अब तक वहाँ पर कितना काम हुआ है, ये जब जानेंगे तो ही आज वहाँ पर हम काम कर सकेंगे। सर, ये सारी बातें हमें ये बताती है कि हर एक क्षेत्र में इतिहास होता है और उस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उस क्षेत्र में आज हमें क्या करना चाहिए इसका हमें पता चलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा इस संदर्भ में कि उनके जीवन में भी कई सारी समस्याएं आई, उन सबका उन्होंने उनका उत्तर उनको इतिहास से ही मिला या हमें ज्ञात होता है। जैसे कि उनके जीवन में कई सारी समस्याएं, उनका जो पहली समस्या उनके सामने थी वो अफजल खान की थी, जो अफजल खान बीजापुर से स्वराज्य के ऊपर चलकर आया था। देखो, अफजल खान जी का सामना उन्होंने किस प्रकार किया तो इसका उत्तर भी हमें इतिहास से मिलता है। जैसे कि महाभारत में कालीवन नाम का एक सेनापति था, जो राजा जरासंध का सेनापति था, उसे वर मिला हुआ था कि वो किसी भी शस्त्र या अस्त्र से मरेगा नहीं, उसे कोई पराभूत नहीं कर पाएगा।
1: तो
2: उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पुष्कुंद नाम के एक जो राजा थे जिन्होंने बड़े काम किए थे और उनको अभी नींद चाहिए, जिससे हम क्या कह सकते हैं, विश्रांति या आराम चाहिए था, इसलिए एक जगह वह विश्राम कर रहे थे और वहाँ उसे ले जाते हैं। वहां पर उनको ऐसा वर मिला हुआ था जो भी उनकी नींद उनको नींद से जगाएगा और उनकी दृष्टि सबसे पहले जिस व्यक्ति पर गिरेगी वो जलकर भस्म हो जाएगा, यानी कि उनको नींद से जगाने वाले व्यक्ति को वो मरने वाला था वो व्यक्ति उनको जगाएगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण जानते थे और इसी का सहारा लेकर उन्होंने कालीवन का वध कर दिया था। तो यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि देखो, अफजल खान के कालखंड में और मुस्कुन के जो उदाहरण मैंने कालीवन का आपको बताया, वहां पर युद्ध की जब शुरुआत होती है तो श्री कृष्ण कालीवन को बताता है कि देखो, हम दोनों का संघर्ष है, बीच में कोई और नहीं आना चाहिए, इसलिए दोनों दूर जंगल में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद श्री कृष्ण भागना शुरू करते हैं तो कालीवन को ऐसा लगता है वहां पर कि शायद श्री कृष्ण मुझसे डर गए, लेकिन वास्तविकता यह नहीं थी। वही बात हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में मिलती है सर, कि जब अफजल खान का आक्रमण हुआ तो महाराज ने उनके साथ जिस प्रकार वार्तालाप किया उनको प्रतापगढ़ तक लाने के लिए, उन सारे पत्रों को अगर हम देखें तो पता चलता है कि महाराज जी ने अफजल खान जी को यह बताने में कहीं पर भी कहीं कसर नहीं छोड़ी कि मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आप मेरे काका समान हैं, मैं आपसे बहुत डरता हूँ, आप यहाँ आइए और मुझे क्षमता बुझा के अधीशा के पास लेके चलिए, मैं आपके साथ आ जाऊंगा।
3: जी जी जी।
2: लगभग बड़ी सेना लेकर निकले हुए अफजल खान मात्र 10 अपने सेनानियों को साथ लेकर प्रतापगढ़ के नीचे पहुंच जाता है। ये जो महाराज कर पाए उसके अफजल खान के संदर्भ में, इसका संबंध हमें इतिहास में मिलता है। दूसरी बात उसकी वध करने अफजल खान को कैसे मारना इस संदर्भ में मिलती है।
3: तो बिल्कुल बिल्कुल,
2: महाराज जी को मालूम था कि यह अफजल खान भी कोई ऐसा तलवार से या कहीं से मरने वाला नहीं है, या फिर उसे किस प्रकार हम मारे, उसका वध किस प्रकार करें। तो उन्होंने वहां पर जिसे हम क्या कहते हैं शेर के नाखून, जिसका इस्तेमाल हमें कहीं पर पुराण कथाओं में जो नरसिंह का अवतार मिलता है, वहां पर उस नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, वो नाखूनों के द्वारा ही किया था। उसी प्रकार के नाखून यानी कि जिसे मराठी में वाघ नख कहते हैं, तो उनके उनका सहारा लिया, यानी कि यहाँ पर भी हमें महाराज पता चलता है कि महाराज जी ने इतिहास का सहारा लिया है। इसमें महाराज जी के जीवन में बहुत बड़ी घटना होती है कि आगरा के दरबार में उनको बंदी बना दिया जाता है। वहां से महाराज किस प्रकार बाहर निकले इसके बारे में जो हम सोचेंगे तो हमें इसके उदाहरण सीधे महाभारत में मिलते हैं। वहां पर भी देखो कि पांडवों को लाक्षाग्रह में जलाकर मार देने का प्लान जहाँ दुर्योधन बनाता है, वहीं पर हमें पता चलता है कि नहीं वहां से पांडव कैसे बच निकले। अभी उस घटना की तुलना अगर महाराज जी के आगरा से वहां से निकलना बिल्कुल औरंगजेब का इतना बड़ा कड़ा मुगलों का कड़ा पहरा था, इसे बीच में भी महाराज बिल्कुल किस प्रकार बाहर निकले मैं आपको बताना चाहूंगा इस माध्यम इस चैनल के माध्यम से और सभी दर्शकों को भी कि इतिहास को अभी भी यह मालूम नहीं है कि महाराज कैसे बाहर निकले। हम जो जानते हैं वह सारी इतिहासकारों द्वारा की गई कल्पनाएं मात्र है। दो ही बातें हमको मालूम है, जब उस जो हम कारागृह कह सकते हैं महाराज जी का, उसके बाहर जो सेनानी थे मुगलों के सैनिक थे, वो जब औरंगजेब को जाकर बता दिया कि महाराज कारागृह में नहीं है जिसे काल कोठड़ी कहते हैं वहां पर नहीं है, तो वो जो तारीख है वो इतिहास को मालूम है। और दूसरी जो तारीख इतिहास को मालूम है वो यह है कि जिस दिन महाराज राजगढ़ पर अपनी माँ के सामने एक साधु के वेश में पधारते हैं उसकी नोंद इतिहास में की गई है। बाकी बीच में यानी कि महाराज सही महीने में कब बाहर निकले और कहां से किस रास्ते कैसे पहुंचे यह इतिहास अभी ढूंढ रहा है, उसके कहीं पर भी ऐसे लिखा
3: तो सर तो आज के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
2: ये सारे जो उदाहरण हमें यह बताते हैं सर, और ऐसे कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: हमारे पास वक्त की बड़ी पाबंदी है इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा अभी, लेकिन
3: तौर
2: पर आपको बताना चाहूंगा कि हमारी वर्तमान समस्याओं का सामना करने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। आज क्या काम करना है यह सोचने के लिए भी हमें इतिहास का सहारा लेना चाहिए, उसके बगैर हम वर्तमान में ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। और अगर वो करेंगे और वर्तमान में अच्छी तरह काम कर सकेंगे तो हमारा भविष्य भी निश्चित उज्ज्वल हो जाएगा। जैसे कि हमने कोविड पर विजय प्राप्त की, मैं तमाम दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इतिहास को कतई ना भूलें, इतिहास का अध्ययन करें, वर्तमान कालखंड की हमारी सारी समस्याओं का उत्तर इतिहास में ही है, यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।
3: शुक्रिया,
2: धन्यवाद
3: धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। इतिहास हमें जो है समस्याओं का समाधान देता है, इसलिए इतिहास को मत भूलो, ये आपका संदेश था इस सारी चीजों के साथ में जोड़ा आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, धन्यवाद
2: धन्यवाद।

0: This is triple Guinness World Record holder, Dr. Ghazal Srinivas. And you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. Thank you, Radio Madhuban.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राणा उदय सिंह की बात अगर कहें तो इनका भी जन्म 4 अगस्त 1522 को बताते हैं। मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र और राणा प्रताप के पिता थे। इनका जन्म इनके पिता के मरने के बाद हुआ था और तभी गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ नष्ट कर दिया था। इनकी माता कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी बांध भाई बनाने की बात इतिहास प्रसिद्ध है। मेवाड़ की ख्यातों में इनकी रक्षा की अनेक अलौकिक कहानियां कही गई हैं। उदय सिंह को कर्तव्य पारायण धाई पन्ना के साथ बलवीर से रक्षा के लिए जगह जगह शरण लेनी पड़ती थी। उदय सिंह 1537 में मेवाड़ के राणा हुए और कुछ ही दिनों के बाद अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर चढ़ाई की। हजारों मेवाड़ियों की मृत्यु के बाद जब लगा कि चित्तौड़ अब ना बचेगा, तब जयमाल और पत्ता आदि वीरा के हाथ में उसे छोड़ उदय सिंह अरावली के घने जंगलों में चले गए। वहां उन्होंने नदी की बाढ़ रोक उदय सागर नामक सरोवर का निर्माण किया था। वही उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी उदयपुर बसाई। चित्तौड़ के विध्वंस के 4 वर्ष बाद उदय सिंह का देहांत हो गया। तो ये थी कहानी राणा उदय सिंह की आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। और जाते जाते एक सुंदर विचार के साथ आपको छोड़े जाऊंगा। अभी कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो अवसर खुद ही बना लेते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन। चलिए इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक होती हैं।
1: भगवान के साथ संबंध, the relationship with God, and friends, believe me, शायद हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं पहचाना। Two good reasons. एक तरफ भगवान को कहते हैं वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं। We have become God fearing rather than God loving. आप कहेंगे सर, no, we don't fear God. Then there's a second good reason why we have not understood God, because friends, more than 80% of the war that is fought today is directly or indirectly in the name of God. चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वार हो, अमेरिका इराक वार हो, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम हो, गुजरात प्रॉब्लम हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, have we really understood God? किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का। We are fighting in the name of God and we call ourselves intellectuals. Friends, let's understand the name very clearly. Hindus मनाते हैं दिवाली और हमारे इस्लाम भाई बहने मनाते हैं रमजान, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हम समझ सकते हैं। अरे दिवाली में है अली ALI, तो रमजान में है राम RAM। दिवाली में है अली, रमजान में है राम। दिवाली में है दिल DIL, तो रमजान में है जान ZAL। अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है। वो परमात्मा के साथ वो संबंध जोड़ना जरूरी है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम सभी जो आत्माएं हैं उस एक परमात्मा के संतान हैं, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट वी कैन एस्टैब्लिश विद द ऑलमाइटी गॉड, एंड दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय भी होना बहुत बहुत जरूरी है। और जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो उनका जो स्नेह है, क्योंकि परमात्मा को कहते हैं वो स्नेह और प्रेम का सागर है, तो ऑटोमेटिकली वो स्नेह और प्रेम हमारे में आने लगती है और हमारा जीवन फिर से प्रेममय, सुखमय और शांतिमय बन जाता है। तो हम सबको एक ऐसा कार्य करना है जिससे समाज जो है फिर से ऐसे सुखमय बन जाए।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है शिवा मंच और आज तारीख है 4 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, अगस्त का महीना आ चुका है और अगस्त का महीना मतलब क्या नहीं होने वाला है। मैराथन होने वाली है 9 तारीख को और माउंट पूरा बहुत ही सुंदर होता है। हल्की बारिश और पहाड़ और इतनी ग्रीनरी के बीच में कुछ खिलाड़ी दौड़ते हुए और इतना इंस्पायरिंग होता है वो कि अगर आप देख लें या उसका हिस्सा बन जाएं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर कुछ नेगेटिविटी आ गई थी या कुछ थोड़ा डलनेस आ गई थी या थोड़ा माइंड इधर उधर जा रहा था, सब ट्रैक पे आ जाता है। इतनी एनर्जी से भरा रहता है सारा माहौल। तो 9 तारीख को मैराथन होने वाली है, बने रहिएगा हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और उसके बाद 15 अगस्त आने वाली है जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है। हमारे देश को आज़ादी मिली थी, हमें आज़ादी मिली थी और उसको मनाने का हम कोई ना कोई नया तरीका ज़रूर ढूंढेंगे इस बार, क्योंकि न सिर्फ देश को सलाम करेंगे, न सिर्फ हम उन लोगों को सलाम करेंगे जिन्होंने देश को बनाए रखा है, जिन्होंने हमें सुरक्षित रखा है, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है, बल्कि हम उन लोगों को भी जानेंगे जो जिम्मेदार नागरिक की तरह इस देश को बहुत खूबसूरत बनाते आए हैं। और उसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार भी आएगा, इसके साथ बहुत सारी बहनों और भाइयों का थोड़ा हल्की हल्की नटखट, हल्की हल्की प्यार वाली बातें भी होंगी, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है जो हमेशा साथ निभाता है। लेकिन भले सामने एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, लेकिन उतना ही साथ उतना ही प्यार भी देते हैं। ऐसा बहुत कुछ है, अगस्त का महीना होने वाला है, त्योहारों का महीना, सेलिब्रेशन का महीना, इसलिए तैयार हो जाइए। रेडियो मधुबन पे भी बहुत कुछ नया हम लेकर आपके लिए आने ही वाले हैं। और आप भी कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ प्लाने हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं हमारे नंबर पर कॉल करके जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415। फिलहाल बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, लौट कर आएंगे। कार्यक्रम युवा मंच जारी रहेगा।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर। सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए। ओ, आज दर पे चल के आया है मौका।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप कार्यक्रम है युवा मंच, और हम आज बात कर रहे हैं अगस्त महीने में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, कुछ ऐसे नेशनल हिस्टोरिकल इवेंट भी हैं, कुछ ऐसे डेट्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे है, यानी कि जो स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1905 को, उसको सेलिब्रेट करता है ये दिन। और उसके बाद 8 तारीख को क्विट इंडिया मूवमेंट डे है। जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री में हम सुनते आए हैं अपने बड़े बूढ़ों से और पढ़ते भी आए हैं, क्लास में पढ़ाया भी जाता है कि कैसे 1942 में ब्रिटिश रूल को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक मूवमेंट शुरू किया गया था जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसकी भी एनिवर्सरी मार्क करता है ये दिन, यानी कि 8 अगस्त का दिन। 15 अगस्त हम सभी जानते हैं हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डे है, हर भारतीय के लिए ये दिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे देश को आज़ादी मिली थी, हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, और इसलिए ये दिन हम मनाते हैं बेहद गर्व के साथ। उसके बाद 20 अगस्त को आने वाला है सद्भावना दिवस, उसके बाद 23 तारीख को है नेशनल स्पेस डे, जी हाँ, जो कि चंद्रयान 3 की जो मून लैंडिंग है उसको सेलिब्रेट करता है। 23 अगस्त को मनाएंगे हम नेशनल स्पेस डे, स्पेस में, अंतरिक्ष में भारत जो है, इसरो की आप भूमिका देखेंगे तो बहुत बड़ी होती जा रही है, दुनिया की जो भी स्पेस एजेंसीज हैं वो भी उसको अभी रिकॉग्नाइज भी करते आ रहे हैं। और हम जानते हैं कि अगर चंद्रयान की बात हो या मंगलयान की बात हो, मूवीज़ भी बन रही हैं उसके ऊपर, बनी हैं पहले भी पास्ट में, और उसमें ये भी बताया गया है कैसे कि जो बजट है वो इतने बजट में जो मंगलयान भेजा गया था उसमें कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो पॉसिबल है, फिर भी इसरो ने करके दिखाया था, हमारे साइंटिस्ट ने करके दिखाया था। तो ऐसे हम नेशनल स्पेस डे मनाते हैं तो थोड़ा सा और जानकारी हमें मिलती है कि हमारा देश किस गति से आगे बढ़ रहा है। साथ साथ 29 अगस्त यानी 29 अगस्त को हम मनाएंगे नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कि ऑनर करता है हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी विजर्ड कहा जाता था, वो जैसे जादूगर थे, वो स्टिक जिस तरीके से घुमाते थे कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे पॉसिबल है। और हम सब जानते हैं ओलंपिक्स की जब बात आती है, अभी वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे दोस्तों, अगर आपने देखा होगा तो 2 अगस्त तक, और भारत ने इस बार कमाल करके दिखाया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल बात हो रही है क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स डे की, तो हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद रहे हैं और ओलंपिक में जो गोल्ड मेडलिस्ट भारत रहा है, जहाँ पे भारत ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स किए हैं, वो हॉकी का क्षेत्र है और हम बहुत प्राउड हैं उस लिए। तो इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स आने वाले हैं। इंटरनेशनल यूथ डे भी आएगा। हम अगर बात करें ग्लोबल डेज की बात करें, हमने भारत के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात की, कुछ ग्लोबल डेज भी हैं जो पूरी दुनिया देश सब मनाने वाले हैं, उसमें से आपका इंटरनेशनल यूथ डे है, वुमेन इक्वालिटी डे है, इस तरह के दिन भी अगस्त में मनाए जाएंगे। तो अगस्त में है बहुत कुछ आने वाला, सेलिब्रेशन, इन्फॉर्मेशन और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हमें पता है एक बात कि रेडियो मधुबन से जुड़े हैं तो समझ लीजिए आप सभी के लिए कुछ नया तो आने ही वाला है। फिलहाल चलिए अगले गीत की ओर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की भी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर। उसको जब पूरा ख़त्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच और दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि अगस्त के महीने में क्या क्या आने वाला है। तो बहुत कुछ है जैसा कि आपने सुना, कितने सारे डेज हैं। और अगस्त के महीने की बात करें तो शुरुआत तो क्या शुरुआत हुई है, मतलब इंडिया ने कमाल कर दिया है। वैसे तो जितना भी आगे बढ़े उतना लगता है थोड़ा सा और हो जाए, लेकिन सच में इस बार के जो कॉमनवेल्थ गेम्स रहे हैं ग्लासगो में हुए हैं और बहुत ही कमाल के रहे हैं, क्योंकि इंडिया को यानी अपने भारत को 13 गोल्ड मेडल्स मिले हैं इस बार, 17 आपको सिल्वर मेडल्स मिले हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स इंडिया को मिले। और इससे अच्छी एक और खुशखबरी है कि इसके बाद जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, जो कि आपको पता है 4 साल बाद होते हैं, यानी अब होंगे 2030 में, और भारत उसको ऑफिशियली होस्ट करने वाला है, यानी भारत में होने वाले हैं। तो है ना ये कमाल की बात। और इंडिया में तो सच में कमाल हुआ है इस बार। अगर आपने फॉलो किया है कॉमनवेल्थ गेम्स, अगर आपने देखे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी मीराबाई चानू जो हैं, उन्होंने वेट लिफ्टिंग की थी 48 किलो कैटेगरी में। और जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो दो तरह आपको जो है सबसे ज़्यादा वेट उठाना होता है। एक होता है स्नैच, यानी आपको वो सीधा उठाना होता है वेट, उसमें आपको देना होता है कि कितना आप उठा सकते हैं, कितना किलोज उठा सकते हैं। उसके बाद एक क्लीन एंड जर्क भी होता है जिसमें आपको पहले कंधों पे लेना होता है और उसके बाद पूरा ऊपर उठाना होता है। और उसके बाद 3 जजेस जो होते हैं वो तीनों की तरफ से ग्रीन लाइट, या एटलीस्ट 2 की तरफ से ग्रीन लाइट आती है, तब आपका अटेम्प्ट जो होता है वो सक्सेसफुल माना जाता है। और इसके साथ इंडिया की शुरुआत तो बहुत ही बेहतरीन हो गई थी। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे स्पोर्ट्स इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं रहे जिसमें इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे कि टेनिस हो या बैडमिंटन हो या फिर शूटिंग हो या फिर रेसलिंग हो, बहुत सारे गेम्स नहीं थे, लेकिन फिर भी इंडिया ने कमाल करके दिखाया है। ख़ास तौर से बात की जाए बॉक्सिंग की तो 10 के 10 जो बॉक्सर्स हैं वो फाइनल में गए हैं और उसमें से 7 मेडल तो स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल्स मिले हैं, 3 को मिला है। जूडो में भी इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कमाल करके दिखाया है। कई ऐसे प्रतिभागी भी थे जो बहुत ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पे न रिसोर्सेज थे न प्रॉपर उनकी लाइफस्टाइल थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या गजब का परफॉर्मेंस और डेडिकेशन दिखाया है कि लोग दंग रह गए। तो बहुत ही कमाल करके दिखाया है भारत ने। कई तो जो सिल्वर मेडल मिले हैं बड़े नज़दीक से रह गए वो गोल्ड में टर्न होने से। जैसे अगर हम बात करें वेट लिफ्टिंग की तो 1 किलो का भी फ़र्क पड़ गया है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट, जो मतलब सभी इवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट एक वन ऑफ द टफेस्ट इवेंट होता है डीकैथलॉन। डीकैथलॉन में करना ये होता है कि खिलाड़ी एक होता है और उसे 10 इवेंट खेलने होते हैं, मतलब उसमें लॉन्ग जंप भी है, शॉर्ट पुट भी है, रिले हर्डल्स भी है, रेस भी है, हाई जंप भी है, पोल वॉल्ट भी है, बहुत सारे जैवलिन थ्रो भी है। ऐसे 10 इवेंट होते हैं और हर इवेंट में आपके पॉइंट्स आपको मिलते हैं। आपको उसके साथ साथ हर इवेंट में अच्छा परफॉर्म करते जाना है, टॉप 3 में रहना है, तभी आपको फिर मेडल मिलता है। और सबसे खुशी की बात है दोस्तों कि भारत को इसमें भी मेडल मिला है, पदक मिला है, इसमें हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। जी हाँ, ये कमाल करके दिखाया है तेजसिन शंकर ने, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। और बहुत ही कमाल का, मतलब वो बहुत सारे गेम्स में तो टॉप 2 पे ही चल रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होता है, उनको इंजरी भी थी, इंजरी के बावजूद वो इतना अच्छा खेल रहे थे। उसके बाद पोल वॉल्ट में वो कहीं थोड़ा सा ज़रूर पीछे हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना जो उन्होंने एक्सपर्टीज़ दिखाई हर गेम में और लास्ट में आते आते उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा कर ही लिया। सोचिए दोस्तों 10 इवेंट, हाई जंप भी करना है, लॉन्ग जंप भी करना है, जैवलिन भी फेंकना है, रेस भी करना है, हर्डल्स भी करना है, सब कुछ करना है, और सब में आपको अच्छा होना पड़ेगा, नहीं तो आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे और पॉइंट्स कम तो आप टैली में नीचे चले जाएंगे। तो उन्होंने बहुत ही कमाल करके दिखाया है, क्योंकि वो पहले भारतीय एथलीट हैं जिन्हें डीकैथलॉन में मेडल मिला है। ऐसे भारत के बहुत ही कमाल के इस बार एथलीट रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं तो आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप जाके भले हाइलाइट्स देख लीजिए, लेकिन देखिए ज़रूर कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है। कई बार इनको देख के इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको भी वो किसी ना किसी स्पोर्ट में, उनको सिर्फ ऐसे नहीं कि
खेल रहे हैं टाइम पास के लिए, उसको सीरियस ट्रेनिंग दें, आगे बढ़ाएं और भारत का नाम रोशन करवाएं. साथ साथ इन एथलीट्स को बहुत सारे और भी एडवांटेजेस मिलते हैं. अगर आप नेशनल लेवल पे खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ फंडिंग मिलती है. बहुत मुश्किल रहता है बहुत सारे एथलीट का सफ़र डेफिनेटली, लेकिन पहले से बेहतर हालात हैं और धीरे धीरे और बेहतर होते जाएंगे. जब तक बच्चे बड़े होंगे और सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी. तो जब हम करियर की बात सोचते हैं तो स्पोर्ट्स को भी उसमें ज़रूर ज़रूर सामने रखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका मिलता है अपने देश को रिप्रेजेंट करने का. बहुत गर्व की बात होती है और उस समय न सिर्फ उस एथलीट के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए बहुत बड़े गर्व की बात होती है, क्योंकि पूरे भारत के लिए बड़े गर्व की बात होती है. भारत के जो स्टार ओलंपियन है नीरज चोपड़ा जिनका नाम है, उनको भी जैवलिन थ्रो में इस बार सिल्वर मेडल मिला है. उन्होंने भी बहुत कमाल का खेल दिखाया है. और साथ साथ ऐसे और भी बहुत इवेंट्स हुए जिसमें भारत ने कमाल करके दिखाया और बहुत ही प्राउड है हम सभी, क्योंकि ये गेम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. इसके बाद ओलंपिक गेम्स आने वाले हैं जल्दी, उनकी भी तैयारियां चल रही हैं. उसमें क्या होगा हम उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं. हॉकी की चैम्पियनशिप्स भी आने वाली हैं. तो दोस्तों, स्पोर्ट्स हमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड को रिफ़्रेश भी करता है, हमें गर्व करने का मौका भी देता है और इंस्पायर भी करता है. तो इसलिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स से जुड़े रहना चाहिए. और अगर बच्चों को स्पोर्ट्स पसंद है, जैसे अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें, तो मैं उनकी कहानी सुन रही थी पिछली बार जब ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो उन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया था उसमें. और वो बता रहे थे कि किस प्रकार से वो एक स्टेडियम में गए और वहाँ बहुत सारे गेम्स की प्रैक्टिस हो रही थी. वो हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में वैसे रेसलिंग का बहुत ज़्यादा चलन है. लेकिन उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वो जैवलिन को देखा और उन्होंने बस एक बार फेंका उसको ट्राई करने के लिए, तो पहले अटेम्प्ट के हिसाब से वो इतना अच्छा था कि उन्होंने, उनके जो कोच भी थे या उनके जो साथी थे, उनको लगा कि नहीं, ये अच्छा कर सकते हैं. और उनको कुछ फील, कुछ कनेक्शन सा फील हुआ जैवलिन के साथ. तो आप बच्चों को भी लेके जा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं. राजस्थान में हम जानते हैं तीरंदाजी बहुत कमाल की करते हैं लोग, तो उसको कैसे प्रोफेशनली आगे लेके जाएं, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खिलाएं, कैसे स्टेट पर लेके जाएं. मेहनत ज़रूर है, खिलाड़ी एक होता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत उसके माता पिता की होती है, डिटर्मिनेशन उनके माता पिता का होता है, तभी वो सफल हो पाता है. तो ज़रूर आप पता करें, आगे बढ़ाएं बच्चों को भी, और भारत के जो खिलाड़ी हैं उनमें उनका भी नाम शामिल हो, ये सपना साकार हो सकता है. चलिए दोस्तों, फिलहाल आपको लिए चलते हैं अगले गीत की ओर. लौट कर आएंगे, कार्यक्रम युवा मंच जारी रहेगा. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का, इसी वादे के साथ की मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे फिर से। लेकिन दोस्तों फिलहाल लेते हैं इजाजत, और अगस्त महीने के लिए बहुत कुछ है आने वाला, आपकी भी कुछ प्लानिंग है तो सोच दीजिए दोस्तों कि इस बार क्या करना है, 15 अगस्त को क्या करना है, क्या हम कुछ नया कर सकते हैं अपने घरों में ही चाहे तो, या अपने गाँव में क्या कुछ नया तरीके से सेलिब्रेट किया जा सकता है, मनाया जा सकता है, क्या करना है सोचिए, क्योंकि अभी समय बाकी है। लेकिन फिलहाल हमारे शो का तो समय समाप्त हो चुका है, तो मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस खूबसूरत सावन के महीने को याद करते हैं, एक गीत के साथ प्रारंभ करते हैं। आरंभ है तो प्रारंभ भी है।

प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।

करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

महोदय या का भाव या किशोर का चुनाव या की हार का वो भाव तुम ये सोच लो। दया का भाव या किशोर का चुनाव या की हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो काल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।

0: होता है?
1: अरे देखो नहीं पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। तो चलिए आज आपको सवाल पूछते हैं और साथ ही साथ कुछ बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचाते। आज का सवाल है, कौरवों की एकमात्र बहन का क्या नाम था? कौरवों की एकमात्र बहन का क्या नाम था? आपके सामने ऑप्शन है ए मंथरा, बी तारा, सी दुसाला। सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर देना। आप सुन रहे उड़ान, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।
5: अरे सर्वनाश, अब क्या होगा?
6: अब क्या लिखा है महाराज रूपाक्ष ने?
5: इस तरह से कैसे ढूंढ पाएंगे हम?
6: ओ, तो उनका कुछ खो गया है क्या?
5: पढ़कर देख लो।
6: मेरे दोस्त, बड़ी मुसीबत में पढ़कर ये चिट्ठी भेज रहा हूँ। मेरा एकमात्र संतान बिना कुछ लिए ही साधारण इंसान के भेष में साधारण लोगों का दुख दर्द वाली जिंदगी देखने निकला है और मुझे पता चला है कि मेरा एक दुश्मन जिसे मैंने बनवास दिया था, उसका संतान बदला लेने के लिए मेरे पुत्र की हत्या करना चाहता है। मुझे मिली आखिरी सूचना के अनुसार वो सब लोग तुम्हारे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। मुझ पर कृपा करो और उसे ढूंढ कर बचा लो। महाराज आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी राज्य के हर कोने में गुप्तचर भेज रहा हूँ।
7: पर कहाँ है राजकुमार? सारे गुप्तचर पूरे राज्य में घूमकर निराश होकर वापस आ जाते हैं और बताते हैं कि राज्य में लगभग 5000 अजनबी आए हैं।
5: क्या कह रहे हो, 5000 अजनबी? मेरे तो सारे गांव उजड़ जाएंगे। मंत्री अब क्या करेंगे? उसमें से राजकुमार कौन सा है, वो हम कैसे ढूंढ निकालेंगे?
6: महाराज मेरे दिमाग में कुछ आया है, अगर आप इजाजत दें तो शायद मैं उसे ढूंढ पाऊंगा।
5: जरूर।
7: मंत्री के कहे अनुसार सारे अजनबियों को राजमहल में लाया जाता है।
6: सुनिए, भिन्न भिन्न राज्य से आप सब इस राज्य में आए हैं, आप सब इस राज्य के मेहमान हैं, लेकिन इस राज्य का नियम है कि मेहमानों को 2 दिन तक उपवास करवा के रखना पड़ता है।
8: क्या? ऐसा क्यों?
6: प्यादा, इन सबको राजमहल के अभियंतर में ले जाओ। आप सब जाइए।
7: समय बीतता है, सभी लोग असंतुष्ट हो जाते हैं।
6: अन्याय है, अन्याय है, महाराज हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं।
9: मेहमान कह रहे हैं और उनको भूखे पेट रख रहे हैं, ये कैसा नियम है?
7: इस तरह से 2 दिन निकल जाता है। अब मंत्री जी सारे मेहमानों के लिए एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम करते हैं।
6: नियम के अनुसार आप लोगों को 2 दिनों तक भूखा रखा था, इसलिए आज इस दावत का इंतजाम किया है। चलिए चलिए आहार ग्रहण कीजिए आप सब।
7: ये सुनते ही सब के सब खाना खाने के लिए कूद पड़ते हैं, पर 4 लोग नहीं जाते हैं, वो लोग दूर ही खड़े रहते हैं। ये देखकर मंत्री कहते हैं,
6: क्या बात है, आप लोग खाना खाने क्यों नहीं गए? नहीं नहीं, इस तरह से मैं नहीं खा सकता।
10: खाने के लिए ऐसे जानवरों की तरह मैं लड़ाई नहीं कर सकता, कितने भी भूख क्यों ना हो।
6: अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोगों के लिए अलग से खाने का इंतजाम करता हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए।
7: और फिर मंत्री जी ने इन चारों के लिए अलग से खाने का इंतजाम करते हैं। एक गंदे सोने की थाली में, एक साफ मिट्टी की थाली में, एक आम टूटी हुई एनिमल की थाली में और एक साफ केले के पत्ते में खाना सजाकर परोसते हैं।
11: आइए आइए आप सब, आप लोगों का खाना तैयार है।
7: चारों खाने की तरफ देखते हैं। पहले एक आदमी दौड़कर सोने की थाली का खाना उठा लेते हैं और मंत्री जी वो देख लेते हैं और कहते हैं,
11: प्रहरी इन्हें ले जाकर अलग से रहने का इंतजाम करो।
12: लेकिन क्यों?
11: अरे अरे चिंता की कोई बात नहीं है, बस एक छोटा सा इंतजाम है। जाइए जाइए।
7: अब बाकी लोग एक एक करके खाना उठा लेते हैं, लेकिन खाना शुरू करने से पहले ही मंत्री कहते हैं,
11: माफ कीजिएगा, यहाँ पर सबके साथ आप लोग खाना नहीं खा सकते, आप लोगों को वहाँ दूर पेड़ के नीचे जाकर खाना खाना होगा। हाँ हाँ, हमें भी कोई तकलीफ नहीं है।
12: हाँ हाँ, हमें भी कोई तकलीफ नहीं है।
13: सुनो बेटा, बहुत भूख लगी है, चार दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है बेटा, मुझे थोड़ा खाना दो ना।
7: पर दो लोग जिन्होंने केले के पत्ते और मिट्टी की थाली में खाना लिया था, वो दोनों ही उनका खाना भिखारी को दे देते हैं।
5: क्या समझ में आया मंत्री?
11: महाराज, इन दोनों में से ही एक हमारा राजकुमार है।
5: और ये कैसे समझ आया तुम्हें?
11: देखिए महाराज, जिसने सोने की थाली में खाना खा लिया है, दरअसल वो चोर है, इसीलिए वो सोने की थाली के लालच में पहले आकर खाना ले लिया। और वो देखिए, जिसने एल्युमिनियम की थाली में खाना लिया है, दरअसल वो बनिया का बेटा है।
5: अब ये कैसे समझ गए तुम?
11: देखिए महाराज, वो एक व्यापारी आदमी है, इसलिए खुद के जिंदा रहने के लिए अपना खाना किसी को ना देकर खुद ने ही खा लिया।
5: ठीक है ठीक है, अब देखना है कि इन दोनों में से कौन है गुप्त हत्याकारी और कौन है राजकुमार।
11: जी महाराज, यही तो समस्या है। मेरा दिल कहता है कि गुप्त हत्याकारी ने राजकुमार को पहचान लिया है।
5: ये क्या, तो अब क्या होगा?
11: मौका मिलते ही कुछ भी करके वो गुप्त हत्याकारी हमारे राजकुमार की हत्या कर देगा।
5: नहीं नहीं नहीं, फिर तो मेरे दोस्त के पास मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मेरे राज्य में रहकर अगर राजकुमार को कोई नुकसान पहुंचा, तो शायद राजा अरुपाक्ष मेरा दोस्त न रहकर मेरा दुश्मन बन जाएगा।
11: देखिए महाराज, मुझे बस आज आज का समय दे दीजिए।
5: ठीक है दिया।
11: आप लोग हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।
10: कौन सी परीक्षा?
11: हमारे महाराज का कोई पुत्र संतान नहीं है, इसीलिए वो आप में से ही किसी को इस राज्य के वारिस के रूप में चुनना चाहते हैं।
5: मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे राज्य को जरा घूम कर देख लो।
10: ठीक है।
8: जो आज्ञा।
11: उनका पीछा करो, मैं और महाराज पीछे पीछे रहेंगे।
5: मंत्री, इसे काम बन जाएगा ना?
11: देखते हैं ना महाराज, आप चलिए।

0: कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मंत्री।
1: महाराज थोड़ा सा सब्र कीजिए, कब क्या हो जाए ये नहीं कह सकते हैं ना।
2: अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर मारो मारो मारो।
3: इस बुरे आदमी ने चोरी की है, मारो इसको मारो, चोरी करके भाग रहा है, मार मार मार मार मार इसको, मार मार।
4: अरे रुको रुको, एक बुढ़े आदमी को इस तरह से क्यों मार रहे हो?
3: अरे चोर है, इसने चोरी की है।
4: क्या सबूत है कि इन्होंने चोरी की है? और सबूत हो या ना हो, तुम इन्हें सजा देने वाले कौन होते हो? महाराज है ना, राजविधान है, अगर उन्हें लगेगा कि ये चोर है तो वो खुद ही इन्हें सजा दे देंगे।
5: बिल्कुल सही
6: महाराज, यही है राजकुमार।
0: ये कैसे समझ आया तुम्हें?
6: महाराज राजकुमार अपने प्रथा अनुसार शिक्षा से ही एक कमजोर पर ताकतवर के अत्याचार को रोक लिया। उन्होंने राजा के विधान का निर्देश दिया है। देखिए गुप्त हत्याकारी ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहा है और सोच रहा है कि अगर इस मार दंगे में राजकुमार की मौत हो जाएगी तो उसी का फायदा होगा।
0: सही कहा तुमने, तो फिर अपने हाथों से राजकुमार को मारना नहीं पड़ेगा।
6: जी महाराज।
0: वाह वाह वाह मंत्री, तुम्हारे दिमाग की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता मैं। अब गुप्त हत्याकारी को बंदी बनाओ और राजकुमार को राजमहल में लेकर आओ।
6: जो आज्ञा महाराज।
0: आओ आओ आओ राजकुमार, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे दोस्त महाराज अरुपाक्ष के पुत्र हो।
4: इतने सारे लोगों के बीच आपने मुझे कैसे पहचान लिया?
0: मेरे मंत्री जी के दिमाग की वजह से। राजमहल में आने से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है ये सब मेरे मंत्री के कहे अनुसार ही हुआ है।
4: ओहो, प्रणाम महाराज, प्रणाम मंत्री जी।
6: जो आदमी तुम्हारे साथ राज्य घूमने के लिए निकला था, दरअसल वो आपके पिताजी के दुश्मन है, आपका हत्या करना चाहता था।
4: ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी।
0: देखो राजकुमार, हमारे बहुत से गुप्त दुश्मन होते हैं, तुम इस तरह अकेले अकेले फिर कभी राज्य दर्शन करने मत निकलना।
4: जो आज्ञा महाराज।
0: अब तुम ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? तुम मेरे मेहमान हो और उस पर दोस्त के पुत्र भी हो, जो चाहोगे वही मिलेगा।
4: जिसका दिमाग इतना तेज है, मैं आपके उस मंत्री को चाहता हूँ ताकि और अच्छे तरीके से मैं अपना राज्य शासन कर पाऊं।
0: ठीक है दे दूंगा, लेकिन मेरा भी अनुरोध है।
4: हाँ बोलिए।
0: मेरी बेटी से शादी करके मेरे राज्य की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही लेनी होगी।
4: ठीक है, इस बारे में आप मेरे पिताजी से बात कीजिए। ठीक है।
0: वाह वाह वाह वाह, सुनो बाजा बजाओ, मंत्री जी महाभोज का आयोजन कीजिए।
6: जो आज्ञा महाराज।
7: चलिए दोस्तों, असली राजकुमार के विषय पर तो जानकारी मिली गई है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक बेहतरीन गीत पेश करते, पर उससे पहले मिशन लाइफ आपके लिए बस उड़ान में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और सवाल पुनः एक बार और दोहराते हैं। कौरवों की एकमात्र बहन का नाम क्या था? ए मंथरा, बी तारा, सी दुशाला। सही जवाब जरूर देना 9414151।

0: करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैच उन लोगों को भी दे सकते हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: ओम शांति जी, गुड इवनिंग दीदी, कैसे हो?
0: बहुत अच्छे, शुक्रिया शुक्रिया। बताइए।
1: प्रारंभ का गीत और अभी चालू गीत और राजकुमार की कहानी बहुत अच्छी लगी और इंटरनेशनल हैप मैराथन अभी संडे को होने वाला
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और पीछे आपने और कृष्णा जी ने भाग लिया था और
0: इस बार पुनः भाग लेंगे।
1: लाइव कमेंट्री भी बहुत ही अच्छी करते थे, भाग लेके पार्टिसिपेट हो के। तो हम अभी संडे को

0: आयु में देखेंगे भी सुनेंगे भी और आप भी भाग जरूर लेना।
1: बिल्कुल लेंगे।
0: शुभ भावनाएं दीदी
1: जी जी जी
0: और सभी को नमस्कार। और सवाल का जवाब ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी।
1: ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू
0: शुक्रिया
1: शुक्रिया नमस्कार। वेल दोस्तों, हमारे एक साथी ने आज के सवाल का जवाब दिया है। देखते हैं सही है या गलत है, लेकिन क्या नया होना, माटी की मूरत। ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में आप सुन रहे हैं उड़ान। और कौन बोल रहे हैं सर?
1: पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: थैंक यू फिरोज जी, कैसे हैं आप?
1: बस एकदम अच्छे हैं।
0: जी शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए, आज के सवाल का जवाब आपके पास कुछ है?
1: हाँ है मेरे पास, ऑप्शन सी।
0: अच्छा, ऑप्शन सी। थैंक यू।
1: हाँ,
0: चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत, रेडियो मधुबन में। चलिए दोस्तों, फिरोज जी भी आज के सवाल का जवाब दे चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। कौवे ने राजा जी का कान भी ले लिया। सुन लेते हैं एक और कहानी आज की उड़ान में।
2: बहुत समय की बात है, एक देश में था एक दुष्ट राजा। वो राजा बहुत अहंकारी था। अगर कोई भी दोषी पाया गया तो राजा उसके कान काट लेता था।
3: मंत्री, आज जंगल में जाके बहुत सारे पक्षियों का शिकार करेंगे, पहले से बोल रहा हूँ।
4: हाँ महाराज, बिल्कुल करेंगे महाराज। आज जंगल में बैठ के हम लोग करेंगे गिद्ध भोजन।
3: उफ, तुम बेवकूफ हो, उसे गिद्ध भोजन नहीं उद्यान भोजन कहते हैं, उद्यान भोजन।
4: अरे बाप रे, ये तो मुझसे गलती हो गई। अब मैं क्या करूँ महाराज?
3: अगली बार तू ये भूला तो नहीं चलेगा तेरे घर में चूल्हा। तो आज कितना शिकार हुआ मंत्री?
4: इतना तो मैं गिन नहीं पाया महाराज, तो होगा 15 या फिर 16।
3: ओहो, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो हम खाना वगैरह खा के वापस महल लौटते हैं।
4: यही तो मैं बोलना चाह रहा था।
3: चूल्हे को जलने में और कितना वक्त लगेगा जरा बताओ।
4: आप बिल्कुल भी विचलित ना होइए महाराज, आप आँख बंद करके आराम कीजिए।
3: हाँ वो भी ठीक है। कौन कौन कौन, किसने मारा मुझे? ये किसने की हिम्मत मुझे मारी थप्पड़?
4: अरे झापड़ मारना तो उनकी आदत है, ये तो हनुमान जी की जात है।
3: तो सुन ले रे, आज तेरा आखिरी दिन है, लूंगा मैं तेरी जान।
5: ऐसा कौन सा हुआ आपका अपमान जो आपने काट लिया मेरा कान?
3: तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम तो मेरी ही नकल कर रहे हो, एकदम नकलची बंदर। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कह रहा हूँ मैं तुझसे।
5: आपने काटा मेरा कान, अब मैं करूँगा आपका अपमान।
3: हाय हाय हाय, ये क्या हो गया मेरा कान? अब मेरा क्या होगा उमा? सुनो मंत्री, जल्दी से घोड़ा ले आओ।
4: लेकिन महाराज, आपका अलग हुआ कान कैसे जुड़ सकता है?
3: चुप, मैं जैसा कह रहा हूँ तुम बिल्कुल वैसा करो। कोई मुझे देख ले, उससे पहले मुझे महल पहुँचना है, जल्दी चलो। हाँ।

0: हाय हाय हाय हाय हाय, ये क्या महाराज, आपका एक कान किधर गया?
1: ये दुख की बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं नाई, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तुम ये बात किसी से मत कहना कि राजा का एक कान नहीं है।
0: आपका दुख देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए महाराज।
1: सावधान सावधान कर रहा हूँ मैं तुम्हें, अगर ये बात चली किसी को पता तो मिलेगी तुम्हें सजा। हाँ, ये लो तुम्हारा इनाम, और अब तुम अपना मुंह रखो बंद, क्योंकि आ रही है उसमें से गंध, समझ रहे हो तुम नाई? कैसा प्रास बिठाया?
0: हाँ महाराज, आज से मेरा मुंह हमेशा बंद रहेगा। जिससे मेरे मुंह का दुर्गंध और आपका कान काटा हुआ बात किसी को पता नहीं चलेगा महाराज।
1: ऐसा करेगा नहीं तो फिर हम खेलेंगे छुपम छुपाई। मेरे कान में था कीमती सोना, अब नहीं बचा कान तो मुझे आ रहा है रोना। अरे रे रे रे, मेरा कान लेकर जा रहा है वो कौवा, जाकर पकड़ो उसे, कर क्या रहे हो नाई, जाओ।
0: अभी जाता हूँ महाराज, अभी जाता। ए बदमाश कौवा, रुको रुको रुको, अभी रुको। राजा का कान कटा हुआ उसे ले गया कौवा, राजा का कान कटा हुआ उसे ले गया कौवा।
1: क्या हो गया नाई भाई, आज तुम इतना हंस क्यों रहे हो, हमें भी बताओ।
2: अरे इनको इस असली बात बता दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं बिल्कुल मुंह नहीं खोलूंगा अपना।
0: अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही यहाँ से कोई कौवे को उड़ते हुए जाते देखा है?
1: ऐसे तो बहुत सारे कौवे उड़ रहे हैं, तुम किस कौवे को ढूंढ रहे हो वो हम कैसे बता सकते हैं नाई भाई।
0: क्या हुआ नाई, क्यों हंस रहे हो?
3: हंसने की ऐसी क्या बात है, जरा हमें भी तो बताओ।
1: भाई अगर कोई मजे की बात है तो हमें भी बताओ, हम भी हंसना चाहते हैं।
0: एक, एक कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है।
2: फिर ऐसा हुआ कि राज की बात छुपाने से नाई का पेट फूल के ढोल हो गया था।
0: अब क्या करूं क्या करूं, राजा के कान कटने की बात तो बहुत दुख से छुपा के रखा था, अब ये कान तो कौवा ले गया, अब ये बात मुझे छुपानी पड़ी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मेरा पेट तो एकदम फट जाएगा, अब क्या करूं मैं।
3: नाई भैया, ओ नाई भैया, इतना क्या सोच रहे हो?
0: राजा की बात।
3: कौन सी वाली बात?
0: अच्छा तुम्हें तो बोल देता हूँ, तुम तो पेड़ हो, राजा का कान कट चुका है और उसे कौवा ले गया। ये बोल के मुझे बहुत शांति मिली पेड़, जानता हूँ अब उसी कौवे को खोजने।
3: राजा का कट गया कान, इससे बड़ा कोई नहीं है अपमान।
4: अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार पेड़ है, पेड़ बात भी करता है। ऐसा पेड़ तो हमारे राज्य में है ही नहीं।
3: गया कान, इससे बड़ा कोई नहीं है अपमान। ये तू कौन है रे?
4: मेरा नाम रामू है, इस राज्य में नया हूँ। एक बात कहूँ, तुम मुझे बहुत पसंद आए, मैं तुम्हें काट के ढोल बनाऊंगा, खूबसूरत ढोल।
3: तू मुझे बिल्कुल नहीं काटेगा, मैं ये बोल रहा हूँ।
2: लेकिन ढोलकी ने पेड़ की बात बिल्कुल नहीं मानी और उसी पेड़ की डाल से अपना ढोलक बनाया।
1: अरे नहीं, क्या हुआ, तुम जो मेरा कान कल ढूंढने गए थे वो क्या तुम्हें मिला?
0: अरे नहीं महाराज, सब जगह खोज लिया लेकिन न कान मिला न कौवा मिला।
3: राजा का कट गया कान, इससे बड़ा।
2: अब ढोलकी नया ढोलक बजाते बजाते रास्ते में चल रहा था, ढोलक से आवाज आ रही थी, राजा का कान कटा हुआ उसे ले गया कौवा। ये सुनकर सब लोगों की भीड़ जमा होने लग गई, सब लोग राजमहल के पास से गुजर रहे थे, राजा ने ये बात सुनी, सब लोग चिल्ला रहे थे, राजा का कान कटा हुआ उसे ले गया कौवा। अब नापित पड़ गया मुसीबत में।
1: अरे नाई, ये तूने किया मेरे साथ कैसा, जबकि मैंने तुझे दिया था पैसा। हाँ? अब मैं तुझे चढ़ाऊंगा सूली। हाँ?
4: ये नहीं महाराज, ये बात मैंने किसी भी इंसान को नहीं बताई है, केवल एक पेड़ को बताई थी महाराज, नहीं तो मेरा पेट फूल के फट जाता महाराज, मैं मर जाता महाराज, और यदि मैं मर जाता तो आपकी दाढ़ी कौन बनाता महाराज।
1: पेड़? कौन सा पेड़? मुझे ले चलो वहाँ।
4: ये यही वो पेड़ है महाराज, जिसको मैंने आपके कान कटने की बात बताई थी।
1: छुपाने वाली बात तुमने बोल दी सबको, अब मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको।
5: हमें क्षमा करो महाराज, मैंने ढोली को बार बार कहा कि मेरी लकड़ी का डंका मत बनाओ, लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी।
1: वो सब छोड़ो, लेकिन कैसे मुझे मेरा सम्मान वापस मिल सकता है ये बताओ जल्दी।
5: इसका एक ही उपाय है, उस ढोली के दोनों कान काट दो। मुझे उसकी ढोल की आवाज सुनाई दे रही है।
3: राजा का कट गया कान, इससे बड़ा कोई नहीं है अपमान। राजा का कट गया कान, इससे बड़ा कोई नहीं है अपमान।
1: देखो देखो महाराज को देखो, महाराज का सचमुच में कान नहीं है, देखा तुमने?
0: राजा का कान तो अभी कौवे के पास है।
2: अब कान कटे हुए राजा के प्रजा नहीं हो सकते हम।
1: हाय हाय हाय, इस ढोल ने कर दिया सब कुछ चौपट, प्रजा के साथ ले गया मेरा मुकुट, अब मैं क्या करूँ? हाँ,
5: मेरे कंधे पे जब आया है इतना भार, तो महाराज इसका अवश्य करूँगा मैं विचार। नहीं भाई, तुम ढोली का एक कान काट के राजा को लगा दो।
2: उसके बाद नाई ने ढोलकी का एक कान काट कर राजा के कान में लगा दिया।
6: मैंने सुना है यहाँ विचार हो रहा है, तो क्यों ना मेरे लिए भी विचार हो जाए, मुझे भी न्याय मिल जाए।
5: महाराज महाराज, अब आपकी बारी है। ढोली के दूसरे कान को काट कर आप बंदर को लगा दो। बेचारे बंदर को कान नहीं है तो उसको बहुत तकलीफ हो रही है महाराज।
2: फिर ढोलकी का दूसरा कान काट के बंदर को लगा दिया गया।
5: अब ढोली के दोनों कान काट दिए तो अब वो गांव में घूम सकता है। क्यों ढोली, चुप क्यों हो? अब बजाओ बाजार में ढोल। ढोली के कटे दो कान, ढोली के कटे दो कान, अरे कान कटे।
0: लेकिन महाराज, आपका एक कान तो गोरा और दूसरा कान तो काला है।
1: तो क्या? नहीं मामा से काना मामा बहुत अच्छा।
2: और पेड़ की बात नहीं मानी, गोपनीय बात को गोपनीय नहीं रखा, इसकी सजा मिली ढोलकी को।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए दोस्तों, सही जवाब देने का वक्त भी आ गया है। कौरवों की एकमात्र बहन का नाम था मंथरा, नहीं तारा, वो भी नहीं दुशाला। 100 भाइयों की वो लाडली मैं कौरवों की एक बहन, सुख दुख की साथी रही, जानती थी सबका मन। जयद्रथ से ब्याही गई, सिंधु देश की बनी महारानी, पर विधि के विधान ने लिखी एक ही अलग कहानी। अभिमन्यु वध का पाप पति जयद्रथ पर आया, अर्जुन के बाणों ने पूरा सिंदूर मिटाया। भाइयों का अहंकार और नाश महाभारत का देखा, असमर्थ थी मैं रोकने नियति की क्रूर ये रेखा। वंश का दीपक बुझा, सूनी हुई हस्तिनापुर की छांव, अनाथ हुए कितने ही घर, उजड़ गया पावन गांव। अंतिम बेला में मैंने अर्जुन से शांति की गुहार लगाई, एक अकेली स्त्री ने कुल की टूटी डोरी बचाई। दुख के सागर में तैर कर मैंने जीवन बिताया है, अपनों के पापों का भार मैंने अकेले ही उठाया है। ये थी धृतराष्ट्र और गांधारी की पुत्री दुशाला। चलिए दोस्तों, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहूंगी गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि ये सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक का द्वारा थेमरो रेडियो थेमरो वास्ते ये रेडियो कार्यक्रम होता है। आज बच्चों का उमंग उत्साह बड़ा निकले। ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास कार्यक्रम में बच्चों का हुनर बच्चों का टैलेंट प्रतिभा जन जन तक पहुंचाने के लिए आज पहुंचे, क्योंकि सरकार का मंशा है आसपास गांव और अंचल में जो प्रतिभाएं हैं उनको उजागर करने के लिए, चाहे उनका लोकगीत हो चाहे उनका प्रार्थना सत्र में जो गीत गाते हैं उसको एक मंच एक स्टेज देते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणका में पहुंचे। गणका तो अपना स्टेशन का पास है, क्योंकि तलेटी दानबाव उमरिनी पास ही गणका है। पहले गणका भी हमारा उमरिन का अंदर में था, लेकिन आज डिवाइडर होने के बाद दो ग्राम पंचायत और दो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुई। तो इस स्कूल को आज हम आए हैं बच्चों को एक मंच देने के लिए। तो देर किस बात की, बच्चों का आवाज़ ना हो ये हो ही ना सकता, और बच्चों का भावना को भाव को आस्था और विश्वास को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम आज उपस्थित हैं। और हमारा श्रोता ध्यान से सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, क्योंकि रेडियो मधुबन इस तरह गतिविधि कराते हैं। तो आज पढ़ाई का साथ साथ बच्चों को एक मनोरंजन का साथ साथ आस्था विश्वास में जो ध्यान रखते हैं उनको भी एक मंच देते। तो पहला प्रस्तुति एक प्रार्थना सत्र में होगा, और इसका श्रेय तो प्रधान अध्यापक और हमारा प्रिंसिपल साहब को जाता है और सब स्टाफ को। सब एक इस तरह से हमें चांस दिए हैं, कोई सूचना नहीं था, फिर भी अचानक बच्चे आए तो सुनाएंगे एक प्रस्तुति। सभी पहले परिचय देंगे, अपना अपना नाम और कौन सा क्लास।
1: माय नेम इज आलिया बानो, माय क्लास इज 7th।
2: माय नेम इज रविंद्रा, मैं 9वीं क्लास में पढ़ती हूँ।
3: माय नेम इज पूजा, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: कौन बच्चे बोलते भाई, हमारा शहरांचल बच्चों को भी ग्रामांचल बच्चे टक्कर देंगे और इंग्लिश में बोलने शुरू कर दिए, ऐसे होना चाहिए क्योंकि सभी चीज में होशियार है। चलिए एक प्रस्तुति होगी, सुनाएंगे एक प्रार्थना सत्र में जिसे माँ सरस्वती को याद करते हैं, एक प्रार्थना सत्र में जो गीत गाते हैं सुनाएंगे।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत में जब हम सुन रहे थे ध्यान से, तो ध्यान से सुन रहे थे और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसको जब फॉलो करेंगे, अज्ञानता से हमें ज्ञान की तरफ जाना है। हम खुद कौन है ये अज्ञानता है, नहीं जानते मैं कौन हूँ और मेरा कौन है नहीं मालूम था, ये अज्ञानता। जब उसको ज्ञान में सुनते हैं जे मैं कौन हूँ, अभी पता चल गया हम सब कौन है कि नहीं। आप कौन है?
1: आत्मा।
0: देखा उत्तर आया, ये अज्ञानता से ज्ञान की ओर है कि नहीं। तुमको पता चला
1: मैं आत्मा हूँ।
0: आत्मा और ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारा नाम बताया था ना, तुम्हारा नाम नाम और तुम अलग है ना, तो ये ही अज्ञानता से ज्ञान की ओर। अभी हम समझदार बन गए ना, वास्तव में हम सब कौन है, कौन है बच्चे?
1: आत्मा।
0: क्योंकि ये शरीर को चलाने वाला और मेरा जो बोलते शरीर, ओके, ये अज्ञानता से ज्ञान की ओर प्रकाश हुआ कि नहीं। और हमारा मन को शांत चाहिए और कौन देगा? माँ सरस्वती। माँ, माँ सरस्वती नाम सुने ना सभी, किसका बेटी है कौन बताएगा? माँ सरस्वती किससे ज्ञान लाती है, हमें देती है, कौन बताएगा? उसका माँ बाप तो होंगे ना, होंगे कि नहीं?
1: ब्रह्मा।
0: अरे वाह, ताली बजाओ। ये ज्ञान तो एक ज्ञान मिला उसका आगे भी मिल जाता है, मिलता है कि नहीं। इसलिए ब्रह्मा का नंदिनी कहते हैं, किसको? सरस्वती को। और हम सब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बन गए ना, ब्रह्मा का बेटी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा कुमारी। क्या बोलते हैं?
1: ब्रह्मा कुमारी।
0: तो माँ सरस्वती कौन हुआ? ब्रह्मा कुमारी। ताली बजाओ। हाँ, ये तो अच्छा ज्ञान मिला कि नहीं? किसको पता था? नहीं था, अभी पता चल गया इनके द्वारा, हुआ कि नहीं। तो माँ सरस्वती का ड्रेस कौन सा कलर?
2: सफेद।
0: सफेद है कि नहीं? डेली पूजा करते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का माध्यम से हमारा सभी बच्चे और सभी शिक्षकगण भी सुन रहे हैं और ये वास्तविक असली जो वास्तविक परिचय होना जरूरी है, ओके। सभी माँ सरस्वती दुर्गा हमें कल सभी को पूजा करते हैं, अल्लाह को भी पूजा याद करते हैं। तो हमारा बिंदु नूर, नूर होता ना, आत्मा नूर है, आत्मा नूर है, कोई नूर कहते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब हम प्रार्थना सत्र में माँ सरस्वती को याद करते हैं, क्यों याद करते हैं ना? विद्या शिक्षा क्या करते हैं? शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान अर्जन करने, क्या करते हैं? ज्ञान अर्जन करते करते कि नहीं। हाँ, और गीत तो प्रस्तुत किए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि माँ सरस्वती हर स्कूल में, हर विद्यालय में हमें प्रार्थना सत्र में करते, क्योंकि हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बड़े होकर क्या बनेगी बहन?
1: डॉक्टर।
0: हाँ देखो, डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, है ना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, है ना। जब तक मंजिल हासिल नहीं होगा तब तक पढ़ते रहना, पढ़ना छोड़ना नहीं है। तुम बड़े कर
1: टीचर,
0: टीचर मैम, मैम देखिए आप समान मैम का पद चिन्ह पर चलेंगे ना, मैम का व्यवहार पढ़ाने का तरीका सीखना है तब बन जाएंगे ना। हाँ, तुम
1: डॉक्टर।
0: हाँ, डॉक्टर इंजीनियर जो भी काम आपको करना है, चाहे अच्छा किसान भी बनना है, अच्छा गृहिणी भी बनना है, लेकिन आप एक एक महान है। डॉक्टर को कौन खिलाएगा? किसान तो चाहिए ना, तो अच्छा किसान भी बन सकते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी को धन्यवाद देते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था विद्यार्थी विकास में, चरित्र निर्माण में, आत्म प्रबंधन में, बच्चों का आत्मज्ञान को जागृत किया रेडियो मधुबन। छोटी सी बच्ची आए दोनों परिया, लेकिन लेंगे उनको पहले एक ब्रेक।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सब सुन पा रहे, खास कर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय गणका का बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे है लेकिन उनका अंदर में जो होश है, जोश है, कोई बोलेगा भाई आदिवासी बच्चे है, लेकिन आदिवासी बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं और उनका पास कोई झिझक नहीं। चलिए, हमारा साथ दो छात्रा है, परी क्या नाम है?
1: पुष्पा।
0: अरे वाह, वेरी गुड। तुम्हारा?
1: वीरू।
0: वीरू और पुष्पा दोनों सहेली है, दोस्ती है। और क्या बताएंगे, आज गीत गाएंगे? हाँ, चलिए शुरू करो
1: दादी।

0: कर मुको दो दे मुको दो को नोज नहाते रोज नहा कर खाना खाते खाना खाकर पढ़ने जाते जंगल में ना मोर मेंढक बजा रहा है ढोल गंदा पानी मत तुम पीना संगा मैं भी कबीर जीना।
1: क्या बात, ताली बजा भाई।
2: छोटे बच्चे हैं, इन छोटे भी कमाल करते हैं। अभी 12 क्लास का सभी बच्चे बैठे, लेकिन छोटी बच्ची भी हिम्मत देखो, इतना बहुत का अंदर में जूनियर होकर भी सीनियर को टक्कर दिए, तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह कार्यक्रम में जोड़ते हैं,
3: साथ देने के लिए छोटी सी बच्ची आई है, तो उनको स्वागत करते। क्या नाम है आपका?
4: लक्ष्मी।
3: कौन सा क्लास में पढ़ती तुम?
4: छठी।
3: छठी। स्कूल का नाम?
4: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणका।
3: विद्यालय में कौन सा मैडम आपको अच्छी लगती है, कौन सा सर आपको अच्छे लगते हैं?
4: जानकी मैडम अच्छी लगती है और भगवाना सर अच्छे लगते हैं।
3: क्यों?
4: क्योंकि वो पढ़ाई अच्छी करवाते हैं। और
3: अच्छा, कभी मार भी देते हैं? कभी मारते हैं?
4: हाँ, गलती होती है तो मारते हैं।
3: अच्छा, आप कभी गलती करते हैं? नहीं नहीं,
4: कभी हो भी जाती है।
3: हाँ, अच्छा अच्छा, बच्चे सच सच बताती है। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई में आपको अच्छा लगती होगा, और कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है?
4: हिंदी अच्छी लगती है, ऐसा सब विषय अच्छा लगता है।
3: अच्छा लगता है, तो बड़े होकर आप क्या बनेंगी?
4: डॉक्टर।
3: अच्छा, गुड, बहुत अच्छा है, अच्छा एम्बिशन है। तो पढ़ाई कितना घंटा करते हैं?
4: घर में कभी 2 घंटे भी होते जाते हैं, कभी 1 भी।
3: कौन सा कलर आपको अच्छा लगता?
4: गुलाब।
3: गुलाब, अच्छा, क्यों गुलाब? क्यों?
4: क्योंकि वो भगवान के लक्ष्मी माँ के नीचे होते हैं।
3: इसलिए आप लक्ष्मी है, लक्ष्मी माता के नीचे गुलाब कलर होता है और आपको अच्छा लगता है। अच्छा, कलर में आपको गुलाब पसंद है। खेल कूद में कौन सा खेल आपको पसंद है?
4: खेल
3: खेल खेलते हैं, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल।
4: कबड्डी।
3: कबड्डी क्या है, भाई लोग का है खेल तो कबड्डी है। बहन भी खेलते हैं
4: जी।
3: कितना है वहाँ पर टीम में, कितना लोग रहते हैं?
4: यहाँ पे तो बता नहीं सर, इतने तो क्या मालूम।
3: अरे गांव में तुम जब क्या खेलते हैं गांव में, घर में?
4: घर में तो छुपन छुपी।
3: अच्छा, लक्ष्मी आप बताओ, आप तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर का काम क्या होता है?
4: डॉक्टर सुई देते हैं, चेक करते हैं।
3: अच्छा, बीमारी को ठीक करते हैं। अच्छा, और कौन सा फूल आपको अच्छा लगता है?
4: गेंदे का।
3: गेंदे का फूल अच्छा लगता है, चलो बहुत अच्छा बात पता है। मैं सुने आपका पीछे से कोई बोल रहे हैं तो कविता बहुत अच्छी आती है, तो कविता सुनाएंगे अभी?
4: जी। द छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची नौ। छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 8। 8 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 7। 6 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 6। 6 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 5। 5 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 4। 4 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 3। 3 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 2। 2 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 1। 1 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बचा 0।
3: चलो हिम्मत रखी, बिना झिझक से पहला बार जब मिली, फिर भी उनका उमंग उत्साह को सलाम करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी बहन को, क्योंकि छोटी बच्ची है फिर भी अपना बात को तो रखी हिम्मत से। चले, पुष्पा दीदी हमारा साथ इस कविता को सुन रही थी, इस कविता से क्या सीख मिलती है वो बताएगी।
5: इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे कविता के जरिए टीचर बताती है बच्चों को कि गिनतियों में से 1 घटा तो कितने बचे, ये सब सिखाया गया है।
3: बच्चे कैसे गिनती सीख जाते हैं और घटाना जोड़ना इस चीज बच्चे सीखते हैं, जैसे 10 से 1 गया तो 9, 9 से 1 जाएगा तो 8, तो ऐसे सीखते हैं बच्चे। आज कविता के माध्यम से लक्ष्मी अपना बात को रखी। लक्ष्मी, आपका गांव में आज हम लोग आए हैं रेडियो मधुबन, आपको खुशी लगी
4: जी?
3: कितना खुशी है, बहुत सारा कुछ है। ऐसे बार बार होना चाहिए
4: जी।
3: अच्छा, आपको पहला बार रेडियो में मौका मिला
4: जी,
3: तो आपको कोई झिझक डर
4: नहीं
3: लगा?
4: नहीं सर,
3: कोई डर नहीं लगा?
4: नहीं।
3: अल्प विराम का पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखें, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए कार्यक्रम तो एक के बाद एक बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी को स्वागत करते पुनः इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस बन रहा है और सबका सहयोग। चलिए हमारा साथ पुनः उनको स्वागत करते हैं, अपना परिचय पुनः देना है।
1: मेरा नाम रवीना है, मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम आलिया है, मैं कक्षा 8th में पढ़ती हूँ।
0: बड़े अच्छा लगता है। घर में कौन कौन है?
2: पापा, मम्मी, बहन वगैरह।
0: और घर में कोई भी नया चीज आता है? अभी आम का सीजन है, पक्का आम आएगा तो किसको मिलेगा पहले? भाई को मिलेगा ना तुमको मिलेगा?
2: सबको ही मिलेगा।
0: भाई हो चाहे बहन हो, सबको मिलेगा। भाई भाई को आगे देगा पीछे नहीं, सभी को बराबर देखते हैं, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी लेकर हम जो बात करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, घर का दो फूल है, सबको बराबर होना चाहिए। और उनका घर में कोई भेदभाव नहीं, सबको बराबर। पक्का कोई भी नया चीज ड्रेस आएगा तब भी आपको मिलता है? पहले आपको मिलता है?
2: हाँ सर।
0: पहले ना सबको मिलता है।

0: सबको मिलता है,
1: सबको मिलता है, कोई बात नहीं, चलिए शुरू करो।
0: ओ देश मेरे तेरी शान बिशद के कोई दन है क्या, तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, हे जी जी दीवाने की कही बोल सुहानी देखी मंजूर यही तेरी तू चुने। देश मेरे मेरी शान पे सदके कोई दन है क्या, मेरी दूर से बढ़ के धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, हे जी दीवाने की यहाँ बोर्ड सुहानी देखी मंजूर रहे जो भी तू छुने। ओ देश मेरे मेरे शान पे सदके कोई दन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, मेरे हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुत और अचानक आए, कोई प्रिपरेशन नहीं था और एवर रेडी, जब चाहे रेडी सर, और एक अंतरा एक मुखड़ा भी बोले, लेकिन जो हिम्मत है ये काम नहीं है, इसका श्रेय तो माँ बाप को जाता है और उनका गुरुजन को जाता है। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा कलर को आप अच्छा पसंद करते हैं?
2: ब्लैक।
1: ब्लैक कलर में उनको ब्लैक पसंद है क्योंकि ब्लैक उनको अच्छा लगता है, और बड़े होकर तो बनेगी ना कुछ तो बनेगी, है ना, क्या बनेगी?
2: टीचर।
1: टीचर बनेगी, पहले भी बोला था। और इसका श्रेय किसको देंगे, धन्यवाद किसको देंगे?
2: मेरे गुरुजनों को।
1: गुरुजनों को, बड़े जो गुरुजन में कौन कौन आते हैं, गुरुजन मैंने बड़े आपके कौन कौन है?
2: मेरे माता पिता।
1: माता पिता
2: और टीचर।
1: टीचर और बड़ा भाई,
2: बहने वगैरह,
1: बहने, दादा दादी काका काकी सब लोग आते हैं, तो उनको धन्यवाद देंगे क्योंकि उनका प्रेरणा में वो आगे बढ़ेंगे, टीचर बनेंगी। और टीचर बनेंगे तो आपका पहला पोस्टिंग कहाँ पर होंगे, कहाँ पर आपको पसंद होगा ना, अब रोड में ना गनका में? गनका के, गनका में अभी पढ़ रहे हैं, और जब बड़े होंगे तो हमारा सीबीओ साहब याद रखेंगे, जब भी उस समय सीबीओ साहब होंगे तो जरूर पोस्टिंग हमको यहीं पर ही उनको दे देगा, खुशी लगेगा ना? हाँ, अभी से एडवांस में धन्यवाद दे रहे हैं। और हमारा मैम भी सुन रहे, मैडम आप कैसे हैं, पोस्टिंग हुई है, आपको क्या मेहनत करना पड़ा, अभी उस आपका बारे में बता, मैडम बनेंगे तो आप कैसे मैडम बने?
3: बहुत पढ़ाई की फिर बने।
1: हाँ, बहुत पढ़ाई किए, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब तक आपका मंजिल मिल नहीं रहा तब तक पढ़ाई करते हैं, है ना मैम
3: जी?
1: तो इसलिए अभी भी आप मैडम बने, तो आपको क्या लग रहा है, ऐसे भी कभी बच्चे थे आप?
3: जी हाँ, थे ना बच्चे,
1: अभी बड़े हो गए,
3: बड़े हो गए
1: तो अच्छा लग रहा है अभी। हाँ। तो अभी तो पैसा ही मिल रहा है,
3: ठीक
1: है ना, बच्चे पैसा मिलेगा तो सब कुछ कर सकते कि नहीं? हाँ, इसलिए पढ़ाई करेंगे तो पैसा आएगा, नौकरी मिल जाएगा, नहीं तो अच्छा इंसान बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणका का आवाज़ और मैडम का भी आवाज़। मैडम आप जाते हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से, जो बच्चों को क्या सीखने को मिला?
3: इस तरह से बच्चे मतलब कुछ बोलना सीखते, आगे होके आते हैं, प्लेटफॉर्म मिलता है इनको, और अच्छा है।
1: अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा हुआ, और धन्यवाद देते हैं।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते श्रोता मित्र और ग्रामवासी, खासकर आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी गणका के नन्हे मुन्ने बच्चों का आवाज़ सुनने के पश्चात चलते हैं उपलागढ़ के नन्हे मुन्ने बच्चों का भी आवाज़ सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए 12th क्लास के बच्चियाँ उपस्थित हैं, तो उनको भी हमारा कार्यक्रम में सजाने के लिए स्वागत करते हैं। नाम के साथ सभी अपना अपना स्कूल और गांव का नाम का साथ खुद का नाम बताएंगे और बारी बारी अपना प्रस्तुतियां देंगे। तो हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुने, क्योंकि आदिवासी अंचल का जो देसी गीत है, जो फोक सॉन्ग है, वो अपना अंदाज से गाते हैं। छोटे बच्चे भी बड़ों को देख कर सीख जाते हैं। जैसे त्यौहार हो, चाहे शादी हो, चाहे विदाई हो, सभी जगह में जब मौका मिलता है वो गीत गाते हैं। तो आज भी हमारा कार्यक्रम को सजाएंगे उपलागढ़ के बच्चों का आवाज़ आपको अभी सुनने को मिलेगा।
1: मेरा नाम अंकिता है, 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम उपलागढ़ है।
2: मेरा नाम विनीता, मैं 10वीं में पढ़ती हूँ। मेरे गाँव का नाम उपलागढ़ है।
3: मेरा नाम है उर्मिला, मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। गाँव का नाम उपलागढ़।
4: मेरा नाम है पुण्य कुमारी, मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम उपलागढ़।
5: मेरा नाम है रमीला कुमारी, मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम उपलागढ़।
6: मेरा नाम है जमुना कुमारी, 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम उपलागढ़।

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो यह था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे किसी बात को लेकर। आज के लिए आप सभी से इजाजत, फिर मिलेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो की कैन हो। जी हाँ, दिन भर की भागदौड़ के बाद जब हम शो पे आते हैं तो सबसे पहला कॉल हमारे बुरीलाल जी का होता है, और ये हमारे बुरीलाल जी ही है। बुरीलाल जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया है। जब आप आ जाते हो तो हमारे सारे दिल की कलियां कलियां खुल जाती है।
0: और अब तो हमें पता भी चल गया कि शो शुरू होता ही है उससे पहले ही आपका कॉल होता है, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है।
1: लेकिन हम आठ बजते हम इंतजार ही करते रहते हैं कि कब
0: हमारे
1: आएंगे, तो हमारी बातें को सुनेंगे, हमारी फरमाइश को पूरी करेंगे और हमारी ख्वाहिश को भी पूरी करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: और हमारे सभी साथियों के साथ में रह करके आज के साथ में हमारी मुस्कान हर समय हमेशा के लिए अमर रहे।
0: जी
1: क्या कहना है,
0: क्या कहना
1: है? आज का मेरा वो है ज्यादा बोल।
0: जी
1: बोल, सुनो ना।
0: सुना दीजिए बिल्कुल से।
1: अरे चांदी के टुकड़े में, चंद टुकड़ों में भगवान को भी लेके जाते हैं।
0: एक बार फिर से दोहरा दीजिए।
1: हाँ, चांदी के टुकड़ों में भगवान को भी लेके जाते हैं। फिल्म का नाम है एक मिनट है।
0: जी बिल्कुल।
1: सट्टा बाजार क्या कह रहा है सट्टा बाजार।
0: चलिए बिल्कुल कोशिश करते हैं आपकी ये फरमाइश हम पूरी करें।
1: अरे अपने फिरंज भाई भी है।
0: हाँ आएंगे ना,
1: उनको भी मेरा प्यार बड़ा नमस्कार बोलना जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे।
1: बुरारान जी भी होंगे और वो क्या सुभाष भाई है और मदन भाई भी कहीं कहीं सुनते होंगे, तो उनको भी मेरा खास बड़ा नमस्कार
0: जी। बिल्कुल,
1: इस श्रावण के महीने में और मिल पंतों के साथ में और मेरे दिल के साथ में नमस्कार सर। नमस्कार।
0: थैंक यू सो मच आपका कॉल करने के लिए बुरीलाल जी। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे बुरीलाल जी। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि दिन की भागदौड़ के बाद जब रात अपनी ठंडी और शांत चादर ओढ़ लेती है तो तब दिल चाहता है कि कुछ पल सिर्फ अपनों के लिए चुने या अपनों के लिए चुरा लिए जाए, कुछ नगमे सुने या सुनने जाइए, जो कुछ बातें दिल से की जाए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे उस कॉलर से। हेलो।
2: हाँ जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: सर सर अच्छे हैं। कल भी मैं कार्यक्रम तो सुन रहा था, हमारे बानो भाई बता रहे थे कई सारी बातें
0: जी,
2: अभी वो चलने वाला है दौड़ की
0: जी मैराथन
2: बातें चल रही थी बातें, वो मैं सब भूला। लेकिन क्या था सर, मेरे दांत को थोड़ा तकलीफ था, तो दांत मैंने दो तीन दिन पहले निकाल गई थी। मेरी दांत
0: अच्छा
2: बहुत दर्द करती थी, इसलिए मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि आपको चार पांच दिन नहीं बोलना है।
0: अच्छा
2: तो फिर भी चलो मैंने सोचा आज तो मैं आपसे बात ही कर लूँ।
0: अरे वाह क्या बात है, शुक्रिया सो मच।
2: तो कल तो बात नहीं कर पाया था क्योंकि कल आपकी बातें चल रही थी, मैं सुन रहा था
0: जी,
2: तो मैंने सोचा चलो आज की बात कर दो, कल मैं जरूर बात करूंगा आपसे।
0: हाँ बिल्कुल।
2: तो आज मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर ने मना किया था कि दो तीन दिन आपको बोलना नहीं है
0: जी,
2: तो मैंने सोचा चलो सही बात नहीं, दो तीन दिन छुट्टी रखेंगे।
0: हाँ, तो अभी क्या तो, है मतलब आपने निकलवा दी है या अच्छा, क्या
2: हाँ निकलने निकलवा दी है अच्छा, लेकिन थोड़ा सा दर्द है ना इसीलिए अच्छा, मैं बोलने में दिक्कत आती है।
0: अच्छा
2: चलो फिर भी मैं आपसे बात तो कर लूंगा।
0: अच्छा किया ना आपने,
2: आज किशोर कुमार जी का जन्मदिन है, तो किशोर कुमार जी का गाना मैंने सुना है कि घुंघरू की तरह बजता ही रहा मैं कभी इस पद में, कभी इस पद में, वही गाना है।
0: बिल्कुल चलिए बिल्कुल साहब के लिए बजाते हैं। हाँ थैंक यू सो मच। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे सुरेश जी, हमारे बुरीलाल जी, बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हमें उन्होंने सजेस्ट किया, और जैसे कि कहा कि आज किशोर कुमार जी का जन्मदिन भी है, तो हम सभी किशोर जी को अपने इस जन्म उत्सव का हम बहुत बहुत उन्हें बधाई देते हैं। खैर जी हाँ, तो दोस्तों आज है 4 अगस्त की इस खूबसूरत रात में आपके अपने रेडियो मधुबन 107.8 FM में मैं आपका दोस्त लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा नगमों का एहसास का गुलदस्ता, खुशी के नगमे दिल की बात है। दोस्तों कहते हैं कि खामोशी में गानों में मिठास और गहरी हो जाती है, तो बस अपने चाय या कॉफ़ी का कप संभालिए, खिड़की के पास बैठिए और अपनी तमाम फिल्मों को, अपनी तमाम फिक्रों को आज की रात के नाम छोड़ दीजिए। आज की इस सुहानी रात में हमारे पास है पुराने ज़माने के वो सदाबहार नगमे और सीधे आपके दिल के तारों को छोड़ेंगे। कुछ फरमाइशें और ऑलरेडी हमारे पास आ गई है, कुछ फरमाइशें भी हम सुनेंगे और हमारे कुछ गीत और भी है जो हम सुनेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि हमने आपको कल भी बताया कि मैराथन की यहाँ पे आबू में तैयारियाँ चल रही है और सभी बहुत ही धूमधाम से मैराथन की तैयारियों में लगे हुए हैं और उसी की उमंग उत्साह को विश्व बंधुत्व के परचम को लहराने के लिए। चलिए लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर से बात करते हैं। हेलो
3: हेलो नमस्कार, केतन भाई बुराराम बोल रहा हूँ।
0: जी बुराराम जी कैसे हैं आप?
3: बुराराम आपके बातें सुन रहा हूँ, कल की भी बातें सुन रहा था, लेकिन कल तो मैं आपसे नहीं बता सकता कि तो वो प्रोग्राम चल रहा था आपका।
0: जी
3: तो खाली सुन रहा।
0: अच्छा कोई बात नहीं।
3: अच्छा
0: जी बताइए।
3: आज मैं बोला सब मधुबन भाइयों को और आपको मेरा राम राम।
0: जी शुक्रिया
3: सुरेश भाई, भूरेलाल जी और मदन भाई और सबको मेरा हाथ जोड़ के राम
0: राम। जी सबकी तरफ से सबको आपको भी खूब खूब राम राम।
3: अच्छा तो एक मेरा बच्चे के एक फरमाइश है मेरे को जो दो दफे बोला।
0: जी
3: मैं बोला सुनना है तो आज मैं सुनवा दूंगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
3: वो ऐसा दादी माँ का गाना है, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा दे।
0: क्या
3: वो ऐसा करके गाना है लता मंगेशकर की आवाज।
0: जी
3: तो ठीक है का सुनेगा, बच्चे भी सुनेंगे जो मैं रोज बातें करते तो हमारा भी गाना सुना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं बिल्कुल।
3: ओके
0: शुक्रिया। सो
3: माँ मुझे अपने आंचल में छुपा दे ऐसा करके गाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर हम सुनाएंगे उन्हें।
3: ओके ओके सर।
0: थैंक यू बुराराम जी आपका कॉल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों तो वक्त है, हमारे बहुत सी फरमाइशें हमारे साथ लग रही है जुड़ रही है और हमारे कॉलर्स आज हमें कॉल भी कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैराथन की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है और विश्व बंधुत्व की दौड़ के बारे में हमारी बात हो रही थी, कल भी हमने इस बारे में बात की थी और सभी को ये संदेश देना है फैलाना है कि ये विश्व एकता विश्व बंधुत्व के लिए दौड़ है। तो उसी की उमंग उत्साह में एक पहला ही गाना हमने ऐसा लगाया है कि छू लो गगन को, कि छू लो गगन के। तो चलिए सबसे पहले ये नगमा सुनते हैं फिर करते हैं इसके आगे की बात। तब तक सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन

यार दोस्तों, वेलकम बैक। जो अभी हमने गाना सुना चूलो गगन के उस छोर को, ऊंची उड़ान भरते चलो, तारों से भी तुम आगे बढ़ते चलो। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से हमें अपनी जो भी उमंग है, उत्साह है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये बोल है। और ये जो गायक है, इसके अमित मुतरेजा जी है, ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से ये गॉडलीवुड स्टूडियो की तरफ से ये प्रस्तुति थी। और चलिए इसी दौर पे हम बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। जो हमारा अगला नगमा था, हमारे सुरेश भाई जी ने हमें फरमाइश में दिया है, घुंघरू की तरह बसता रहूं मैं। चलिए सबसे पहले सुनते हैं गाना, फिर हम प्ले करेंगे हमारे भुरीलाल जी का ये फरमाइश। तो सुनते हैं घुंघरू की तरह बसता ही रहा हूं मैं। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

यहाँ दोस्तों वेलकम बैक। और अभी हमने बहुत ही प्यारा एक गाना सुना, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। बहुत ही प्यारा गाना है और बहुत ही गंभीर रूप में, जब कभी किसी के दिल में कोई किसी के साथ ऐसी वारदातें हो जाती है, जब जहाँ पे हर जगह से उसे धोखे मिलते हैं, तो यही एक गाना हर कोई अपने जुबान पे लाता है कि घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, हम मतलब कि दो ऑफिस में भी कई जाते हैं, हम सरकारी ऑफिस में भी जाते हैं, तो कई बार हमें इस ऑफिस से उस ऑफिस, अरे ये पेपर रह गया वहाँ ले जाओ, उसकी साइन ले आओ, वो करिए, ये सब चीज़ें होती है। तो तब ये गाना भी ऐसा ही कहीं लगता है कि यार मैं तो धर धर की टोकरे कर रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, तो जी हाँ, कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर से जोड़ा गया, यूं ही टूट टूट के फिर जुट जुट के बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह। लेकिन हाँ, एक गाने में ये भी खास है कि एक मोटिवेशन ये भी है कि कैसी भी हालत हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन मैंने अपनी मुस्कुराहट कभी नहीं खोई, या फिर मैंने अपनी जो वैल्यू है, मेरा जो मूल्य है, वो मैंने कभी नहीं खोया। जी हाँ, इसका जो घुंघरू का जो मूल्य था, उसका बजना है, उसका सुर है, उसका जो साउंड है, वो उसने कभी नहीं छोड़ा। तो हमें भी ये हमेशा याद रखना है कि कहीं भी हो, किसी भी

जो हमारा अगला नगमा है, हमारे भूरीलाल जी ने हमें सजेस्ट किया था, चांदी के चंद टुकड़ों के लिए। क्या बात है, आज भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन गाने हमारे पास फरमाइशों के रूप में आ रहे हैं। फिर से एक बार आप सभी को बता देता हूँ कि मैराथन 9 अगस्त के दिन सुबह 5 बजे से शुरू होने जा रही है, और हम सब चाहे फिजिकली दौड़े, ट्रैक पर दौड़े, या फिर रेडियो के साथ लाइव दौड़े मन के द्वारा, तो सुनना ना भूले सुबह 5 बजे से रेडियो मधुबन 107.8 FM, बिकॉज यहाँ पर मैराथन की एक एक पल की अपडेट दी जाएगी। जी हाँ, और आपको अगर मैराथन के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं 9414151415 पर। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं इस नगमे की और फरमाइश की ओर। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है, ईमान को बेचा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। और 1959 में आई ये फिल्म सट्टा बाजार का ये गाना अभी हमने सुना और भूरीलाल जी ने हमें इसकी फरमाइश दी थी। सोचिए 1959 में जब ऐसे गाने बजते थे या बनते थे चांदी

0: के चंद टुकड़ों के लिए ईमान विजय उस फिल्म में शायद कोई शादी के समय पर के दहेज की रूप में ये चीज़ें हो रही है कि कुछ चंद टुकड़ों के लिए अपने ईमान को बेच दिया जाता है। तुझे 1959 में अगर ऐसा कोई गाना बना है तो आज 2026 में क्या कह सकते हैं हम इस शब्दों के लिए, क्या शब्द के नए अर्थ बन सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए हमारे ईमान बिक जाते हैं या हम अपनी चीज़ें बिक जाते हैं। एक और लाइन इसमें यह है कि मस्जिद में खुदा और मंदिर में भगवान को बेचा जाता है। जी हाँ बिल्कुल, आज के समय पर कई जगह पर हम देखते हैं कि मंदिरों में हम जब जाते हैं तो आम इंसानों के लिए एक अलग सी लाइन, VIPs के लिए एक अलग सी लाइन, अगर आप कोई पैसे दे दे तो आपको अलग से दर्शन करवा दिए जाते। चलिए सबसे पहले हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे हम पहले करते हैं बातें। हेलो
1: नमस्कार बाबू।
0: नमस्कार भुरीलाल जी। जी
1: आप उनका जो 12,000
0: जी बताइए।
1: यार तुम शादी मत करना,
0: यार तुम शादी मत करना,
1: मर जाना परिवार, परिवार फिल्म का नाम परिवार है, यार कलाकार किशोर कुमार।
0: चलिए बिल्कुल
1: धन्यवाद सर,
0: बिल्कुल धन्यवाद, थैंक यू सो मच भुरीलाल जी। यस, तो हम जो बात कर रहे थे सबसे पहले हमारे भुरीलाल जी ने हमें कॉल किया और उन्हें भी याद आया कि किशोर कुमार जी का जन्मदिन है। खैर मुझे भी आज याद नहीं था बिकॉज कुछ ऐसी तैयारियों में ऐसी जगह पे बिजी थे पूरा दिन सुबह से, तो ध्यान ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। लेकिन बात ये हो रही थी कि मस्जिद में खुदा और मंदिर में भगवान को भी बेचा जाता है। जी हाँ, तो भगवान के दर्शन के लिए भी कई बार हमें ऐसा हो जाता है कि पैसे देने पड़ते हैं और फिर आपकी जो दर्शन की अभिलाषा है या दर्शन की जो आस होती है वो पूरी की जाती है। मैं कहीं के भी नाम नहीं लूँगा लेकिन हमारे साथ भी ये कहीं बगे ऐसा हुआ है कि जब हम मंदिर में गए और दर्शन के लिए तो कहा जाता है कि अभी दर्शन का समय नहीं है, दरवाज़े बंद है, अभी नहीं खुलेंगे, और फिर आपके पास कोई ऐसे पुजारी आ जाते हैं या कोई ऐसे लोग आ जाते हैं कि अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको इतने देने होंगे और हम आपको पीछे के रास्ते से या पीछे के दरवाजे से आपको भगवान के दर्शन करा दिए जाएंगे। खैर ये तो बात है, अलग है, लेकिन भगवान के भी दर्शन के लिए भी हम लोगों को इतनी चीज़ें हो जाती है आजकल के समय पे। कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, क्योंकि जो अगला नगमा है हमारे बुराराम जी ने हमें सजेस्ट किया था, माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, बहुत ही प्यारा, बहुत ही भावुक गीत है। और बुराराम जी ने कहा कि उनके बेटे शायद या पोते के लिए इन्हें ये फरमाइश है, उनके पोते को शायद सुनना है। तो बुराराम जी ये रहा आपकी फरमाइश, आपके लिए हम प्ले करते हैं ये गाना। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कॉल पे जाने से पहले, गाने पे जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे, चलिए सुनते हैं सबसे पहले उनको। हेलो।
2: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ, मैं दयाराम भाई बोल रहा हूँ। जी आप केवल भाई बोल रहे हो?
0: जी दयाराम जी, मैं केवल बोल रहा हूँ
2: जी। आपको रेडियो मधुबन स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। और मैं मेरे सभी जो मेरे कंचन भाई है, भुरीलाल जी है, जो सुरेश भाई जोटोना से है, सुरेश भाई दर्जी
0: जी,
2: तो इन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि मेरा फोन रिसीज हो गया है तो मेरे पास इन भाइयों पे नंबर नहीं है। अगर मेरी बात आप सुन रहे रेडियो के माध्यम से तो आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे कॉल कर देना।
0: बिल्कुल, मैं भी आपकी तरफ से इन सभी को फिर से एक बार कह देता हूं कि अगर आप सुन रहे हैं तो हमारे दयाराम जी की बात अगर आप सुन रहे हैं तो आप सभी, अगर दयाराम जी का नंबर है आपके पास तो आप दयाराम जी को कॉल करें, उन्हें अपना नंबर बताएं और ताकि वो सेव कर सके और आप सभी से फिर इससे बातें हो सके। ठीक है दयाराम जी?
2: जी हमारे एक दूसरे के पास नंबर होते तो एक दूसरे के हम हाल चाल पूछते थे। हम सभी रेडियो मधुबन परिवार के एक श्रोता मित्र है और रेडियो के माध्यम से मैं इनको कहना चाहूंगा, मेरे प्यारे भाइयों को, मेरे श्रोताओं को, और आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे कॉल करना तो आपका नंबर मेरे पास आ जाए, नहीं तो मेरा फोन रिसीज हो गया आपका, कोई भी मेरे पास नंबर नहीं
0: है। अच्छा,
2: और गाना तो आज आप केवल भाई अपनी पसंद का सुना देना।
0: कौन सा?
2: आप अपनी पसंद का कोई
0: भी। अच्छा, मैं अपनी पसंद का कोई भी गाना सुना दूं? चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसा अच्छा सा गाना सुनाएं जो आपको बड़ा पसंद है। आपको कैसे गाने पसंद है?
2: मुझे तो मोहम्मद रफी के, लता मंगेशकर के, किशोर कुमार के, इनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी आवाज बहुत सुरीली है और गाने भी अच्छे है।
0: ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं,
2: हम तो इस प्रोग्राम में एक सकारात्मक ऊर्जा वाले गाने ही सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल, चलिए कोशिश करते हैं कि हम आपको कुछ ऐसा ही प्यारा सा गाना सुनाएं जो आपको बड़ा पसंद आए। थैंक यू सो मच दयाराम जी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि गाने सुनने की, तो चलिए बढ़ते हैं, ये गाना सुनते हैं सबसे पहले और फिर करते हैं ढेर सारी बातें।
3: भाभी, तुम मेरी बुढ़िया की बात क्यों मानी? तुमने मान ली थी तो मैंने क्यों मानी? तुम तो कौशल्या थी, मैंने अपने दुख में तुम्हें कई बना दिया।

0: वेलकम बैक दोस्तों। और बहुत ही प्यारा भी गाना हमने सुना, माँ मुझे अपने आँचल में छुपा ले। जी हाँ, आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी छोटे भाई मूवी से ये गाना हमारे बुरा राम जी ने ओर से बहुत ही प्यारा हमें ये नगमा सुना। और आप सोचिए, बच्चे की आवाज़ है लेकिन इसमें जो सिंगर है लता मंगेशकर जी ने, लता जी ने इसे अपनी आवाज़ से सजाया है। दोस्तों, दिल की बातों का ये सिलसिला आज बेहद खास और ऊर्जा से भरा हुआ है, क्योंकि जब बात सेहत की और एक नए जज्बे की हो और पूरी दुनिया एक धागे में पिरोने की हो तो कदम अपने आप ही थिरकने लगते हैं। जी हाँ, सुबह जैसे ही हमने शुरुआत की थी, हमने आपको से कहा था कि दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन को लेकर के हमारे साथ आज भी जुड़ेंगे हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सीनियर मेंबर, हमारे साथ है बानू जी। चलिए सुनते हैं, सबसे पहले हमारे कॉलर हमसे जुड़े हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो, फ़ोन कट गया है लेकिन कोई बात नहीं। जी हाँ, तो हम कह रहे थे कि भानु भाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम करेंगे आज भी कुछ बहुत सारी बातें। तो सबसे पहले तो चलिए, सबसे पहले हम रेडियो मधुबन की पूरी टीम और सभी हमारे जो भी श्रेता हमें सुन रहे हैं उनकी तरफ से भानु भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द स्टूडियो।
1: धन्यवाद।
0: आप बातचीत की शुरुआत से पहले हम बात करना चाहते हैं भानु भाई आपसे कि भानु भाई, कल जब हमने 3M रिट्रीट के बारे में आपसे बात की थी, आपने बताया था कि जो भी हमारे धावक आने वाले, जो भी हमारे रनर्स आते हैं उनकी व्यवस्थाएं आपने बताई, तो उनके लिए आपने 3M रिट्रीट के बारे में, 3M रिट्रीट आपने रखी है, तो आप 3M रिट्रीट के बारे में कुछ विस्तार से उसकी जानकारी दे सकते हैं कि क्या है, कैसे 3M रिट्रीट होती है।
1: जी, तो इसमें जो 3M रिट्रीट रखने का पीछे का लक्ष्य यही है कि जो हमारे रनर्स आते हैं मैराथन दौड़ने के लिए, तो उनको हम जो भारत की संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है और जो इसके लिए पूरे विश्व में भारत की महिमा है कि वैल्यूज़
0: जी,
1: जो प्यार, अपनापन, सहयोग की भावना जो भारत में होती है
0: जी,
1: वो और जगह नहीं होती है
0: जी।
1: तो फिर से युवाओं को, जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे युवा एक साइंस के साधनों के आकर्षण में कहो या अल्पकाल सुखों के पीछे कहो ज़्यादा भागते हैं और वही उनको भाता है
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं जो भारत की संस्कृति है, जो आध्यात्मिकता है, उससे दूर होते जा रहे हैं
0: जी।
1: तो जो रनर्स आ रहे हैं मैराथन दौड़ने के लिए, तो फिर से हम जो कहते हैं ना कि अपनी जो जड़ें हैं भारत की, उनसे उनको जोड़ने का एक प्रयत्न है, इसीलिए ये 3M रिट्रीट हमने ऑर्गेनाइज की है।
0: भानु भाई एक सेकेंड, हमारे शायद कॉलर कुछ आपसे भी बात करना चाहते हैं तो उनसे भी हम एक बार पूछ लेते हैं। हेलो
2: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार मदन लाल जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया से बढ़िया हूँ
0: जी।
2: और अभी फोन कर रहे हैं आपको
0: जी। आपने रेडियो सुना, आज रेडियो सुन रहे हैं आप?
2: नहीं, मोबाइल से लगा रहा हूँ।
0: अच्छा,
2: और अभी अभी पहले आपको फोन किया, मैंने बोला चलो मोबाइल से लगा आज सुनते हैं जरा।
0: ओके,
2: तो अभी मोबाइल चालू किया और फिर मैंने फोन किया
0: जी।
2: तो आपको नमस्कार करते हैं, कैसा रहा आज का दिन? बहुत
0: जी मदन लाल जी, आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, हमारे जो यहाँ मैराथन चलती है दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन के नाम से आबू में, तो उसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सीनियर मेंबर हमारे सीनियर भाई भानु भाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो अगर कोई सवाल है आपको मैराथन को लेकर के भानु भाई से, तो आप पूछ सकते हैं, वो सुन रहे हैं आपको।
2: जी जी, सवाल तो हम हमारे स्टूडियो में कोई आते हैं और कोई नई बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है
0: जी। चलिए,
2: उनसे भी प्रेरणा मिलती है और अच्छा लगता है, हमें बहुत खुशी होती है
0: जी।
2: तो उनको हम तहे दिल से नमस्कार करेंगे।
1: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
2: जी, और जहाँ वो रहते हैं यदि उनके आस पास पड़ोसी को, और उनको बहुत बहुत नमन करते हैं
0: जी,
2: और हमें
0: शुक्रिया।
2: बहुत अच्छा लगा
0: जी, शुक्रिया मदन लाल जी। और कोशिश करते हैं कि हम आपसे फिर से बात करेंगे, क्योंकि उनसे हम बातचीत चल रही है तो समय को भी ध्यान में रखते हुए हम आपसे फिर से बात करेंगे।
2: थैंक यू, थैंक यू,
0: थैंक यू मदन लाल जी। यस भानु भाई,
1: तो जो हमारी बात हो रही थी कि 3M रखने का उद्देश्य
0: जी,
1: और इसका जो एक प्रोसेस होता है कि जो रनर्स हमारे पास, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको हम 7 तारीख को ही मतलब 2 दिन पहले मैराथन के बुलाते हैं, तो आने के बाद वो अपना अकोमोडेशन लेते हैं और जो मैराथन किट होती है वो लेते हैं। उसके बाद हम उनको शेड्यूल देते हैं कि कैसे कैसे 3M रिट्रीट रहेगी, कैसी मैराथन रहेगी, उसका पूरा शेड्यूल रहता है, एक नियमावली रहती है, वो उनको देते हैं। और फिर जो हमारा, जैसे इस बार हमने 7 तारीख शाम को ये मैराथन का 3M रिट्रीट शुरू हो रही है, तो उसमें हमारे जो नामी ग्रामी लेक्चरर्स होते हैं, राज्यों के टीचर्स होते हैं, और बाहर से भी प्रोफेशनल जो मैराथन के संबंधित जो जैसे कि उनको गाइडलाइंस कर सकते हैं, टेक्निक बता सकते हैं, तो हमने 7 तारीख को, फिर 8 तारीख मॉर्निंग, फिर दोपहर को, ऐसे लगभग 4 सेशन हमने रनर्स के लिए रखे हैं। तो उस रिट्रीट में हम उनको स्पिरिचुअल नॉलेज भी देंगे। फिर सबसे बड़ी बात होती कि आजकल स्पोर्ट्स भी केवल शारीरिक खेल नहीं रहा है,
0: बिल्कुल
1: स्पोर्ट्स आज एक टेक्निक का खेल हो गया है और एक विल पावर का भी खेल हो गया है, कि हमारा शरीर भी हमारे को रिएक्शन वैसे ही देता है जैसा हमारा मन उनको प्रोग्रामिंग देता है।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर हमारा मन सशक्त है, हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल है, हमारा जो कहते हैं कि विजुअलाइजेशन, कि मैं कैसा स्टार्ट करूंगा, मैं कैसे दौड़ूंगा, मैं कौन कौन सी बातों का ध्यान रखूंगा, तो एक लाइफ में, केवल खेल की बात नहीं है लेकिन लाइफ में कोई भी चीज़ हम करते हैं तो जितना हमारी जो सोच है
0: जी,
1: वो श्रेष्ठ रहेगी, पावरफुल रहेगी, साथ साथ क्रिएटिव रहेगी। सोचते हैं और उसके बाद विजुलाइज करते हैं कि ऐसा मुझे बनना है, ऐसे मुझे करना है, मैं ये कर रहा हूँ। तो जो विजुलाइजेशन पावर जितनी हमारी बढ़ती है, तो वो विजुलाइजेशन पावर हमारे अंदर इनर जो शक्तियाँ है उसको भी जनरेट करती है और शरीर को भी उस हिसाब से डालने की कोशिश करती है।
0: बिल्कुल।
1: तो आज स्पोर्ट में आप देखेंगे कि हर, चाहे क्रिकेट की टीम हो चाहे दूसरी टीमें हैं, इनके साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी रहते हैं और खास खिलाड़ियों को मेडिटेशन कराया जाता है, ध्यान कराया जाता है, तो जिससे उनके जो प्रदर्शन है उसमें निखार आ जाए।
0: बिल्कुल।
1: तो खास ये मेडिटेशन या राजयोग हमारे स्पोर्ट्स को या हमारे जीवन को कितना यूजफुल है, कितना इम्पॉर्टेंट है, वो भी उनमें बताते हैं और प्रैक्टिकल उसका अभ्यास हम उनको करवाते हैं कि कैसे हम अपने मन के शक्ति से शरीर को भी स्ट्रांग कर सकते हैं, शरीर से भी बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कहानी सुनी थी कि पुराने ज़माने में जैसे कंपटीशन चलती थी, तो जैसे कि पत्थर तोड़ने की प्रतियोगिता थी, तो एक ऐसा पत्थर था कि जिसको बड़े बड़े पहलवान पूरा जोर लगा के हथौड़े मार रहे थे, टूट नहीं रहा था, और एक राजस्थान का एक साधारण व्यक्ति, पतला सा, वो पत्थर तोड़ने के लिए अपने गांव की तरफ से गया, तो सब हंसने लगे कि भाई ये बड़े बड़े पहलवान ये पत्थर को नहीं तोड़ सके, तो ये व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति है, इसके अंदर तो कुछ ताकत भी नहीं है, कैसे तोड़ेगा। लेकिन उसका दोस्त उसके पास जाता है, कानों में कुछ कहता है और आता है, और फिर वो व्यक्ति पूरे जोर के साथ वो हथौड़ा मारता है तो पत्थर टूट जाता है। तो सभी आश्चर्य खाते कि भाई ऐसे कैसे हुआ, बड़े बड़े जो शक्तिशाली पहलवान है वो नहीं कर पाए, एक साधारण सा व्यक्ति ने कैसे किया। तो जब इसको पूछा गया कि भाई तुमने कैसे किया, वो व्यक्ति ने तुम्हारे कान में क्या कहा था, तो बोले वो व्यक्ति आके मुझे कहा कि भाई तुम राजपूत है, राजपूत जो है सर कटाते लेकिन हार कभी नहीं मानते हैं। तो वो जो मेरे को अपनी जो पहचान है, अपनी जो एक जो पावर है, वो याद दिलाए कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, तुम क्या कर सकते हो। तो जो इंटरनल जो इनरल शक्तियां जो मेरी जागृत हुई, जिससे कि मेरे जो हाथों में कहो, नसों में कहो, इतनी पावर आई कि मैंने वो पत्थर एक झटके में तोड़ दिया। तो मन की जो शक्ति है वो शरीर के शक्ति से कई गुना पावरफुल है।
0: बिल्कुल,
1: जब ये दोनों शक्तियां मिल के व्यक्ति यूज करता है तो उसको हर क्षेत्र में सफलता
0: मिलती है।
1: तो यही जो ट्रेनिंग है कि तन की, जो आज तो आप देखोगे कि ट्रेनर बहुत है शरीर को ट्रेन करने वाले, टेक्निक बताने वाले, लेकिन उसके साथ मन को जोड़ के जब हम कोई कार्य करते हैं या स्पोर्ट्स करते हैं तो वो कई गुना, 100 गुना हम कहेंगे, वो पावरफुल हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये 3M रिट्रीट रखा है कि हर एक जो रनर्स आ रहा है वो अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कितनी पावर्स भरी हुई है
0: जी।
1: मैं अपने लाइफ में क्या क्या कर सकता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: तो एक तरह से इंटरनल उसको एक चार्ज करने का प्रोसेस ये 3M रिट्रीट में हम उसको देते हैं। और उसकी जो शक्तियाँ सुप्त अवस्था में, जैसे कहते हैं ना कि भाई जो आइसबर्ग है जो समुन्द्र में हमको दिखता है तो उससे 10 गुना वो नीचे
0: बड़ा रहता है।
1: ऐसे व्यक्ति, आज कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर इतनी पावर्स है, लेकिन जो जितना अपने को पहचानता है उतना यूज कर पाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये 3M रिट्रीट वही काम कर रहा है कि व्यक्ति को अपने अंदर लेके जा रहा है, अपने पावर्स को जागृत करने का जो प्रोसेस है कि ये रिट्रीट द्वारा उनको दे रहे हैं। तो जब रनर्स ये मैराथन दौड़ते हैं तो उसमें भी वो बहुत उमंग उत्साह से दौड़ते हैं और आगे की जो उनकी लाइफ है
0: जी,
1: उसमें भी उनको बहुत हेल्पफुल होती है।
0: बिल्कुल,
1: तो इसीलिए ये हम 3M रिट्रीट में ये उनको मेडिटेशंस और स्पिरिचुअल नॉलेज, अलग अलग टॉपिक के, जैसे संबंधों की बातें हैं या राजयोग को हमारे जीवन में हमको कैसे यूज करना चाहिए, हमारे पावर्स को हम कैसे अपने कार्य में लगा सकते, तो ये सारी ट्रेनिंग उनको देते हैं। और जैसे मैंने कहा कि शाम को भी फिजिकल जो मैराथन की टेक्निक होती है उसका लेक्चर्स रहते हैं। और उसके लिए हमारे पास, आप जानते होंगे कि बाड़मेर से एक आर्मी के खेताराम जी करके हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स और ओलंपिक में मैराथन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो वो भी एज ए गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं और उनका भी लाभ इस 3M रिट्रीट में रनर्स को मिलेगा।
0: क्या बात है, वाह, बहुत ही बढ़िया भानु भाई, और बहुत ही अच्छी चीज़ बताई कि 3M रिट्रीट में खुद को जानना, खुद को पहचानना और अपने अंदर की उस शक्तियों को पहचान करके, रिचार्ज करके खुद को दौड़ाना, और यही 3M रिट्रीट में सिखाया जाता है। और भानु भाई, एक और आपसे सवाल है, जी भानु भाई, तो एक और हमारे पास बहुत सवाल आया है, हमारे जो भी श्रोता हमें सुनते हैं उनका एक और क्वेश्चन था कि मैराथन दौड़ने के लिए, जैसे हमारा, हम विश्व बंधुत्व की दौड़ के लिए एक बात करते हैं, लेकिन जो भी हमारे रनर्स आते हैं पूरे देश विदेश से हमारे पास आ रहे हैं, हमने सुना है 12 देशों के धावक इसमें दौड़ने वाले, तो उनके मोटिवेशन के लिए हम क्या प्राइज होती है, क्या हम उन्हें देते हैं, कैसे रहता है, आप उसके बारे में कुछ जानकारी दें।
1: जी जैसे ज़रूर, क्योंकि जो बाहर मैराथन्स होती है तो प्राइस देख के ही लोग खास उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन ये जो मैराथन है अपने आप में अलग है। जैसे मैंने कल भी कहा कि एक केवल प्राइस के लिए रनर्स यहाँ नहीं दौड़ते हैं, यहाँ तो एक विश्व के लिए हम कुछ योगदान करें, इस विश्व को, देश को कुछ नई दिशा दिखाए, जो हमारे जीवन का एक मोटो है कि इस लाइफ में आए तो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करके जाए, तो उस हिसाब से इस मैराथन में दौड़ते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस मैराथन में फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे बड़ी बात यह है, ये मैराथन कमर्शियल
0: नहीं है,
1: तो उसके कारण भी रनर्स बहुत आते हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ये मैराथन में भी हमने प्राइज रखी है, टोटल लगभग 10 लाख की प्राइज ये इस मैराथन में हमने रखी हुई है, और जिसमें 3 कैटेगरीज हमने की हुई है, जैसे 18 साल से 40 साल का ओपन कैटेगरी जिसको बोलते हैं, तो मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा लिया है, सेकंड कैटेगरी है मास्टर कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी है वेटरन कैटेगरी। तो जो हमारी ओपन कैटेगरी है उसमें फर्स्ट प्राइज हमने 71,000 रखा है, सेकंड प्राइज 61,000 है, और सेकंड प्राइज जो है 51,000,
0: थर्ड प्राइज जो
1: ऐसे मेल फीमेल। फिर मास्टर कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज है
0: एक सवाल और भानु भाई, तो ये जो मेल फीमेल है, तो फीमेल अगर फर्स्ट आती तो उसको भी 71 है, मेल अगर फर्स्ट आता तो उनको भी 71, तो दोनों के लिए 71
1: जैसे 71, 61, 51 है जी. तो ये मेल में फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ऐसे ही फीमेल में भी 71, 61 और 51 है. यस
0: ओके जी. तो वैसे मास्टर्स के लिए भी
1: मास्टर्स के लिए नहीं 61, 51, 41 है से मेल फीमेल में, और जो हमारे वेटरन कैटेगरी है उसमें 51, 41 और 31 ऐसे मेल फीमेल में,
0: ऐसे मेल फीमेल. तो तीनों कैटेगरीज के लिए उसी हिसाब से प्राइजेस आपने
1: जी प्राइस रखी है. और प्लस जैसे आप जानते हैं कि जो भी रनर्स आते हैं उनको टी शर्ट्स और फिनिश पॉइंट पे मेडल
0: जी,
1: तो ये सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाती
0: है. सर्टिफिकेट्स भी होते हैं इसमें.
1: इसमें जो हमने जैसे बताया कल की 4 घंटा इस बार टाइमिंग दिया है, वो टाइम में अगर कोई रनर्स फिनिश पॉइंट पर पहुंचता है तो उनको एम्स के तरफ से ही ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलता है.
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच भानु भाई. एक और सवाल है, लेकिन आप सभी श्रोताओं को जानकर ये बहुत ही खुशी होगी ना कि देखिए प्राइजेस मनी भी है, सब कुछ है, तो अगले साल या इस साल भी हम सब दौड़ना चाहते हैं. तो भानु भाई एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे जल्दी से पूछना चाहेंगे कि अगर किसी धावक को दौड़ना है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा.
1: देखिए अभी इस साल का जो मैराथन है
0: जी,
1: इसकी ये विशेषता रही कि हमने जून में वेबसाइट ओपन की
0: जी,
1: तो एक 10 दिन में हमारे पास 3,000 रजिस्ट्रेशन आ गए.
0: क्या बात है, वाह.
1: और जो यहाँ का जो रूट है और जो तैयारियाँ है उसको देखते हुए हमने तुरंत उसको रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कर दिए.
0: ओके.
1: क्योंकि जो प्रशासन से भी हमको जो छुट्टी मिलती है, परमिशन मिलती है और जो तैयारियों की भी करनी पड़ती है
0: जी.
1: तो उस हिसाब से हमने तो 2,000-2,500 ही सोचे थे, तो 3,000 आ गए. तो अभी करते करते 4,000 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं.
0: क्या बात है.
1: तो अभी हमने पूरी तरह से इस साल के मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं. अभी कोई गुंजाइश बिल्कुल हमारे तरफ से नहीं लग रही है.
0: ओके.
1: लेकिन जो भी रनर्स रेडियो मधुबन के माध्यम से हम सबको सुन रहे हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि ज़िंदगी के मैराथन दौड़नी है तो उसके लिए हेल्थ हमको अच्छा रखना है. और हेल्थ और देखा है मैराथन वालों के मन भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं.
0: बिल्कुल.
1: एक जो टेंशन होता है, चिंताएं होती है या दुनिया भर की बातें घूमती हो, मैराथन दौड़ने से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती
0: है.
1: लेकिन मैं आप सबको ये कहूँगा कि नेक्स्ट ईयर के मैराथन में जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है, हम रेडियो मधुबन के माध्यम से आप सबको सूचित करेंगे, तो ज़रूर आप सभी जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और अगले साल में आप ज़रूर इस मैराथन का हिस्सा होंगे. तो मैं सब श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा, इस साल तो पॉसिबल नहीं है किसी को एंट्री देना अभी, लेकिन नेक्स्ट ईयर जरूर आप इसमें सम्मिलित हो सकते.
0: तो अगर अगले साल किसी को आना है तो कहाँ आ सकते हैं, कहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन को, वेबसाइट के थ्रू लिंक से
1: जी. अभी इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने, जैसे कि हमारी जो abumarathon.com वेबसाइट है
0: जी,
1: तो उसमें सारी मैराथन की जानकारी रहती है.
0: ओके.
1: और उसके बाद जैसे वो वेबसाइट खोलते हैं तो जो हमारे हर सिटी में हर जगह ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर है
0: जी,
1: तो उनके थ्रू इस मैराथन में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच भानु भाई, बहुत ही बढ़िया जानकारी, बहुत ही सही जानकारी आपने दी. तो हम भी जो भी हमें सुन रहे हैं, हमारे श्वेता, हमारे धावक, रनर्स, जो भी हमें सुन रहे हैं, अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो हमारे नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जा करके अगले साल के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. और तैयारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए. और हम हमारे भानु भाई का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते कि आप हमारे पास स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी है. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भानु भाई.
1: रेडियो मधुबन का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो सारे हमारे श्रोताओं को नई नई जानकारियाँ और नई नई बातें देते रहते हैं, जिससे हमारे श्रोता उमंग उत्साह में सदा रहते हैं
0: जी.
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच भानु भाई. और दोस्तों वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, वक्त हो गया है, 9 बज चुकी है. हमें विदा दीजिए, हमें कल फिर मिलेंगे आपसे फिर से इसी समय 8 बजे ठीक. और आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन, बिकॉज जो अगला कार्यक्रम है वो है सहज स्वास्थ्य. तो बने रहिए रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड्स से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, सहज स्वास्थ्य जब भी कहा जाता है तो ये बात समझ में आती है कि स्वास्थ्य वास्तविकता में सहज है। हम आसानी से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये हमारी एक गलत धारणा है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए दवाइयां खाने की जरूरत है या स्वस्थ रहने के लिए हमें अस्पतालों के चक्कर काटने की जरूरत है। स्वास्थ्य वास्तविकता में देखा जाए तो हमारे ही हाथों में हमारी ही कुंजी है। अगर हम सही अर्थों में इसका कैसे ख्याल रखना है ये समझ जाएं तो स्वस्थ रहना संभव है। आइए रेडियो मधुबन की इस कोशिश में हम साथ में जुड़ते हैं कि हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने की इस यात्रा पर साथ चलें और हमारे साथ सभी को साथ लेकर चलें। आज सहज स्वास्थ्य में हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राहुल मोदी जी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं और साथ साथ एक प्रसिद्ध ऑस्टियोपैथ हैं। भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में वो प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, ओम शांति।
1: डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य के विषय पर जब हम जानकारी हासिल करते हैं तो ये आवश्यक होता है कि हम सही स्रोत से जानकारी को हासिल करें। और जब हम स्वास्थ्य से संबंधित अनेक चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो स्वास्थ्य कहते ही एक और चीज जो सामने उठ कर आती है वो है स्वास्थ्य का अभाव यानी बीमारी। आज हम देखते हैं कि हम अनेक प्रकार की बीमारियों को समाज में देखते हैं और कुछ बीमारियों को हम रोजमर्रा की आम बीमारियों के रूप में समझकर उनके साथ जीना सीख रहे हैं। कई सारे दोस्त इन बीमारियों को ये समझ लेते हैं कि हाँ, ये तो उम्र के साथ सभी को आने वाली ही चीजें हैं। ऐसी कुछ बीमारियों की चर्चा करते हुए हमने ब्लड प्रेशर के बारे में या हाइपरटेंशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने ये बात समझी कि हाइपरटेंशन में यानी बीपी के मरीजों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए इत्यादि विषयों पर चर्चा की। आज एक और विषय जो अक्सर हमारे जनमानस में रची बसी सी चीज है या हमारी संस्कृति का हिस्सा है ये भी कहा जाए, वो है उपवास करना या व्रत करना। कई लोग धार्मिक कारणों से व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जैसे कई लोग संकष्टि का व्रत करते हैं, कई लोग एकादशी का व्रत करते हैं, कई लोग अलग अलग दिन के लिए व्रत चुन लेते हैं, कई लोग तीज त्योहारों पर व्रत करते हैं। ऐसे में फास्टिंग करना या उपवास रखना लोगों के लिए एक धार्मिक चीज नजर आती है। तो स्वभावतः जब बीपी की बीमारी होती है या हाइपरटेंशन हो जाता है तो लोग ये प्रश्न उनके मन में उठता है कि क्या अभी हमें फास्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
2: जी भैया, उपवास को अगर हम अपने धार्मिक उसमें देखें तो उससे बहुत लाभ मिलता है। अच्छा, उपवास भी बहुत तरीके का है। जो मोस्ट कॉमन अगर हम उपवास की या फास्टिंग की बात करते हैं तो इसमें वाटर की बात होती है, पानी की। और अगर इसको हम उपवास की प्राकृतिक चिकित्सा के साथ बात करें तो पानी, शहद और नींबू की बात होती है। और उपवास बहुत ही अच्छा माना जाता है किसी भी क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने में। एक हम जब उपवास करते हैं तो हम हाइपरटेंशन को हटा दें या हम किसी बीमारी को हटा दें, हमारा धर्म भी और हम अपने धर्म की बात नहीं करें, हम जितने भी धर्मों की बात करें, सब में कहीं ना कहीं उपवास कराया जाता है धार्मिक अनुष्ठान के रूप में, और उस अनुष्ठान को करके कितने उसके लाभ होते हैं ये भी बातें बताई जाती हैं। हम और आप अगर कुछ भी अपने शरीर के अंदर न डालें तो उससे हमारे शरीर को बहुत अच्छा लगेगा। हमारे शरीर की एक बड़ी खासियत है कि हमारे जो भी अंग हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है, या मतलब हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, हमारी किडनियां, हमारी आंतें, ये 24 घंटे जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस समय से जब तक आप हरी चरणों में नहीं जाएंगे तब तक ये चलती रहेगी। तो अगर आप, हम लोग ने जैसे क्या बोला, भोजन हल्का करेंगे तो भी बड़ा अच्छा लगने लगता है। आप हम लोग ने कितने लोगों से सुना है कि अरे भाई वहां खाना बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा खा लिया, एकदम पेट फूल रहा है, अजीब सा लग रहा है, खाते समय तो बड़ा अच्छा लग रहा है पर अब तो बड़ा कष्ट हो रहा है, और वो तो बैठा नहीं जा रहा है, पैंट ढीली करनी पड़ रही है, अरे हमको लेट लेने तो हमको चैन नहीं मिल रहा है। तो आप एक बात समझिए कि आपने जहां भोजन की क्वांटिटी या उसकी मात्रा को कम किया, आपके शरीर को अच्छा लगने लगता है, और आप भोजन की मात्रा बहुत बढ़ा लेते हैं तो आपकी आपको उससे कष्ट का अनुभव होता है। तो जहां आपने उपवास किया तो आपने अपनी आंतों को आराम देना शुरू किया, क्योंकि आंतों के पास सिर्फ पानी को ही लेके जाना है। और ये सभी माताओं, बहनों, भाइयों, सबको ये मालूम होगा कि वाटर की कैलोरी शून्य मानी जाती है, जीरो मानी जाती है। अगर आप 1 लीटर पानी पिए तब भी उसकी कैलोरी जीरो है, आप 5 लीटर पानी पिए तब भी उसकी कैलोरी जीरो है। श्रोतागण, आज एक बात और जानने की, श्री भैया खुद आज उपवास कर रहे हैं तो वो खुद पानी बस पी रहे हैं। तो आज अगर श्री भैया सिर्फ पानी पी रहे हैं तो पहले ये बताइए कि श्री भैया आपको कैसा लग रहा है आज?
1: मेरे को बहुत हल्का लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई अक्सर लोग खाना खाने के बाद जो कहते हैं आज थोड़ी देर लेट जाना चाहिए, खा लिया है बहुत, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है।
2: तो आप खुद सुनिए कि श्री भैया ने क्या बोला कि उनको हल्का लग रहा है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है और आप अपने पानी, आप उपवास करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज मैं बस ये बोलूंगा, झटके से कोई चीज ना शुरू करें। मॉडर्न इस समय एक चीज और बोली जाती है कि आप किसी जानकार व्यक्ति या उस किसी व्यक्ति जो उपवास कर चुका उससे बात करने के बाद अपना उपवास शुरू करें। आप अपना ब्लड प्रेशर नाप लें, आप दिन में 2 बार, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई हैं, आप दिन में 2 बार 3 बार नाप सकते हैं। या आपको सर दर्द होने लगे, उल्टी आने लगे, आपको चीजें चक्कर आने लगे, परेशानी होने लगे, तो आपको धैर्य रखना चाहिए और अपने उपवास को कंटिन्यू करना है कि नहीं ये किसी एक विशेषज्ञ से बात कर लेनी चाहिए। मैं एक चीज अपने श्रोता मित्रों को बता दूं कि अगर आप कोई दवा खा रहे हैं तब भी उस दवा को खा के भी उपवास किया जा सकता है। और ये मेडिकली बोला जाता है कि आप अगर उपवास करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा। एक और सलाह कि 24 घंटे का उपवास न करके आप सुबेरे से शाम तक का बस उपवास करिए। आप सुबेरे बहुत कुछ मत खाइए, शाम को बस हल्का सा भोजन कर लीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप 12-14 घंटा रह सकते हैं कि नहीं। और उपवास करने का सबसे अच्छा जो मतलब, हर तरह से आप अगर भोजन नहीं करेंगे तो आपके शरीर में पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं निकालेगी, तो इंसुलिन नहीं निकालेगी तो आपके, पहली बात तो पैंक्रियाज को आराम मिलेगा और इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है आपके शरीर में वो कम हो जाएगा आपकी। अब आप भोजन नहीं कर रहे हैं तो जो आपके फैट सेल्स या जो आपकी वसा की जो कोशिकाएं हैं वो आपके शरीर को ताकत देने के लिए टूटना शुरू करेगी, आपकी आंतें जो दिन भर 24 घंटे काम कर रही हैं, उनको आराम मिलना शुरू होगा। और अगर उनमें कहीं से कहीं सूजन होगी या कहीं गर्मी होगी या थक रही होंगी तो उन्हें बड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि उनको एक दिन काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे क्यों हमें संडे मिलता है, संडे क्या कहते हैं, आज तो संडे है, आज आराम करेंगे। एक ये मानसिकता है कि संडे है, आज तो देर तक सोएंगे, अरे संडे है, आज हमको कोई पढ़ने को ना बोले, जैसे सभी छात्र बोलते हैं, वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए करते हैं। तो इसी तरह अगर आप उपवास करें तो आपके ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सालयों में तो ब्लड प्रेशर के मरीजों को 7 दिन 11 दिन तक का उपवास करा दिया जाता है। पर घर में सबसे पहली बात मैं कहूंगा, आप सुबेरे कुछ न करके शाम तक का करें, शाम को हल्का भोजन करके देखिए कैसा लग रहा है, और फिर अगली बार इसको पूरे दिन के उपवास में आप कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे चीज जिस चीज का ध्यान रखना चाहिए फास्टिंग के समय, कि आप जो पानी पी रहे हैं उसकी क्वांटिटी के ऊपर आपको थोड़ा सा नजर बनाना चाहिए। बहुत कम पानी पियेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, आपको कमजोरी लग सकती है, और अगर आप बहुत ज्यादा पानी पियेंगे तो आपको का ब्लड प्रेशर हो सकता है थोड़ा बढ़ भी जाए। तो प्लीज आप क्या करते हैं, अपने पानी को भी ध्यान में रखिए। दूसरी चीज, जब आप हम लोग उपवास करते हैं तो शरीर में जो शुगर है, ग्लूकोज है, उसकी मात्रा कम होती है, तो हाइपोग्लाइसीमिया होने लगता है, जिससे व्यक्ति को थोड़ी परेशानी। तो अपना ध्यान रखिए। अगर हमारे चिकित्सालय में अगर आप उपवास करते हैं और आपको थोड़ी कमजोरी, थकान, चक्कर, शरीर हल्का, शरीर में थका थकापन आपको लगता है, आप ऐसी समस्याएं बोलते हैं, तो हम लोग आपको आधे गिलास में 2 चम्मच शहद मिला के चाय की तरह धीरे धीरे सिप करके पीने की सलाह देते हैं, और उसके बाद जो मरीज है उसको बहुत अच्छा लगता है। एक सलाह और देना चाहूंगा कि अगर आपने उपवास को शाम को तोड़ा है तो ये मत सोच लीजिएगा कि सवेरे से कुछ नहीं खाया, जो मिल रहा है खा लो। उसमें भी हमको संयम का जो है संयम रखना है और अपने भोजन को कंट्रोल करके रखना है। अपने प्लीज ब्लड प्रेशर को, जो मैंने पहले भी बोला, उसको ध्यान से मॉनिटर करते रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
1: ये बात समझ में आ रही है।

0: कि ब्लड प्रेशर के बारे में जब हम सोचते हैं तो कई अवधारणा ये होती है कि हम तो गोलियां खाते हैं इसलिए हम फास्टिंग नहीं कर सकते, या फास्टिंग के बेनिफिट्स हमारे ऊपर लागू नहीं हो पाएंगे। मगर ये बात समझ में आ रही है कि हम ये सारी चीजें समझते हुए जब करते हैं, चीजों का ध्यान रखते हुए जब हम फास्टिंग करते हैं, तो उसका लाभ हमें मिलता ही है। आज एक और चीज जो अक्सर सुनने को मिलती है, क्योंकि आज सोशल मीडिया के जगत में लोग नई नई चीजें सुनते हैं, नए नए वीडियोस देखते हैं, तो एक चीज जिसका प्रचलन अक्सर देखने को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो है रिलैक्सिंग मसाजेस के बारे में। लोग कहते हैं कि भाई हमें मसाज करा लेना चाहिए। कई लोग अलग अलग प्रकार के मसाज थेरेपीज के बारे में भी बात करते हैं। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि खासकर हाइपरटेंशन के मरीज, जिनके ब्लड प्रेशर के बारे में जिनको समस्या है या जिनको ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उन लोगों को क्या ये रिलैक्सिंग मसाजेस करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: मालिश शरीर के लिए बहुत अच्छी है और इससे रक्त संचार बढ़ता है। अगर हम मालिश कराते हैं तो हमारी मांसपेशियां जिसमें रक्त संचार ठीक से नहीं हो पा रहा है उनमें रक्त संचार होना शुरू हो जाता है। मैंने अपने पुराने एपिसोड में बोला है कि लेजी मैंस एक्सरसाइज इज मसाज। जो आदमी खुद नहीं कुछ कर सकता है, मालिश करके उसके शरीर को मजबूत बनाया जा सकता है। हम सब ने एक चीज देखी होगी, सुनी भी होगी कि जिनके घर में किसी को लकवा मार गया या पैरालिसिस हो गई है, उसकी उस अंग में जिसमें कमजोरी हो गई है उसकी लोग मालिश करते हैं, उससे रक्त संचार बेटर हो जाता है और मांसपेशियों में ताकत आ जाती है। विदेशों में तो नहीं है, पर आप अगर हमारे भारतीय परिवेश में देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी भी मालिश कराई जाती है और ये रोज कराई जाती है। इससे ये भी है कि उनकी भी मांसपेशियों में मजबूती आ जाए। विदेश में इसका प्रचलन एकदम नहीं है, मगर अपने देश में बच्चों की मालिश करने का प्रचलन बहुत है। मालिश जो है वो शरीर को आराम देती है। नॉर्मल व्यक्ति जो है, जो इसको ब्लड प्रेशर नहीं है, वो जो मतलब अगर मालिश कराता है तो उसके अंगूठे से जो जो भी मालिश के स्ट्रोक्स होते हैं वो उसके हृदय के तरफ किए जाते हैं। इसका मतलब आपके हाथ की उंगलियों से आपको प्रेशर देके उसको आपके कंधों की तरफ ले जाया जाए। दूसरा, आपके पैर के जो पंजे हैं वहां से मालिश शुरू की जाए और आपकी जांघों तक ले जाई जाए। इसको ये जो स्ट्रोक्स हैं इनको मूवमेंट टुवर्ड्स द हार्ट बोला जाता है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी प्रेशर दे रहे हैं, जो भी हम मालिश के स्ट्रोक्स, मालिश को चार तरीके से बोला जाता है, हैकिंग, कपिंग, फिलाल प्रेटिसाइज। तो जो भी किया जा रहा है उसमें सारे स्ट्रोक्स आपको हृदय की तरफ आपको ले जा रहे हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज के साथ इसी चीज को सिर्फ उल्टा किया जाता है और जो चीज बोली जाती है कि योर स्ट्रोक्स शुड बी अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब आप जो भी स्ट्रोक या मालिश का जो मूवमेंट करिए वो उल्टा करिए, मतलब कंधे से लेकर अपने हाथ की उंगलियों की तरफ, अपनी जांघें या अंग्रेजी में हिप जॉइंट से लेकर अपने पैर की एड़ियों की तरफ। इस तरह से आप मालिश करते चले जाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। जब हम मालिश करते हैं तो हमारी जो रक्त की धमनियां हैं उनको दबाव पड़ता है और जब उसमें जो ब्लड होता है, खून होता है, निकलता है, और जब हम अपना हाथ छोड़ते हैं तो धमनियां रिलैक्स होती हैं, मतलब उसमें आराम मिलता है। और जैसे ही उनको आराम मिलता है उसमें वो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। मालिश का में जो सबसे विश्वविख्यात जो मसाज है उसमें स्वीडिश मसाज की बात की जाती है। स्वीडिश मसाज जो हमारे यहाँ भारत में जिसको वैज्ञानिक मालिश बोलते हैं उसी का एक पार्ट है, मगर उसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान दिया जाता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता है। जिनको भी ब्लड प्रेशर है उनसे एक चीज कहा जाता है कि जब वो मालिश करेंगे तो उनका प्रेशर थोड़ा सा कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा उनको दबा के मालिश नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे होटल स्पा हेल्थ सेंटर्स में जो मालिश होती है उसमें कमरे में हल्का म्यूजिक बजा दिया जाता है और कमरे की जो रोशनी है उसे कम रखा जाता है या आंख पे एक कपड़ा रखा जाता है। लोगों का ये मानना है कि जब आपकी आंखें बंद रहती हैं और आपके कान में कुछ हल्का म्यूजिक सुनाई दे रहा है और कोई आपको अपने हाथों से हल्के प्रेशर से अगर आपको रिलैक्स आपको आपकी मालिश कर रहा है तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन महसूस होगा। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रिलैक्स होगा तो उसके जो दिमाग है उसको भी रिलैक्सेशन मिलेगा और इसकी वजह से जो भी ब्लड प्रेशर बनाने वाले जितने भी सिग्नल और सिम्टम्स हैं वो सब कम हो जाएंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि आप जो अगर कोई व्यक्ति मालिश ले सकता है तो उसको जरूर लेना चाहिए। उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो उसको अपने स्ट्रोक्स को अवे फ्रॉम दी हार्ट ले जाए। और मालिश करने से एक फायदा और होता है कि अगर आपकी त्वचा ढीली हो रही होती है तो वो भी टाइट होती है। जब हम दबाते हैं तो जो आपके मोटापे की कोशिकाएं हैं वो जो थक्के में इकट्ठा हो जाती हैं वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू होती है और इससे आपका वजन भी कम होता है। एक चीज मैं अपने श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि यदि आपका वजन कम होता है तो आप बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस से बच जाते हैं। मालिश का एक फायदा और है कि वो आपके जो लिम्फैटिक ड्रेनेज है उसको भी ठीक करता है। उस लिम्फैटिक ड्रेनेज के ठीक होने से जो ब्लड प्रेशर के होने की वजह से जो शरीर में सूजन बनी रहती है उसमें भी आराम मिलता है। तो आप किसी भी जानकार व्यक्ति के साथ मालिश करा लीजिए, मसाज करा लीजिए, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा।
0: ये बात समझ में आ रही है। जब हम मसाज या मालिश जैसी चीजों के बारे में सुनते हैं तो ये भी चीज पता चलता है कि हमारे यहाँ मालिश की परंपराएं भी पहले से हैं। छोटे बच्चों को मालिश करना, नवजात शिशुओं को मालिश करना, फिर ऐसे भी मालिश करने के बारे में जो कुश्ती लड़ने जाते हैं या अपने फिटनेस के बारे में ध्यान रखने वालों के मालिश के बारे में भी हम सुनते आए हैं। ये गाना भी मशहूर है, तेल मालिश चंपी। इससे पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को स्वस्थ रखने के तरीकों के बारे में जानकार थे और आज जीवन की व्यस्तताओं के चलते हम इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी मालिश क्या कर सकती है ये आज हमें बातचीत में पता चला है। डॉक्टर साहब, आज इन विषयों पर आपने जानकारी दी है, मैं समझता हूँ ये हमारे दोस्तों के लिए आवश्यक जानकारी रही है, जहां पर वो फास्टिंग के बारे में यानी उपवास के बारे में और साथ साथ मालिश के बारे में दोनों चीजों की जानकारी को समझ कर उन चीजों का इस्तेमाल अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में करेंगे। साथ ही जो हाइपरटेंशन या बीपी के मरीज हैं उनके लिए भी ये कितना फायदेमंद हो सकता है ये चीज हमें समझ में आई है। आज आपने हमारे श्रोता मित्रों को इन चीजों का मार्गदर्शन दिया, इसके लिए उन सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में हमने आसानी से करने वाली चीजों के बारे में समझा है। मालिश एक ऐसी प्रक्रिया है कि हम सभी घर में अपनी माँ से या दादी नानी से मालिश करवाते आए हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चों की मालिश करते रहे हैं और हम बुजुर्गों के सिर पर तेल लगाकर उनको भी मालिश करते आए हैं। साथ साथ उपवास हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है। हर धर्म में उपवास की परंपरा।

चर्चा लेकर फिर हाजिर होंगे। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों पर चर्चा लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: हेलो बच्चों, आ जाओ जल्दी जल्दी रेडियो के पास, क्योंकि आ गए हैं आपके फेवरेट शो में मनी दीदी और परी।
2: हाँ, सपनों की सैर कार्यक्रम के साथ मॉनसून की बातों को लेकर के।
1: हाँ, तभी तो मानसून आया, काले काले बादल छाए, देखो मानसून फिर आया।
2: रिमझिम बूंदे बरसी, धरती ने श्रृंगार सजाया,
1: खेतों में हरियाली छाई, नदियाँ गुनगुन गीत सुनाए,
2: मोर पंख फैलाकर नाचे, कोयल मीठे सुर दोहराए,
1: छम छम करती बारिश आई, बच्चों के मन खुशियाँ लाई,
2: कागज की नावें तैरे पानी, हंसी खुशी से बीते कहानी,
1: बारिश ईश्वर का वरदान है, जल ही जीवन की पहचान है,
2: हर बूंद का सम्मान करेंगे, मिलकर जल संरक्षण करेंगे,
1: आओ मिलकर प्रणय ले, पेड़ लगाएं पानी बचाएं,
2: स्वच्छ रहे धरती का आंचल, हर मौसम को सुंदर बनाएं। तो बच्चों, ये जो कविता सुनी ना, अब तक की हमने जितनी भी मॉनसून के बारे में बातें की, इस कविता में समा गई है।
1: सही कहा परी, और हमें आगे क्या करना है वो भी इस कविता में आ गया है, कि हमें प्रण लेना है, कि पेड़ लगाना है और पानी बचाना है।
2: ये थी आज की हमारी मॉनसून के बारे में कविता, आपको कैसी लगी हमें जरूर बताना।
1: हाँ, 9414151415 पर आप वॉइस नोट या मैसेज कर सकते हो।
2: बिल्कुल बच्चों, तो इस जुलाई महीने का ये अंतिम एपिसोड था।
1: हाँ, फिर मिलेंगे अगस्त में नई कड़ी लेकर।
2: लेकिन बच्चों, ऐसे नहीं कि ये पूरा हो गया कार्यक्रम, अभी तो और आगे कहानियां भी तो सुननी है।
1: हाँ, परी की कहानी सुननी है, फिर तेनालीरामा की अनोखी दुनिया की किताब भी पढ़नी है, और फिर पहेलियों का जवाब भी तो चाहिए।
2: बिल्कुल बच्चों, तो चलो बने रहिएगा हमारे साथ।
1: तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
2: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगी तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
1: बच्चों चलो चलो, कहानी परी शुरू कर रही है। फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं आजकल हम लोग, तो इसीलिए इसी के उपलक्ष में आज फिर एक कहानी हो जाए। सच्चा मित्र किसको कहते हैं, ये आज की कहानी हमें समझाती है। एक दिन सुबह सुबह दो मित्र समुद्र में नौका विहार करने लगे। वे शांत समुद्र में नाव खेते और गपशप करते हुए जा रहे थे। देखते ही देखते बच्चों वे किनारे से बहुत दूर गहरे समुद्र में जा पहुंचे। और तभी क्या हुआ पता है, एकाएक आसमान में काले काले बादल घिर आए, तूफानी हवाएं चलने लगी, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, उनकी नाव लहरों के साथ हिचकोले खाने लगी। अब तो बच्चों मृत्यु उनकी आंखों के सामने नाचने लगी। इतने में सौभाग्य से उन्हें पास ही तैरता हुआ लकड़ी का एक पल्ला दिखाई दिया। डूबतों को जैसे कि तिनके का सहारा मिल गया। दोनों मित्र ने झटपट नाव से छलांग लगाई और तैरते तैरते उस पल्ले को पकड़ लिया। परंतु पल्ला तो बहुत हल्का था, वो दोनों का भार तो सहन कर नहीं सकता था। तब क्या हुआ सोचो, एक मित्र ने दूसरे को कहा, देखो भाई तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, उनके लिए तुम्हारा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। मैं तो ठहरा अकेला, इसलिए मैं तो मर भी गया तो कोई हर्जा नहीं। तो बच्चों दूसरे मित्र ने क्या कहा पता है, नहीं भाई तुम्हारी तो माँ है, बहन है, अगर तुम मर गए तो उनकी देखरेख कौन करेगा। दूसरे मित्र ने कहा, उनकी देखरेख का जिम्मा अब मैं तुम पर डाल रहा हूँ। ऐसा कहकर मित्र ने तो पल्ला छोड़ दिया, वो समुद्र में डूबकर मर गया। तो शादीशुदा युवक पल्ले के सहारे तैरते तैरते किसी तरह किनारे आ गया, उसकी जान बच गई, वो सकुशल घर पहुंचा। उसने अपने दोस्त की माँ और बहन की जिंदगी भर परवरिश की। तो देखा बच्चों, सच्चे मित्र की परिभाषा ये कहानी हमें समझाती है कि सच्चे मित्र सुख दुख में सहभागी होते हैं। सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।
2: आओ आओ होनहारो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे उम्र के कच्चे, बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बन के मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, मनी दीदी आ गई है लेकर किताब तेनाली रामा की अनोखी दुनिया। और आज हम सुनने वाले हैं नई कहानी तेनाली रामा और चोर। पता है, एक बार तेनाली राम और उसकी पत्नी अपने घर में सो रहे थे, तभी उन्हें बाहर झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। तेनाली राम समझ गए कि घर में चोर घुस आए हैं। उन्होंने घबराने की बजाय अपनी पत्नी से तेज आवाज में कहा, राज्य में चोरों का बहुत आतंक है, हमें अपने सारे गहने और पैसे एक बक्से में बंद करके सुरक्षित रूप से कुएं में डाल देना चाहिए। तो ये बात बाहर छिपे चोरों ने सुन ली। तेनाली राम ने एक भारी बक्सा उठाया और आवाज करते हुए उसे सचमुच कुएं में फेंक दिया। इसके बाद वे दोनों चुपचाप सो जाने का नाटक करने लगे। चोरों ने सोचा कि कुएं से सारा पानी निकाल कर वे आसानी से बक्सा निकाल लेंगे। वे पूरी रात बाल्टी से कुएं का पानी निकालते रहे और पौधों में डालते रहे। सुबह होने पर उन्होंने जब बक्सा निकाला और खोला तो उसमें हीरो की जगह तो केवल बड़े बड़े पत्थर थे, तो उनके होश ही उड़ गए। तभी तेनालीराम बाहर आए और हाथ जोड़कर बोले, अरे भाइयों, इतनी रात गए मेरे पूरे बगीचे को पानी पिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुनकर तो चोरों को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ और वे डरकर तेनालीराम के पैरों में गिर पड़े और माफी मांग कर हमेशा के लिए चोरी छोड़ने की कसम खाई। तो बच्चों, संकट के समय डरने की बजाय शांत रहकर बुद्धि और चतुराई का प्रयोग करने से बड़ी समस्या का हल आसानी से निकल आता है ना। तो अच्छी लगी ना आपको कहानी? तो वैसे ही अगले दिन हम नई कहानी सुनेंगे। तो चलो देते हैं ब्रेक और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, आज तो काफी कुछ काम भी किया हमने, काफी सारी जानकारियाँ मिली, कहानियाँ भी सुनी और पिछली कड़ी में परी ने फ्रेंडशिप डे के लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस देने के लिए कहा था, तो हमारे पास बहुत सारे बच्चों के प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं परी, तो चलो भाई हम कुछ मैसेजेस बच्चों को पढ़कर सुनाते हैं।
3: हाँ मनी दीदी, कौन से बच्चों ने सुनाया है और वॉइस नोट या मैसेज किया है हमें बताओ।
2: हाँ परी, ये मैसेज भेजा है अमन ने अपने प्यारे दोस्त के नाम, और वो लिख रहा है, यह है तुम्हारा प्यारा दोस्त, रेडियो पर भेज रहा हूँ दोस्ती का जोश।
3: आज फ्रेंडशिप डे है तो सुन लो ध्यान से, हमारी दोस्ती है सबसे खास दिल के अरमान से।
2: तो अरे वाह अमन, और पता है बच्चों अमन के प्यारे दोस्त का नाम क्या है? उसका नाम है चमन।
3: वाह देखो अमन ने चमन को कितना अच्छा मैसेज भेजा। तो अब मनी दीदी एक और मैसेज आया है, बच्चों ध्यान से सुनना, ये मैसेज भेजा है पिंकी ने चिंकी के लिए, टिंग टिंग टिंग रेडियो पर बजे धुन, दोस्ती का जादू है सबसे अनमोल गुण।
2: तुम हो मेरे यार सबसे प्यारे, फ्रेंडशिप डे पर खुश रहो सारे।
3: तो देखा बच्चों कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं, यहाँ सारे तो हम सुना नहीं सकते, तो एक दो हमने अच्छे लगे वो सुनाए। तो चलो मनी दीदी अब आगे क्या करना है?
2: अब भगवान जी को सॉरी और थैंक यू करना है, जो भी गलतियाँ की उसके लिए सॉरी, और जो भी अच्छी अच्छी चीजें हुई उसके लिए थैंक यू।
3: बच्चों अब करो जल्दी से गुड नाइट भगवान जी को, और उनकी गोदी में सो जाओ।
2: गुड नाइट,
3: स्लीप टाइट, गुड बाय। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। भगवान गरीब निवाज है, सच्चे दिल और भावना से कोई एक पैसा भी सेवा में लगाता है तो उसे पद्मा पदम गुणा रिटर्न मिलता है। कैसे तो विचार जरूर करेंगे और देंगे आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे, परंतु कौन से वाले वो तो हम बाद में बताएंगे। आप आशियाना सुनिए, जान जाएंगे। और जी हाँ, जिस तरह पांच उंगुलियां बरोबर नहीं होती, उसी तरह हर इंसान का नेचर भी अलग अलग होता है, उसे समझने की जरूरत होती है। और आज बनाएंगे आशियाना में गुजराती डिश सुवारी, और तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये भी सस्पेंस रहेगा और पूछने वाली हूँ बहुत ही सुंदर प्रश्न। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार ध्यान से सुनेंगे कि भगवान गरीब निवाज है। सच्ची दिल और भावना से कोई एक पैसा भी सेवा में लगाता है तो उससे पद्मा पद्म गुणा रिटर्न में जरूर मिलता है। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के साथी थे। संदीपनी ऋषि के आश्रम में दोनों एक साथ पढ़ते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था और श्री कृष्ण द्वारिका के राजकुमार। विद्याभ्यास पूरा होने पर दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारिका जाकर के राज्य का कारोबार संभाला तो सुदामा की शादी गांव की एक गरीब कन्या से हो गई। सुदामा को अनेक संतानें हुई। एक तो गरीबी और दूसरा बड़ा हुआ परिवार, इससे सुदामा के हालात और भी खराब होते गए। बच्चों और गरीबी की परेशानी से तंग आकर के एक दिन सुदामा की पत्नी ने उसे गुस्से में कहा कि आप अपने मित्र कृष्ण की महिमा का वर्णन करते थकते नहीं हो। इतना धनवान, इतने बड़े राज्य का मालिक आपका मित्र है तो क्या वह आपको मदद नहीं कर सकता? क्यों नहीं आप उनसे भेंट करते ताकि हमारे हालात कुछ तो सुधरे? पत्नी के जोर देने पर सुदामा कृष्ण से मिलने चल पड़े। लेकिन मित्र को भेंट क्या दे? घर में तो कुछ था ही नहीं, थे तो केवल मुट्ठी भर चावल। उन्हीं को एक पोटली में बांध करके बगल में तबा करके सुदामा द्वारिका पहुंचे। सुदामा के आने की खबर सुन करके श्री कृष्ण आनंद विभोर होकर के उसके स्वागत में प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उन्हें प्यार से गले लगाया, बड़ी आत्मीयता से अपने दरबार में अपने ही सिंहासन पर बिठा दिया। उनका ये प्यार और सत्कार पाकर के सुदामा तो जैसे गदगद हो गए। लेकिन दरबारी भी कृष्ण को इस रूप में देख करके आश्चर्यचकित हुए बिना ना रह सके। कृष्ण ने बड़े प्यार से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है। संकोच के मारे सुदामा ने जो चावल की पोटली छुपा रखी थी वे कृष्ण ने ले ली। कृष्ण ने बड़ी खुशी से चावल का एक एक दाना खाया। कृष्ण की निरहंकारिता और प्यार देख करके सुदामा तृप्त हो गया और अपने आने का उद्देश्य ही भूल गया। कृष्ण के पूछने भर भी मुख से अपनी सहायता के बारे में कुछ नहीं कह सका। श्री कृष्ण का अपार प्यार और सत्कार स्वीकार करके सुदामा अपने गांव वापस लौट आया। लेकिन यह क्या, उसका गांव तो पूरी तरह से बदल गया था। वह स्वयं भी धोखे में आ गया कि मैं सही जगह पर तो आया हूं ना। इतने में गांव वालों को और अपने परिवारजनों को रेशमी वस्त्रों में आता देख करके सुदामा मन ही मन समझ गया कि कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही उसकी सर्व मनोकामनाएं पूरी कर दी है। उसका घर महल बन गया था जिसमें पशुधन सहित सर्व सुविधाएं थी। सुदामा ने मन ही मन श्री कृष्ण जी को धन्यवाद दिया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि भगवान गरीब निवाज है। सच्ची दिल और भावना से कोई थोड़ा भी सेवा अर्थ लगाता है तो उसे पद्मा पद्म गुणा रिटर्न में मिल जाता है। भगवान किसी का ऋण नहीं रखते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो।

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। तेज सिर दर्द से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो एप्पल, जिसको सेब कहते हैं, उसको छील करके बारीक काटे, उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके सुबह ही सुबह खाली पेट खाइए। अगर सिर दर्द बहुत ही तेज है और अब क्या करें भाई, सिर दर्द के लिए अब इतनी सी तकलीफ के लिए हॉस्पिटल कोई जाते ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सेब को धुलाई करिए, छीलिए और बारीक बारीक काटिए, फिर उसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिए और सुबह सुबह खाली पेट खाइए। सिर दर्द आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, अगला नुस्खा हमारी बहनों के लिए। मासिक धर्म में दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ठंडे पानी में 2-3 नींबू निचोड़ करके पी लीजिए। ऐसे समय में बहुत ही तकलीफ होती है और सबसे ज़्यादा तो पेट दर्द बहुत रहता है, तो फिर ऐसी स्थिति में नींबू साधारण आप नॉर्मल पानी लीजिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, और नॉर्मल पानी में 2-3 नींबू निचोड़ करके पीजिए तो ये पेट दर्द से छुटकारा मिलेगा। अगर अगला नुस्खा आपको सुना रही हूँ कि अगर आप कहीं पर जल गए हैं या फिर तेज धूप से त्वचा झुलस गई हो, त्वचा पर जुर्या हो या त्वचा रोग हो, तो कच्चे आलू का रस निकाल करके लगाइए, फायदा ही फायदा मिलेगा। बहुत ही सुंदर ये नुस्खा है कि भाई कहीं पर जल गए हो, कभी कभी क्या है तेज धूप में जाते तो भी स्किन जलने लगती है, फिर मान लीजिए समय से पहले ही चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो इन सारी तकलीफों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ आलू, कच्चा आलू, उसका रस निकालिए और लगा दीजिए, टोटली आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। ठीक है, आलू तो हमारे घरों में होते ही है, क्योंकि भाई कोई सब्जी मिले ना मिले फटाक से आलू की सब्जी बना देते हैं और बच्चे तो बड़े पसंद करते हैं आलू की सब्जी, तो बस आलू अपने घर में ही होते हैं और नहीं है तो भाई इकट्ठा तो लाते ही है, किल्ला 2 किल्ला तो ला करके रख ही देते हैं, तो बस आलू ले आइए, कच्चे आलू का रस निकालिए और अपने जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, जहाँ पर भी झुर्रियाँ हैं या झुलस गए हैं, आराम से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट नुस्खा है कि अगर आप अपने काले होंठ को गुलाबी करना चाहते हैं तो मक्खन में थोड़ा सा केसर मिला करके रोज़ लगाइए। मक्खन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोज़ लगाने से काले होंठ भी गुलाबी हो जाते हैं, धीरे धीरे होने लगते हैं। थोड़ा सा लंबे समय तक आपको करना है, लेकिन 2-3 महीना करने से ही आप अपने होंठों का चेंज महसूस करेंगे, लगेगा कि अरे कहाँ काले दिखते थे और अब थोड़े से गुलाबी दिखने लगे हैं। ठीक है, तो हर प्रकार के नुस्खे आपको दिए हैं और चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न ध्यान से सुनना, एक शायरी की तरह बनाया है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सफाई हो रही चारों ओर, खुशियाँ छा रही है, घर को सजा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं,

वो त्योहार मनाएंगे। तो कौन सा त्योहार आने वाला है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है? तो ये आज का प्रश्न है, उस त्योहार का नाम आपको बताना है। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अभी तो बढ़ते हैं गीत की ओर, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.1।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। हेलो हेलो,
1: हाँ आवाज आ रही है?
0: हाँ जी आ रही, बिल्कुल आ रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है विक्रम जी बहुत बहुत रेडियो मधुबन में। कैसे हो आप?
1: बढ़िया है दीदी, अभी खेती की तैयारी कर रहे हैं गेहूं बोने की।
0: जी जी जी, क्या बात है। आपके पहले भी आपसे बात हुई क्या?
1: हाँ दीदी, पहले भी 3-4

0: है।
1: हाँ पानी को तो ढका हुआ है, बाकी हमारा कच्चा मकान है थोड़ा,
0: अच्छा
1: तो उसमें मच्छर ज्यादा आते हैं।
0: जी जी जी जी तो आप ऐसा करिए ना कि नीम जो नीम के पत्ते होते ना उनको
1: हाँ
0: थोड़ा सुखा करके जलाइए घर में, उसकी धुनी देंगे ना तो भी मच्छर भाग जाएंगे, मर जाएंगे और भाग जाएंगे।
1: वो धुआं रहता जब तक दीदी वो चले जाते फिर वापस आ जाते हैं।
0: वो तो सही है, वो फिर रोज करना पड़ता है। तो नीम का थोड़े से पत्ते तोड़ करके रख दीजिए, सूखते जाए और थोड़े जलाते जाइए। घर में नहीं हो तब
1: हाँ
0: आप दरवाजा बंद करके जला दो,
1: दरवाजा बंद करके जलाना
0: हाँ,
1: पड़ेगा।
0: ताकि वो मच्छर खत्म हो जाए, उसके बाद आप जाओ अंदर, है ना
1: हाँ वो अभी
0: कहीं।
1: मच्छर की अगरबत्ती आती है वो थोड़ा जला देते हैं,
0: हाँ वो
1: बाकी
0: कुछ
1: नीम के
0: भी
1: पत्ते
0: ऑल
1: भी।
0: आउट कुछ भी करना ही पड़ेगा। जी जी
1: हाँ वो तो करना पड़ता है दीदी।
0: जी जी और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
1: हाँ दीदी वो सुदामा के बारे में वो शायद सुना था मैंने कि
0: वो आपने विचार
1: एक,
0: सुना था।
1: हाँ बाबा मतलब गरीब निवास है तो गरीब बच्चों के लिए आए हैं, तो
0: जी
1: हम तो है ही गरीब तो
0: कोई बात
1: हमारे
0: नहीं,
1: लिए
0: आप में
1: तो।
0: ज्ञान है तो जो ज्ञानी आत्मा होते हैं ना वो गरीब कभी नहीं होते, वो ज्ञान के खजाने से भरपूर रहते हैं।
1: हाँ दीदी वो तो ज्ञान
0: जी
1: तो है ही, और दूसरों को भी ज्ञान हम सुनाते हैं, बाकी जो सुनते हैं
0: जी
1: उनको हम
0: तो
1: सुनाते
0: फिर
1: हैं
0: आप क्यों
1: जो
0: सोचते हो
1: लोग
0: कि आप गरीब हो? हमको ऐसे संकल्प ही नहीं चलाने हैं, वो क्या है जो सोचते हैं वही होता है ना। आप पॉजिटिव रहिए कि मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत धनवान हूँ। जी तो देखिए आपको कोई कमी नहीं रहेगी, हमको क्या चाहिए? खाने को वो कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए, है कि नहीं?
1: हाँ दीदी तो है ही।
0: जी बाकी तो बहुत करोड़पति बन जाएंगे ना तो भी तकलीफ बहुत, वो कहते हैं दुश्मनी पैदा हो जाती है, इसलिए भगवान बस सब्जी रोटी दाल रोटी देता रहे यही।
1: हाँ हम तो खुश है और परिवार भी खुश है सभी, ऐसा कोई सोचता नहीं, मैं भी नहीं सोचता कि अमीर हो जाऊं ये कर लूं कहीं
0: जी
1: नहीं।
0: जी इसलिए हमेशा यही सोचिए कि मैं बहुत अमीर हूँ। भाई जिसके पास ज्ञान का खजाना हो वो तो अमीर ही है, ठीक है। और
1: हाँ
0: आज का
1: दीदी
0: प्रश्न आप
1: बस
0: सुनिएगा, आप विक्रम भाई आप सुनिएगा, मैं सुना रही हूँ आज का प्रश्न, और हमारे जो श्रोता बंधु सुन रहे हैं वो भी जरूर सुने और जवाब जरूर देवे। सफाई हो रही चारों ओर, खुशियाँ छा रही है, घर को सजा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो पल आने वाला है, मिठाई मिलके खाएंगे, परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे।
1: दीपावली का त्योहार आ रहा है ना दीदी।
0: देखते हैं भाई अभी तो
1: दीपावली का
0: बहुत
1: त्योहार आ रहा
0: सारे
1: है तो
0: त्योहार
1: हाँ
0: हैं, तो आपने सही जवाब दिया या गलत वो आप आशियाना सुनते रहिए, हम जरूर देंगे, ठीक है। और
1: हाँ जी
0: आज का विषय है कि पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, इसी तरह
1: हाँ
0: इंसान का नेचर भी एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग
1: वो
0: होता है,
1: तो बदलता
0: क्या कहेंगे आप?
1: रहता है इंसान का नेचर दीदी। देखो कभी ज्यादा पैसे आते हैं तो लालच नहीं करना चाहिए, एक समान रहना चाहिए इंसान ने, मतलब पैसे तो आते हैं और चले ही जाते हैं, और हमें
0: जी
1: खुशी थोड़ी देर के लिए रहती है और फिर खुशी चले जाती है, तो
0: जी
1: ऐसा नहीं, ऐसा हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि पैसे हमको आज से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, सभी समान रहना चाहिए।
0: यहाँ पर समानता
1: और
0: की बात नहीं है, नेचर की बात है, स्वभाव संस्कार की बात है, कि जिस तरह पांचों उंगलियां बरोबर नहीं है उसी तरह देखिए परिवार में भी सदस्य होते हैं तो भी सभी का स्वभाव संस्कार थोड़ा अलग अलग होता है, और
1: हाँ
0: जो हमारे समान संपर्क में आते हैं उनके भी स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं, तो कैसे हम उनके साथ एडजस्ट होंगे यह आज का विषय है।
1: देखो सबके विचार एक जैसे नहीं होते, सभी के अलग अलग होते हैं, तो
0: जी
1: जैसे हम ज्ञानी बच्चों में तो बाबा की शक्ति एनर्जी है ही, और जो बाबा से नहीं संपर्क नहीं रहता उनको तो मतलब कोई ज्ञान के बारे में पता ही नहीं है, और पता है भी मतलब अनसुने हो जाते
0: नहीं नहीं ऐसा
1: और
0: नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते, देखिए सभी कोई भक्ति में भरपूर होते हैं, कोई
1: हाँ
0: किस सत्संग में जाते हैं, ज्ञान तो होता है।
1: हाँ ज्ञान तो होता है दीदी, पर वो क्या है कि जैसे कोई

0: गुरु के बारे में सोचेंगे, हमारा गुरु ऐसा करता है, या उनको गुरु की बातें अच्छी लगेगी, हमको बाबा की जैसी बातें अच्छी
1: जी,
0: लगती हैं।
1: वो अपने अपने ऊपर आधार है। तो
0: हाँ
1: चलिए विक्रम भाई, बहुत अच्छा। अच्छा, आप थोड़ा सा अगर स्पष्ट करना चाहें तो कर दीजिए, क्योंकि दूसरे श्रोता बंधु भी इंतजार कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप?
0: देखो दीदी, अभी तो एकदम फोन लग गया, मैं अभी बेल रुपए हुए और मतलब ये क्यारियां डाल रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: तो
1: क्या
0: जो
1: बात है,
0: प्याज
1: काम करते जा रहे हैं आप,
0: का
1: खेत में हैं?
0: हाँ खेत में हूँ, वो प्याज का रोपा डालते हैं ना अपन,
1: जी,
0: इधर तो वो डाल रहा था एकदम, मतलब ये सुन रहा था मैं
1: जी।
0: रहा हूँ, तो मेरे मन में कुछ ऐसा विचार नहीं आया कि मैं सवाल का जवाब दूँ।
1: जी, नहीं, पर आप रेडियो से जुड़े, अच्छा लगा हमें भी। आप जुड़िएगा, ठीक है? हम रोज प्रश्न भी पूछते हैं, खुशनुमा जीवन की बातें भी आप सभी के साथ ही करते हैं, तो आप जरूर जुड़िएगा और शनिवार को अंताक्षरी में जरूर जुड़िएगा, ठीक है?
0: जी,
1: बहुत बहुत आभार विक्रम भाई आपका। और आज का विषय बहुत ही सुंदर है कि जिस तरह पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, उसी तरह इंसानों के स्वभाव संस्कार भी अलग अलग होते हैं। क्या कहेंगे आप? दूर तक नहीं जाना है, हमें अपने परिवार में ही रह करके देखना है कि किस तरह सभी का नेचर अलग अलग है, फिर भी उनके बीच में हमको एडजस्ट होकर के चलना है, उनको भी चलाना है। हेलो,
2: जय माता जी, जय श्री हरि।
1: जी जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: सभी सुनने चाहने वाले मेरे अजीत मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी।
2: आपको भी
1: आभार।
2: और क्या ट्रॉफी किया आज का
1: टॉपिक यह है कि पांचों उंगलियां जिस तरह बरोबर नहीं होती है, हमारी उंगलियां बरोबर होती है, एक छोटी एक बड़ी, ऐसे है ना, ऐसे ही मनुष्यों के स्वभाव संस्कार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, तो उनके साथ कैसे हम एडजस्ट होकर के चलेंगे?
2: एक्चुअली में आपने बहुत सुंदर टॉपिक भी रखा है। देखिए, हाथों की अंगुलियां तो समान नहीं होती है, वैसे स्वभाव संस्कार स्वभाव भी एक समान नहीं होते हैं, तो उसमें क्या है, अपन को जैसे कि अपना लोगो भी है कि ओम शांति, तो अपने अंदर शांति और धैर्यता रख के अपन जरूर सबसे संपर्क, मतलब हिलमिल के रह सकते हैं, क्योंकि प्रभु भी कहते हैं, मतलब कोई भी चीज करते हो तो उसको मतलब शांत धैर्यता अपने जीवन में अगर अपन ये ऐसा गुण है कि धारण कर दिया ना, तो किसी भी कार्य को, मतलब कोई भी किसी के साथ रिलेशन बनाना है, कोई भी कार्य, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी।
1: जी, मान लीजिए सामने वाला क्रोधी है तो क्या करेंगे?
2: देखिए, अपन सामने वाला क्रोधी है तो अपन शांत कुछ समय के लिए अपन शांत हो जाएंगे ना, तो उसका क्रोध शांत हो सकता है, और उस मतलब वो शांत होने के बाद में अगर वो उसको भी मन में लगेगा कि मैंने बहुत कुछ बोला है
1: जी,
2: तो मतलब वो ब्लैक बॉल फेंक रहा है, परंतु अपन मतलब ईंट का जवाब अगर पत्थर से देंगे तो वहां मामला बिगड़ेगा ना
1: जी।
2: अगर आगे वाला अपना क्रोधित है और वो कुछ अब शब्द भी बोल रहा है, मगर अपन शांति और धैर्यता रखेंगे
1: जी,
2: तो मतलब वो मामला आगे बढ़ने की जगह फैल जाएगा, नहीं तो वहां मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो।
1: जी जी, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है।
2: कहते किसी ने कहा, सही कहा है कि देखिए, अपन हाथों की पांच उंगुलियां है, अगर अपन एक अंगुली उनकी तरफ करेंगे तो चार उंगुलियां तो अपनी तरफ ही होंगी ना
1: जी,
2: ये गलत है?
1: सही है।
2: अब अगर उस समय अपन गुस्सा करेंगे तो वो और भी गुस्सा होगा
1: जी जी,
2: तो वहां वहां तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी ना
1: जी जी। तो सुरेश भाई, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, आपने बहुत अच्छा उदाहरण देने की कोशिश की कि भाई मान लीजिए सामने वाला ब्लैक बोल दे रहा है, लेकिन हमें व्हाइट बोल ही भेजना है, हमें उस समय शांति बनाए रखनी है, सामने वाला क्रोध करता है तो हमें मौन में रहना है, शांत हो जाना है या फिर उस स्थान से हट जाना है, तो बात वहीं समाप्त हो जाएगी, नहीं तो फिर आप समझ सकते हो। हेलो,
3: हाँ दीदी नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका, कैसे हो आप?
3: बस बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं।
1: जी जी जी,
3: सुन रहे हैं कार्यक्रम, बहुत अच्छी बातें भी हो रही हैं
1: जी।
3: सुबह से बस हम तो अभी तो 7-8 बजे आ जाते हैं, 7 बजे दुकान पे, तो दिवाली के सीजन ज्यादा है।
1: अच्छा, फिर पूरे दिन रहते हैं दुकान पर?
3: सुबह से 7 बजे से रात को 9 बजे कर जाता हूँ, और दोपहर को बस आधा घंटे रोटी खा रहे ही जाता हूँ, क्योंकि घर मेरे पास 1 मिनट की दूरी पर है दुकान से
1: जी।
3: तो बस रोटी खा के तुरंत आके बैठ जाता हूँ, क्योंकि अभी आराम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम इतना ज्यादा है इसलिए।
1: जी जी जी, क्या बात
3: है। 9 बजे घर पे जाके 10 बजे खाके विकेश हो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ।
1: जी,
3: 6 बजे उठ के मेरा रूटीन बताऊँ, 6 बजे उठ के मैं तुरंत हमारे गांव की जो 10 परब है पानी से, पानी की पर्दे बाजार में
1: जी।
3: तो पूरी भर देता हूँ उठ के जाके, पहला काम मैं ही करता हूँ सब।
1: अरे वाह, क्या बात है।
3: 3 साल से लगातार 1 दिन में इसमें कहते हैं छुट्टी नहीं दी है।
1: नहीं तो जैसे आप ये पानी की पर्व भरते हैं तो दूसरों को ऐसे प्रेरणा नहीं मिलती है कि अरे रोज ये कर रहे हैं तो कभी हम भी करें?
3: नहीं, कोई नहीं करता है, क्योंकि मैं सुबह में वही करता हूँ। मैं बताऊँ तो मेरे पास मॉल के पास पर्व है, वो भी कोई नहीं पढ़ता है, मैं ही पढ़ता हूँ। दुकान की तो दुकान वाला है, वो कुछ नहीं पढ़ता।
1: अच्छा,
3: तो कोई बात नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ आराम से।
1: नहीं तो बहुत दुआएं मिल रही है ना, दुआओं वाला काम कर रहे हैं। पंछी पक्षियों को, जानवरों को भी तो पानी की आवश्यकता रहती है ना।
3: मैं सुबह में कई बार मुझे 6 बजे जाना होता है कोई जगह पे, तो मैं 4 बजे उठ के कर जाता हूँ काम सुबह में।
1: जी,
3: लेकिन करता जरूर।
1: जी,
3: बहुत अच्छा टॉपिक भी दिया, जैसे की 5 उंगलियां एक साथ समान नहीं होती, वो भी हमारे कहवत है कि भाई 5 उंगली एक समान नहीं है, तो आप ऐसे मत सोचो कि सभी लोग एक समान है।
1: जी,
3: तो कई कई बार यदि घर में भी बताओ तो हमारे बीवी है, बच्चे है, बेटे है,
1: जी।
3: तो वो भी इसका भी थोड़ा सा चेंज होता है, अलग अलग दबाव के सब होते हैं, लेकिन इस दबाव से हमसे सेटिंग करना है
1: जी।
3: क्योंकि कई बार क्या होता है, बेटा कुछ बात होता है जल्दी बोल जाता है, हम उसको शांत कर देते हैं, कोई बात नहीं, शांत के हम जो करेंगे तू बोलेंगे हम करेंगे
1: जी, सही है बिल्कुल।
3: लेकिन इसमें क्या है, हम इस वक्त हमको बिल्कुल ठंडा बनाना पड़ता है, इसको सुनना पड़ता है, इसको जानना पड़ता है। एक ही बार जो पत्नी भी बोल देती है कि कोई बात होती है तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाता है सभी घर में, बेटी और बच्चे को सब थोड़ा सा, तो वो भी एक हल कर देते कि चलो कोई बात नहीं, इसे जाने दो।
1: जी जी,
3: जो ऐसे आप एक सामने दूसरे सामने ऐसा बोलेंगे तो मामला ज्यादा बढ़ने लगे, लेकिन इसको शांत कर देना और एक को ठंडा हो जाना है और वो आराम से सब कुछ निपटा देंगे बात।
1: जी,
3: इसी स्वभाव से सबसे स्वभाव समझना जरूरी है स्वभाव से, और हमको भी कुछ थोड़ा सा भी चेंजेस करना है। कहते हैं कि जैसा सामने व्यक्ति होता है ऐसे हमको करना पड़ता है, कोई ज्यादा एकदम बोल देता है तो कोई बात नहीं हम समझ लेते हैं, तो सही है चलो भाई आपकी बात सही है, लेकिन सही नहीं हो तो फिर एक उस वक्त सही कर देंगे तो वो मामला आगे नहीं जाएगा।
1: जी,
3: चलो हमारे सुनना तो सुने, नहीं सुने तो कोई बात, चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छा है ऐसे करके हम बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं तो यही मानता हूँ।
1: जी जी, बहुत सुंदर,
3: एक दूसरे को
1: सभा
3: जानना जरूरी, तो
1: जी बिल्कुल,
3: कोई बात आगे नहीं जाएगी।
1: जी जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बिल्कुल जी। तो बहुत ही सुंदर बातें स्पष्ट हो रही हैं कि किस तरह 5 उंगलियां जिस तरह बरोबर नहीं होती, उसी तरह परिवार में भी सदस्यों के स्वभाव संस्कार अलग होते हैं, समाज में भी हर इंसान का नेचर अलग होता है। तो इस विषय पर और भी अधिक स्पष्ट करेंगे, परंतु अभी ले रहे हैं एक अल्पविराम, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।
4: अरे थारी कंचन सी का यारो भरोसो, कौन लोभी जीवड़ी ला, कौन पापी जीवड़ी ला।

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: हेलो।
3: हाँ दीदी, ओम शांति।
2: हाँ जी नमस्कार, हनुमान भाई बोल रहे ना?
3: नहीं दीदी, मैं विक्रम कुशवाहा बोल रहा हूँ।
2: अच्छा अच्छा, हाँ जी विक्रम जी, बोलिए बोलिए।
3: हाँ वो तो क्या था प्रश्न, मतलब पांचों उंगलियाँ
2: प्रश्न, ये विषय है आज का कि पांचों उंगलियाँ बरोबर नहीं होती। इसी तरह हर एक का नेचर अलग अलग होता है, लेकिन हम उनके साथ कैसे रहेंगे, कैसे एडजस्ट होकर के चलेंगे।
3: अच्छा अच्छा, हाँ तो थोड़ा मेरे को दिमाग में आया था कि मैं थोड़ा इसको स्पष्ट करूं।
2: जी जी जी, बिल्कुल करिएगा।
3: हाँ तो दीदी, जैसे पांचों उंगलियां समान नहीं रहती, ऐसे हमारे नेचर भी मतलब एक जैसे नहीं रहते हैं। कभी पलट जाते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी नहीं आता है। कभी हम बच्चों को भी गुस्सा करते हैं
2: जी।
3: कभी हम अच्छे भी रहते हैं, कभी नहीं भी रहते हैं, ऐसा रहता है
2: जी। तो कैसे सेट होंगे ऐसे, तो फिर गृहस्थी बिगड़ जाएगी ना। हम अच्छे नहीं रहेंगे तो बच्चे सहमे सहमे रहेंगे, हम गुस्सा करेंगे तो बच्चे हमसे दूर रहेंगे।
3: वो बच्चों की बात नहीं है, जैसे हम तो किसान है, जैसे हम मजदूर लेने जाते हैं, मजदूर एकदम परेशान कर देते हैं हमको।
2: जी जी जी।
3: तो हम मजदूरों को समझाते हैं, बाकी नहीं समझते, थोड़ा गुस्सा तो उनसे करना पड़ता
2: जी, है। वो कहते हैं कि लव एंड लो दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है।
3: दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है। तो हम मतलब हमारे जो विचार है एक जैसे नहीं रहते हैं
2: जी।
3: कभी अच्छे रहते हैं, कभी थोड़ा चेंज आ जाता है।
2: तो चेंज आ गया, उसको वापस कैसे अच्छा बनाएंगे? चेंज किस तरह का आता है?
3: चेंज मतलब दीदी कि जैसे तो अभी तो अच्छे हैं, कभी कोई हमको गलत बातें मतलब आ जाती है, सुन लेते हैं, कभी कहीं गलत अपनों ने कुछ देख लिया तो उसको मतलब हमारे विचार भी वैसा ही बन जाते हैं ना दीदी।
2: जी जी, चलिए विक्रम भाई बहुत बहुत आभार। तो बात चल रही थी कि पांचों उंगलियां जिस तरह बरोबर नहीं होती, वैसे हर एक इंसान का स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है, लेकिन बना करके रखना पड़ता है, अपने स्वभाव संस्कार को मोल्ड करना पड़ता है, तभी हम सभी के साथ एडजस्ट होकर के चलेंगे। सामने वाला गुस्सा कर रहा है और हम डबल गुस्सा करें तो क्या होगा? तू मैं बढ़ेगी, लोग इकट्ठे होंगे और फायदा कुछ भी नहीं निकलेगा, उसका कोई भी रिजल्ट, उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जब सामने वाला गुस्सा करता है तो हमें एकदम शांत होकर के सुनना है, क्योंकि उस समय अगर हम कुछ भी एक्सप्लेन भी करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आवेग में है, क्रोध में है, और क्रोध में है तो वो हमारी बात को नहीं सुनेगा, और बात नहीं सुनेगा तो फिर कहने से कोई फायदा भी नहीं। हेलो। हाँ जी नमस्कार।
4: नमस्कार, करियाग्रास बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा है?
4: कमलेश भाई बोल रहा हूँ, करियाग्रास।
2: अच्छा कमलेश भाई, कहाँ से? माउंट आबू से?
4: नहीं, करियाग्रास, करियाग्रास इधर के पास है, गांव है।
2: अच्छा इधर के पास, बहुत बहुत स्वागत है कमलेश भाई, कैसे हो आप?
4: बस अच्छे हैं दीदी
2: जी।
4: अभी नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ प्रसारण कम्प्लीट नहीं आता है।
2: अच्छा आप इंटरनेट से सुन रहे?
4: नहीं रेडियो में।
2: अच्छा अगर इस तरह स्पष्ट नहीं आता है तो आप इंटरनेट के द्वारा सुन सकते हैं।
4: इंटरनेट द्वारा इससे बहुत अच्छा टाइम
2: जी जी
4: बहुत बढ़िया सुनाई देता है।
2: जी जी, हम समझ सकते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता बंधु जो सुनते हैं वो सुनते रहे, जुड़े रहे। तो अच्छा ये समस्या भी देखिए जल्दी ठीक हो जाएगी, इसका भी समाधान हो जाएगा। आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप कमलेश भाई? अच्छा, तो मैं प्रश्न अभी बोल देती हूँ, आप सुना दीजिए, जवाब दे दीजिए।

0: बताऊंगा बताइए प्रश्न क्या है दीदी।
1: प्रश्न बहुत ही सुंदर है, एक कविता की तरह मैं गुनगुना रही हूँ, आप सुनेंगे। सफाई हो रही चारों ओर, खुशियाँ छा रही है,

0: परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे। क्या कहेंगे आप जवाब में?
1: ये तो दीपावली की बात है ना।
0: अच्छा, तो आप आशियाना सुनिए, हम जरूर आपके प्रश्न का जवाब देंगे, सही है या गलत है। ठीक है जी, बहुत बहुत बहुत आभार कमलेश भाई। तो देखिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु ऐसे हैं जो कहाँ कहाँ से सुनते हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज आया कि बहन जी, हम इस कार्यक्रम को सुनते हैं, हम फ़ोन कॉल्स नहीं कर पाते लेकिन कार्यक्रम हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह मैसेज आते हैं या फिर फ़ोन कॉल्स आते हैं तो पता चलता है कि रेडियो मधुबन के लिसनर कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ से वो कोशिश करते हैं। कोई मध्य प्रदेश, कोई यूपी से, उत्तर प्रदेश से, तो कोई विदेश से। जैसे कि आपने शनिवार को बेल्जियम से सुना, दीपक भाई का फ़ोन आया था। हेलो, तो दूर दूर से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और हमारे आबू के अंचल में। आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किस तरह इशारा कर रही हूँ कि देखो दूर बैठे हुए श्रोता बंधु फ़ोन कर रहे हैं और हमारे आबू के अंचल में जो ये रेडियो मधुबन चल रहा है, तो हमारे श्रोता बंधु फ़ोन कॉल्स थोड़ा कम करते सुनते तो हैं, सुनते तो नो डाउट सुनते हैं, लेकिन फ़ोन कॉल्स नहीं करते। कभी फ़ोन कॉल्स करके बता दिया करो कि आप भी रेडियो मधुबन सुनते हैं, ठीक है, हमें भी खुशी होगी। और बात चल रही थी कि भाई जिस तरह पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, उसी तरह हरेक का स्वभाव संस्कार अलग होता है, लेकिन बस हमें उनको नहीं स्वयं को बदलना है। स्वयं को बदलेंगे तो वो कहते हैं ना, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। हम ही अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है तो हम भी गुस्सा कर रहे हैं, सामने वाला नफरत कर रहा है तो हम भी नफरत कर रहे हैं, सामने वाला उदासीन है तो हम भी उदासीन है, तो फिर तो हमारे अंदर और उनमें क्या फर्क है, कोई चेंज नहीं है ना। इसलिए हमें अपने स्वभाव संस्कार को सुधारना है कि सामने वाला क्रोध कर रहा है तो हमें शांत रहना है, सामने वाला नफरत कर रहा है लेकिन हमें प्यार ही करना है, शुभ भावना ही रखनी है उसके प्रति, अपनी भावनाओं को चेंज नहीं करना है कि उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, वो ऐसा है, वो वैसा है, नहीं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि जो क्रोध रूपी भूत आ जाते हैं तो पूरे दिन के लिए टिका नहीं रहता, वो वापस चला भी जाता है, इसलिए हमें शुभ भावना ही रखनी है। हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो?
2: बस बहन जी ठीक है, अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं,
2: जुड़े हैं। तो रेडियो तो नहीं सुनाई देता, इंटरनेट से भी यहाँ तो पटक के आवाज आती है
0: जी,
2: और अभी पहले भी लगाया था लेकिन बात नहीं हुई, तो अभी दूसरी बार ट्राई किया था, लग गया।
0: चलिए अच्छी बात है, फोन लग गया वो अच्छा है। अच्छा, आप आज के प्रश्न का जवाब देंगे?
2: हाँ, जवाब तो ये है, दीपावली सबने लिया है ना, आपने गाना गा के जो बताया, मैंने सुना था, तुरंत तो पता चल गया था लेकिन थोड़ी देरी हुई कॉल करने में।
0: अच्छा, और आज का विषय है पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, इसी तरह हर इंसान का नेचर अलग अलग है, हम कैसे उनके साथ एडजस्ट होकर के चलेंगे, क्या कहेंगे आप?
2: हाँ, वो तो है जी, समाज में, समाज की बात है या घर परिवार की?
0: जी, समाज की, परिवार की, स्वयं की, कैसे का भी एग्जांपल दे सकते हैं जी?
2: समाज में तो क्या है बहन जी, भाई कोई चार गांव का हमारा गोल है, ठीक है, तो कौन का स्वभाव कैसा है वो तो हमें देरी से पता चलता है, एकदम तो पता नहीं चल जाता
0: जी।
2: तो ये थोड़ी देरी होती है इसमें, लेकिन घर परिवार की जो बात करें तो घर परिवार में तो हम पहचान जाते हैं भाई इसका स्वभाव कैसा है, ऐसा है
0: जी।
2: तो कोई बात हम घर पे करते हैं तो हम इशारे से बंद कर देते हैं, कोई ऐसा हमारा बेटा है, बेटी है, ऐसा घर बाहर होती है तो आ जाती है, तो क्या हम इशारे से सबको बोलते हैं कि चुप चुप कर दो, ये सब बातें बंद कर दो, क्योंकि इसमें स्वभाव एक सरीखा नहीं होता और वो इसमें ये बोल देती है कि बोल देता है कि भाई मेरे को सुना रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है
0: जी। जी, चलिए बहुत बहुत आभार जी।
2: हाँ जी, नेचर ऐसा है एक तरीके की उंगली
0: जी, जी,
2: नहीं
0: जी।
2: होती। कोई किसी का उग्र स्वभाव होता है, किसी का शांत स्वभाव होता है।
0: जी चलिए कंचन भाई, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है इसके लिए। और बस इस विषय को यही समाप्त करेंगे, क्योंकि भाई अगले भी आपको आशाना के किचन में भी तो आना है ना। तो बस कहने का भाव यही है कि स्वयं को बदलना है, न कि दूसरों को। हम दूसरों को शिक्षा देते हैं, लेकिन दूसरों को शिक्षा देने के पहले खुद को देखना है कि मैं अमल कर रही हूँ, कर रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो स्वयं को बदलेंगे तो विश्व बदलेगा, इसलिए हमें स्वयं को बदलना है। हम बदलेंगे अपने स्वभाव संस्कार को, अच्छा बनाएंगे तो हर एक के साथ हम अच्छी तरह एडजस्ट होकर के चलेंगे, चाहे सामने वाला क्रोधी है, चाहे सामने वाला उदासीन है, या फिर किसी भी प्रकार का है, लेकिन हम उसके साथ अच्छी तरह एडजस्ट होकर के चल सकेंगे। और आइए बढ़ते हैं फिर से एक गीत की ओर, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: नमस्कार, मैं हूं सिंगर साइराम अय्यर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: सूरज ना बन पाए तो बनके दीपक जलता
2: चल। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो हम जरूर आपको आज गुजराती डिश सिखाएंगे, राजस्थानी भी है। ऐसा मत सोचिएगा कि राजस्थान में नहीं चलता है, लेकिन बस नाम अलग अलग है। गुजरात में कहते हैं सुआरी और राजस्थान में उसको खाजिया कहते हैं। अब देखिए, राजस्थान में भी बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे गांव हैं, अलग अलग जिलों में इसको अलग अलग बोलते होंगे, लेकिन इसका प्रॉपर गुजराती में नाम है सुआरी और राजस्थानी में है खाजा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये सिखाऊंगी क्योंकि ये दीपावली पर बहुत ही बनाए जाते हैं। सुवारी, मठिया, चोराफली, घूगरा, इस तरह के आइटम गुजरात में बहुत बनती है। उसके बाद और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये तो आपको हर घर में मिल ही जाएंगे दीपावली के दिनों में। जिसके भी घर पर आप मिलने जाएंगे ना, तो ये चार चीज़ें तो आपको नाश्ते में मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा फिर तो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें भी बहुत सारी बनाते हैं जो आए दिन हम आपको सिखाते रहते हैं। तो चलिए, सुवारी बनाने से पहले आज का प्रश्न एक कविता की तरह मैंने बनाया है। मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, बहुत ही सरल प्रश्न है, ज़रूर आप जवाब देंगे और रेडियो मधुबन से जुड़ करके जवाब देंगे। नंबर हमारे है 94-14-14-14-15। सफाई हो रही चारों ओर, खुशियाँ छा रही है,

परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे, परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे। तो ऐसा कौन सा त्योहार आने वाला है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उस त्यौहार पर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो भले किसी भी राज्य में रहता हो, किसी भी शहर में रहता हो, लेकिन तो वो लौट आता है। कब लौट आते हैं अपने घर और कैसे परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। और चलिए सुवारी बनाना सिखा देती हूँ। आप एक किलो लीजिएगा मैदा, ठीक है, फिर आप लीजिए 250 ग्राम मोवन के तौर पर तेल, और 250 ग्राम ही आपको लेनी है शक्कर, ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार तलने के लिए फिर से तेल। बस इतनी सी ही सामग्री है जिसको फिर से दोहरा रही हूं कि एक किलो लेंगे मैदा, 250 ग्राम लेंगे इसके अंदर मौन डालने के लिए तेल या फिर घी, ठीक है, राजस्थान में घी यूज करते हैं, गुजरात में तेल यूज करते हैं मौन डालने के लिए। अब आपको जो इच्छा हो वो लीजिएगा, अगर घी ले रहे हो तो 200 ग्राम लेना, तेल ले रहे हो तो 250 ग्राम लेना, ठीक है, और 250 ग्राम ही लेनी है आपको शक्कर। अगर थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 250 ग्राम लीजिएगा शक्कर, और अगर स्लाइट मीठा खाना चाहते हैं तो 200 ग्राम शक्कर लीजिएगा, ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार आप तेल लीजिए तलने के लिए। अब मैं बनाने का तरीका भी साथ साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, मैदे को पहले छलनी से छानिए, ठीक है, छानने के बाद मैदे की छलनी से छानना हो, ऐसे नहीं आटे की छलनी से छान रहे हो, मैदे की बारीक काने वाली होती है, ऐसी छलनी से छानिएगा ताकि कचरा ऊपर आ जाए, आटे की छलनी से छानेंगे तो सारा ही अंदर चला जाएगा। फिर आप चीनी को थोड़ा पानी में घोल करके एक रस कर दीजिए, ठीक है, और इस पानी से आपको इस लोट को बांधना है, लेकिन पहले आप मौन डालिए तेल या घी जो भी, फिर अच्छी तरह उसको मिक्स करिए मैदे को और मोवन को, फिर आप ये चीनी वाले पानी से अच्छी तरह आटे को बांध दीजिए, पानी ज़्यादा नहीं लेना है। अबे ज़्यादा भर के तपेली कर दी है और उसमें चीनी इतनी ही डाली है, फिर पता चला कि सुवारी बनाने के बाद बहुत ही फीकी लग रही है तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही पानी लेना है। पानी तो हम सादा पानी भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन चीनी वाला पानी हमको ज़्यादा नहीं बनाना है, आवश्यकता के अनुसार जितना उस आटे को बांध सके, ठीक है, फिर उससे आप इस लोट को अच्छी तरह बांध दीजिए। फिर आवश्यकता पड़े कि भाई थोड़ा सा पानी की कमी है तो ऊपर से आप सादा पानी भी ले सकते हैं, तो इस तरह अच्छी तरह इसको फिट बांध दिए, ठीक है, बांध करके आप गीले कपड़े से ढक करके एक घंटे तक रख दीजिए, दूसरा काम करने लग जाइए। दूसरा काम हो गया आपका, फिर उसको वो अच्छी तरह गल के तैयार हो गया, अब उसके लुए बना करके फिर आप जो भी साइज पसंद करते हो उस साइज में आप बेलिए, बेल करके आप स्वच्छ कपड़े पर डालते जाइए, ठीक है, और जब आपके सारे ही डल जाए, या फिर आप दो जने हो, दो मिल करके कर रहे हो, तो फिर एक जने क्या करेंगे, तेल गर्म करिए कढ़ाई में और तलते जाइए, और भाई अकेले हो तो फिर आप सारे बना दीजिए, लेकिन क्या करना है, जो पहले हम सुवारी डालते हैं ना उसको आप इकट्ठा करते जाइए, ज़्यादा नहीं सूखने देना है, भाई ज़्यादा सूखेंगे ना तो फिर तलते समय वो टूटेंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं सुखाना है, जो पहले सुखाया है उनके आप झेट बनाइए, एक दूसरे के ऊपर रखिए, ठीक है, ताकि वो क्या है कि एक दूसरे के ऊपर रखने से दबे रहेंगे, फिर ऊपर से कुछ ढक दीजिए, कोई बड़ी सी पतीली है ढक दीजिए ताकि हवा नहीं लगे, पहले हवा लगानी है बाद में नहीं लगानी है, थोड़ी सी ही लगानी है, ठीक है, फिर आपके सारे जब सुवारी तैयार हो जाए बेल लो, उसके बाद आप कढ़ाई रखिए गैस पर, तेल रखिए, गैस चालू करिए, तेल को गर्म कर दीजिए और मध्यम आंच पर सुनहरी होने तक ये सारी सुवारी तल दीजिए। चिमटे से निकालना है इसको, ठीक है, जाली वाली नहीं लेनी है, चिमटे की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए चिमटे से ही आपको निकालना है, और फिर ठीक है चिमटा नहीं है तो जाली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि चिमटे से आप लेते हो ना तो वो जो अतिरिक्त तेल कढ़ाई में ज़्यादा चला जाता है, ठीक है, और उसके बाद आप थोड़ा सा प्लेन पेपर में रखिए, सफ़ेद पेपर आता है ना उसमें रखिए, उसको आप थाली या ऐसे तगारी की तरह होता है ना, जिसको हम तासला भी कहते हैं, तासले की तरह होता है, उसमें आप रखिए, पेपर बिछा दीजिए और ये निकाल के रखिए, ताकि और भी थोड़ा बहुत तेल हो तो वो पेपर आपका चूस ले, ताकि तेल ज़्यादा हमारे नहीं जाए,
तो इस तरह सुनहरी सुनहरी सारी सुवारी तल दीजिए। अब देखिए, पहले बहुत सिंपल बनाए जाते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा क्रेज चला है कि आटा बांधते समय कोई इलायची पाउडर भी डाल देते हैं, कोई तिल भी डालते हैं, सफ़ेद तिल, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिंपल बनाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, टेस्टी ही लगेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है बनाने का कि मैदा छानना है, छानने के बाद मैदे में मोन डाल देना है, तेल या घी, अगर घी डाल रहे तो उसको पिघला करके डालिए, ठीक है, और तेल डाल रहे तो ठीक है, और अच्छी तरह मिक्स करिए दोनों हाथों से। फिर एक तरफ आप चीनी वाले पानी को अच्छी तरह घोल दीजिए, थोड़ा सा आप गैस पर भी गर्म कर सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है, और बाकी ज़्यादा कर रहे हो तो उसको ठंडा होने दीजिए, नवसेका हो तो चलेगा लेकिन गर्म होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि बांधते समय हाथ जलेंगे, इसलिए अच्छी तरह चीनी को पानी में एकरस करके फिर उस पानी से इस आटे को अच्छी तरह बांध दीजिए। अगर आप ऐड करना चाहते तो थोड़े सफ़ेद तिल बांधते समय डाल दीजिए, इलायची कूट करके इसको भी डाल दीजिए, फिर आप चीनी वाला पानी डाल करके अच्छी तरह आपको बांधना है, इसको गूंदना है, गूंद करके भले आधा घंटा भले एक घंटा आप गीले कपड़े से ढक करके इस आटे को रख दीजिए और आप दूसरा कार्य निपटा दीजिए। दूसरा काम आपका हो जाए, भले आधा घंटा भी भीगेगा ना तो भी चलेगा, ठीक है। वो काम होने के बाद बस लुए बनाइए, लुए बना करके फिर आप बेलिए, जो भी साइज पसंद करते हो, पूड़ी की साइज पसंद करते हो या रोटी की साइज, वो आपके ऊपर छोड़ा है, और बेल करके आप डालते जाइए। एक स्वच्छ कपड़े पर साड़ी बिछा सकते हैं और उस पर डालिए, फिर पहले वाले जो सुवारी है उसके थप्पी लगा दीजिए, एक के ऊपर रख दीजिए ताकि उसको ज़्यादा हवा नहीं लगे, तलते समय वो टूटे नहीं, और एक भगोना उसके ऊपर ढक दीजिए, और इस तरह सारे सुवारी बेल करके तैयार कर दीजिए। फिर आप रखिए कढ़ाई में तेल गरम, तेल गरम हो जाए तो मध्यम आंच पर सुनहरी सुनहरी होने तक दोनों तरफ से आपको मठिये तलने हैं, मठिये नहीं सुवारी तलने हैं। चिमटे से आपको थाल भी फेरनी है और अच्छी तरह तल करके चिमटे से ही आपको निकालना है, तुरंत नहीं निकालना है, थोड़ा सा क्या करेंगे आप, तो चिमटे से जो आपने सुवारी पकड़ रखी ना, हल्के से आप कढ़ाई के किनोर से ठपका रही है ताकि और भी जो तेल है वो अंदर ही टपक जाए, फिर आप पेपर में रख दीजिए। इस तरह सारी सुवारी आपको निकाल देनी है, इस तरह बनाना है, ठीक है। तो चलिए सुवारी तैयार है, अब हम आपको और भी कुछ सिखाएंगे, लेकिन कल भाई, आज तो समय आप देख रहे हो कि होने को आया है, इसलिए हम तो रोज ही सिखाते हैं। तो आइए अभी सुनते हैं गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

भूल न हल्के हल्के, भूल न हल्के हल्के, भूल न हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, भूल न हल्के, भूल न हल्के हल्के, भूल न हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, भूल न हल्के।

होंठ से हल्के हल्के बोलना, हल्के बोलना, हल्के हल्के बोलना, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना, हल्के, बोलना हल्के।

बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के।

0: के, होंठ से हल्के हल्के बोलना, हल्के बोलना, हल्के हल्के बोलना, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना, हल्के बोलना, हल्के हल्के बोलना, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना, हल्के बोलना, हल्के हल्के बोलना, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना।
1: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, बहुत ही सुंदर विचार था, तो बहुत ही सुंदर नुस्खे भी आपको दिए हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा है कि पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती। इसी तरह परिवार के सदस्यों के भी स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं, लेकिन तालमेल बिठा करके अच्छी तरह हिलमिल करके चलना है और उसके लिए हमें स्वयं को बदलना है। ठीक है, और आज का प्रश्न भी बहुत अच्छा था, देखते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कितना सरल प्रश्न है, लेकिन कभी कभी सरल प्रश्न भी पूछना चाहिए। तो जवाब तो आप सभी को पता ही है, सभी ने सही दिया है। जुड़े हैं सुरेश भाई झोटाना से, सबसे पहले इन्होंने जवाब दिया है, फिर सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, विक्रम भाई कुशवाहा बड़वानी मध्य प्रदेश से, हनुमान जी यूपी से, उत्तर प्रदेश से आप जुड़े हैं, कमलेश भाई इडर गुजरात से जुड़े हैं आप, कंचन भाई मंडाली से, कुपाराम जी कोजरा से और लीला जी कोजरा से। आप सभी ने सही जवाब दिया है, दीपावली। तो बिल्कुल सही है, दीपावली का त्यौहार आने वाला है और दीपावली के त्यौहार पर ही पूरा परिवार इकट्ठा होता है, चाहे वो कहीं पर भी रहते हो, लेकिन दीपावली के एक दो दिन पहले ही अपने घर लौट आते हैं। तो सभी के लिए ढेर सारी तालियां। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी राम जी पर, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे आशियाना कार्यक्रम लाइव में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

लागे रे, राम जी रा प्रसादी सु पाप सारा भागे रे, सगला मिलकर रेवा में तो राम जी रे सागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जीरा हवेली नोरा राम जीरा छीकड़ा, राम जीरा खेता माही राम जीरा रूखड़ा, राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी है आगे मारे राम जी है पाछे रे, शरणागत की सारी चिंता राम जी ने लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जीरी घर की कंची राम जी लगवाणिया, राम जीरो लेनो देनो राम जी चुकावणिया, राम

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, और जिंदगी के उस पन्ने पर आ गए हैं हम जहाँ पे दोस्तों प्यार ही प्यार है, क्योंकि

0: यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं खुद में चेंजेस करने के, खुद को समझने के, खुद के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने के। जब हम ये सब करते हैं तो प्यार बढ़ता ही जाता है, जिंदगी से और खुद से भी। तो दोस्तों, कार्यक्रम है लव यू जिंदगी, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे कल्पना जी का, जो कि ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं। स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और सालों से अनेकों की मदद करते आए हैं। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी, फिर से एक बार जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर युवाओं से बात करना बहुत बहुत मजेदार होता है, क्योंकि जितनी ऊर्जा उनके अंदर होती है वो ऊर्जा हम भी बदले में महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, वो यूथ वापस आ जाता है और बहुत खुशी भी होती है। श्रीनिधि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीनिधि जी रेडियो मधुबन के जाने माने आरजे भी हैं और साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर और ग्लोबल एंकर भी हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, नमस्कार कल्पना जी, नमस्कार सभी दोस्तों को। और लव यू जिंदगी के इस एपिसोड में, हर एपिसोड में कुछ अलग चर्चा करते हैं, तो इस एपिसोड में भी एक नए विषय पर हम चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। तो आशा है कि इस चर्चा से मैं खुद भी बहुत कुछ सीखूंगा और जो कुछ मैंने सभी से सीखा है वो साझा करने का भी एक अच्छा मौका है।
0: जी, और बहुत सुंदर बातचीत हुई है पिछले कुछ एपिसोड्स में भी। हमने जाना था कि किस तरह से एंजाइटी या एंग्शियस होना डिफरेंट है, या किस तरीके से हम डिप्रेशन को सैडनेस के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते। कल्पना जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, तो कई बार आजकल हम बहुत सारी चीजें, क्योंकि पढ़ सकते हैं, आज हमारे पास AI है, हमारे पास गूगल है, तो हम बहुत सारी चीजें वो अपने सिम्टम से खुद ही समझने की कोशिश करते हैं, मुझे शायद ये हो गया है, मुझे शायद ये हो गया है, और वो पढ़ के और ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो क्या आपके पास भी इस तरह से आते हैं लोग कि उनको लगता है कि नहीं नहीं मुझे यही हुआ है, इस तरह से मेंटली हमें पता होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है ही, या डायग्नोस की जाती है प्रॉब्लम, सिम्टम्स समझने पड़ते हैं?
1: जी, कई बार लोग गूगल में सर्च करके आते हैं कि मुझे अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो जरूर मुझे ये बीमारी हो चुकी होगी, क्योंकि उसमें वो सिम्टम्स बताए जाते हैं कि भाई आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, घबराहट हो रही है, या हाथ पांव में पसीने आ रहे हैं, या गिडीनेस फील हो रही है, या उदासी महसूस हो रही है, या अकेलापन महसूस हो रहा है, लोगों के साथ मिलने जुलने की इच्छा नहीं हो रही है, नींद नहीं आ रही है रातों में, या भूख नहीं लग रही है, खाना हजम नहीं हो रहा है। तो कई सारी बातें जब हमारे साथ होने लगती है, अप एंड डाउन हमारे लाइफ में आने लगता है, तो लोगों के पास आजकल एक ही सोल्यूशन है, सर्च करो, गूगल करो और आइडेंटिफाई करो। तो बहुत सारे ऐसे लोग पहले से ही डायग्नोसिस लेकर आते हैं कि शायद हमें ये तो नहीं हुआ है, उनको पता होता है। अब हमें उनको अवेयर करना होता है कि जो भी लक्षण है तो उन लक्षणों को हम अलग अलग कैसे पहचाने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग क्यों होती है, कैसे होती है और उसका कारण क्या होता है, ये अवेयरनेस आ जाने के बाद और थिंकिंग के लिए कुछ उपाय करने के बाद वो ओवर थिंकिंग पर हम ओवरकम कर सकते हैं। केवल मुझे ये हो रहा है ये जानकारी ही जरूरी नहीं है, परंतु ये मुझे क्यों हो रहा है और अगर हो रहा है तो कितना सीवियर है। हाँ, हम मैं अपने श्रोताओं से भी पूछना चाहूंगी कि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हमें होती है तो उसको हम थोड़ा सा जांच लें। सबसे पहले तो तीव्रता को जांचे कि 0 से 10 तक मुझे जो कुछ भी हो रहा है, ओवर थिंकिंग है, उदासी है, अकेलापन है, उसकी तीव्रता कितनी है 0 से 10 तक। पहली ये टेस्ट हम अपनी खुद की ले। दूसरा है कितने लंबे समय से मुझे ये हो रहा है। अगर थोड़े दिन से हो रहा है, थोड़े दिन बाद ठीक हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है ना। कितने लंबे समय से मुझे उदासी है, चिड़चिड़ापन है, निराशा है, गुस्सा आता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है, या मुझे लोगों के साथ मिलने जुलने की इच्छा नहीं होती है, कितने दिन से? 3 हफ्तों से ज्यादा अगर ये लक्षण है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, जिसके लिए डॉक्टर या काउंसिलर से मिलने की आवश्यकता है। सबसे पहले है कि तीव्रता कितनी है, दूसरा है कितना लंबे समय से मैं इसको फेस कर रहा हूं। तो इन लक्षणों को लेकर हम अपने आप निदान न करें, लेकिन किसी डॉक्टर या काउंसलर या साइकोथेरेपिस्ट की अगर परामर्श लेते हैं हम, या किसी जानकार समझदार व्यक्ति के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी करते हैं, तब भी हमें कुछ न कुछ सकारात्मक सॉल्यूशंस मिल सकते हैं और हम उससे ओवरकम कर सकते हैं।
0: ओके, मतलब प्रोफेशनल हेल्प लेनी जरूरी है सिम्टम्स को, लेकिन अगर हम माने कि जैसे स्ट्रेस, आपने कहा समय कितना समय से हो रहा है, तो स्ट्रेस तो बचपन से ही हो रहा है, एग्जाम के समय हो रहा है, और कोई चीज आई तो भी हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है, तो क्या मतलब ऐसा नहीं है कि रोज हो रहा है, लेकिन जब कोई सिचुएशन आती है तो स्ट्रेस होने लगता है या बॉडी में पसीना आने लगता है या फिर हाथ पैर में थोड़ा मुझे या डिजीनेस लगती है या एकदम से वीकनेस लगने लगती है या पेट में कुछ दर्द होने लगता है, तो ये हर बार होता ही आ रहा है, तो क्या फिर ये मतलब प्रोफेशनल हेल्प चाहिए यहाँ पे?
1: सिचुएशन को लेकर थोड़े समय के लिए स्ट्रेसफुल होना, उसको यू स्ट्रेस कहा जाता है। वो स्ट्रेस अच्छा है कि थोड़ा सा हमें अलर्ट करता है, वो स्ट्रेस कि भाई एग्जाम है, तो एग्जाम के समय हम अलर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस भी लगता है, थोड़ी सी घबराहट भी होती है, लेकिन वो घबराहट कुछ अनहोनी मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजों को लेकर होती है कि मैंने जो पढ़ाई की उस अकॉर्डिंग पेपर आएगा या नहीं, कुछ और ही क्वेश्चंस आए तो क्या होगा। सो अगेन ये थॉट से रिलेटेड है। सो अगर हमारे विचार पॉजिटिव है, हर आने वाले खतरे को जानते हुए हम अगर पॉजिटिव रहते हैं और अपने आप को, जैसे ही हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, हमारे अंदर जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं सेरोटोनिन और डोपामिन, वो हमें जो आने वाली खतरा है या जो भी कठिन परिस्थिति है उसका सामना करने की शक्ति हमें डेवलप करती है। सो थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, घबराहट हो जाती है, हम उसको मैनेज करना सीख जाते हैं, वो स्ट्रेस नुकसानकारक नहीं, वो थोड़ा बहुत हर किसी को होता ही है, परंतु हमेशा कुछ कारण के बिना मुझे ज्यादा सोचने की, ज्यादा स्ट्रेस लेने की आदत है, तो वो ये आदत अगर बचपन से है, कंटिन्यूस है, तो मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेने की आवश्यकता है, काउंसलर के पास जाकर CBT, REBT टेक्निक्स के माध्यम से थॉट चेंज किस तरह से है, थॉट्स को कैसे बदलना है, वही विचार है बट उसको दूसरी तरीके से हम सोचते हैं तो वो कितना फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि आपने परीक्षा का एग्जाम्पल दिया, सो परीक्षा के समय हमें थोड़ी सी घबराहट तो होती है, बट जैसे ही हम सोचते हैं कि नहीं, मैंने मेहनत की है और मुझे मेहनत का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि कुदरत का ये नियम है, जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है। सो ये पॉजिटिव थॉट ही हमें, हमारा अप्रोच बदल देता है और वो जो एंजाइटी होती है एग्जाम देने से पहले वो कम हो जाती है, और एग्जाम के टाइम पर हम रिलैक्स होकर आराम से पूरा पेपर लिख पाते हैं या सारे क्वेश्चंस के जवाब दे पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो लिमिटेड टाइम होता है उसमें सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना ये भी जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो कई सारी चीजें एक साथ काम कर रही होती है कि मुझे जवाब भी लिखने हैं, टाइम भी मैनेज करना है, नहीं तो कई बार होता है मुझे आता सब कुछ है बट मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाता हूँ, उसकी वजह से मैं पीछे रह जाता हूँ। तो जैसे ही एक थॉट मेरे मन में आता है स्ट्रेस के अगेंस्ट, एंग्जाइटी के अगेंस्ट कि नहीं, मैंने जितनी मेहनत की है उसका फल मुझे जरूर मिलेगा, तो वैसे ही आपकी अप्रोच, आपका एटीट्यूड, आपका एक्शन और आपका जो रिस्पांस है वो तुरंत बदलने लगता है।
0: बिल्कुल, मतलब हमें ये भी समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा किसी सिचुएशन में स्ट्रेस होना अलग है, और हर वक्त वो बना रहना या बिना सिचुएशन के होना, वहां पे हेल्प की जरूरत ज्यादा है। श्रीनिधि जी, आपसे इसके एक और एस्पेक्ट के बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है, जो सफर कर रहा है, या वो अपने दोस्तों से भी पीछे हट रहा है वो व्यक्ति, या फिर कांस्टेंट स्ट्रेस में है, बिना सिचुएशन के उसे डल फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके जो आसपास के लोग हैं, फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनको कैसे एक्ट करना चाहिए या कैसा होना चाहिए? बिकॉज हमें पता चलता है तो हमें लगता है अरे तुम, तो उस समय कैसा बिहेवियर होना चाहिए आसपास के लोगों का?
2: जब आसपास के लोगों की बात की जाती है, यूजुअली ऐसे व्यक्ति जो क्लिनिकली डायग्नोस्ड हो, जिनको इस प्रकार की समस्या है, या ये कहें कि ये बीमारी कह सकते हैं आप, और जरूरी नहीं कि बीमारी का कहने का तात्पर्य ऐसा होना चाहिए कि मतलब ये कोई चिंताजनक लेवल पे बीमारियां हो। कभी कभार ये शॉर्ट टर्म भी होता है, जैसे किसी को सर्दी खांसी बुखार हुआ है, 3-4 दिन के लिए हुआ है, हफ्ते भर के लिए हुआ है, इन्फेक्शन छोटे टाइम के लिए भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो डायग्नोसिस मिलती है हमको कि भाई ये व्यक्ति थोड़ा ज्यादा परेशान रहते हैं या इनको एंग्जाइटी है या इनको ये डिसऑर्डर है, तो हमें उन लोगों के आसपास रहने वाले लोगों के प्रति भी, जो हम उनके केयर गिवर्स हैं या उनके दोस्त हैं या उनके परिवारजन हैं, उनको भी एक प्रकार की सेंसिटाइजेशन होना आवश्यक है। बहुत बार जब हम इन चीजों को स्वयं नहीं समझते और परिवार के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कोई चीज हो रहा होता है, उस समय पर हमारी सही समझ और सही सहयोग ना होने की वजह से उनको जो लाभ मिलना चाहिए, उनको जो ठीक होने में मदद मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती, क्योंकि हम इन चीजों को सही तरीके से नहीं समझते। इसलिए प्रायः ये चीज देखी जाती है कि परिवार के सदस्यों को, या अगर वो शादीशुदा हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाकर इन चीजों के ऊपर बातचीत की जाती है, और जो ट्रीटमेंट है या एक्शन प्लान है कि हमें किस प्रकार से, भले वो काउंसलिंग हो या चिकित्सकीय सलाह हो या दवाइयां भी हो, तो साथ में एक्सप्लेन की जाती हैं, जिससे क्या होता है कि एक व्यक्तिगत सपोर्ट सिस्टम बनता है कि जिससे उसे ठीक होने में मदद मिलती है। जितना जल्दी उसे एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, उस व्यक्ति के ठीक होने की संभावना तो ज्यादा बनती ही है, मगर ठीक होने में उसे कम समय भी लग सकता है। इसलिए इन चीजों की समझ होना बहुत आवश्यक है, और खासकर भारत जैसे देशों में आज जब हम इसे एक सकारात्मक रूप में देखते हैं कि लोग मेंटल इलनेसेस के प्रति, मनोस्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, उन चीजों को शहरों में, कम से कम बड़े शहरों में, ज्यादा ओपन तरीके से हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, या एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये मान लेना कि हाँ, एक व्यक्ति घर में है जिसको किसी प्रकार की समस्या है और हमें उसका ख्याल रखना है, अगर हम इतना भी मान लेते हैं तो भी ये चीज बहुत मददगार साबित होती है। खासकर कॉलेज गोइंग जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है कि उनके दोस्त इन चीजों को समझे और वो उनके मददगार बने उनके हीलिंग प्रोसेस में। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज दोस्तों को या साथ में रहने वाले लोगों को समझ में नहीं आता है, तो कहीं कहीं ये चीज देखने को मिलती है कि वो भी हीलिंग के प्रोसेस में मददगार होने की जगह और नुकसान करने वाले बन जाते हैं जाने अनजाने में। कभी कभार इन चीजों की समझ नहीं होने के कारण लोग इन चीजों का मजाक उड़ाने लगते हैं, तो जिसकी वजह से व्यक्ति की हालत जो सुधरनी होती है वो और ही खराब भी हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखने की भी आवश्यकता है, और साथ साथ लोगों को जब हम उन्हें ठीक करने के कगार पर ले जा रहे हैं, तो उस मार्ग पर और लोगों को साथ लेना भी आवश्यक।
0: कल्पना जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
1: बिल्कुल, मैं सहमत हूँ श्री जी के साथ कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह से किसी परेशानी का सामना कर रहा है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्ट्रेस हो, ओवरथिंकिंग हो, सो परिवार की परिभाषा ही यह है कि ऐसे समय पर परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे को कोऑपरेट करे, एक दूसरे को मदद करे। और ऐसे समय पर कुछ वैल्यूज की आवश्यकता होती है जिसे प्रैक्टिस में लाना, जैसे शांति बनाए रखना। जब वल्नरेबल कंडीशन होती है किसी भी व्यक्ति की, तो उस समय आसपास के लोग उसके प्रति शांतिपूर्ण व्यवहार अगर करें, उसे समझने की कोशिश करे, तो ये सबसे बड़ा सहयोग होता है। दूसरी बात ये कि इम्पेशेंट ना हो जाए कि अरे ये कितने दिनों से इसकी ये प्रॉब्लम चल रही है और ठीक ही नहीं हो रही है। सो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। यही वो चीजें है जो हमें परिवार के रूप में एक दूसरे को जोड़ती है। तो कभी कोई परिवार में किसी ना किसी को हमारी मदद की प्रैक्टिकल या सूक्ष्म रूप से जरूरत हो सकती है। जैसे कि किसी को प्रैक्टिकली फिजिकली हेल्प चाहिए होती है, किसी को मेंटली हेल्प चाहिए होती है। सो वो धैर्यता, वो शांति का गुण दिखाना परिवार वालों को ऐसे समय पर बहुत जरूरी होता है। हम वही एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम के समय अगर बच्चों को एग्जाइटी होती है, आज ही मैं एक न्यूज पढ़ रही थी कि एक बच्चे ने अपने एग्जाम में 100% मार्क्स लिए, तो उसके दादाजी बता रहे थे कि हमने कभी इस पर प्रेशर नहीं डाला, पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला, हमने उसको हमेशा ये कहा कि अगर तू 35% पासिंग मार्क्स लेकर भी पास हो जाएगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बिना प्रेशर से की गई पढ़ाई की वजह से वो 100% मार्क्स ले आ पाया। ऐसा नहीं है कि केवल यही कारण बना है, आईक्यू लेवल भी होता है हर एक व्यक्ति का, परंतु पेरेंट्स से या परिवार वालों से जो प्रेशर पड़ता है वो कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है।
0: जी, तो मतलब जैसा आपने कहा कि परिवार का कितना सुंदर मीनिंग ही यही है, फिजिकली हेल्प चाहिए वो तो हम समझते हैं, पर मेंटली हेल्प चाहिए कई बार वो समझने से चूक जाते हैं और उसका वर्स प्रभाव भी पड़ सकता है। तो बहुत जैसा आपने कहा, शांति का गुण उस समय हमें बहुत प्रत्यक्ष रूप से दिखाना है और पेशेंस भी चाहिए डील करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो दीदी, मैं जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस एपिसोड के तो अंतिम कुछ घड़ियों में आ गए हैं हम, आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि इससे ही जुड़े हुए कई और ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जिसे हम फेस कर रहे हैं, यूथ फेस कर रहा है, उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा एडिक्शन भी है, जिसके बारे में हम हेल्प लेना नहीं चाहते, किसी को ये कहना नहीं चाहते कि मुझे मदद चाहिए, लेकिन अंदर से महसूस करते हैं कि मुझे मदद चाहिए। तो ऐसे भी अगर लोग हमें सुन रहे हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मदद मिलेगी दोस्तों, हमारे साथ जुड़े जरूर रहिएगा। फिलहाल दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई मेडिटेशन ऐसी प्रैक्टिस हम कर सकें या कहीं से शुरुआत कर सकें, जो हम अगर ये मान लीजिए डेवलप ही हो रहा है ओवरथिंकिंग में, हम जा भी रहे हैं, तो थोड़ा खुद को वापस ला सके वहां से।
1: जी, किसी भी प्रॉब्लम की जड़ में हमारे थॉट्स होते हैं, ये हमने तो देखा, तो हमें थॉट्स से ही रिलैक्सेशन की शुरुआत करनी है। तो मैं अपने श्रोताओं से अनुरोध करूंगी कि वो जहां कहीं भी हैं, एक मिनट के लिए आराम से बैठ जाएं। एक मिनट बहुत थोड़ा समय होता है, लेकिन ये एक मिनट बहुत इफेक्टिव भी हो सकता है। एक मिनट के लिए आराम से बैठ जाएं। अगर आपके पास कोई दीवार है तो दीवार से पीठ टिकाकर अपने आप को और ज्यादा रिलैक्स करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप गहरी और लंबी सांस लें, अपनी आंखों को बंद करें और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें। हर सांस के साथ वातावरण से शांति और सकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश होने दें। बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने दिलो दिमाग पर छाया हुआ तनाव, नेगेटिविटी को, शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर की ओर धकेल दे, छोड़ दे। सांसों पर ध्यान दे। लंबी और गहरी सांस लेते हुए अपने मन में इन तीन विचारों को 3 बार रिपीट करें। मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं संतुष्ट हूं। 3 बार रिपीट करते हुए इन विचारों को अपने मन में समाने की कोशिश करें। गहरी और लंबी सांस ले और 3 विचार जो हमें करने हैं। मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं और मैं सारे विश्व को शांति का दान दे रहा हूं। मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, सारे विश्व की शांति की मैं कामना कर रहा हूं। इन विचारों को रिपीट करें। जैसे ही ये विचार हम मन में दोहराते हैं, हमारा मन और शरीर शांत और रिलैक्स फील करने लगता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे मन को स्थिर करें। और आखिरी वाक्य लेकर जाए अपने साथ, मैं हर परिस्थिति में रुक कर सही चुनाव कर सकता हूं। मैं हर परिस्थिति में रुक कर सही चुनाव कर सकता हूं। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच दीदी। एक खुद पे विश्वास ऐसा लगता है कि पुनर्जागृत हम कर सकते हैं और रिमाइंड करा सकते हैं ये स्टेटमेंट्स को बार बार जब भी जरूरत पड़े। बहुत टाइम भी नहीं लग रहा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस।
1: धन्यवाद
0: श्रीनिधि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा करेंगे आगे भी हम इस बातचीत को कंटिन्यू करेंगे और बहुत मदद हमें मिल पाएगी।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और कल्पना जी का भी, जिन्होंने हम सभी को आज ये चीज अनुभव कराया कि हम सभी इन चीजों के प्रति थोड़ी सी अगर अटेंशन देते हैं तो हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, ये पॉसिबल है ये हमने जाना, और शुरुआत कैसे करनी है ये भी समझा। तो दोस्तों, अगर फिजिकल मसल एक दिन में नहीं बनती तो भाई मेंटल एफर्ट करने में हम एक बार में रिजल्ट नहीं मिलता तो हम उदास क्यों हो जाते हैं या निराश क्यों हो जाते हैं। चलिए फिर से एक और हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं और जिंदगी को कहते हैं लव यू जिंदगी।

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि ये सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक का द्वारा थेमरो रेडियो थेमरो वास्ते ये रेडियो कार्यक्रम होता है। आज बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास कार्यक्रम में बच्चों का हुनर, बच्चों का टैलेंट, प्रतिभाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए आज पहुंचे, क्योंकि सरकार का मंशा है आसपास गांव और अंचल में जो प्रतिभाएं हैं उनको उजागर करने के लिए, चाहे उनका लोकगीत हो, चाहे उनका प्रार्थना सत्र में जो गीत गाते हैं उसको एक मंच, एक स्टेज देते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणका में पहुंचे। गणका तो अपना स्टेशन का पास है, क्योंकि तलेटी दानबा उमरिनी पास ही गणका है। पहले गणका भी हमारा उमरिन का अंदर में था, लेकिन आज डिवाइडर होने के बाद दो ग्राम पंचायत और दो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुई। तो इस स्कूल को आज हम आए हैं बच्चों को एक मंच देने के लिए। तो देर किस बात की, बच्चों का आवाज़ न हो ये हो ही ना सकता, और बच्चों का भावना को, भाव को, आस्था और विश्वास को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम आज उपस्थित हैं। और हमारा श्रोता ध्यान से सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, क्योंकि रेडियो मधुबन इस तरह गतिविधि कराते हैं। तो आज पढ़ाई का साथ साथ बच्चों को एक मनोरंजन का साथ साथ आस्था विश्वास में जो ध्यान रखते हैं उनको भी एक मंच देते। तो पहला प्रस्तुति एक प्रार्थना सत्र में होगा, और इसका श्रेय तो प्रधान अध्यापक और हमारा प्रिंसिपल साहब को जाता है और सब स्टाफ को। सब एक इस तरह से हमें चांस दिए हैं, कोई सूचना नहीं था, फिर भी अचानक बच्चे आए तो सुनाएंगे एक प्रस्तुति। सभी पहले परिचय देंगे, अपना अपना नाम और कौन सा क्लास।
1: माय नेम इज आलिया बानो, माय क्लास इज 7th।
2: माय नेम इज रविंद्र, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: वेरी गुड।
3: माय नेम इज पूजा, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: कौन बच्चे बोलते भाई, हमारा शहरांचल बच्चों को भी ग्रामांचल बच्चे टक्कर देंगे और इंग्लिश में बोलने शुरू कर दिए, ऐसे होना चाहिए क्योंकि सभी चीज में होशियार है। चलिए एक प्रस्तुति होगी, सुनाएंगे एक प्रार्थना सत्र में जिसे माँ सरस्वती को याद करते हैं, एक प्रार्थना सत्र में जो गीत गाते हैं सुनाएंगे।

0: महिमा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत में जब हम सुन रहे थे ध्यान से, तो ध्यान से सुन रहे थे और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसको जब फॉलो करेंगे, अज्ञानता से हमें ज्ञान की तरफ जाना है। हम खुद कौन है ये अज्ञानता है, नहीं जानते मैं कौन हूँ और मेरा कौन है नहीं मालूम था, ये अज्ञानता। जब उसको ज्ञान में सुनते हैं जे मैं कौन हूँ, अभी पता चल गया हम सब कौन है कि नहीं। आप कौन है?
0: आत्मा।
1: देखा उत्तर आया, ये अज्ञानता से ज्ञान की ओर है कि नहीं। तुमको पता चला
0: मैं आत्मा हूँ।
1: आत्मा और ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारा नाम बताया था ना, तुम्हारा नाम नाम और तुम अलग है ना, तो ये ही अज्ञानता से ज्ञान की ओर। अभी हम समझदार बन गए ना, वास्तव में हम सब कौन है, कौन है बच्चे?
0: आत्मा।
1: क्योंकि ये शरीर को चलाने वाला और मेरा जो बोलते शरीर, ओके, ये अज्ञानता से ज्ञान की ओर प्रकाश हुआ कि नहीं। और हमारा मन को शांत चाहिए, और कौन देगा? माँ सरस्वती। माँ माँ सरस्वती नाम सुने ना सभी, किसका बेटी है कौन बताएगा? माँ सरस्वती किससे ज्ञान लाती है, हमें देती है, कौन बताएगा? उसका माँ बाप तो होंगे ना, होंगे कि नहीं?
0: ब्रह्मा।
1: अरे बात, ताली बजाओ। ये ज्ञान तो एक ज्ञान मिला उसका आगे भी मिल जाता है, मिलता है कि नहीं? इसलिए ब्रह्मा का नंदिनी कहते हैं। किसको? सरस्वती को। और हम सब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बन गए ना, ब्रह्मा का बेटी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा कुमारी। क्या बोलते हैं?
0: ब्रह्मा कुमारी।
1: तो माँ सरस्वती कौन हुआ? ब्रह्मा कुमारी। ताली बजाओ। हाँ, ये तो अच्छा ज्ञान मिला कि नहीं? किसको पता था? नहीं था, अभी पता चल गया इनके द्वारा, हुआ कि नहीं? तो माँ सरस्वती का ड्रेस कौन सा कलर?
2: सफेद।
1: सफेद है कि नहीं? डेली पूजा करते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का माध्यम से हमारा सभी बच्चे और सभी शिक्षकगण भी सुन रहे हैं, और ये वास्तविक असली जो वास्तविक परिचय होना जरूरी है, ओके। सभी माँ सरस्वती दुर्गा हमें काली सभी को पूजा करते हैं, अल्लाह को भी पूजा याद करते हैं। तो हमारा बिंदु नूर, नूर होता है ना, आत्मा नूर है, आत्मा नूर है, कोई नूर कहते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब हम प्रार्थना सत्र में माँ सरस्वती को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं ना? विद्या शिक्षा क्या करते हैं? शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान अर्जन करने, क्या करते हैं? ज्ञान अर्जन करते करते कि नहीं? हाँ। और गीत तो प्रस्तुत किए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि माँ सरस्वती हर स्कूल में हर विद्यालय में हमें प्रार्थना सत्र में करते, क्योंकि हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बड़े होकर क्या बनेगी बहन?
0: डॉक्टर।
1: हाँ देखो, डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, है ना? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, है ना? जब तक मंजिल हासिल नहीं होगा तब तक पढ़ते रहना, पढ़ना छोड़ना नहीं है। तुम बड़े कर
0: टीचर।
1: टीचर मैम, मैम देखिए आप समान मैम का पद चिन्ह पर चलेंगे ना, मैम का व्यवहार पढ़ाने का तरीका सीखना है, तब बन जाएंगे ना। हाँ, तुम
0: डॉक्टर।
1: हाँ, डॉक्टर इंजीनियर जो भी काम आपको करना है, चाहे अच्छा किसान भी बनना है, अच्छा गृहिणी भी बनना है, लेकिन आप एक एक महान है। डॉक्टर को कौन खिलाएगा? किसान तक चाहिए ना, तो अच्छा किसान भी बन सकते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी को धन्यवाद देते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था विद्यार्थी विकास में, चरित्र निर्माण में, आत्म प्रबंधन में, बच्चों का आत्मज्ञान को जागृत किया रेडियो मधुबन। छोटी सी बच्ची आए दोनों परिया, लेकिन लेंगे उनको पहले एक ब्रेक।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सब सुन पा रहे खास कर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय गणका का बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे लेकिन उनका अंदर में जो होश है जोश है, कौन बोलेगा भाई आदिवासी बच्चे, लेकिन आदिवासी बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं और उनका पास कोई झिझक नहीं। चलिए हमारा साथ दो छात्रा है, परी क्या नाम है?
1: पुष्पा।
0: अरे वाह वेरी गुड। तुम्हारा?
1: वीरू।
0: वीरू और पुष्पा दोनों सहेली है, दोस्ती है। और क्या बताएंगे आज, गीत गाएंगे? हाँ चलिए शुरू करो।

0: को दो दे मुको दो को नोज नहाते रोज नहाकर खाना खाते खाना खाकर पढ़ने जाते जंगल में ना मोर मेंढक बजा रहा है ढोल गंदा पानी मत तुम पीना संगा मैं भी कबीर जीना।
1: क्या बात, ताली बजा भाई।
2: छोटे बच्चे हैं, इन छोटे भी कमाल करते हैं। अभी 12 क्लास का सभी बच्चे बैठे, लेकिन छोटी बच्ची भी हिम्मत देखो, इतना बच्चा अंदर में जूनियर होकर भी सीनियर को टक्कर दिए, तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह कार्यक्रम में जोड़ते हैं,
3: साथ देने के लिए छोटी सी बच्ची आई है, तो उनको स्वागत करते। क्या नाम है आपका?
4: लक्ष्मी।
3: कौन सा क्लास में पढ़ती तुम?
4: छठी।
3: छठी। स्कूल का नाम?
4: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणका।
3: विद्यालय में कौन सा मैडम आपको अच्छी लगती है, कौन सा सर आपको अच्छे लगते हैं?
4: जानकी मैडम अच्छी लगती है और भगवाना सर अच्छे लगते हैं।
3: क्यों?
4: क्योंकि वो पढ़ाई अच्छी करवाते हैं। और
3: अच्छा, कभी मार भी देते हैं? कभी मारते हैं?
4: हाँ, गलती होती है तो मारते हैं।
3: अच्छा, आप कभी गलती करते हैं? नहीं नहीं,
4: कभी हो भी जाती है।
3: हाँ, अच्छा अच्छा, बच्चे सच सच बताती है। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई में आपको अच्छा लगती होगा, और कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है?
4: हिंदी अच्छी लगती है, ऐसा सब विषय अच्छा लगता है।
3: अच्छा लगता है, तो बड़े होकर आप क्या बनेगी?
4: डॉक्टर।
3: अच्छा, गुड, बहुत अच्छा है, अच्छा एम्बिशन है। तो पढ़ाई कितना घंटा करते हैं?
4: घर में कभी 2 घंटे भी होते जाते हैं, कभी 1 भी।
3: कौन सा गुलाब को अच्छा लगता
4: है? गुलाब।
3: गुलाब, अच्छा, क्यों गुलाब? क्यों?
4: क्योंकि वो भगवान के लक्ष्मी माँ के नीचे होते
3: हैं। इसीलिए आप लक्ष्मी है, लक्ष्मी माता के नीचे गुलाब कलर होता है और आपको अच्छा लगता है। अच्छा, कलर में आपको गुलाब पसंद है। खेल कूद में कौन सा खेल आपको पसंद है?
4: खेल
3: खेल खेलते हैं, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल।
4: कबड्डी।
3: कबड्डी क्या है, भाई लोग का खेल तो कबड्डी है, बहन भी खेलते हैं
4: जी।
3: कितना है वहाँ पर टीम में, कितना लोग रहते हैं?
4: यहाँ पे तो बता नहीं सर, इतने तक क्या मालूम।
3: अरे गांव में तुम जो क्या खेलते हैं, गांव में घर में?
4: घर में तो छुपन छुपी।
3: अच्छा, लक्ष्मी आप बताओ, आप तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर काम क्या होता है?
4: डॉक्टर सुई देते हैं, चेक करते हैं।
3: अच्छा, बीमारी को ठीक करते हैं। अच्छा, और कौन सा फूल आपको अच्छा लगता है?
4: गेंदे का।
3: गेंदे का फूल अच्छा लगता है, चलो बहुत अच्छा बात पता है। मैं सुने आपका पीछे से कोई बोल रहे हैं इनको कविता बहुत अच्छी आती है, तो कविता सुनाएंगे अभी?
4: जी। द छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची नौ। छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 8। 8 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 7। 6 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 6। 6 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 5। 5 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 4। 4 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 3। 3 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 2। 2 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 1। 1 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, खाती थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बचा 0।
3: चलो हिम्मत रखी, बिना झिझक से पहली बार जब मिली, फिर भी इनका उमंग उत्साह को सलाम करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी बहन को, क्योंकि छोटी बच्ची है फिर भी अपना बात को तो रखी हिम्मत से। चलिए पुष्पा दीदी हमारे साथ इस कविता को सुन रही थी, इस कविता से क्या सीख मिलती है वो बताएगी।
5: इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे कविता के जरिए टीचर बताती है बच्चों को कि गिनतियों में से 1 घटा तो कितने बचे, ये सब सिखाया गया है।
3: बच्चे कैसे गिनती सीख जाते हैं और घटाना जोड़ना इस चीज बच्चे सीखते हैं, जैसे 10 से 1 गया तो 9, 9 से 1 जाएगा तो 8, तो ऐसे सीखते हैं बच्चे। आज कविता के माध्यम से लक्ष्मी अपना बात को रखी। लक्ष्मी, आपका गांव में आज हम लोग आए हैं रेडियो मधुबन, आपको खुशी लगी
4: जी?
3: कितना खुशी है?
4: बहुत सारा
3: बहुत सारा कुछ है। ऐसे बार बार होना चाहिए
4: जी।
3: अच्छा, आपको पहला बार रेडियो में मौका मिला
4: जी,
3: तो आपको कोई झिझक डर
4: नहीं
3: लगा?
4: नहीं सर,
3: कोई डर नहीं लगा
4: नहीं।
3: अल्प विराम का पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखें, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए कार्यक्रम तो एक के बाद एक बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी को स्वागत करते हैं पुनः इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस बन रहा है और सबका सहयोग। चलिए हमारा साथ पुनः उनको स्वागत करते हैं, अपना परिचय पुनः देना है।
1: मेरा नाम अभिनय, मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम आलिया, मैं कक्षा 8th में पढ़ती हूँ।
0: बड़े अच्छा लगता है। घर में कौन कौन है?
2: पापा, मम्मी, बहन वगैरह।
0: और घर में कोई भी नया चीज आता है? अभी आम का सीजन है, पक्का आम आएगा तो किसको मिलेगा? पहले भाई को मिलेगा ना तुमको मिलेगा?
2: सबको ही मिलेगा।
0: भाई हो चाहे बहन हो, सबको मिलेगा। भाई भाई को आगे देगा पीछे नहीं, सभी को बराबर देखते हैं, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी लेकर हम जो बात करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, घर का दो फूल है, सबको बराबर होना चाहिए। और उनका घर में कोई भेदभाव नहीं, सबको बराबर। पक्का कोई भी नया चीज ड्रेस आएगा तब भी आपको मिलता है? पहले आपको मिलता है? पहले ना सबको मिलता है?
2: सबको मिलता है,
0: सबको मिलता है। कोई बात नहीं, चलिए शुरू करो।
2: ओ देश मेरे, तेरी शान बिशद के कोई दन है क्या? तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हे जी जी दीवाने की, कही बोल सुहानी देखी, मंजूर यही
1: जो भी तू चुने।
2: देश मेरे, मेरी शान पे सदके कोई दन है क्या? मेरी दूर से बढ़ के धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हे जी दीवाने की, यहाँ बोर्ड सुहानी देखी, मंजूर रहे जो भी तू छुने। ओ देश मेरे, मेरे शान पे सदके कोई दन है क्या? तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, मेरे हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुत। और अचानक आए, कोई प्रिपरेशन नहीं था, और एवर रेडी, जब चाहे रेडी सर। और एक अंतरा भाई एक मुखड़ा भी बोले, लेकिन जो हिम्मत है ये कम नहीं है, इसका श्रेय तो माँ बाप को जाता है और उनका गुरुजन को जाता है। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा कलर को आप अच्छा पसंद करते हैं?
1: ब्लैक।
0: ब्लैक कलर में उनको ब्लैक पसंद है, क्योंकि ब्लैक उनको अच्छा लगता है। और बड़े होकर तो बनेगी ना, कुछ ना कुछ तो बनेगी, है ना? क्या बनेगी?
1: टीचर
0: बनेगी, पहले भी बोला था। और इसका श्रेय किसको देंगे, धन्यवाद किसको देंगे?
1: मेरे गुरुजनों को।
0: गुरुजनों को, बड़े जो गुरुजन में कौन कौन आते हैं? गुरुजन में बड़े आपके कौन कौन है?
1: मेरे माता पिता।
0: माता पिता
1: और टीचर।
0: टीचर और बड़ा भाई,
1: बहने वगैरह,
0: बहने, दादा, दादी, काका, काकी, सब लोग आते हैं। तो उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि उनका प्रेरणा में वो आगे बढ़ेंगे, टीचर बनेंगी। और टीचर बनेंगे तो आपका पहला पोस्टिंग कहाँ पर होंगे, कहाँ पर आपको पसंद होगा? ना अब रोड में, ना गणका में। गणका के, गणका में अभी पढ़ रहे हैं। और जब बड़े होंगे तो हमारा सीबीओ साहब याद रखेंगे, जब भी उस समय सीबीओ साहब होंगे तो जरूर पोस्टिंग हमको यहीं पर ही उनको दे देगा, खुशी लगेगा ना? हाँ, अभी से एडवांस में धन्यवाद दे रहे हैं। और हमारा मैम भी सुन रहे, मैडम आप कैसे हैं, पोस्टिंग हुई है, आपको क्या मेहनत करना पड़ा, अभी वो आपका बारे में बता, मैडम बनेंगे तो आप कैसे मैडम बने?
3: बहुत पढ़ाई की फिर बने।
0: हाँ, बहुत पढ़ाई किए, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब तक आपका मंजिल मिल नहीं रहा तब तक पढ़ाई करते हैं, है ना मैम
3: जी?
0: तो इसलिए अभी भी आप मैडम बने, तो आपको क्या लग रहा है, ऐसे भी कभी बच्चे थे आप?
3: जी हाँ, थे ना बच्चे,
0: अभी बड़े हो गए।
3: बड़े हो गए
0: तो अच्छा लग रहा है अभी।
3: हाँ।
0: तो अभी तो पैसा ही मिल रहा है,
3: ठीक
0: है ना? बच्चे पैसा मिलेगा तो सब कुछ कर सकते कि नहीं? हाँ, इसलिए पढ़ाई करेंगे तो पैसा आएगा, नौकरी मिल जाएगा, नहीं तो अच्छा इंसान बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणका का आवाज और मैडम का भी आवाज। मैडम आप जाते थे

0: क्या कहना चाहेंगे इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से, जब बच्चों को क्या सीखने को मिला?
1: इस तरह से बच्चे मतलब कुछ बोलना सीखते, आगे होके आते हैं, प्लेटफॉर्म मिलता है इनको, और अच्छा है।
0: अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा हुआ।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते श्रोता मित्र, ग्रामवासी, खास कर आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी गणका के नन्हे मुन्ने बच्चों का आवाज सुनने के पश्चात चलते हैं उपलागढ़ के नन्हे मुन्ने बच्चों का भी आवाज सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए 12th क्लास के बच्चियां उपस्थित हैं, तो उनको भी हमारा कार्यक्रम में सजाने के लिए स्वागत करते हैं। नाम के साथ सभी अपना अपना स्कूल और गांव का नाम का साथ खुद का नाम बताएंगे और बारी बारी अपना प्रस्तुतियां देंगे। तो हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुने, क्योंकि आदिवासी अंचल के जो देसी गीत हैं, जो फोक सॉन्ग है, वो

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे किसी बात को लेकर। आज के लिए आप सभी से इजाजत, फिर मिलेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: ख्वाबों की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज आपको मिलवाएंगे मावल के रहने वाले शांति देवी शर्मा। जो आप मावल में रहते हैं, आप हाउसवाइफ है, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि आप कढ़ाई का काम, बुनाई का काम, सिलाई का काम सब कर लेते हैं, पढ़ाई आपने नहीं की हुई है, बाकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, आइए इन्हीं के द्वारा जानेंगे। शांति जी, आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हो आप?
1: ठीक हूँ।
0: अच्छा शांति जी, अभी आप वर्तमान में क्या क्या काम करते हैं?
1: अभी तो घर पे ही रहते हैं।
0: जी, घर पे तो रहते हैं, लेकिन घर पर रह करके क्या क्या काम कर लेते हैं, किस तरह के काम करते हैं आप?
1: अब बच्चा पढ़ने जाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, उठते हैं, झाड़ू पोता है, घर का काम है, कपड़ा लेता है, ये खाना बनाना है।
0: जी जी, कढ़ाई बुनाई सिलाई सब करते हैं?
1: हाँ, सिलाई आई है, मशीन है, सिलाई भी कर ली।
0: सिलाई मोल की करते हैं?
1: नहीं नहीं, अपने घर की करते।
0: अच्छा, घर की करते हैं तो अच्छा है ना, बचत हो जाती है।
1: अपने घर की करते हैं, बाहर की नहीं करते।
0: जी जी, तो शांति जी चलिए अभी आप क्या करते हैं और भी आपसे जानेंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपका बचपन कहाँ पे बीता?
1: बचपन तो मेरे गांव में बीतो।
0: कौन से गांव में बीता?
1: गांव तो जिला बदायूं है, नाम गांव का बछेली।
0: अच्छा, आप यूपी के रहने वाले?
1: हाँ, यूपी के रहने वाले।
0: तो जिस गांव में आप रहते थे वो गांव कस्बा है, शहर है या छोटा सा गाँव है?
1: छोटा सा गाँव, देहात है।
0: और आप कितने भाई बहन हो?
1: हम चार बहन चार भाई।
0: आठ भाई बहन, उसमें आपका नंबर कौन सा आता है?
1: हमारा मंझले है, दो भाई से छोटे,
0: पांचवा नंबर आता है आपका। अच्छा, तो आपने पढ़ाई क्यों नहीं की?
1: नहीं, हमारे गांव में हम छोटे हैं तो गांव में स्कूल नहीं, तो हमारे
0: स्कूल ही नहीं है, तो कोई भाई बहन ने नहीं की पढ़ाई?
1: नहीं नहीं, वो जब हम बड़ा भाई है वो दूसरे गाँव में, हमारे ताऊ जी रहते उनके वहाँ भेज दो तो उधर पढ़ाई की। अब बहने हमारी नहीं पढ़ी, सबसे छोटी है तो हमारे भाई ने स्कूल खोल दो तो उसमें पढ़ाई की, प्राइवेट स्कूल हमारे भाई ने खुलवा दो, सबसे छोटी आ रही नहीं उसने पढ़ाई करी, तीन बहन नहीं पढ़ी।
0: और भाई बाहर जाते थे पढ़ने?
1: हाँ, भाई हमारे बाहर पढ़ाए, हमारे ताऊ जी रहते उनके यहाँ।
0: तो आप बहनों को नहीं भेजा?
1: नहीं नहीं, हमारे गाँव में स्कूल नहीं तो नहीं भेजो।
0: जी जी, बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा?
1: नहीं नहीं, डराते, छोटे से गाँव बूढ़े, जैसे हमारे इधर भेड़िया पहले छोटे छोटे वो पेंदुआ बढ़िया ज्यादा है, इसलिए मेरे मम्मी पापा डरते हैं, इसलिए नहीं भेजो।
0: अच्छा, तो आपके पापा क्या काम करते थे उस समय?
1: हमारे पापा खेती बाड़ी करते।
0: मम्मी भी करते है?
1: नहीं नहीं, मम्मी घर का काम करती, भैंस गाय घर का है, भैया बहन खाना बनाना घर का काम।
0: और आपके पापा खेत संभालते है, आप लोग भी हेल्प करते?
1: हाँ, छोटे है तो जाते, बड़े हुए तो नहीं जाते।
0: बड़े हुए तो क्यों नहीं जाते खेतों पर?
1: बड़े हुए तो हमारे इधर नहीं, लड़की को भेजते हैं खेत पर, छोटे है तो जाते थे।
0: हाँ। अच्छा, तो फिर जैसे आप बड़े हुए तो फिर आप घर का क्या क्या काम कर लेते हैं?
1: हाँ, सिलाई बिनाई, ये पंखा बनाते थे, कपड़ा सिलते थे, और घर को काम है जैसे सब, अपनी मम्मी की हेल्प करते है।
0: तो जैसे कि आपने पढ़ाई नहीं की, पूरे गांव में कोई लड़कियों ने पढ़ाई नहीं की?
1: नहीं नहीं, जब छोटे छोटे हमारे स्कूल ही नहीं तो किसी ने पढ़ाई नहीं की।
0: तो कभी आपकी इच्छा हुई पढ़ने की?
1: हाँ हुई थी, लेकिन जब स्कूल नहीं तो क्या जाते पढ़ने के लिए, पढ़ाई को मन करते थे लेकिन स्कूल नहीं तो कहाँ जाते, बाहर मम्मी पापा नहीं भेजा।
0: तो आपको जैसे लिखना पढ़ना आता है थोड़ा बहुत? सीखा आपने घर पर बैठ कर? नहीं
1: नहीं नहीं, नहीं सीखा, खाली अपने घर का काम करते, कढ़ाई बुनाई, और फिर नहीं हो तो अपने मस्ती मौज मस्ती करते, खेलते सहेली छोटी छोटी लड़की उनके संग में घर पे। अपने
0: कौन कौन से खेल खेलते थे आप?
1: गुड़िया गुड्डा को गुड़िया गुड्डा छोटी छोटी लड़की अपने घर पे खेलते, बाहर हमारे भाई हमारे पापा नहीं जान देते।
0: सारी लड़कियां आपके घर पर आती थी मोहल्ले की?
1: हाँ, सारी लड़कियां हमारे घर पर आती थी, लेकिन मेरे भाई पापा दूसरे घर पे नहीं भेजते, दूसरी लड़की आई आती थी हमारे घर पर।
0: तो पूरे दिन खेलने में बीतता था?
1: नहीं नहीं, घंटा दो घंटा खेलते, उसके बाद काम करते अपनी मम्मी के संग, दादी के संग।
0: दादी दादा सब परिवार में जॉइंट परिवार था?
1: हाँ, दादी दादा है, मम्मी पापा चाची चाचा, हमारा बहुत बड़ा परिवार।
0: तो सभी चाची चाचा के बच्चे भी सभी आप साथ में ही बड़े हुए?
1: हाँ, सब हमारा बहुत बड़ा परिवार है, खूब बड़ा घर है, एक एक घर में सब बड़े पले, सब सलाह से प्रेम से रहते सब।
0: तो आप भाई बहन और कौन से मतलब किस तरह रहते थे, इतने सारे भाई बहन हो तो कैसे रहते थे आप?
1: प्रेम से रहते सब, एक दूसरे की सब अपने जो चीज भाई लाते तो सब बहन देते, बहन लेती तो अपनी बहने सब मिलके खाते, मिलके रहते। ऐसे दादी मेरे बाबा है, एक चीज दिवाते सबको दिवाते, हमारे मम्मी पापा लाते तो सबको चीज देते। ऐसे
0: जी जो भी बाहर जाते तो सभी के लिए लेके आते?
1: हाँ सभी के लिए लेके आते, हमारे भाई लेके आते सबको देते, पापा लेके आते सबको देते।
0: तो जैसे कि आप गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे है ना, और भी कोई खेल खेलते थे कि सिर्फ गुड्डा गुड्डी का?
1: नहीं नहीं खाली गुड्डी गुड्डा और कुछ नहीं खेल खेलते।
0: अच्छा, और इस तरह आप कितने बड़े हुए फिर आपकी शादी हुई?
1: हमारी तो याद नहीं है, मान लो ऐसे 17-18 साल की उम्र हुई थी हमारी शादी हुई थी।
0: अच्छा, तो आपके मम्मी पापा आपको किस तरह की शिक्षा संस्कार देते थे उस समय?
1: मम्मी पापा बोलते कहीं बाहर नहीं जाने का, अच्छे से घर में काम करने का, कढ़ाई बिनाई सीखने का, किसी की बात नहीं सुनने की, किसी घर पे नहीं जाने का।
0: जी, और आप किस शादी मतलब कौन से शहर में हुई?
1: नहीं ये थोड़ी दूर पे, हमारे गांव से थोड़े दूर गांव है, दूसरे गांव में करी।
0: वो भी गांव ही है?
1: हाँ वो भी गांव है, शहर कस्बा नहीं है, गांव है।
0: तो आपकी शादी के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए?
1: सही आओ बढ़िया है, सास है, ससुर है, एक जिठानी है, जेठ है, देवर हो, दो ननद है,
0: उधर भी बड़ा परिवार है।
1: हाँ फिर दोनों ननद की शादी हमने करी, एक देवर की शादी करी, हम तीनों दिरा जिठानी अभी साझी रह रहे हैं, अभी दो चार साल से अलग हुए हैं, मान लो अब हम बाहर रह रहे हैं, वो घर पर रह रही।
0: तो आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं?
1: हमारे हस्बैंड इधर कंपनी में काम करते हैं, ठेका चला रहे हैं
0: राजस्थान में। तो आपकी शादी के बाद तुरंत आप इधर आ गए या फिर उधर रहे?
1: घर पर 10 साल रहे।
0: 10 साल आप घर पर रहे और आपके हस्बैंड इधर राजस्थान?
1: हम घर पर रहे, हमारे घर वाले इधर अहमदाबाद में काम कर रहे थे, हम सास ससुर के पास रहे, अपने मम्मी पापा के पास रहे, अपने भाई के पास रहे।
0: और जैसे कि शादी करके ससुराल जाते हैं, इतना बड़ा परिवार है, पियर में तो फिर भी फ्रीडम होती है, ससुराल में तो बहुत सारा काम करना पड़ता है।
1: नहीं मिलके करते, हमारी जिठानी हम जिठानी दोनों सलासर आते, दोनों मिलके एक झाड़ू लगाती, बर्तन एक मांजती थी, एक धोती थी, एक आटा लगाती, एक रोटी सेकती, एक बेलती, ऐसे करके अभी भी जाते हैं तो हम दोनों दुरान जिठानी तीनों मिलके काम करते सलासरात, कभी झगड़ा नहीं भाव।
0: जी बहुत अच्छी बात है, कहते हैं कि मिल करके काम करते हैं, काम भी जल्दी होता है, फटाफट भी होता है और स्नेह भी बढ़ता है।
1: अभी मेरे 4-5 बच्चे हैं हमारे, हमारी जिठानी के भी बच्चे हैं, लेकिन हमारे कभी बच्चे ने झगड़ा, वो अपने बच्चे डांट देती है, हम अपने बच्चे डाए, हम कभी नहीं झगड़ा करता।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है शांति जी, आधे झगड़े तो बच्चों की वजह से होता है, बच्चे झगड़ते हैं तो माता है क्या अपने अपने बच्चों का पक्ष लेती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: नहीं होना चाहिए, बच्चा गलती कर रहे हैं तो दोनों को डांट देना चाहिए, और फिर नहीं डांटे तो हमने अपने को डांट दिया, उन्हें अपने डांट दिया, अपने खेलेंगे बच्चा तो खेलेंगे, न लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर एक होंगे, बच्चों के पीछे नहीं लड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो बहुत खुशी की बात है कि आप इतना प्यार से रहते हैं।
1: हाँ प्यार से रहते, इधर भी बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, बता रहे हैं अच्छे से रहना, किसी बड़ा है तो उसे दीदी अरे दीदी बोलने का, बड़ी मम्मी बोलने का, भाई है तो भाई बोलने का, चाचा है तो चाचा बोलने का, किसी से झगड़ा नहीं करने का, झूठ नहीं बोलने का।
0: बहुत अच्छी बात है शांति जी, बहुत अच्छे शिक्षा और संस्कार आप दे रहे हैं अपने बच्चों को, तो ऐसे ही अगर हर माँ अपने बच्चों को देवे तो ये सारे दुनिया के झगड़े खत्म हो जाए। तो शांति जी आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो प्यारे श्रोता बंधुओं बने रहिएगा वंदे मातरम में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टर नी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टर नी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: ना। अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे शांति देवी जी से, और आइए और भी बात करेंगे मावल में ही। तीजा जी बेरवा, इनसे बात करेंगे। तीजा माता जी आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में।
5: धन्यवाद
4: माता जी, आप कैसे हो?
5: हाँ हम ठीक हैं जी।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, माता जी की उम्र 70 के आसपास होगी, फिर भी माता जी बड़े खुश रहते हैं हमेशा। माता जी आप थोड़ी देर के लिए आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपका बचपन कहाँ पे बीता?
5: हमारा बचपन तो अबरूड़ में बीता है। हाँ, हम राजकोट से रहते थे, 8 बहन भाई हैं।
4: अच्छा आपका बचपन आबू रोड में बीता, क्या बात है, आप तो आबू गई है। और आपका नंबर कौन सा आता है?
5: मेरा चौथा नंबर।
4: आप चौथे नंबर के, तो आप 8 भाई बहन कैसे रहते थे आपस में?
5: आपस में राजकोसी रहते थे, लड़ना झगड़ना कोई जानते ही नहीं था। जब बस माँ बाप थे, छोटे छोटे के मर गए, बस भाई थे, 5 भाई थे, 4 बहन थी, 9 बहन भाई थे, पर वो सब 4 बहन भाई मर गए, 2 भाई है।
4: जी जी, वो तो कहते हैं समय के साथ उम्र होगी तो सभी को जाना ही पड़ेगा। पर आपके बचपन की बातें चल रही है कि उसमें 8 भाई बहन, आपस में आप प्यार से रहते थे?
5: प्यार से रहते थे। अब लड़ना झगड़ना तो कोई जानता ही नहीं था जब छोटे छोटे थे जो तो।
4: जी जी, और आपने पढ़ाई की हुई?
5: नहीं जी, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी।
4: आपके जमाने में पढ़ाई नहीं कराते थे?
5: पढ़ाई वढ़ाई करवाते थे, पर अपने छोटे छोटे एक तनख्वाह में हमारा पूरा नहीं पड़ता, तो वैसे घर का ही काम करते थे।
4: आपके पिताजी क्या काम करते थे?
5: हमारे पिताजी ये गाड़ी चलाते थे, फिर फोरमैन थे।
4: अच्छा ट्रेन चलाते थे। और सिर्फ पिताजी काम करते थे या माता जी भी करते?
5: नहीं माता जी तो कभी ये खेत में जैसे नाज हुआ तो काटने जाते थे, घास वास काटे, कोई सल्ला बीन लेते ऐसे।
4: जी जी, तो पिताजी की कमाई पर आप क्या 8 भाई बहनों की पालना करनी होती थी, तो इस वजह से पढ़ाई नहीं की?
5: और जब लड़कियों कोई पढ़ाता ही नहीं था ने?
4: तो आपने ही नहीं की, आपके भाई बहनों ने की या नहीं की?
5: सबने की है, छोटी बहन ने तो उसने भी करी, बड़ी बहन थी तो उसने भी नहीं करी थी, मेरे जैसे ही थी।
4: अच्छा आपने और आपकी बड़ी बहन ने नहीं की, भाइयों ने की?
5: सब भाइयों ने की थी।
4: तो उस समय बेटियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था?
5: रिवाज था ही नहीं, नहीं। हाँ और था, बड़े बड़े लगे जगह था, और हम छोटे जगह था ना तो जाने नहीं दिया। बच्चे थे छोटे छोटे, माँ काम करने चले जाती तो हम खिलाते थे भेड़ भाइयों को।
4: छोटे भाई बहनों को रखना पड़ता था?
5: रखना पड़ता था।
4: बिल्कुल आपने सही कहा है कि माताएं काम करती थी और छोटे भाई बहनों को कौन खिलावे,
5: एक तनख्वाह पे गुजारा नहीं होता तो फिर क्या करेगा।
4: तो आप और पढ़ाई तो आपने की नहीं, फिर आप क्या करते थे, पूरे दिन कैसे बिताते थे आप?
5: बस वैसे ही खेलते थे, कोई चूड़ी खेलते, कोई क्या खेलते, चंगाफो खेलते, ये गुजारा करते थे बस।
4: अच्छा चूड़ी कैसे खेलते थे?
5: वैसे ही चूड़ी होती है ना, कुंडाला बना के और एक एक चूड़ी,
4: चूड़ियों के टुकड़ों से?
5: हाँ टुकड़ों से बस।
4: ओके अच्छा, तो आपके जैसे कि भाई आपसे बड़े थे तो भाभियां भी आ गई होगी?
5: हाँ दो भाभी आ गई थी।
4: तो घर में काम आपको करना पड़ता था?
5: नहीं भाभी आई जब, जिसके बाद तो नहीं करना पड़ा था, जब तो मैं ससुराल आ गई थी, एक भाई की शादी हुई हमारे ससुराल के साथ भेज दी थी।
4: अच्छा आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
5: हमारे 15 साल की,
4: 15 साल की उम्र में शादी हुई। तो आपकी खेती बाड़ी पे जैसे आपके मम्मी जाते थे आप भी जाते थे?
5: नहीं,
4: आप घर का ही काम करते थे। अच्छा घर में और आप क्या कर लेते थे, सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ करते थे?
5: नहीं बस ये, कभी हमारी मम्मी वो स्वेटर बनाती थी वो स्वेटर बनाते थे, कभी एक कसीदा निकाल लेते थे।
4: अच्छा कसीदा आप निकालते थे मम्मी का देख देख के, और स्वेटर भी बना लेते थे?
5: लेते थे बस।
4: तो स्वेटर भी देख देख के बनाते थे?
5: नहीं फिर तो हमको आ गया था ना।
4: हाँ हाँ, जैसे मम्मी से ही सीखा?
5: हाँ मम्मी से सीखा, मम्मी से सीखा, अड़ोसन पड़ोसन बस बैठ जाती, भाई इधर आओ भाई इधर आओ, तो वो बैठ जाती तो उनके साथ में सीख लेते।
4: अच्छा तो स्वेटर आप किसके लिए बनाते थे, खुद के लिए या भाई बहनों के लिए?
5: जैसे मम्मी बनाती थी तो उसमें सारा लगा देते थे,
4: मदद करते थे। अच्छा पहले के जमाने में गीत गाने का बहुत रिवाज था, माताएं बहने कुछ भी काम करती जाते थे और गीत गाते थे, तो आप भी गाते थे?
5: हाँ गीत तो मैं भी अभी भी गाती हूँ।
4: तो आप लोग गीत गाते हुए काम करते थे है ना?
5: वैसे राती जगह होता है, भजन होता है तो उनमें गाते हैं सबसे मिलकर।
4: हाँ जी, राजस्थान में रात्रि जागरण का बहुत रिवाज है, तो राती जगह में आप गीत गाते थे। तो राती जगह में तो कहते हैं कि माताएं जाती है बेटियां नहीं जाती है, तो आप भी जाते थे?
5: जब नहीं जाते थे, आप ससुराल में जाना पड़ा ना।
4: ससुराल में तो जाना पड़ेगा। आपके बचपन की बातें चल रही थी कि आपका बचपन कैसे बीता और आप क्या क्या करते थे?
5: कुछ नहीं, खेलते थे, मस्ती मारते थे।
4: और आप 15 साल के हुए और आपकी शादी हो गई, तो शादी करके ससुराल या मावल है या फिर कहीं और?
5: नहीं मावल में गेट है, मतलब ढाई में क्या है, थोड़े 2 किलोमीटर वहाँ है।
4: क्या नाम है उस गांव का?
5: आवल, आवल, आवल।
4: अच्छा आवल, आवल से फिर आप मावल आ गए रहने?
5: हमारी सास वहाँ गुंटे पे काम करती थी, झंडी बताती थी गाड़ी पे, हमारे ससुर मर गया ना तो उनकी जगह मिल गई थी, तो वो रिटायर हुए तो हमने गांव पर आ गया।
4: अच्छा तो शादी के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए, थोड़े बताएंगे?
5: ये तो मेरे को नहीं परिवर्तन तो क्या, ससुराल में रहते थे, 3 जने थे, खाते पीते परिवार।
4: ससुराल में छोटा परिवार था?
5: हाँ छोटा परिवार, वैसे परिवार तो बहुत बड़ा, हमारे घर में 3 जने थे, मैं थी, मेरी सास थी और हमारे बाबूजी थे।
4: अच्छा तो आपके ननन देवर जेठ कोई नहीं थे?
5: ननन थी, बड़ी बड़ी ससुराल थी बस, आज गुजर गए थे।
4: इतने बड़े परिवार से आप आए छोटे से परिवार में, तो शुरू शुरू में आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा?
5: लगा ना, कोई नहीं था, गांव की बस्ती थी, गांव में चोरी आ जाती, लुगाई आ जाती तो मन लग जाता था, नहीं तो जंगल में एक गुंडी में पड़े रहते थे।
4: तो आपके पति देव उस समय क्या काम करते थे?
5: वो बच्चे को पढ़ाने जाते थे, टीचर थे।
4: अच्छा टीचर थे, तो ये तो अच्छी बात है, आपके सास भी जॉब करते थे, आपके हस्बैंड भी जॉब करते थे, आप घर में अकेले पड़ जाते थे?
5: अकेले।
4: तो फिर कैसे आप समय व्यतीत करते थे?
5: गांव था ना, गांव पास में तो सब आ जाती थी, वहाँ गेट था ना, गेट पे सब इकट्ठी होके बैठ जाती थी, फिर हम भी बैठ जाते वहाँ, सुबह शाम काम कर लेते और दिन में मस्ती मारते।
4: अच्छा सुबह शाम काम करते और दिन में सभी बैठ जाते थे और बातचीत करते थे? तो बातचीत करते थे और साथ ही कुछ करते थे या सिर्फ बातें ही बातें करते थे?
5: नहीं बातें ही, कुछ नहीं करते, इधर 2 किलोमीटर इधर झाड़ना, 2 किलोमीटर झाड़ना, शाम को 2-12 बजे से काम कर लेते और फिर बैठ जाते खाना।
4: और आपके सासू माँ कितनी देर बाहर रहते?
5: बाहर क्या, वो तो गेट पे रहते थे, वो सांप आते तो झंडी बता देते और वैसे सफाई करते, मतलब 2 खंबे इस तरफ 2 खंबे इस तरफ, हम भी मदद करते थे, घास वास उपाड़ना करना, लेन पे कचरा होता तो उसको घास उपाड़ना, ऐसे रस्सी होती है ना गिलास वो।
4: अच्छा तो आप भी इस तरह मदद करते थे, बहुत अच्छी बात है माता जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके बारे में और भी जानेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM।
6: मेरी आँखों में सपने छोटे हो या बड़े, चुन लिए है मैंने क्यों जिद पे होड़े, मेरी आँखों में सपने

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मावल की कुछ बहनें हमारे साथ बने हुए हैं, जिनका नाम है तीजा देवी जी और शांति जी शर्मा, तीजा जी बेरवा हमारे साथ बने हुए हैं। तो आइए शांति जी से फिर से बात करेंगे। शांति जी, आपका फिर से स्वागत है वंदे मातरम में।
3: स्वागत है।
2: अच्छा शांति जी, आप बता रहे थे कि आपके गांव में सड़कें वगैरह नहीं थी।
3: छोटा सा गांव है, भूड़ है, रेती जैसी है और सड़क नहीं थी, कच्ची रास्ता है, बैलगाड़ी चलती है, पैदल भी जाने पड़ते।
2: अच्छा, पैदल कहाँ जाते थे आप?
3: थोड़ी दूर हो, जैसे इधर से आबू रोड है, इतनी दूर सड़क की कच्ची रास्ता, चले जाते आराम से, मस्ती मस्ती सब लोग।
2: मावल से?
3: मावल से जैसे आबू रोड है इतनी दूर तक,
2: उधर यूपी में
3: रास्ता है। हाँ, उधर पापा के साथ में, चाचा के, भाई के, सबके साथ में जाते, बैलगाड़ी से भी जाते, पैदल भी जाते।
2: बसे वगैरह नहीं आती?
3: नहीं नहीं, बस नहीं चलती।
2: अच्छा, और आपके ससुराल में?
3: ससुराल में तो देखो ये टेम्पू चलते हैं, गाड़ी भी चलती है, रिक्शा चलता है, बड़ा बुग्गी चलती है।
2: तो फिर आज भी आप आपके मायके जाते हो तो क्या करते हो?
3: अब मायके जाते हैं तो अपने बस से जाते हैं, और फिर अपने जैसे बस से जाके गांव को जाते हैं तो हमारे भाई की ट्रैक्टर है वो ले जाते, नहीं कोई गाड़ी आड़ी कभी मिल जाते सवारी तो उससे चले जाते, नहीं पैदल चले जाते।
2: ओहो, पर आज भी आप कह रहे हो ना कि अभी भी बसें नहीं चलती है।
3: अभी भी सड़क पर ही है पर कहीं कहीं टूटी है, ये सही नहीं है, जैसे खूब बढ़िया रोड है वो रोड नहीं है अभी पर।
2: आज भी मुश्किल पड़ता है?
3: हाँ, अभी जाते हैं तो सवारी बहुत कम मिलती है तो अभी भी पैदल जाने पड़ते। वैसे तो मेरे भाई ने जैसे आबू रोड है ऐसे मकान ले लो उधर रहते, पर जैसे गांव में मेरे मम्मी पापा रह रहे हैं, छोटा भाई रह रहा हो तो उधर जाने पड़ते। 3 भाई ऐसे कस्बा में रह रहे हैं और मम्मी पापा भी गांव, बहुत जमीन है, घर है, इसलिए वो छोड़ के नहीं, तो उनके पास तो जाना पड़ेगा।
2: जी जी बिल्कुल। और आप आपके गांव से राजस्थान की तरफ आपने रुझान किया, कितने समय हो गए राजस्थान में रहते
3: हैं? यहाँ मैं 6 साल हुई है।
2: अच्छा, 10 साल उधर रहे?
3: घर पे रहे, घर पे तो 10-12 साल घर पे रहे।
2: अच्छा, उसके बाद आप इधर आए राजस्थान?
3: हाँ, उसके बाद गुजरात में भी रहे, गुजरात में रहे 5-6 साल गुजरात रहे।
2: गुजरात रहे, गुजरात में कहाँ?
3: गुजरात में भी कंपनी में काम करते।
2: कौन से शहर में रहे?
3: अहमदाबाद कलोल।
2: अच्छा, अहमदाबाद कलोल रहे, तो ये कड़ी कलोल।
3: हाँ, कड़ी कलोल।
2: तो ये आप जैसे कि उधर से हिंदी भाषा है ना, आपके कौन सी भाषा चलती, भोजपुरी या हिंदी?
3: नहीं, हम तो हिंदी बोलता,
2: तो हिंदी भाषा बोलते, फिर इधर गुजरात में गुजराती भाषा, तो कैसे आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा?
3: नहीं, यहाँ अटपटा लगा तो, पर अपने बोलते तो बंजी सब गुजराती की सब अपने हिंदी में ही बोलती, बात करती अपन में बोलती तो गुजराती बोलती, हमसे बोलती तो हिंदी में बोलती।
2: तो आपका इधर आके मन लग गया?
3: हाँ, अच्छा लग रहा है, रह रहा है, अब नौकरियाँ पति देव रहेंगे हुए, हमें रहना पड़ेगा।
2: जी जी बिल्कुल। और फिर कलोल रह करके फिर आप मावल आए?
3: हाँ, पहले कलोल में रह रहे थे उसके बाद इधर आए, अभी इधर बच्चा पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं।
2: अच्छा, कितने बच्चे हैं?
3: हमारे 5 बच्चे हैं, 5 लड़का लड़की नहीं।
2: 5 ही लड़के हैं?
3: 5 लड़का लड़की नहीं।
2: अच्छा, तो लड़की की कमी खलती नहीं है बेटी की?
3: हाँ, बेटी की खलती है, इसलिए बेटी एक रात देखा तो 5 लड़के हुई है, एक लड़की जो रहे थे।
2: जी जी, तो इस तरह पांच बेटे हो गए बेटी की राह देखते देखते। तो पांचों लड़कों को पढ़ा रहे हैं आप?
3: नहीं, सबसे बड़ा है वो अपने पापा संग काम कर रहा हुआ, चार छोटे छोटे वो चारों पढ़ रहे हैं।
2: तो जैसे कि आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं तो आपको कभी महसूस होता होगा कि काश मैं भी पढ़ती तो?
3: हाँ, महसूस होते, पढ़े होते तो हम जाते तो अंगूठा लगा देते, पढ़े होते तो हम भी साइन कर देते।
2: तो आप अपने बच्चों से पढ़ाई सीख सकते हैं ना?
3: हाँ, बच्चा बोलते हैं मम्मी तुम अपना नाम लिख लो, देखो सीख लियो, हम सिखा देंगे। हम बोलते हैं नहीं, क्या करने अब, तो अब बच्चा पढ़ लेंगे वही बहुत है हमारे लिए, क्या करने अब, इतनी कटी रही वो भी कटी आई, बच्चे नहीं पढ़ाई जरूरी है, बच्चा पढ़ जाएंगे तो बस।
2: तो जैसे आप एक छोटे से गाँव से आप कड़ी जैसे कस्बे में आए, फिर कड़ी से वापिस मावल गाँव में आ गए, तो आपका मन लग गया इधर आके?
3: हाँ, मन तो लगे, अब जहाँ रहेंगे तो मन तो लगे अच्छा लगे, अब सबके संग में यहाँ बैठते हैं उठते हैं, प्रेम सराहते हैं सब, एक दूसरे से बात करते हैं तो अच्छा लगता।
2: आपके रिश्तेदार सब उधर यूपी में?
3: हाँ, रिश्तेदार तो कोई रह रहे हैं, पर हम किसी से रिश्तेदार से अपने अपने घर में रहते हैं, जो बात करे उससे करते, नहीं तो अपने घर में बस।
2: लेकिन आपके घर वाले तो सब उधर ही है ना?
3: हाँ, हमारे घर वाले कलोल में काम कर रहे हैं।
2: अच्छा, कलोल है, और आप यहाँ पर?
3: ये रह रहे थे पर इधर काम छोड़ दिए तो आप कलोल में पहुँची है, तो अभी कलोल में रह रहे हैं हम, यहाँ बच्चा पढ़ रहा है इसलिए यहाँ रह रहे हैं।
2: तो क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड?
3: हमारे वो प्लास्टिक कंपनी है ना, उसमें ठेका आदमी को बुला के ला के उन पर काम करवाते, ठेका चला रहे हैं।
2: अच्छा, तो इसमें भी ट्रांसफर सिस्टम है क्या, पहले कलोल फिर अभी आबू मावल?
3: ऐसा है जैसे अभी इधर कंपनी में काम लिया तो उसमें सेठ पैसा नहीं बढ़ा रहा हुआ, जैसे कम पैसा दे रहे हैं, अब लेबर हमारी ज्यादा मार रही है इसलिए इधर छोड़ दिया, तो उधर दूसरी जगह ले लो वैसे उधर कर रहे हैं।
2: जी जी, आपके पांच बच्चे हैं, आपके हस्बैंड कमाते अकेले हैं, फिर वो आपके घर में चल जाता है?
3: हाँ, बच्चा नहीं है पर पूरा हो जाता खर्चा पानी, बच्चा है सब खर्चा है, भाड़ा किराया सब।
2: आप भी कुछ करते है?
3: नहीं नहीं, हम तो घर पे ही रहता, हम कुछ भी नहीं करते,
2: बस आप अपना छोटा मोटा काम करते हैं घर का?
3: हाँ, अपना छोटा मोटा काम है, बच्चन को बस सुबह उठाओ तैयार करो, नाश्ता पानी बनाओ, उन्हें स्कूल भेजना है, झाड़ू पोता पानी ये काम करना।
2: जैसे आप यूपी में रहे, फिर गुजरात में रहे, अभी राजस्थान में रहे, आपको सबसे अच्छा मन कहाँ पे लगा?
3: अब अच्छा तो गुजरात में भी अच्छा लगता रहा, इधर भी अच्छा लग रहा।
2: नहीं, कहते हैं कि एक तो भाई जहाँ अपना बर्थ प्लेस होता है, जहाँ जन्म स्थान होता है, वहाँ से ज्यादा लगाव रहता है।
3: वो तो रातों में मम्मी पापा की, भाई की, भाभी की, सबकी याद आती है कि अपना कैसे इधर रह रहे हैं, तो घर पे जाए सब बार बार याद आती है उनकी।
2: तो कितने समय से आप जाते हो अपने घर पर?
3: एक साल हो जाए, दो साल, तीन साल ऐसे हो जाती है तब जाते।
2: तो फिर वो लोग आते मिलने इधर?
3: नहीं नहीं, इधर दूर पड़ते, हमारे भाई खेती बाड़ी है, सब नौकर पैसा उधर काम करते, इधर नहीं आते, वो तो घर पे ही रह रहे हैं सब। हमारे चार भाई हैं, चार भाभी है, और चार बहन है, एक दिल्ली रह रही है, एक बरेली में, एक मियाऊ में, और हम इधर रह रहे हैं।
2: सभी आपसे दूर है?
3: सभी दूर है। हाँ, भाभी है, सब बहुत याद आती है भाभी की, भाई की, फोन कर लेते बात कर लेते।
2: जी जी, आजकल तो फोन का सिस्टम अच्छा है कि चलो याद आई और फोन किया।
3: भाई भी बात कर ले, भाभी कर ले, दीदी कर ले, सब लोग कर ले, मम्मी कर ले, पापा कर ले सब। अब मम्मी भी है, पापा भी है, चाचा है, चाची है, सब लोग।
2: जी, और आपके सासू जी या आपके जेठानी वगैरह भी आते हैं इधर मिलने आपसे?
3: नहीं, वो नहीं, सासू ससुर तो नहीं है, जेठानी है, जेठ है, देवर है, देवरानी है,
2: वो सभी आपके गाँव में ही रहते हैं या कलोल रहते हैं?
3: नहीं, वो तो घर पे रह रहे हैं, जिठानी है, माँ जेठ है, वो घर पर, वो सब लोग घर पर रह रहे हैं, हम अकेले रह रहे हैं इधर।
2: अच्छा, तो फिर उनकी भी तो याद आती होगी ना?
3: हाँ, आती है, बात कर लेते मोबाइल से, दो ननद है, ननद अपने अपने घर है, उनसे बात कर लेता, नंद से, नंदोई से।
2: अभी कितना समय हो गया उधर गए हुए?
3: अभी अभी तो ये अप्रैल में गए थे, भतीजी की शादी उसमें गए थे।
2: फिर सभी जगह जाते हो, मिल के आते हो?
3: हाँ, जब जाते तो सभी जगह मिल के आते, जाते मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन के, अपने ससुराल सिगरे।
2: अच्छा, और आप अपने बच्चों के प्रति क्या लक्ष्य रखते हो? उनको अच्छा पढ़ा लिखा करके अच्छा मतलब अच्छी पोस्ट तक पहुंचाना चाहते हो, जॉब करवाना चाहते हो, या फिर बिजनेस करवाना चाहते हो, क्या लक्ष्य बनाया आपने?
3: अब पढ़ाना तो चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चा खूब पढ़ाए लिखे हैं, नौकरी हो, लेकिन प्राइवेट नौकरी है तो अब पति हमारे इतना कमा तो उसमें खर्चा पानी पूरा मुश्किल से पात हो, इसलिए प्राइवेट नहीं पढ़ा पा रहे, सरकारी में पढ़ रहे हैं, खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है।
2: कोई बात नहीं, देखो आगे जाने वाले बच्चे तो सरकारी में से भी निकल पड़ते हैं, वो भी आगे बढ़ जाते हैं।
3: पर पढ़ाते हैं सरकारी में पढ़ते हैं, और देखो ट्यूशन लगा दी, दो की छोटे छोटे ट्यूशन जाता पड़ा।
2: तो चलिए शांति जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का। तो आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

मैं हूं अवधेश पंडित जीएम फाइनेंस बेसिल और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मावल की बहनें हमारे साथ बने हुए हैं, शांति जी, तीजा माता जी। तो आइए फिर से हम बात करेंगे तीजा माता जी से। तीजा माता जी, आप बता रहे थे कि आबू से विवाह करके आप मावल में आ गए।
1: हाँ जी, हाँ, आबू से विवाह करके आबू मावल में आ गए।
0: नहीं, आवल आए ना, पहले तो आवल रहते थे।
1: वैसे शादी तो वहाँ ससुराल में हुई थी, केसरगंज में, फिर यहाँ आ गए थे।
0: कहाँ पे आपका ससुराल?
1: केसरगंज।
0: केसरगंज
1: सिरोही के पास में, सिरोही के पास में।
0: हाँ, तो केसरगंज आपका ससुराल था।
1: हाँ।
0: फिर वहाँ से इधर आए।
1: हमारे सास गेट पे थी, तो गेट पे से रिटायर हो गई, तो यहाँ आ गए।
0: जी जी, तो आवल रहे, फिर आवल से मावल आए।
1: आबू रोज से मावल आए।
0: तो आपके सास रिटायर्ड हो गई, उसके बाद आप मावल आए। अच्छा, आप नई नई शादी करके आए, आप दोनों सास बहू कैसे रहते थे?
1: खूब राजखुशी रहते थे, जैसे माँ है वो समझती थी बेटी। हम खूब हिल मिल कर बात करते थे, हंसी मजाक कर लेते थे सास बहू। हाँ, फिर ये ट्रेनिंग में चले गए उदयपुर, तो हम दोनों माँ बेटी जैसे रहते थे। हाँ, फिर बहुत 6-7 साल हो गई जब फिर हम इनके साथ रह गए, चले गए।
0: अच्छा, 6-7 साल कहाँ चले गए?
1: वहाँ इनके साथ आ गए, हमारे सास रिटायर हो गई तो यहाँ आ गए। फिर ये मकान बना रखा था, वो यहाँ रहती, मैं फिर उनके साथ रहती, महीना भर रह के फिर वापस आ जाते, फिर यहाँ रहते महीने 2 महीने, फिर थोड़े दिन चले जाते इनके साथ।
0: अच्छा, बीच बीच में आवल जाते वापस मावल आ जाते?
1: आवल नहीं, ये जहाँ ड्यूटी करते यहाँ।
0: अच्छा, आपके पति देव जहाँ सर्विस करते थे। हाँ। तो कहाँ कहाँ रहे आप?
1: आप रहे तो कहीं जगह, पहले तो ये उदयपुर रहे थे। हाँ, तो 1 महीना उदयपुर रह के आए, जिसके बाद में ये इकबालगढ़ आ गए। इकबालगढ़ से फिर जो अपने कह रहे सिलोत्रा गए, फिर सीधे भिलड़ी गए, भिलड़ी से फिर वहाँ गांधीधाम चले गए।
0: अच्छा, तो इतनी जगह आप रहे फिर?
1: ये तो मास्टर रोग बदली होती रहती है, 3 साल में इस मारे।
0: अच्छा, तो आपके पतिदेव तो टीचर थे ना?
1: हाँ, टीचर थे, फिर स्टेशन मास्टर हो गए ना।
0: अच्छा, स्टेशन मास्टर हो गए, तो कैसे? पहले तो टीचर थे, अध्यापक थे, फिर स्टेशन मास्टर?
1: फॉर्म भरा, फिर वो आ गई ड्यूटी।
0: अच्छा, तो स्टेशन मास्टर बनने के बाद आप जगह जगह घूमे?
1: हाँ, जगह जगह घूमे।
0: और बीच बीच में वापिस आप घर पर भी आते थे?
1: हमारे सास को संभालते थे ना फिर तो।
0: तो आपके सास के कभी छुट्टियां नहीं होती थी?
1: नहीं होती थी, 15 दिन में रेस्ट पड़ता था।
0: हाँ। तो फिर वो आपके पास आते थे?
1: वो फिर हमारे पास ही रहने लग गई थी। हाँ। फिर वापिस फिर गुजर गई, जब फिर हम रहने लग गए, बड़े बड़े गांधीधाम में चले गए, बच्चे पढ़ने जैसे हो गए, फिर यहाँ आके मकान बना लिया, मकान में यहाँ रहते थे।
0: आपके कितने बच्चे?
1: हमारे 4 लड़के 1 लड़की।
0: अच्छा, तो सभी को पढ़ाया आपने?
1: सभी को मैं पढ़ाया।
0: तो जैसे कि मावल आप रहते हो, फिर पढ़ाई कहाँ की बच्चों ने?
1: बच्चों ने यहाँ स्कूल थी जब 8वीं तक थी, तो 8वीं तक यहाँ, नहीं 5वीं तक थी, 5वीं के बाद आबू रोड भेजा, आबू रोड पढ़े।
0: आबू रोड ही रहते थे? आबू रोड से डेली
1: आबू, यहाँ से आबू रोड जाते थे पढ़ने।
0: अच्छा, तो यहाँ से कोई गाड़ी की व्यवस्था करवाई आपने?
1: गाड़ी थी ना, सुबह सिगड़ोन थी, ये पार्सल थी, फिर साइकिल ले दी, फिर साइकिल से आते जाते थे।
0: अच्छा, और अभी तो आप भी दादी नानी बन गए?
1: हाँ जी, हाँ, अभी तो 5 बच्चे हैं, उनके बेटा बेटी है, नवासा है।
0: आपके जमाने में गाड़ियाँ चलती थी?
1: गाड़ियाँ तो चलाते थे ना।
0: नहीं, ट्रेन तो चलती थी, बसें चलती थी?
1: बहुत, आबू रोड से अहमदाबाद तक खूब चलती थी, उदयपुर जाती थी।
0: तो आपके तो कोई दिक्कत नहीं आई इधर उधर आने जाने में?
1: कुछ नहीं, यहाँ से कभी आवल रहते थे जब 5 से उतर के पैदल जाते थे 2-2.5 किलोमीटर।
0: अच्छा, और जैसा कि आप बता रहे हो कि आपकी सास आपको बेटी की तरह रखते थे, आपके भी बहुएं हैं, तो आप कैसे रह रहे हो बहुओं के साथ?
1: आपकी तो देखो अभी भी ठीक है भगवान की दया से, और वो तो टेम से टेम, जैसे पहले जैसे टेम तो है नहीं, अब थोड़ा परिवर्तन तो हो ही गया ना, तो भी अपने को तो खाना मिल जाता है, खाना देते।
0: जी जी, खाना तो मिल जाता है, लेकिन कहते हैं कि परिवर्तन तो खैर होता ही है, थोड़े विचारों की भिन्नता आ जाती है। पर जैसे कि आप शादी करके आए, उस समय भी सास बहुओं के विचारों में तो भिन्नता होती है, तो अभी आपके बहुएं हैं, तो बहुओं के साथ आपका कैसा रहता है? आपको जैसे बेटी बना के रखा, आप अपने बहुओं के साथ कैसे रह रहे हो?
1: अब देखो बेटी बराबर रखते हैं, फिर वो टेंट हो जाती है, फिर बोलती है नहीं बोलती, ऐसे हो जाता है, खटपट तो होती चलती है। चलो अब दो तो यहाँ रहती नहीं है, दो गंदम में वो लड़के डरे भरे तो वहीं रहती है, वो दो है तो यहाँ रहती है, एक थोड़ी आगे रहती है आगे की वजह, और एक यहाँ रहती है हमारे पास।
0: जी जी, आप तो प्यार से रहते हो लेकिन सभी के स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं। और
1: तो वो उसके एक बच्चा हुआ और वो छोड़ अभी गया, छोड़ के तभी बैठी घर पे, 3-3.5 साल हो गई।
0: अच्छा अच्छा, बेटी की शादी कहाँ करवाई?
1: ये फुलेरा, फुलेरा है ना।
0: अच्छा फुलेरा, और उनके एक बेटा है वो यही है?
1: हाँ यही है इसके पास।
0: अच्छा, क्या कारण होगा?
1: आपके कारण क्या पता है, दोनों जने के क्या पता क्या कारण है। पहले एक साल तो अच्छी तरह रही है और फिर जो लड़का हुआ इसके बाद में खटापटी होने लगी, बोलता नहीं, खटापटी तो क्या मारता कुछ नहीं, बोलता नहीं है खाली। अब क्या पता हुआ रहता है, वो बोलती मैं हम चले तो फिर नहीं मैं ही आ जाऊंगा, वो बोलती मैं यहाँ हूँ तो फिर मैं वहाँ चले जाऊंगा, क्या पता बार पग होगा उसका सर। तो फिर एक दिन आके छोड़ के चले गए।
0: तो आप लोगों ने कुछ कहा नहीं?
1: नहीं हमने नहीं कहा,
0: क्योंकि आपके 4 बेटे हैं, एकलौती बेटी है, तो भाइयों ने कुछ कहा नहीं कि क्या गलती है जो इसको छोड़ के जा रहे हो?
1: कुछ नहीं बोला। अब भाई तो 2 भाई वहाँ हैं, वो एक दो भाइयाँ हैं तो एक तो कुछ बोलता ही नहीं, वो तो बहुत सीधा है। एक भाई ने बोला क्या बात है, तो बोले कुछ नहीं, वो बोले भाई बोल बोल बोल, बस उनको वो ही है कि वो वहाँ आती है तो वो वहाँ चले जाता है, वो वहाँ चले जाती है तो ये यहाँ घर पे आ जाता है, बात ये है। एक नाना देखा ली और ससुराल में कुछ नहीं, एक जेठ है तो वो बोलते ही नहीं है उनसे, तो शादी में भी नहीं बुलाया।
0: जी, तो अब आप, आपकी बेटी पढ़ी हुई है?
1: हाँ है, मैं बीएड करी हुई है।
0: तो जॉब कर रहे?
1: जॉब ये यही जा रही है, स्कूल पढ़ा रहे, ट्यूशन पढ़ाती बच्चों को,
0: ट्यूशन पढ़ाते हैं। कहते हैं कि देखिए इस तरह की
1: इंग्लिश स्कूल में जाती है पढ़ाने।
0: जी जी, इस तरह की परिस्थितियाँ आती है तो माता पिता को बेटी को गले लगाना चाहिए।
1: गले तो लगा ही रखा है ना अपने तो।
0: बिल्कुल माता जी, और आप क्या कहना चाहेंगे? आप खुश है?
1: बस खुश, हाँ खुश है।
0: तो हमारी सुनने वाली माताओं को कुछ कहेंगे, कोई संदेश देंगे?
1: अब मेरे से संदेश दिया नहीं जाएगा।
0: चलो कोई बात नहीं। और शांति जी, आप अपने जीवन के अनुभव से हमारे सुनने वाली बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
2: अपने बच्चों को, बेटी को, बेटों को अच्छे से पढ़ाना, अच्छे संस्कार देना, अच्छे से रखना, उन्हें प्यार देना, लाड़ दुआर देना। जो ससुराल जाएं तो उन्हें ये नहीं आवे कि हमारे मम्मी पापा ने, भाई ने, बहन ने, भाभी ने, अच्छे से रखो, प्यार से रखो, तो उन्हें दुख नहीं होना चाहिए।
0: तो शांति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तीजा माता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने अपने जीवन के अनुभव सुनाए और रेडियो मधुबन और सुनने वाले श्रोताओं को इतना समय भी दिया, आपके जीवन के अनुभव भी शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। मावल गांव की रहने वाली बहने जो तीजा माता जी और शांति जी शर्मा, इन दोनों के जीवन के अनुभव आपने सुने हैं। कहते हैं कि देखिए तीजा माता जी के आज 70+ इनकी उम्र है और इस उम्र में 4 बेटे, 1 बेटी है, बेटी को फिर ससुराल वालों ने बेटी को छोड़ दिया, इनके पास है, लेकिन फिर भी कहती है कि एक नारी कभी नहीं हारती, अपने बच्चों की अच्छी तरह पालना करती है, उन्हें पूरी तरह प्यार देती है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर फोन कीजिए और इस तरह आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से विदा लेना चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। आज 5 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। कल हम सभी ने बाबा की मुरली में राइट हैंड आत्माओं की विशेषता सुनी, साथ ही साथ बाबा ने जो हम बच्चों को शिक्षाएं दी कि कैसे हमें नई दुनिया की तकदीर बनानी है, उसकी गहराई समझाई। आज बाबा हम बच्चों को योग बल को कैसे अपने अंदर जमा करना है और योग बल वाली आत्माएं कितनी ईमानदार वफादार होगी उसकी निशानियां बताई है। ईमानदार आत्माओं की सूक्ष्म धारणाएं बाबा ने बताई है कि वह कभी कोई भी बात बाप से छिपाएंगे नहीं, ये उसकी ईमानदारी है, वफादारी है। साथ ही साथ वो कभी किसी का भी पर चिंतन नहीं करेंगे, पर मत के प्रभाव में नहीं आएंगे, पर दर्शन नहीं करेंगे, ये आत्मा ऐसी है, ये आत्मा ऐसी है। बाबा कहे ऐसा कभी किसी के डिससर्विस का गायन नहीं करेंगे। तो ये ईमानदार आत्माओं की विशेषता आज के बाबा के महावाक्य में सुनेंगे। सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। योग में कितनी शक्ति है, पावर है, जो पूरी पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। हमारा ये ईश्वरीय जन्म हुआ है किस लिए? रूहानी सेवा के लिए। आज की मुरली से प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होगी? उत्तर है, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वह बहुत बहुत निरहंकारी होते हैं, उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। दूसरी निशानी, वह कभी किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, धीरज धर मनवा तेरे सुख भरे दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं, जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना। कोई बीमार होता है तो उनको आथत देते हैं, तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदल कर सुख के दिन आएंगे। वह हद का बाप हद का धैर्य देते हैं, दुनिया में हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप, जो बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं। बच्चे, अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी ये थोड़े दिन है, अभी ये संगम के थोड़े दिन है। अब तुम बाप की याद में रह औरों को भी सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियां हो ना, शिव बाबा की शक्ति से ना फिर से प्रकट हुई है। बाबा कहते हैं ये गोप भी आत्माएं हैं, ये सब शिव से शक्ति लेते हैं, तुम भी शक्ति लेते हो। बाप ने समझाया है इसमें कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। याद में रह शक्ति लेते जाओ, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिमान थी, जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तुम जानते हो योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं, अंगुली से भी मनुष्य ऐसे इशारा करते हैं।
कि अल्लाह को गॉड को याद करो, ऊपर की ओर इशारा करते कि अल्लाह को गॉड को याद करो। बच्चे भी अभी समझते हैं बाप की याद से ये पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी, ये पत्थरों की दुनिया बदल जाएंगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। है बहुत सहज, बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है, हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं, जिनकी शादी की हुई है वह कहती है, बाबा कहते हैं जिनकी शादी हो गई है वो क्या कहती है, इस समय हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छुटी हुई फ्री बर्ड होती। कन्याएं फ्री बर्ड्स है, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। स्त्री को पुरुष बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं, इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है, फ्री बर्ड है। बाबा कहे शादी के बाद तो कितने बंधन शुरू हो जाते, हर प्रकार के त्योहार पर ये रसम करना है, रिवाज करना है, तो हर रसम रिवाज का भी बंधन होता है। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही है, बॉम्बे में उस समय बहुत सारी बहनें निकली थी, जैसे नलिनी बहन, सरला दीदी, निमू बहन, सब सारी बड़ी बड़ी बहनें उस समय निकली थी बॉम्बे से। तो अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही है, कहती है हम अपने प्रांत को आप ही संभालेंगी। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कहते हमारा गुजरात, हमारी यूपी, तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो, इसमें मैं फलाना हूं, फलाने प्रांत का हूं, यह भी न रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। ईमानदार आत्माओं की यह भी एक विशेषता कि कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखते हैं, कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए हमने कितनी आत्माओं को, बहनों भाइयों को सुख का रास्ता बताया है। अगर रास्ता नहीं बताया तो वह कोई काम का नहीं, दिल पर चढ़ नहीं सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर भी नहीं बैठ सकता। ईमानदार आत्मा बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ जाती है। अगर बाप दादा के दिल तख्त पर नहीं चढ़ा तो बाबा कहे उस राज्य तख्त पर भी नहीं बैठ सकता। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे को सर्विस का बहुत शौक है, जरा भी देह का अभिमान नहीं है। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की है, हम सर्विस करके बाप पर कृपा कर रहे हैं। कभी भी किसके अवगुणों को देखना नहीं चाहिए, बाबा कहते कभी भी किसके अवगुण को नहीं देखना चाहिए, फलाना ऐसा है यह करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं, बाबा क्या कहते आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो के डिससर्विस का गायन करते हैं, फलाना यह करता है ऐसा है। अरे तुम अपनी सर्विस करो, ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं, हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं, सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए, हर एक को अपना कल्याण करना है इस रूहानी सर्विस से, हर एक को अपना कल्याण करना है इस रूहानी सर्विस से। वह धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए, यह धंधा कोई विरला व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज बताते हैं सर्विस का, कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो, ऐसे बहुत करते हैं।
अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते हैं। बाबा को भी राय देते हैं, कहीं ऐसे सयाने बच्चे बाबा कहते, बाबा को भी राय देते हैं, ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसा करेंगे तो बस ट्रेटर बन जाएंगे। इसलिए बाबा उनको खुल करके कह भी नहीं सकते हैं, बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। कहावत है ना, दुनिया में कहावत है कौन सी, चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो पंसारी समझ बैठा। ये नहीं समझते कि हम डिससर्विस करते हैं। भूले तो बहुतों से होती रहती है, कभी अवस्था ऊंच कभी नीच, ये चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था को देखे, ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बतलाते हैं। कोई तो अपनी भूले छुपा लेते हैं, इसमें बड़ा निरहंकारीपन चाहिए। इसलिए कहा बाबा ने, ईमानदार बच्चों में निरहंकारीपना है, सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मैं किसकी निंदा करूंगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। हमने जिसकी निंदा की दूसरे हमारी निंदा करेंगे। बहुतों को ये ख्याल नहीं आता है। बाप समझाते हैं, तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे, दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफर हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए। जिनमें 5 विकार है वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवताएं तो यहाँ है नहीं, देवताएं होंगे सतयुग में। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलता है। हम बाबा कहते, तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो, कितना चांस मिलता है सेवा करने का। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसको समझा नहीं सकेंगे, सन्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे कि ये आत्मा कितना सुनता है समझता है। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज है, उसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए, रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। बांधे लिए हो तो घर में रहते बाप को याद करती रहो तो भी कर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कहे, वैसे तो सर्विस का शौक होना चाहिए, लेकिन अगर बांधे लिए हो तो घर में रहते बाप को याद करती रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना ये बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते हैं। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते, न सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने से जुटके खाते हैं। याद करने के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं, उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो है ही चढ़ने की बात। माया कितने विघ्न डालती है, सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना वो तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़ते हैं। ये पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन। ये बच्चों को नशा नहीं रहता है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको न देख अपनी सर्विस में लगे रहे। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं, कोई देह अभिमान में आकर समझते हैं
ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। बाबा कहते दे अभिमान में आ गए तो समझते हैं ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। औरों की ही निंदा करते टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना, कोई भी बात है इशारा बाप को दे दिया बस। कोई भी बात है इशारा बाप को दे दिया बस। पर चिंतन नहीं करना चाहिए, सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यह है, रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं। मनुष्य सृष्टि रचते हैं अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को कांटों से फूल बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तो कांटों को फूल बनाना मना ही बगीचा रचा तो नई सृष्टि की रचना की। तो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़ी सृष्टि रचेंगे, ब्रह्मा तो यहां होगा ना। कितना क्लियर समझाया जाता है। बाप कहते मैं बहुत जन्म के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूं। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए, धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती, बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं है। बाबा कहते बीमार पड़ गए तो क्या कहेंगे कि फुर्सत

नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता, भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा। बाबा कहते भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता, ऊपर से भगवान प्रेरणा करके काम नहीं करते तो औरों से फिर कैसे होगा। समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते हो हे पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, बस दूसरी कोई बात ही नहीं। ऐसे थोड़ी कहते हैं आकर मुर्दे को जिंदा बनाओ, वह है ही पतित पावन, भारत पावन था ना। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूं, माया फिर आकर पतित बनाती है, अब फिर मैं आया हूं पावन बनाने। कितनी सहज बात बतलाते हैं हकीम लोग, बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं, फिर उन्हों की महिमा भी होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई, अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे भावी। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वह है हठ योगी, हठ से पवित्र बने इसलिए बाबा कहते हठ योगी, वह राजयोग सिखला ना सके। वह सन्यासी हम गृहस्थी, फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते हैं, ये भी मनुष्य नहीं समझते। बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है मन मना भाव, बच्चों को पूरा फॉलो करना है और मन मना भाव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे, मैं तो एवर पावन हूं। शिव बाबा कहते मैं तो एवर पावन हूं, मनुष्य पतित बनाते हैं, बाप आकर पावन बनाते हैं, वह पवित्रता शांति सुख का सागर है, तुमको भी ऐसा बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो, जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, नई दुनिया में फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है, ऐसे थोड़ी सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया, अपने पर पूरा ध्यान देना है, हर एक कर्म पर पूरा ध्यान देना है, देह अभिमान ना आए। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे, निश्चय वाले ही कहते हैं ना। कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा, वास्तव में कभी भी ये संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का कहां हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। बाबा कहते थोड़ा ही दुनिया के अंदर हंगामा आदि होगा, फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। समझते हैं ना, हम याद में पूरा नहीं रहते हैं फिर उस समय कशम कशा तो कर नहीं सकेंगे, उस समय तो बहुत आफतें आदि रहती है, इसलिए बाप कहते जितना हो सके गैलप करते जाओ, ये आत्माओं की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना है नई दुनिया में, हाथ लगा करके थोड़ा समय रेस्ट करके फिर बाबा कहे चले आना नई दुनिया में, बड़ी फाइन रेस है। बाप कहते मेरे को टच कर अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है, पहले पहले वह आएंगे जो योग युक्त होंगे। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाए तो बाप कहते मुझे याद करो तो चले जाएंगे, मुक्ति धाम तो सबको पसंद है, फिर आएंगे पाठ बजाने, मोक्ष किसको मिलता नहीं। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर है नहीं, एक सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है,
बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। रावण राज्य से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंच पद पाएगा, जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंच पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम है ना, तो क्रोधी नहीं बनना है। इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे हैं, दुर्वासा ऋषि जैसे हैं। हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूं, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया, तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना है। बाप कहते मैं आया हूं बच्चों को फुल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता, बाप की सर्विस में तो हड्डियां भी देनी है। कथनी करनी एक करना है, करते भी है फिर कहां देह अभिमान आ जाने से नशा आ जाता है और गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है, बाप की श्रीमत पर न चलने से माया वार करती है, तो बाप को फारगती दे देते हैं। बाप सुखधाम का मालिक बनाते हैं तो अपने पर तरस आना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं, माया के तूफान तो बहुत आएंगे परंतु महावीर बनना है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे परंतु बाबा कहे महावीर बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, किसी की डिस सर्विस का गायन नहीं करना है, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट, ईमानदार और निरहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है, कथनी और करनी समान बनानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मन मना भाव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। मन मना भाव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। आज का व्यक्ति इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम
तो पर्सनालिटी का